हुई और जो संपूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं। सुना होगा सभी ने भगवान के महावाक्य, संपूर्ण संतुष्ट होना ही संपूर्णता है। संपूर्णता की कई डेफिनेशंस बाबा ने दी हैं, उसमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संपूर्ण संतुष्ट होते ही हम योग युक्त हो जाते हैं, और योग युक्त होने से वो सब प्राप्तियां हो जाती हैं जो हम जीवन में चाहते हैं। तो आज चर्चा है विशेष रूप से समाने की शक्ति की। हमें सब कुछ समाना पड़ता है, पहले तो ज्ञान को अपने अंदर समाना है, योग की शक्तियों को अपने अंदर समाना है, पवित्रता की शक्ति को भी स्वयं में समा लेना है, धारण करना वाना स्वयं में समा लेना, संस्कार बना देना। और फिर है जब हम संगठन में हैं, जब परिवारों में हैं, जब हमारा अपना व्यक्तिगत जीवन है, तो जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं। कुछ लोग हमसे बुरा व्यवहार भी करते हैं, कुछ लोग अनादर भी करेंगे, उल्टी सुल्टी बातें भी हमें सुननी पड़ेंगी। ये सब सुनकर बहुतों का मन भारी हो जाता है, समाना ही पड़ेगा। समाने वाले समान बन जाते हैं, समान माना भगवान के समान, बाप के समान, परमपिता के समान। समाते चलो, समाएंगे यदि, और समाने का अर्थ केवल ये नहीं कि उसको अंदर रख लिया और किसी को बताया नहीं, और अंदर टेंशन होती रही, अंदर परेशान होते रहे, वो चित्त को बेचैन करती रही बातें, समाना माना उसको भुलाना भी। अगर हम इस तरह करेंगे तो वो समाना हमें सूक्ष्म शक्तियां प्रदान करेगा, लेकिन बहुतों में समाया नहीं जाता। आप जानते हैं समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो कुछ बात सुनी वो उन्हें हजम नहीं होती, और जब तक दो चार को न बताएं तब तक शांति नहीं होती, वो उथल पुथल चलती रहती, इंडाइजेशन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि दूसरों को सुनाकर मन उछल का तो हो जाता है, कोई टेंशन है, कोई बुरी बात हो गई वो भी, किन्हें कुछ कह दिया वो भी, कोई डिस्टर्ब करने वाली बात आ गई, कुछ बातों से हम हर्ट हो गए, वो सब बातें भी हमने दूसरों को सुना के अपने को हल्का कर दिया, लेकिन आत्मा खाली होती जाती है। फिर दूसरी बात आएंगी, हम सुनाते ही रहेंगे, उसमें हमारा टाइम जाएगा, संकल्प शक्ति नष्ट होगी, जो हमारी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समय और संकल्प शक्ति। तो समाए और सुनाना ही है, तो उसको सुनाए जो सुना सुनकर हमें शक्तियां दे दे, हमारे बोझ हर ले, हमें हल्का बना ले। दूसरों को सुनाएंगे तो वो भी कहेगी हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही होता है बहन, वो तो है ही ऐसे, हमारे मन को अनेक बुराइयों से भर दिया जाएगा। इसलिए समाते चलें, समान बनते चले, और रोज सवेरे उठकर ये प्रैक्टिस करेंगे, कल सवेरे करेंगे आप सभी, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास हैं, मैं समाने की शक्ति में भी परिपूर्ण हूं, मैं हर चीज समा सकता हूं, समा सकती हूँ, मेरे लिए कुछ भी समा लेना कठिन नहीं है। तो ये शक्ति जागृत हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इस तरह हम शक्ति संपन्न बनते जाएंगे। नहीं समाते तो बातें फैलाते हैं, और फैली हुई बातें यज्ञ को भी कमजोर करती हैं, परिवार को भी कमजोर करती हैं, और स्वयं को भी कमजोर करती हैं। तो आइए हम समाने की शक्ति का स्वरूप बने। ओम।

आइए नवरात्रि में शक्ति के नौ रूपों का आह्वान करते हैं। माँ चंद्रघंटा श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि का वरदान देती है, तो आइए हम भी सभी को सुख बांटें और माँ का आशीर्वाद सहज प्राप्त करें। आज नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से हार्दिक

0: ओए रुको, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, ओए एक बाइक पे तीन हैं, ओए तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ओए बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, ओए तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको, ओए अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्रीज बोल्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। एक लड़की सुबह सुबह बहती जल धारा की तरह उत्साह से भरी हुई थी। जब वह अपने जीवन के प्रयोजन के बारे में, अपने भविष्य की योजनाओं व लक्ष्यों के बारे में और अपनी उपलब्धियों के बारे में बता रही थी, इस बारे में वह बिल्कुल स्पष्ट थी कि अपने समय व क्षमता का सदुपयोग वह किस तरह करना चाहती है। लेकिन अगली सुबह वह बस उन नई नई फिल्मों की बातें कर रही थी जो उसने अभी तक नहीं देखी है। वह उन पेस्ट्रियों के नाम गिना रही थी जो उसने बहुत दिनों से नहीं खाई थी, और यह कि वह अपनी विंडो शॉपिंग को कितना मिस कर रही है। बात यह नहीं है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, बल्कि यह है कि 24 घंटे में यह बदलाव कैसे आ गया। जिन लोगों के साथ वह उस दिन थी और जिन लोगों के साथ वह अगले दिन थी, उसी से यह सारा अंतर आया था। लोगों की संगत में रहना दोधारी तलवार जैसा होता है, उसमें यह शक्ति भी होती है कि वह आपका विकास कर दे और यह शक्ति भी होती है कि आपका विनाश कर दे। हम जिन लोगों की संगत से घिरे रहते हैं उसका इस बात पर बहुत प्रभाव पड़ता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, दूसरों को कैसे देखते हैं, अपने आप को कैसे देखते हैं और अपने वर्तमान व भविष्य को कैसे बनाते हैं। यह सच है कि ऐसे लोग भी हुए हैं जो अपने परिवेश के बावजूद ऊपर उठे हैं, लेकिन हम यहाँ अपवादों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों के मन मस्तिष्क का स्वरूप उनके परिवेश के कारण ही तो बनता है। आपके मन मस्तिष्क का मौजूदा स्वरूप केवल बीते कल द्वारा ही नहीं रचा गया है, बल्कि वह उन लोगों द्वारा भी तरह तरह से रचा गया है जिनकी संगत में आप कल तक रहते आए हैं, और आपके आने वाले कल का स्वरूप उन लोगों द्वारा रचा जाएगा जिनकी संगत को आप अपना आज सौंप देंगे।

सागर, रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नियमित रूप से गिरजाघर जाने वाले एक सदस्य ने वहां जाना अचानक बंद कर दिया। जब कुछ दिन बीत गए तो पादरी ने उसके घर जाने का सोचा। उस शाम बहुत सर्दी थी। पादरी को वह आदमी दहकती अंगीठी के सामने बैठा मिला। वह घर में अकेला था। उस व्यक्ति ने पादरी का स्वागत किया, अंगीठी के सामने रखी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया और उसके कुछ बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। पादरी कुर्सी पर आराम से बैठ तो गया पर बोला कुछ नहीं। कुछ देर बाद पादरी ने चिमटा उठाया और बड़ी सावधानी से एक बड़ा सा दहकता चमकता अंगारा अंगीठी में से निकाला और उसे एक तरफ रख दिया। इसके बाद वह फिर कुर्सी पर आराम से बैठ गया लेकिन बोला कुछ नहीं। वह व्यक्ति यह सब बस देखता रहा। उस अकेले अंगारे की चमक दमक धीरे धीरे कम होती चली गई और जल्दी ही वह बुझा बुझा और ठंडा सा हो गया। पादरी के आने के समय हुए अभिवादन के अलावा किसी ने भी एक शब्द तक नहीं बोला था। चलने से पहले पादरी ने वह ठंडा और बुझा बुझा कोयला उठाया और वापस आग में फेंक दिया, जिससे वह तुरंत ही आसपास के जलते कोयलों के कारण रोशनी और गर्मी से फिर चमकने दहकने लगा। पादरी चलने के लिए जैसे ही उठा तो वह मेजबान व्यक्ति बोला, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से अंगारे वाले उपदेश के लिए। मैं अगले रविवार से दोबारा गिरजाघर आया करूंगा। जो बुद्धिमान लोगों की संगत में रहता है वह बुद्धिमान बनेगा, लेकिन मूर्खों की संगत में रहने वाला हानि ही झेलेगा। कहा जाता है कि गोद लिया गया बालक एक समय के बाद लगभग उस परिवार के सदस्यों के समान ही बन जाता है जिस परिवार ने उसे गोद लिया है। सच है, हम जैसी संगति में रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। हम अपनी गति को जितना बढ़ा सकते हैं, यदि वह उतनी नहीं बढ़ रही है, और जितने शील, शोभा, शिष्टता, गौरव और गरिमा के साथ हम रह सकते हैं, हम उतना नहीं रह रहे हैं, तो हमें एक साहसिक कदम उठाना होगा। चाहे वह कोई संगठन हो जिसमें हम काम करते हैं, चाहे उन लोगों का साथ हो जिनसे हम जुड़े हुए हैं, या वह परिवार हो जिसमें हम पल बढ़ रहे हैं। यदि वह हमारा सृजन नहीं कर रहा है तो हमें वहां से किसी ऐसे स्थान पर चले जाना होगा जहां हमारा विकास हो सके। यह एक कठिन कदम है लेकिन जरूरी है। कबाड़ के ढेर में किसी बीज को बर्बाद कर देने की क्या तुक है।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी है एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माय वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर, ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा x-ray है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

असाधारण लोग वे साधारण लोग होते हैं जो हर साधारण कार्य को असाधारण जोश के साथ करते हैं। महान जीवन का अर्थ है किसी प्रयोजन के साथ स्वयं को एकाकार कर देना, एक ऐसा प्रयोजन जो आपके जीवन से बड़ा हो और जिस पर आप अपनी अंतिम सांस तक अपनी हर सांस को न्योछावर करते रहना चाहते हों। आप इतिहास तब रचते हैं जब आपके पास कोई ऐसा प्रयोजन हो जो आपको हर सुबह थोड़ा जल्दी उठने को और हर रात थोड़ा देर तक जागे रहने को प्रेरित करता हो और इसके बीच के हर पल को जोश की प्रबलता से भरता हो। अपने हर कार्य में अतिरिक्त योगदान दें ताकि आपका जीवन असाधारण हो जाए। आपकी सारी उपलब्धियों में महानतम है अपने जीवन को उपलब्धियों से परिपूर्ण करना और फिर यह कह सकने योग्य होना, मैंने जो भी हासिल किया है उसने मेरे अस्तित्व को मलिन व दूषित नहीं किया है, मैं वैसा ही हूँ जैसा हमेशा से था। जीवन का सबसे बड़ा आनंद है इंसानों के बीच रहते हुए इंसानियत से थोड़ा ऊंचा उठकर जीना, लेकिन फिर भी इंसानों के बीच इंसानों की तरह चलना। आप अपने हृदय को किसी भी बाहरी चीज से अछूता रहने दें। साइकिल चलाना आ जाने के बाद जो एक बड़ा रोमांच होता है वह है हैंडल से हाथ छोड़कर उसे चलाना। इस तरह से साइकिल चलाना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना यह देखना कि ऐसा करते हुए लोग हमें देख रहे हैं। किशोरावस्था में किसी बस या ट्रेन के पायदान पर खड़े होकर यात्रा करना साहस का एक बढ़िया प्रदर्शन समझा जाता है। दरअसल लोगों में यह ललक उस काम को करने की नहीं होती बल्कि दूसरों की नजर में आने की होती है। जीवन में हर कोई उस अवस्था से गुजरता ही है जिसमें दूसरों की नजर में आने और अपनी एक पहचान बनाने के लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। यह वह समय होता है जब कोई भी अच्छाई केवल इसीलिए अच्छाई लगती है क्योंकि वह लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, और तो और कोई बुराई भी तब इसीलिए अच्छाई लगने लगती है

कि वह लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही होती है। विडंबना तो तब होती है जब कोई अच्छाई भी बस इसीलिए अच्छाई नहीं रह जाती क्योंकि वह लोगों का ध्यान आकर्षित करने में विफल रहती है। दूसरों का ध्यान आकर्षित करना, दूसरों की नजर में आना, यह अहम की खुराक है, लेकिन आखिरकार हमें उस अवस्था से ऊपर उठना चाहिए।

हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

अपने स्वभाव के अनुसार अहम को पोषण चाहिए और इसीलिए वह सदा इसका भिखारी बना रहता है। अहम के साथ समस्या यह है कि जब तक

आपके अहम का पोषण होता है तो आप श्रेष्ठता की भावना से ग्रस्त रहते हैं, लेकिन जब आपके अहम का पोषण नहीं किया जाता तो आप हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में यह आपकी मानसिक शांति को छीन लेता है। जब अहम आता है तो बाकी सब चला जाता है, और जब अहम चला जाता है तो सब आ जाता है। अपने अहम को संतुष्ट करने के चक्कर में आप कितने मूल्यवान संबंध खो चुके हैं। आपको जब अपने अहम को दूर करके संबंध को बचाना था, तब आपने संबंध को दूर जाने दिया और अहम को बचा लिया। अहम कभी इस योग्य नहीं होता कि उसके लिए इतनी भारी क्षति सही जाए। जब आप अपने अहम की सेवा करने में लगे होते हैं, तब कितने ही सुनहरे अवसर गंवा देते हैं। तब हर पल भारी होता है, हर स्थिति दिमाग की नसें हिला देने वाली होती है, हर बातचीत तनावपूर्ण होती है। अहम से भरा हृदय हमेशा आग पर जल रहा होता है। अहम और सहजता का मिलन कभी नहीं हो पाता। अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा ले जा रहे एक कौवे ने पाया कि कई चिड़ियां उसके पीछे पड़ गई हैं। उसने वह मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। तब सारी चिड़ियां कौवे को छोड़कर उस टुकड़े के पीछे झपट पड़ी। तब आकाश में अकेले उड़ते कौवे ने कहा, उस मांस के टुकड़े को छोड़कर मैंने आकाश की आजादी पा ली। अपने अहम को छोड़ देने से आपको भरपूर आजादी मिल जाती है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आइए नवरात्रि में शक्ति के नौ रूपों का आवाहन करें। माँ चंद्रघंटा श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। आइए हम भी सभी को सुख बांटें और माँ का आशीर्वाद सहज प्राप्त करें। आज नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को मंगल कामनाएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसके बारे में दुनिया में हर व्यक्ति को ये सही जानकारी होना आवश्यक है कि स्वास्थ्य को हम कैसे समझें, अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसके कारण क्या है और उसे हम ठीक कैसे करें। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, भले वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, भले वो अमीर हो गरीब हो, वो शहर में रहता हो या ग्रामीण परिवेश में रहता हो, वो किसी भी आयु का क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य एक कॉमन फैक्टर है। एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान के लिए आवश्यक है और हर एक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की जानकारी मिलना एक आवश्यक चीज है। प्रायः हम इस जानकारी के अभाव में अपने आप को दुखी कर लेते हैं, अपने शरीर में रोगों को न्योता दे देते हैं और इसके कारण लोगों को अपनी की हुई कमाई को भी फिर से स्वास्थ्य को हासिल करने के लिए खर्च करना पड़ता है। कई असाध्य रोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति जीवन भर साथ में जीते रहता है, समझ कर चलता है कि अब तो इस रोग के साथ ही जीना पड़ेगा। मगर क्या ये सब हमारी धारणाएं सही हैं? क्या हम शुरुआत से ही स्वस्थ रहने के बारे में कुछ सही चीजें कर सकते हैं? आइए कुछ ऐसे ही विषयों पर आज चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ स्वास्थ्य जगत के ही एक विशेषज्ञ इस विषय पर हमें जानकारी देंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, ओम शांति।
1: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो ये बात समझने वाली लगती है कि आज अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग विषय हो सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में अप्लाई करने वाली चीजें अलग हो सकती हैं, शहरी जीवन जीने वाले लोगों के लिए अलग चीजें अप्लाई कर सकती हैं, पढ़े लिखे इंसान के लिए कुछ चीजें समझ की अलग होंगी और जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो उसके लिए समझाने वाली चीजें कोई अलग प्रकार की होंगी। मगर स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो विश्व भर में हर एक मानव के लिए सेम है। हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति क्या हम सबको एक बेसिक एजुकेशन या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक समझ, क्या ये होनी जरूरी नहीं है?
2: स्वास्थ्य के लिए सबको जागरूक होने की जरूरत है। अमीर गरीब, पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे, पुरुष महिला बच्चे, सबको इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। आप आज बात करते करते आपने कहा कि आदमी अपना पैसा खर्च करके अपना स्वास्थ्य पाने की कोशिश करता है, तो इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि पहले वो अपना स्वास्थ्य खर्चा करता है पैसा कमाने के लिए और फिर उसी पैसे से वापस स्वास्थ्य लेना चाहता है। जैसे उसका ठीक समय पे न सोना, ठीक समय पे न खाना, ठीक समय पे काम पे न जाना, जल्दी जल्दी खाना, ये सारी चीजें उसको जब बहुत ज्यादा चीनी, बहुत ज्यादा तेल मसाला, बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा नमकीन, ऐसी चीजें खाना, और जब वो बीमार पड़ने लगता है तो वो डॉक्टरों का गोल गोल चक्कर लगाता है और फिर जब डॉक्टर उसको समझाते हैं कि भाई ठीक से खाओ, कम खाओ, ये चीज मत खाओ, तब फिर वो आदमी अपना जो कमाया हुआ पैसा है वो अपने स्वास्थ्य को पाने के लिए खर्चा करता है। एक बात आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगी कि अगर हम देखें तो अमीर व्यक्तियों के मुकाबले गरीब व्यक्ति कम बीमार पड़ता है, और वो कम बीमार इसलिए पड़ता है क्योंकि वो अभी भी प्रकृति के पास रह रहा है। अभी भी वो जो उसका भोजन है वो सरल है और वह शारीरिक श्रम ज्यादा कर रहा है एक अमीर व्यक्ति के तुलना में। उसको मेहनत करनी पड़ रही है अपनी रोटी कमाने के लिए, तो वो शारीरिक मेहनत से वो रोटी कमा रहा है, इसलिए वो ज्यादा बीमार नहीं पड़ रहा। आपने जो प्रश्न पूछा था कि जागरूकता सबके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, आप देखिए कि ये सरकार ने, ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन ने और जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं, तो वो इस चीज को सबको समझा रही हैं और सिखा रही हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है। और इसका बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है कि सुबेरे उठ के ब्रश कर, बाथरूम जाने के बाद बाहर निकल के हाथ धोना, खाना खाने से पहले हाथ धोकर खाना खाना, खाना खाने के बाद अच्छे से हाथ धोना, खाने के साथ पानी को कम पीना, अपने रोज नहाना, सप्ताह में एक बार अपना बाल धोना। तो इस तरह से हम पर्सनल हाइजीन की भी बात कर रहे हैं। और ये कहा जाता है कि अगर आप साफ हैं तो आपके बीमार होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जहां साफ सफाई रहती है वहां कीटाणु कम रहते हैं। पर बड़ा बेसिक सा बात है, अगर आपके हाथ पे कोई बैक्टीरिया या कोई गंदा वायरस या कोई कीटाणु लगा है, नाखून काटने की बात की जाती है बड़ी छोटी, देखो भाई नाखून छोटे होने चाहिए। और पुराने जिस समय मैं पढ़ रहा था, श्री भाई आप पढ़ रहे थे, तो हम लोग के स्कूल में बाल छोटे रहने चाहिए, नाखून कटे रहने चाहिए, और ये जो स्कूल के बच्चे जो क्लास के मॉनिटर्स थे या प्रीफेक्ट्स थे, वो लाइन में खड़ा होकर असेंबली के समय हर हफ्ते चेक किया करते थे। तो स्वस्थ रहने के लिए बेसिक हाइजीन की जरूरत है, और उसके साथ साथ हमें अपने आप को थोड़ा वातावरण या प्रकृति के पास रहने की जरूरत है। अगर हम ये दोनों चीज कर लेंगे तो हम शायद बीमार कम पड़े।
1: ये बात समझ में आती है कि आज हर व्यक्ति को इसके बारे में सजग होने की, जागरूक होने की जरूरत है। और जो आपने बात कही कि एक अमीर व्यक्ति के मुकाबले गरीब व्यक्ति कम बीमार होता है, तो ये बात समझ में आती है कि इसका कारण क्या है कि व्यक्ति ज्यादा फिजिकली एक्टिव है। भोजन के प्रति जो हमारी धारणाएं हैं कि हम जितना घनिष्ठ भोजन करते हैं उसके मुकाबले एक गरीब व्यक्ति सिंपल भोजन करता है, और ये सारी चीजों को जब हम आज समझते हैं तो पता चलता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। आज ये भी चीज देखते हैं कि एक व्यक्ति जो संपन्न है, धन धान्य से संपन्न है, तो वो संपन्नता दिखती है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये खाते पीते घर के हैं, यानी ये इंसान मोटा है, ये कहने के लिए एक सभ्य सा शब्द लगता है प्राय। और कभी कभार हम किसी को मोटा कहते हैं तो आजकल तो लोग कहते हैं कि नहीं आप मोटा मत कहिए उनको। कभी कभार लोग ये कहते हैं कि आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, या ये कहा जाता है कि आप उनके शरीर के आकार का परिहास उड़ा रहे हैं और आपको ये नहीं करना चाहिए। मतलब ये बात समझ में आ रही है कि हम शब्दों का अलग इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर हम बात वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये व्यक्ति खाते पीते घर का है, ये मोटा है। मगर क्या खाते पीते घर का होना या मोटा दिखना ये वास्तविकता में एक समस्या है?
2: मेडिकली एक बड़ी बेसिक सी लाइन है कि अगर आप मोटे हैं तो आपका पाचन तंत्र अच्छा है, और अगर आप पतले हैं तो आपका पाचन तंत्र उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अब हम इसको बीच में ले जाएंगे एक उन लोगों के लिए जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे अरे ये तो 3-4-5 रोटी खा लेता है, उसका वजन ही नहीं बढ़ता। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पाचन तंत्र एकदम ठीक से काम नहीं कर रहा है, और ये जो भी खा रहे हैं उससे उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इतर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे अरे हम पानी भी पीते हैं तो उसमें भी वेट बढ़ जाता है। मगर इसमें एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसे लोगों की है जो अपने भोजन में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक एग्जाम्पल भैया, आपने ही ब्रह्म कुमारीज में जब कोई प्रोग्राम होता है तो आपको उसमें एक टी ब्रेक मिलता है और उसमें बिस्किट जो है वो स्टील के बड़े बड़े बर्तनों में रखा रहता है, आप जितना चाहे उतना दे दीजिए। मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग एक बिस्किट लेते हैं, बहुत से लोग दो बिस्किट लेते हैं और कुछ लोग 6-7-8 बिस्किट खा जाते हैं। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या खा रहे हैं। किसी ने आपको नहीं बताया कि आप 1 लीजिए 2 लीजिए 5 लीजिए। और बड़ी अच्छी बात है कि जितने बहन भाई वहां पे सेवा दे रहे होते हैं रुकते भी नहीं है, और आप अगर उनसे 2 मांगते हैं कहते और ले लीजिए और ले लीजिए, वो मना नहीं करते हैं। ये तो हमारा और आपका बुद्धि विवेक है कि हम कहते हैं नहीं भाई 2 खा लिया बहुत है। मोटा होने में एक क्वांटिटी ऑफ फूड और दूसरा क्वालिटी ऑफ फूड और तीसरा टाइमिंग ऑफ फूड, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे हम और आपने पिछले जब टॉपिक्स पे चाय पे बात की तो हम लोग ने क्या बोला, किसी के घर गए क्या है भाई चाय पिला दो। अब चाय के साथ कुछ नमकीन आएगा ही आएगा, कुछ नाश्ते का सामान आएगा ही आएगा। अच्छा, ना हम उनके घर ब्रेकफास्ट के समय गए हैं, ना लंच के समय, ना इवनिंग स्नैक्स के समय, ना डिनर के समय। अगर हम इन चारों समयों के बीच में उनके पास गए हैं तो हम कहते हैं यार अरे खा लो, और ये हमारे खाने का समय नहीं है। हमें कितनी दीदी लोग ब्रह्म कुमारी की आती हैं, जब उनसे आप कुछ ऑफर करो तो सीधे हाथ जोड़ के ओम शांति बोल देती हैं, ये समय नहीं है। बहुत अच्छा इंसिडेंस मेरे हॉस्पिटल में अभी 2-3 दिन पहले हुआ। एक दीदी ब्रह्म कुमारी की आई हमारे पास और उन्होंने मेरे पिताजी से बड़ी गहन चर्चा उनके स्वास्थ्य को लेकर की। तो पिताजी ने उनसे कहा कि दीदी आप आई हैं तो कुछ आपको नाश्ता वो करें। दीदी ने अपने पास से एक स्टील का डब्बा निकाला और कहा डॉक्टर साहब इसमें जो आप देना चाहें थोड़ा सा दे दीजिए। तो मेरे पिताजी ने पूछा ये दीदी आप ये क्यों कर रही हैं, तो उन्होंने बोला ये मेरा समय नहीं है खाने का, मैं अपने समय के अनुसार आपका दिया हुआ ही खाऊंगी, पर ये सही समय नहीं। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी दीदी, और ये सीखने की बात है कि किसी ने अपनी इंद्रियों को इतना वश में कर रखा है कि अच्छी मिठाइयां, अच्छे नमकीन, अच्छे कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ ये सब रखा हुआ, उसको भी उन्होंने नहीं देखा। हम लोग का तो ये हालत है कि अगर अपने सामने कुछ अच्छी चीज परोस दी जाए तो हम लोग 1 की जगह 2 खा लेते हैं, और हमेशा ये सोच के साथ खा लो पता नहीं आगे मिले ना मिले। सो ये सीखने वाली बात है कि हम अपने भोजन को, भोजन की क्वांटिटी को और भोजन के समय को अगर ठीक से कंट्रोल कर लेंगे तो हम मोटे नहीं हो।
1: 2 चीजें समझ में आ रही हैं। 1, मोटा होना अच्छी चीज नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि हम मोटे दिखेंगे तो हम खाते पीते करके हैं, मगर ये सही बात नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मोटा होना एक अच्छी बात नहीं है। 2, मोटापे के कारण को हम जब भी देखते हैं तो प्रायः ये चीज समझ में आ रही है कि भोजन की मात्रा, कितनी मात्रा में हम भोजन खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और किस समय पर खा रहे हैं, इन चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम मोटापे से बच सकते हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि आखिर मोटापा इतनी बड़ी समस्या क्यों है, क्यों व्यक्ति को मोटापे पर ध्यान देने की जरूरत है?
2: मोटापा हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उनको परेशान कर सकता है। ये अच्छे से माना जाता है कि, मैं एक बड़ी बेसिक बात बताऊं कि वजन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप किसी भी डॉक्टर के अगर क्लिनिक में जाएंगे तो वो सबसे पहले आपका नाम, आपका पता, आपकी उम्र, फिर आपका वजन, और फिर कहेगा बीपी और पल्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ले लीजिए। और अगर आप बच्चों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनके पास वजन और हाइट वेट। आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि जितने भी स्कूल हैं उनमें बच्चों को हाइट और वेट उनका रेगुलरली लिया जाता है, ये पता करने के लिए कि वो स्वस्थ हैं कि नहीं। तो वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत जरूरी मार्कर है। एक चीज और मैंने ध्यान दिया कि अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा लगेगा जो आप स्वास्थ्य के इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि वो आपके जो भी ब्लड टेस्ट कराएंगे उसमें जो भी पैरामीटर गड़बड़ आएगा उससे वो इंश्योरेंस का पैसा बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए मोटापा बहुत नुकसानदायक है। मोटापा हमारे हृदय को डिस्टर्ब करता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, मोटापे की वजह से डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर मोटापे की वजह से बढ़ा मिल सकता है, और हमारी जो धमनियां हैं हृदय की धमनियां उनमें कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो सकता है जिसकी वजह से हमको स्ट्रोक आ सकता है, हमारे जिगर में या लिवर जिसे कहते हैं उसमें अगर हम बहुत मोटे होते हैं तो उसके अंदर मोटापे की जो कोशिकाएं हैं वो डिपॉजिट हो सकती हैं जिससे उसका काम करना गड़बड़ हो सकता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा टॉक्सिन निकालने का काम लिवर करता है और पाचन तंत्र में बहुत हमें मदद करता है तो वो गड़बड़ हो जाता है। बहुत मोटे व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है और एक उसको खर्राटे आते हैं, उसको ये एक स्लीप एपनिया करके एक समस्या है कि रात में सोते सोते आदमी को ये मालूम नहीं चलता है उतना मोटा व्यक्ति कि उसके सांस की नली बंद हो जाती है, उसको एकाएक उठना पड़ता है, दिन भर उसको नींद आती रहती है तो ये समस्या होने लगती है। हमारे जोड़ों में आर्थराइटिस होने लगती है, हमारे कमर में दर्द होने लगता है, छाती में दर्द होता है। ये देखा गया जो बहुत मोटे लोग हैं उनको गॉल ब्लैडर में पत्थर होने की परेशानी होती है। बहुत सारे कैंसर को भी मोटापे के साथ जोड़ा गया है, बहुत सारी किडनी की बीमारियों को भी जोड़ा गया है। और आपने एक बात और बताई कि मोटे व्यक्ति का मजाक बनता है या उसको बॉडी शेमिंग कहते हैं, तो ये कहा जाता है कि बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स ही मोटापे की वजह से होते हैं। अरे मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं, अरे मैं चल नहीं पा रहा हूं, अरे लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, तो इससे बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम डिप्रेशन तक होने लगता है मोटापे की वजह से। जो महिलाएं या जो पुरुष बहुत मोटे होते हैं उनको बच्चा जो है प्रेगनेंसी करने में भी परेशानी होती है और इनफर्टिलिटी का इलाज कराना पड़ता है कि वो बहुत मोटे हैं तो उनका हार्मोन्स उस तरह से नहीं बन पाते हैं जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को मतलब सपोर्ट करने के लिए चाहिए। तो मोटापे से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है।
1: ये बात समझ में आ रही है कि मोटापा वास्तविकता में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सिर्फ व्यक्ति के देखने के लिए नहीं, मोटे व्यक्ति के बगल में जब बैठना होता है, अगर आप बस में ट्रेन में जाते हैं तो वो जब ज्यादा जगह घेर लेते हैं तो आपके लिए तो समस्या होती ही है, मगर साथ में ये बात समझ में आ रही है कि ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है मगर स्वास्थ्य के रूप में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब ये एक प्रश्न उठता है जब आप मोटापे के बारे में ये बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं खासकर वो व्यक्ति जो जवान हैं और वो मोटे हैं या ये कहें कि उनका शरीर का भार थोड़ा बढ़ा हुआ है, वो लोग प्राय ये कहते हैं अरे मेरे को तो कोई बीमारी हुई नहीं है ना अभी तक, तो मैं तो मोटा ही हूं, मैं सब कुछ खा रहा हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, ठीक है वजन बढ़ गया है तो क्या हुआ, ये बीमारियां तो मुझे हुई नहीं है अभी तक, लोग ये भी कह देते हैं।
2: मोटापा बीमारियों का घर है। इसको दूसरी तरह से समझिए कि आपने अपने दुकान में या घर में जहां आप पैसे रखते हैं उस ड्रॉर को खोल के रखा है, तो आज नहीं तो कल वहां चोरी जरूर होगी। आपने अगर खुले में अनाज रखा है तो आज नहीं तो कल गिलहरी, चिड़िया, चूहे वहां आकर उस अनाज को खाएंगे जरूर। तो आप ये तरह एक समझ लीजिए कि आप बहुत मोटे हैं तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा सामान है, तो कोई ना कोई कीटाणु, और ये तो सिंपल बात है कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एक मोटे आदमी के बगल में बैठ के आप मोटे तो होंगे नहीं मगर उसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो आप अगर बीमार नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो अभी और आज से सजग हो जाइए। श्री भैया और मैं दोनों आपको ब्रह्म कुमारीज में 7 दिन की सेवा के लिए इनवाइट कर रहे हैं। अगर आपने 7 दिन में आबू में या माउंट में सेवा कर दी तो पक्का आपका एक तो दिनचर्या ठीक हो जाएगी और अपने आप आपको लग जाएगा कि आप कितना फिजिकल वर्क कर सकते हैं। सो प्लीज वजन को कम करने के लिए आज से कोशिश करिए।
1: बहुत ही स्पष्टता से आपने ये बात कह दी कि अगर आप मोटे हैं तो आपने ज्यादा सामान इकट्ठा किया है और खुले में इकट्ठा करके रखा है, और आप निमंत्रण दे रहे हैं रोगों को कि आइए। और जैसे आपने अनाज को खुला छोड़ने पर क्या होता है, चूहे आएंगे, अनेक प्रकार के कीटाणु आएंगे, बहुत सारे चिड़िया आएंगे, गिलहरी आएगी, बहुत सारी ऐसी चीज है जो आके उस अनाज को खराब कर सकती है, उसे खाने के बहाने वो आएंगे तो वो और ही ज्यादा आपके लिए कष्ट हो जाएगा। ये हम अक्सर ही पेस्ट कहते हैं ऐसी चीजों को जो अनाजों को खराब करने के लिए आती हैं और खुले में छोड़ते हैं, तो कितना बड़ा रिस्क है। और आप अपने शरीर में इतना ज्यादा इकट्ठा करके रखें तो आपने अनेक रोगों को न्योता दे दिया, वो भी आपके शरीर में पेस्ट बनकर आएंगे और वो आपको परेशान करेंगे। तो अगर आप मोटे होते हुए भी अगर आपके शरीर में कोई समस्याएं नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंतजार करें कि वो समस्याएं आए और तब आप निदान उसका ढूंढें, मगर अभी से उस पर काम करना शुरू करें ताकि आप बीमार ना हो, इन बीमारियों को न्योता न दें। और मोटापा बीमारियों का घर है, ये बड़ी स्पष्टता से आज डॉक्टर साहब ने हमें समझाया है। आशा करता हूं कि आज आप सभी एक छोटा कदम अपने स्वास्थ्य को सहजता से वापस ठीक करने के लिए करेंगे तो अपना वजन तोलें। अगर आप थोड़ा ज्यादा हैं तो अपने वजन को कम करने की ओर कदम बढ़ाएं। कोशिशें बहुत छोटी छोटी हैं। आप अपने भोजन की मात्रा को कम करें, खाने के समय के बारे में जागरूक रहें, और क्या खा रहे हैं उस वस्तु के बारे में भी जागरूक होकर खाएं। आशा करते हैं कि आज की बातचीत से आप सब ने नई शिक्षाएं ली हैं, एक नई जागरूकता आपको मिली है। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर राहुल मोदी जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें इस विषय पर आज मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
2: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, सहज स्वास्थ्य में आज हमने बीमारियों से बचने के लिए अपने मोटापे को कम करने के पहले कदम के बारे में समझा है। अगर आपके आसपास परिवार में, मित्रों में, आपके साथ काम करने वाले साथियों में कोई व्यक्ति मोटापे से जूझ रहा है, उसके बारे में उसकी जागरूकता नहीं है, तो कृपया उन्हें भी जागरूक बनाएं, सजग बनाएं, ताकि हम उन्हें भी स्वास्थ्य का यह तोहफा दे सकें। एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ राष्ट्र, एक स्वस्थ विश्व के परिकल्पना को साकार करने में अपनी भूमिका निभाएं। सेहत स्वास्थ्य में आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम जारी रहेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे। रेडियो मधुबन 90.4।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। आपको बता दें, एक बार फिर याद दिला दें कि लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम और आप साथ साथ हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं अपने जीवन की जो शायद हम उन टेक्निक्स को नहीं सीख पाए और इसीलिए आज हम दुख, दर्द, भय, इन सारे सर्कमस्टांसेस में इन सारे अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं। अगर याद हो, पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि जो भी हम लोगों के बारे में सोचते हैं वो उन तक हमारे बोलने से पहले ही पहुंच रहा होता है। एक और बात जो हमने जानी थी कि जब भी हम किसी की कमज़ोरी देखते हैं, धीरे धीरे वो कमज़ोरी हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है, उसकी टेक्निक को समझा था। इसीलिए अगर हम पॉजिटिविटीज़ देखें, हर एक की विशेषता देखें, तो वो मुझ में आनी शुरू हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने तरह के विचार होते हैं, कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं और फिर उनका हम पर क्या असर होता है। हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बात तो हम फटाफट रिवाइंड, जो हमने अभी शुरू में भी कही है कि किसी की विशेषता देखते हैं या नेगेटिविटी देखते हैं, वो धीरे धीरे हम पर आ रही है। अब हमने ये भी आपकी बात मान ली कि हम थॉट क्रिएट कर रहे हैं और फिर फीलिंग जो है वो क्रिएट होती है। अब कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो ज़्यादा हावी होते हैं, कितनी तरह के हम, क्योंकि आई थिंक थॉट्स तो मतलब
1: थॉट्स हावी होते हैं। अगेन, हावी मेरे पे कौन सी चीज़ होगी जो ऐसे सी चेंज, ट्राई एंड बी अवेयर, हावी नहीं होते हैं। कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो हम ज़्यादा क्रिएट करते हैं,
0: ज़्यादा उनका जो फीलिंग्स है,
1: हाँ,
0: जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग,
1: जो हम क्रिएट करते हैं,
0: तो कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मैं ज्यादा क्रिएट करता हूँ और फिर उनका मुझ पर क्या असर होता है।
2: आपने जो पहले पूछा कि भी कितने प्रकार के थॉट्स होते हैं, इस पर मैंने थोड़ा चिंतन किया है और इसलिए गहराई से सोचा कि जब ज्यादा प्रकार के थॉट्स के बारे में हमें पता चलेगा तो हम जागृत होंगे, कॉन्शियस होंगे। कई लोग ये भी कहते हैं चार प्रकार के थॉट्स होते हैं, मैंने थोड़ा गहराई से सोचा और कुल प्रकार से क्लासिफाई किया कि सात प्रकार के विचार है।
0: सेवन
2: टाइप्स ऑफ थॉट्स। एक तो है टॉक्सिक थॉट्स,
0: टॉक्सिक,
2: हाँ, जो कहेंगे जहरीले विचार,
0: हाँ,
2: जैसे ना टॉक्सिन्स जो क्रिएट करते
0: तो
2: हैं, वैसे
0: में टॉक्सिन्स
2: वैसे
0: की बात,
2: थॉट्स भी टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं।
0: ओके,
2: जैसे क्रोध के विचार, फिर भय के विचार, बदला लेने के विचार, ये जो सब है, जेलसी,
0: मतलब जो ज्यादा एनर्जी से भी भरे होते हैं, मतलब इफ वी रियली लुक एट
2: उसमें एनर्जी,
0: उनमें हाँ वो काफी मात्रा जो है कंटेंट ज्यादा होता है,
2: इमोशंस है, और वो जो केमिकल्स रिलीज करते हैं ना वो भी टॉक्सिक केमिकल्स
0: है। ओके, हाँ,
2: एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन और भी ऐसे कोर्टिसोल रिलीज करते हैं, तो सब सच में टॉक्सिक केमिकल्स है। भी दूसरे है नेगेटिव थॉट्स, वो उससे भले कम उसकी मात्रा है लेकिन फिर भी वो नेगेटिव थॉट्स है, कि असफलता के विचार, बीमारी के विचार, यह जो सब है, किसके अवगुण देखना, यह सब नेगेटिव विचार है। तीसरे है वेस्ट थॉट्स, वो भले नेगेटिव भी नहीं है लेकिन फिर भी वो वेस्ट है,
0: अननेसेसरी है,
2: हाँ, उस समय जरूरी नहीं है। आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं और उस समय उनको विचार आ रहा है कि खेलने जाना है, भी खेलना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पढ़ते समय वो वेस्ट थॉट है,

0: ऐसे उसको कहेंगे वेस्ट थॉट। चौथे हैं नेसेसरी थॉट्स, कि कई काम के विचार भी करने पड़ते हैं। आपको भोजन बनाना है तो कार्य करना है, उसके जो विचार है वह काम के विचार है। पांचवे कहेंगे राइट थॉट्स, कहीं पॉजिटिव थिंकिंग को मुश्किल समझते हैं, परंतु कम से कम राइट थॉट्स तो होने ही चाहिए, कि जो परिस्थिति जैसी है वैसी देखो
1: अच्छा, उसको बड़ा चढ़ा के
0: क्या नहीं
1: नहीं।
0: देखो। हाँ,
1: मतलब
0: कहीं
1: जो सही सिचुएशन है, स्थिति का आंकलन हो गया।
0: हाँ, वो जैसी है वैसी देखो, है ना। वास्तव में हम अलग अलग मिरर यूज करते, परिस्थिति को हम विकृत रूप दे देते उन मिरर्स के द्वारा। छठे है पॉजिटिव थॉट्स, कि भाई वह सकारात्मक सोच। और सातवा है एलिवेटेड थॉट्स, वो पॉजिटिव से भी हायर है, क्योंकि उसके अंदर एक सचमुच पॉजिटिव एनर्जी है, ज्ञान के विचार, आध्यात्मिकता के विचार, वह है एलिवेटेड थॉट्स। तो ये सात प्रकार के विचारों को अगर अच्छे से हम समझे और फिर ये डिसाइड करें कि मेरे कौन से विचार चल रहे हैं, तो हम विचारों पर कंट्रोल प्राप्त कर सकेंगे।
1: पहले अवेयरनेस और उसके बाद इट्स क्वाइट अ स्टडी, काफी पढ़ना है। लेकिन हमने कहा है कि हम शायद लाइफ स्किल्स को नहीं
0: नहीं
1: जानते, तो
0: जानते
1: पहला ये है, आपने कहा कि टॉक्सिक से लेकर एलिवेटेड थॉट्स
0: थॉट्स तक
1: ये
0: सात
1: पूरी
0: प्रकार के
1: जर्नी
0: विचार।
1: है।
0: हाँ,
1: तो मेरे को यही पूछना है, सिचुएशन डिपेंडेंट है? क्योंकि अभी तक हमारे विचारों का जो सृजन, चाहे मैं ही कर रही थी, वो सिचुएशन डिपेंडेंट था।
2: नहीं, अभी तक भी हम ही क्रिएट कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि वो सिचुएशन डिपेंडेंट है। सी, अभी इवन टिल डेट इट वाज जस्ट दैट आई वाज डूइंग इट अनअवेयर, नाउ आई एम गोइंग टू बी अवेयर कि आई एम क्रिएटिंग द थॉट्स। क्रिएट तो पहले भी हम ही कर रहे थे, लेकिन पहले हम रिस्पॉन्सिबल परिस्थिति को ठहरा रहे थे, अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेंगे कि आई हैव अ चॉइस कि मुझे कौन से थॉट्स क्रिएट करने हैं।
1: डॉक्टर पटेल, ये सात तरह के जो थॉट्स, हमने कहा कि हर थॉट की पावर होती है। पिछली बार भी मुझे याद है हमने बात की थी कि फैमिली ऑफ थॉट्स, यू नो, एक तरह के थॉट्स, दूसरी तरफ एक तरह के थॉट्स। अब ये सातों तरह के थॉट्स उतने ही पावरफुल हैं?
0: नहीं, ऐसे देखेंगे तो टॉक्सिक थॉट सबसे पावरफुल है, नेगेटिव एस्पेक्ट में देखे, और एलिवेटेड थॉट सबसे पावरफुल है पॉजिटिव इफेक्ट में।
1: एलिवेटेड मतलब हर थॉट का एक एक एग्जांपल हम
0: हाँ
1: लेते
0: जी,
1: जाते
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ
1: तो
0: जैसे
1: हम शुरू
0: टॉक्सिक
1: करते हैं
0: थॉट,
1: टॉक्सिक थॉट से।
0: वो बड़ा सिंपल है कि भाई क्रोध के विचार, है ना, भय के विचार, कोई व्यक्ति डर जाए, यहाँ तक कि अगर किसी को चूहे का डर लगता है, देखते हैं कि न्यूज़पेपर में भी चूहा देखा तो जंप लगाएगा और सारे बॉडी के अंदर वो केमिकल्स रिलीज होते हैं।
1: डर लग जाते
0: हाँ,
1: हैं। अच्छा, जो
0: ब्रेन
1: आपकी फिजिकल बॉडी को इम्पैक्ट डाले
0: डालेंगे वो
1: वो
0: सब, और
1: टॉक्सिक हो गया।
0: नेगेटिव इम्पैक्ट, वो सचमुच पॉइजन्स है। जैसे कॉर्टिसोल एक पॉइजन है सचमुच, जो ब्रेन को भी डैमेज करता है, हार्ट को डैमेज करता है, और ये टॉक्सिक थॉट से वो कॉर्टिसोल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है।
1: डॉक्टर साहब, अब अगर ऐसी सिचुएशन है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं क्रिएट कर रही हूँ ये थॉट कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, और धीरे धीरे वो एंग्जाइटी एंगर में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या वो स्ट्रेट अवे टॉक्सिक बनता है या कुछ कुछ उनसे गुजरता हुआ जाता है वो?
0: एक तो ये ठीक है कि वो स्लोली बनेगा, कि धीरे धीरे आपको भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो अंदर में थोड़ा इरिटेशन आया, पहले तो अच्छा नहीं लगा, अपने फोर्स किया कि पढ़ ठीक से, फिर भी वो नहीं पढ़ रहा है तो और उसकी मात्रा बढ़ी। लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन भी बढ़ सकता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि एक माँ बच्चे को पढ़ा रही थी और बाजू में सब्जी काट रही थी और बच्चा नहीं पढ़ रहा था, वो मिस्टेक एक ही जगह पर अटक के मिस्टेक कर रहा था, तो माँ ने कहा पढ़ ठीक से, फिर से नहीं कहा, फिर से गुस्सा कि ठीक से पढ़ नहीं पढ़ रहा है, फिर से वही मिस्टेक की, तो उसे चाकू उसको पेट में डाला। इट्स रियल एग्जाम्पल, दिस इज एन टॉक्सिक आउटवर्ड इफेक्ट, पर सदैव नहीं होता है, परंतु अंदर में केमिकल्स तो रिलीज होते ही है टॉक्सिक थॉट्स के कारण।
1: पर रिएक्शन इट्स सच अ हार्मफुल थिंग।
2: हर थॉट हमारी बॉडी पर इफेक्ट कर रहा है, हर थॉट हमारा बिहेवियर वाइज एनर्जी एक्शन में आ रही है। अब किसी चीज में, जैसे इस पर्टिकुलर केस में, वो इतनी पावरफुल थॉट, यू नो, गुस्से की क्रिएट हुई, क्यों, कई बार आप हाथ नहीं उठा दोगे बच्चे पर? हाथ उठा सकते हो ना, चलो आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है कि उसको चाकू ही मार दिया, पर वो तो सिर्फ इसलिए था क्योंकि हाथ में उस टाइम चाकू था, लेकिन थप्पड़ तो हम मार देते हैं ऐसे, वो कहना नहीं मान रहा, भाई तुमको एक बार समझाया, दो बार, तीन बार, चार बार, हाथ उठ जाता है, बस इस बार बाई चांस हाथ में चाकू था। बट इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ कि माई थॉट्स वर सो पावरफुल, नेगेटिव एनर्जी इतनी क्रिएट हो गई कि मेरा अपने हाथ पर मेरा अपने वर्ड्स पर, मेरा अपने एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि लॉजिक वर्क करना बंद कर देगी ना, और नेगेटिव एनर्जी इतनी मैंने क्रिएट कर दी।
1: वेनम था एक्चुअली, इतना आपने कहा कि पॉइजन है, और वो पॉइजन ही फिर निकलना शुरू।
2: एंड वो कई बार ये भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ना हुआ, इट हैज बीन हैपनिंग बहुत पेंट अप। वो ये भी हो सकता है कि उस बच्चे की वजह से ना हो,
1: किसी और का गुस्सा,
2: किसी और बात से आप बहुत परेशान है, हो सकता है कोई और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत परेशान है, एंड यू आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग ऑन इट। ये सिर्फ एक स्टिम्यूलस बन रहा है आपके गुस्से को बाहर निकालने के लिए, बट आप वैसे ही बहुत परेशान है, और ये फिर आपको आपको लगता है ये आपको और इरिटेट कर रहा है, यू नो व्हाट वी थॉट कि वो मुझे इरिटेट कर रहा है, एंड तब आपका हाथ उठ गया, अब आपके हाथ में चाकू था। दीज आर सिचुएशन, जब हम देखते हैं कि चाकू लग गया, कितनी बड़ी गलती हो गई, डेफिनेटली, लेकिन अंदर भी बहुत सारी गलतियां हो रही है, नॉट नेसेसरी दे आर ऑल कमिंग आउट लाइक दिस। बाहर आ गया तो बहुत बड़ा डैमेज हो गया, लेकिन अंदर भी बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट हो रहा है। दैट वी हैव टू सी कि हर सिचुएशन में कौन सी मेरी थॉट्स क्रिएट हो रही हैं, एंड इसीलिए जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, इश्यूज को रिजॉल्व करते जाए, कब कौन सा इशू आपके नेक्स्ट इशू पर
1: हावी हो जाए।
2: दैट इज वेयर बहुत बार आप देखो, अगर ऑफिस में मेरा आज दिन अच्छा नहीं बीता, मैं घर पर आकर बच्चों को छोटी छोटी बातों के लिए डांटूंगी। अगर आज दिन बहुत अच्छा था ऑफिस में, आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड, वेरी पीसफुल, घर पे बच्चा कोई बड़ी भी गलती कर देगा, आई विल से इट्स ओके ना, बच्चे ही हैं, करते हैं। इट लॉट डिपेंड्स ऑन माई प्रीवियस इशूज एंड माई प्रीवियस थॉट्स दैट आई वॉज कैरिंग विद मी, इट जस्ट कम्स आउट इन दिस। सपोज बॉस मेरे को डांटता रहता है, कोलीग्स मेरे साथ ठीक नहीं है, मैं उनको कुछ नहीं कह पा रही, तो वो रिजेंटमेंट, वो गुस्सा भरता गया, फाइनली किस पे निकलेगा? उन पर निकलेगा जिनके ऊपर मेरे पास पावर है, क्योंकि उस इशू को वहां नहीं रिजोल्व किया, उसका इफेक्ट फिर यहाँ आया। बहुत सारी मदर्स आज कहती है, हस्बैंड इतना चिल्लाता है, मदर इन लॉ इतना चिल्लाती है, फाइनली वो किस पर निकलता है? छोटे छोटे बच्चों पर। वर्बल अब्यूज नहीं, फिजिकल अब्यूज, वो हाथ उठा सकती हैं छोटे छोटे बच्चों पर। क्यों? मदर इन लॉ को कुछ नहीं कह पाई, हस्बैंड को कुछ नहीं कह पाई, उस पर निकाल दिया। दिस इज वेयर दैट चेन ऑफ थॉट्स आपके फिर एक्शंस में आने लग जाती है। तो टॉक्सिक थॉट्स तो बहुत डैमेजिंग है, इट कुड बी जैसे फियर बताया, एंग्जाइटी, रिजेंटमेंट, इट कुड ऑल्सो बी रिजेक्शन। यू नो कई बार मुझे आपसे रिजेंटमेंट नहीं, लेकिन मैं रिजेक्टेड फील कर रही हूँ, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, कोई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, ये भी मेरे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इट विल नेवर लेट मी कम फॉरवर्ड, एंड मैं अंदर ही अंदर आजकल रिलेशनशिप्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ये जो बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हो जाती हैं, और फिर अगर एक जना डिसाइड करता है कि नहीं, दिस रिलेशनशिप डजंट वर्क फॉर मी, वी हैव सीन चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स हु से आई डोंट वांट टू लिव, तो किस तरह के थॉट्स क्रिएट कर रहे होंगे वो, जो वो इस बात पर पहुंचते हैं, मैं उस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, मैं नहीं जीना चाहता, मैं उसका एक फोन सुनने के लिए बस कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, कौन सी थॉट्स क्रिएट हो रहे होंगे सारा दिन। एंड फिर कई बार वो सुसाइड के लेवल पर भी ये बातें जाती हैं। तो बहुत एस्पेक्ट्स में हम ये चेक कर सकते हैं कि टॉक्सिक मतलब जो मेरा बहुत नुकसान कर रही है, और जो मेंटल टॉक्सिन्स हैं, फिर वो फिजिकल में भी, जैसे गिरीश भाई ने बताया कि वो टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा।
0: और एक अगर एग्जांपल है ना, तो हेट्रेट का है।
1: हेट्रेट
0: से वहां तो एक को लग गया, लेकिन हेट्रेट से तो आप हजारों को मार रहे हैं।
2: सबसे पहले अपने आप को,
0: अपने आप को।
1: यहाँ एक अगर हमने टेक्निक ही सीखनी है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं, टॉक्सिक बाद में ही आता होगा,
0: बाद में
1: इट मस्ट बी, तो पहले कैसे आइडेंटिफाई करें कि कहाँ से वो शुरू होती है सीरीज। अगर हम ये चेन देखते हैं 7 तरह के थॉट्स में, कौन सी वो पहली चेन है जो मुझे टॉक्सिक तक लेकर जाएगी? चेन की पहली कड़ी कौन सी होती है?
0: पहली कड़ी तो आएगी वही की नेगेटिव एस्पेक्ट,
1: नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट या नेगेटिव थॉट।
0: पहले नेगेटिव
1: थॉट,
0: वेस्ट तो हो सकता है कि उसमें नेगेटिविटी नहीं है, ऐसे आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो, लेकिन शुरुआत होगी नेगेटिव थॉट से, फिर उसका लेवल बढ़ता जाएगा और टॉक्सिक तक पहुंच जाएगा।
2: कई बार ये भी हो सकता है कि आप किसी और परिस्थितियों में नेगेटिव सोच रहे हैं, वो परिस्थितियां एवरेज लेवल की हैं, जो हम कह रहे हैं ना परिस्थिति स्टिम्युलस है, तो वो परिस्थितियां ऑर्डिनरी हैं, लेकिन मेरी रिस्पॉन्स उसमें नेगेटिव है, एंड एनर्जी तो मेरी डिप्लीट हो रही है, और फिर सडनली मैं एक थोड़ी सी बड़ी परिस्थिति में आ जाऊंगी। लेट्स से ऑफिस में काम करते करते मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, दैट विल बी नेगेटिव थॉट्स, और फिर घर गई, सडनली मुझे एक बिगर सिचुएशन मिली, तो मैं इमिजिएटली जो थॉट क्रिएट करती हूँ, इट समटाइम्स

0: every situation, with every person, in every interaction. That's why we said constant awareness hame rakhni hogi. Kyunki bimari dheere dheere dheere kab suddenly zyada ho gayi.
1: और एक बात जब आपने पूछा तो तब मुझे याद आया कि बहुत सारे केसेस में जिनमें इस प्रकार के बहुत टॉक्सिक थॉट्स हैं, इसका रूट तो जो है वो चाइल्डहुड में होता है. कहीं ना कहीं अब्यूज हुआ और कोई रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आया तो एक ब्लॉक सा क्रिएट हो जाता है और वो ब्लॉक फिर सदा के लिए डिस्टर्ब करता है, जिसको थॉट डिसऑर्डर भी कहेंगे. इवन सिज़ोफ्रेनिया के जो केसेस है कईयों में मैंने देखा है कि पता भी नहीं चलता है. घर में तो ये समझते हैं कि भी इसको बहुत गुस्सा आता है या छोटी छोटी बातों में ये व्यक्ति चीड़ रहा है, परंतु वास्तव में उसमें वो सिज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम है, थॉट डिसऑर्डर है, जिसके कारण व्यक्ति ऐसे टॉक्सिक इमोशंस क्रिएट कर रहा है. वो रिजॉल्व करे तो टोटली रिजॉल्व हो जाएगा.
0: कईयों के साथ कोई एक बार ऐसे कुछ हो जाए जैसे अब हमें लोग ही नहीं अच्छे लगते तो फिर क्या हुआ, देखो कितना डैमेज हो गया. अब हमारा लोगों पर ही विश्वास नहीं रहा तो वो हर रिश्ते में कैसे जाएंगे, हर इंटरेक्शन में कैसे होंगे. एवरी इंटरेक्शन विल बी देन नेगेटिव एंड द साइकिल बिकम्स मोर एंड मोर विशियस.
1: रिलेशनशिप जैसे किसी ने मदर से, जैसे डॉटर का मदर से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर और भी ऑल नो लेडीज आर बैड फॉर हर. या जेंट से हुआ तो ऑल जेंट्स आर बैड, ऐसी स्थिति बन सकती है.
2: अच्छा ये तो बात रही कि टॉक्सिक जो कि काफी दिख जाते हैं. यूजुअली हम देखें तो जो बात समझ में आ रही है कि टॉक्सिक में हमें एहसास भी हो रहा है, हमारे फिजिकल भी वो क्रिएट हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं. उसके अगर हम नीचे थोड़ा सा नीचे उतरे तो टॉक्सिक की बात आपने नेगेटिव बोला ना, तो नेगेटिव में क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज नेगेटिव? क्योंकि नेगेटिव में बहुत बार लोग बोलते हैं मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता. दूसरे के बारे में बुरा सोचना ही क्या नेगेटिव है?
1: वो तो एक पहलू है कि दूसरे के बारे में बुरा सोचना एक नेगेटिव है. दूसरा नेगेटिव ये है कि भी कुछ हुआ आपको, जैसे आप कहीं जा रहे हैं भी ठंडी में गए, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगी, सर्दी तो नहीं हो जाएगी, तो ये भी नेगेटिव है.
2: मतलब ये एंग्जाइटी, थोड़ी सी
1: एंग्जाइटी भी कह सकते हैं. आपको विचार आया भी एग्जाम में गए कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव थॉट है. डाउट का एलिमेंट है भले.
2: पर ये तो मतलब अब ये तो हमें रोज रहता है.
1: नहीं तो यही करना है तो हम तो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं कि यू आर चूजिंग योर थॉट्स.
2: बट डॉक्टर पटेल, दीज आर द थॉट्स व्हिच वी नेवर थॉट दे आर लाइक they are normal thoughts, you know?
1: These are the skills.
2: कि जो मतलब अगर मैं एग्जाम देने जा रही हूँ तो मैं पास भी हो सकती हूँ, फेल भी हो सकती हूँ. मतलब एग्जाम मुश्किल भी आ सकता है, पेपर मुश्किल आ गया तो फेल नहीं तो कम मार्क्स आ सकते हैं. See, these are the doubts which actually are so normal.
0: अब इसीलिए तो ज्यादातर अगर हम देखें तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत कम होते हैं आजकल सारा दिन.
2: मतलब ये तो ये एक डाउट भी अगर नेगेटिव थॉट में आता है तो फिर तो हमारे पास नेगेटिव थॉट्स,
1: इसीलिए नेगेटिव बहुत सारे हैं और हमें सोचना चाहिए कि भी एक भी नेगेटिव ना आए, क्योंकि हम थॉट्स को चूज करते हैं. जब हम चूज कर रहे हैं,
2: कैसे नहीं आएगा? दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव लिव्ड विद इट.
1: नो, इट इज वन थिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो कि भी हम अपने थॉट्स को चूज करते हैं. तो मुझे सही को चूज करना है, हाथ को ऊपर नीचे करना मेरे कंट्रोल में, तो इससे थॉट्स भी मेरे कंट्रोल में. चलो एक बार आ गया कोई बात नहीं, लेकिन तुरंत उसे मैं ट्रांसफॉर्म करूं और 5 बार पॉजिटिव करूं तो एक जो नेगेटिव हुआ उसकी इफेक्ट कम हो जाए.
2: अच्छा, तो नेगेटिव में एक रहा डाउट, और क्या क्या नेगेटिव में शामिल? आई थिंक समवेयर हम अवेयर नहीं है.
1: दिस थिंग्स आर उसके पीछे का जो रीजन कहे. अगर नेगेटिव को हमें सोचना हो तो फेलियर के विचार, बीमारी के विचार ना, ये सब नेगेटिव है. लॉस के विचार,
0: इवन इरिटेट होना थोड़ा थोड़ा,
1: हाँ वो भी
0: नहीं, इरिटेट होना, नहीं इरिटेट होना,
1: इरिटेशन,
0: अगेन ट्रैफिक में खड़े हैं, इरिटेट हो रहे हैं, कोई गलत तरह से चला रहा है, इरिटेट हो रहे हैं, कोई मेरी तरह काम नहीं कर रहा, इरिटेट हो रहे हैं,
1: डिसलाइक हो रहा है,
0: कोई मेरा कहना नहीं मानता, इरिटेट हो रहे हैं, ये भी तो नेगेटिव थॉट्स है.
2: ये मतलब क्यों क्रिएट करते हैं फिर? बिकॉज दीज आर द थॉट्स आई थिंक हमें पता भी नहीं है, हम अवेयर ही नहीं है कि ये थॉट्स जो है उनमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इरिटेशन तो रहती ही है.
0: इतना हमने कहा इरिटेशन रहती है, आपने कहा डाउट रहता है, एंग्जाइटी रहती है, तभी तो स्ट्रेस, अनहैप्पीनेस, एंगर हो गया ना, तभी हम कह रहे हैं हैप्पीनेस चाहिए. क्यों? क्योंकि कई चीजों को हम नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल
2: तो
0: कहते
2: रहे, इग्नोर करते जाएं. मतलब अगर कोई कैसे बिहेव कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, तो हम इरिटेट ना हो, हम अपना डिसएग्रीमेंट ना शो करें, हम मतलब फिर देन वही

0: भी आ जाती है बात कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स यू नो एक्सेप्टिंग एवरीथिंग.
1: डज इट मीन एक्सेप्ट? फर्स्ट तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये स्किल है टू एक्सेप्ट. नहीं, पॉजिटिव सोचना भी ये स्किल है और ये स्किल मुझे डेवलप करनी है. जैसे नहीं मसल्स को हम डेवलप करते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हो आप मसल्स को डेवलप करते हो, तो ऐसे ही स्किल को भी मुझे डेवलप करना है. और पहले भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया कि एक नेगेटिव थॉट की कितनी इफेक्ट होती है. वो वातावरण में वाइब्रेशन क्रिएट करता है, व्यक्ति भी वैसा ही बन जाएगा, वी विल अट्रैक्ट दैट सिचुएशन. तो इसलिए इस स्किल को हमें डेवलप करना है.
0: कोई भी ऐसा थॉट आए तो मुश्किल नहीं है.
2: एक बात देखते हैं, आपने कहा ये नेचुरल है. सपोज कोई मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहा तो डिस्टर्ब होने से फायदा क्या होता है?
0: डिस्टर्ब जब हम होना शुरू होते हैं थोड़ी देर बाद उसको भी समझ में आने लगती है और वो कुछ कुछ तो करता है.
2: बिना डिस्टर्ब हुए भी बता सकते हैं?
0: तब उसका इफेक्ट इतना नहीं होता. जैसे बच्चा है, ठीक है, बच्चे के साथ बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है, तो बच्चे को दिखा कि मेरे को गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया है, थोड़ी थोड़ी मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं हर्ट हो रही हूँ, मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैं ये, बच्चा फटाफट बात मानना शुरू हो जाता है. तो थोड़ी सी तो बात मानी ना उसने,
2: बच्चा बात तो मानता है, लेकिन आपने उसको नेगेटिव एनर्जी भी दी उस प्रोसेस में. सो वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म पीपल विद नेगेटिव एनर्जी. और फिर ये हम कभी कभी नहीं करते, वी आर यूजिंग दिस टेक्निक क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, पेशेंस तो मेरी वैसे ही कम हुई हुई है. तो अब मुझे पता है कि आपसे जब मैं प्यार से काम कुछ भी बोलूँ तो आप नहीं करते, लेकिन मैंने ये देख लिया, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला मेरा क्या हो गया कि थोड़ा सा ऐसे करके बात करूँ ये तो जल्दी काम करते हैं. टाइम नहीं है, काम जल्दी कराना है, तो मैंने कौन सा टेक्निक यूज किया? शोर मचाओ हो गया. फिर सिर्फ बच्चों के साथ नहीं किया, ऑफिस में भी करना शुरू कर दिया. फिर सिर्फ ऑफिस में भी नहीं किया, सड़क पे स्ट्रेंजर्स के साथ करना शुरू कर दिया कि जब कोई मेरे अनुसार नहीं करता शोर मचाओ, काम मेरे अनुसार होगा. काम होता गया, इवन लेट्स से काम होता गया, मेरी हालत क्या होती जा रही है? दिस आई नाउ नीड टू स्टॉप एंड चेक कि मेरी हालत क्या होती जा रही है. और अगर अपने बारे में नहीं सोचना चाहते तो कम से कम इतना सोचो उन बच्चों की हालत क्या होती जा रही है. सिर्फ मदर वो टेक्निक नहीं यूज कर रही, फादर भी वही टेक्निक यूज कर रहा है. सिर्फ पेरेंट्स नहीं यूज कर रहे, टीचर भी वही टेक्निक यूज कर रही है, प्रिंसिपल भी वही टेक्निक यूज कर रही है, क्योंकि everyone is in the same boat, everyone is using the same technique. Can we just look at a little child जो अभी ग्रो हो रहा है, जिसकी सेल्फ एस्टीम अभी डेवलप होनी है, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी डेवलप होना है, जो इमोशनली अभी डेवलप हो रहा है, यू नो जैसे फिजिकली डेवलप हो रहा है, और इस एक छोटे से बच्चे को जो डेवलप हो रहा है, ये चार पांच लोग जो उसके पूरे जीवन का फोकस है अभी वर्तमान समय,
0: ब्लैकमेल कर रहे हैं.
2: हम इमोशनली ब्लैकमेल नहीं, हम उसको इमोशनली डिप्लीट कर रहे हैं. हम सी ना, एक छोटे बच्चे को बीच में रखो, सर्कल में आप पांच लोगों को खड़ा करो, मदर, फादर, टीचर, प्रिंसिपल, जो भी, या कोई बड़ा सिबलिंग, सारे उसको कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? काम करवाना, होमवर्क करवाना, खाना खाना, पढ़ना, जो भी है. व्हाट इज द एनर्जी कमिंग? कैन यू सी व्हाट विल हैपन टू दिस चाइल्ड? एंड देन वी आर सेइंग, आजकल के बच्चे देखो कैसे हो गए हैं, छोटी छोटी बातों में इनको गुस्सा आने लग जाता है, इनकी टॉलरेंस पावर कम होती गई है. स्टॉप, क्यों हो गई ऐसी? वाई? क्योंकि इनको सबसे कौन सी एनर्जी मिली? वो पर्सनैलिटी कैसे बड़ी हो रही है? अब जब वो पर्सनालिटी
0: वरिड ही रहेगा,
2: वरिड नहीं, वेरी वेरी लो सेल्फ एस्टीम और उसकी अपनी टॉलरेंस पावर, क्योंकि उसको पांचों लोगों से कौन सी एनर्जी मिल रही थी? पांचों के अंदर टॉलरेंस पावर नहीं थी, पांचों में पेशेंस नहीं थी. बच्चे में पेशेंस आ जाएगी, कहाँ से आएगी? दिया आपने वो खाना खिलाया उसको? आपने वो खाना खिलाया नहीं. और कहते ताकत क्यों नहीं है, ताकत क्यों नहीं है? वही ताकत डेवलप होगी जो चारों तरफ से आ रही है. अब मैं प्रिंसिपल को नहीं चेंज कर सकती, मैं टीचर को नहीं चेंज कर सकती, मैं कम से कम अपने आप को करूं. सिर्फ ये नहीं सोचे काम करवाना जल्दी कैसे हो जाए, मोर इम्पोर्टेंट इज जो कर रहा है उसकी डेवलपमेंट कैसी हो, एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेरी स्थिति कैसी हो. लेट्स नॉट बी ओनली वर्क ओरिएंटेड, लेट्स बी फीलिंग ओरिएंटेड, देन वील टेक केयर ऑफ ईच अदर.
1: डर से बच्चा सदैव नहीं पड़ेगा, जब तक आप उसके सर पे खड़े हैं शायद पड़ेगा, और जैसे ही आप और कुछ करने लगेंगे बच्चा छोड़ देगा उसको धीरे धीरे, तो उल्टा वो सीख जाते हैं, फिर तो डर की भी इफेक्ट नहीं होगी. समझो नहीं, गुस्से से आप समझते बच्चे शांत रहेंगे, नहीं, उल्टा वो समझेंगे कि भी गुस्सा दिलाओ उनको आनंद आएगा अंदर में, दे विल लर्न दिस। नहीं, एक बार दो 11-12 साल की लड़की आपस में डिस्कशन कर रही थी, एक ने दूसरी को कहा कि चल हम कुछ शरारत करते हैं ताकि माँ को गुस्सा आए। कहते माँ को गुस्सा आएगा ना तो मुझे बहुत मजा आता है, माँ को गुस्सा आता है तो बोले मुझे अपने कमरे में 2 घंटे बंद रहना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत इंजॉय करती हूँ कि माँ मुझे कंट्रोल नहीं कर रही, मैं माँ को कंट्रोल कर रही हूँ। नो, लेट अस मेक सम मिस्चीव।
2: जो गिरीश भाई ने कहा था ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज चाइल्डहुड में है। जो चाइल्डहुड में हम ये एनर्जी एक बच्चे को देते हैं तो उसको जो सबकॉन्शियस में जो फीलिंग है वो है दे डोंट केयर फॉर मी एंड वेरी सून ही इज गोइंग टू बी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू विल फील ही डजंट केयर फॉर मी बट इट स्टार्टेड एट दैट टाइम
0: कि जो मैंने दिया वो
2: उन्होंने मुझे क्या दिया एंड दिया नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल लेकिन इनसे मुझे क्या मिला, मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं है। यू नो वी टेल देम आपके पेरेंट्स रो रहे हैं, आपके पेरेंट्स इतने अपसेट हैं, इट्स वेरी सैड बट दे गेट अ सेडिस्टिक प्लेजर आउट ऑफ इट कि इन्होंने मुझे बहुत दुख दिया था, आज मैं करूँगा ऐसे काम जिससे इनको दुख मिलेगा।
0: कितना मैं भी कितना रोया था, कितना डरता था। Oh my God! I'm so like, but it really happens.
2: We are meeting a lot of children who say this, and it's very sad to see that you know the cycle is getting more and more vicious. More and more, both are blaming each other. No one's ready to take the responsibility.
1: You know, many disturbed children are like this. Only. And I think a school ka ek case mere paas hai. Wahan teachers ne kaha, teacher said ki bhi ye parents ka fault hai pura. पेरेंट्स ने उनको नेगेटिव बातें सिखाई है, नेगेटिव रूप से डेवलप किए, इसके कारण बच्चे ऐसे बने।
0: आई थिंक क्योंकि हमें नेगेटिविटी का ही पता नहीं है शायद। सिस्टर शिवानी, डॉक्टर गिरीश पटेल, थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं वो सारी बातें निकल कर आ रही हैं जिन्हें अभी तक हमने ये माना था कि ये तो बिल्कुल नेचुरल हैं, आज चेक करने की ज़रूरत है। हमने 7 तरह के जो थॉट देखे हैं कि इस तरह के थॉट्स हम क्रिएट करते हैं उसमें टॉक्सिक तो बहुत विजिबल है लेकिन नेगेटिव को हमने अभी तक रियलाइज़ नहीं किया था। लेट्स ट्राई टू रियलाइज, लेट्स ट्राई टू सी, लेट्स बिकम अवेयर कि पूरे दिन में ये जो नेगेटिव, हमने यही सोच लिया कि नेगेटिव मतलब दूसरे का बुरा सोचना, लेकिन उसके अलावा हम क्या क्या कर रहे हैं, कितने कितने ये जो नेगेटिव आस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो डर है, संशय है, भय है, दुख है, या हर्ट है, या रिजेक्शन है, ये सारे जो थॉट्स हैं, या इरिटेशन है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट होते जाना, अपनी बात मनवाने के लिए कितने कितने तरीके अपनाना, कितने कितने यू नो थॉट्स उन तक पहुंचाना, एनर्जी पहुंचाना, ये हम क्या कर रहे हैं अपने साथ भी, अपनों के साथ भी, फिर हमें रिश्तों में कहाँ से प्यार मिलेगा। लेकिन जहाँ हम सीखते जाएंगे, ज्ञान एक ऐसी रोशनी है जो आगे का रास्ता क्लियर कर देती है। कोई बात मन में है, कोई सवाल है, आप हमारे साथ शेयर करें। आप हमें ईमेल पर या फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। लाइफ स्किल्स की इस श्रृंखला में वो वाली स्किल्स हम सीख रहे हैं जो आज तक शायद नहीं सीखी थी, लेकिन आज सीख कर ना सिर्फ अपने जीवन को, अपनों के जीवन को, आने वाले जीवन को बेहतर बना पाएंगे। आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

आइए नवरात्रि में शक्ति के नौ रूपों का आह्वान करते हैं। माँ चंद्रघंटा श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि का वरदान देती है। तो आइए हम भी सभी को सुख बांटें और माँ का आशीर्वाद सहज प्राप्त करें। आज नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से हार्दिक

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: सुबह की कोमल धूप के साथ कुछ जानकारियाँ और मनोरंजन, ये है नई किरण।
1: किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर के पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज वैसे मंगलवार है और ढेर सारी खुशियां मंगल दिवस की मंगल कामनाओं के साथ। 13 अक्टूबर 2026 आज का तारीख है और भारतीय समय के अनुसार राष्ट्रीय शक 1948 21 गते 27 कार्तिक मंगलवार आज है। विक्रम संवत 2083 अश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीय मंगलवार विशाखा आज है। इस्लामी हिजरी 1448 जमादी उल अव्वल मंगल जुबाना आज है। इसके साथ ही सी के नायडू, इनका जन्मदिन है जिनके बारे में बातें करेंगे। अशोक कुमार का भी जन्मदिन है और भालू भाई देसाई इनका भी जन्मदिन है। तो सभी जो भी दिग्गज आज के दिन जन्मे हैं उनको याद करते हैं और उनकी जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और आइए कार्यक्रम के इस पड़ाव में, जैसे कि आज नवरात्रि का तीसरा दिन है तो तीसरा दिन चंद्र घंटा स्वरूप को याद किया जाता है। दुर्गा माँ का तीसरी जो शक्ति है चंद्रघंटा स्वरूप देवी को याद किया जाता है और इनका कलर है आज लाल। जैसे कल हमने ब्रह्मचारिणी का याद किया था देवी स्वरूप में और उनका कलर था सफ़ेद। तो चलिए चंद्रघंटा देवी की शक्ति को क्यों याद किया जाता है उसकी कुछ रहस्य आपके लिए अभी।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से।
2: ओम शांति। भारत त्योहारों का देश है और हर रोज कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि उसमें से सबसे रंग बिरंगी उमंग उत्साह से भरा हुआ त्योहार नवरात्रि का त्योहार है। आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का दिन माना गया है और माँ चंद्रघंटा एक प्रतीकात्मक माँ चंद्र घंटा का मतलब है चंद्र और घंटा। चंद्र अर्थात के चंद्रमा, इसीलिए उनके चेहरे के ऊपर आधा चंद्रमा भी दिखाया है और साथ में घंटा दिखाया गया है। चंद्रमा प्रतीक है शांति शीतलता का कि जिसकी पूजा करने से मनुष्य के जीवन के अंदर शांति और शीतलता का वरदान मिले। और साथ ही साथ घंटा अर्थात के जो मंदिरों में हम घंट बजाते हैं वो भी उनके चेहरे के ऊपर दिखाया हुआ है। और कहा जाता है कि जब भी घंट बजता है तो जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक प्रकंपन है, वो दूर हो जाते हैं वातावरण के अंदर से और एक सकारात्मक ऊर्जा विकसित होते हैं। उसका चेहरा बहुत सुंदर दिखाया है, साथ में ही उसको शेर की सवारी पर दिखाया है, जिनका शरीर एकदम सुनहरा दिखाया गया है। शेर पर सवारी का मतलब है इतनी निर्भयता का प्रतीक। उसे 10 भुजाधारी दिखाया और साथ में 3 नेत्र दिखाए हैं। उसके 8 भुजाओं में 8 शस्त्र दिखाए हैं और बाकी 2 भुजाएं जो है विशेष मुद्रा को लिए हुए हैं, आशीर्वाद की मुद्रा के जो हर एक को आशीर्वाद देती है। और ज्ञान का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो ये विभिन्न हाथों में जो शस्त्र दिखाए हैं वो शस्त्र से बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करना। एक हाथ में चक्र है, ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ज्ञान का गोचर भी कहा गया है।

0: यानी दृढ़ निश्चय का प्रतीक और मन वचन कर्म के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। शंख यानी जो शंख ध्वनि कर अज्ञान अंधकार को समाप्त कर मनुष्य आत्माओं को अज्ञानता की नींद से जगाने का प्रतीक है। हाथ में तलवार यानी मन पर प्रहार करने वाले ईर्ष्या द्वेष विकार वासना रूपी भूतों को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा मार गिराने का प्रतीक। धनुष बाण जिसका भावार्थ है कि ज्ञान के आधार पर लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना व पुरुषार्थ रूपी बाण चलाकर द्रुपद अथवा एक रस एवं अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना है। गदा परमात्मा शिव की याद में रहकर माया अर्थात पांच विकारों से युद्ध कर उन पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। और कमल पुष्प यानी संसार में रहते हुए तामसिक विकारी वायुमंडल से अलिप्त यानी पवित्र रहने का प्रतीक है। ये दिव्य शक्तियां आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियां हैं, बाकी कोई देवियां हिंसक नहीं है, क्योंकि विकार या असुरी वृत्ति आंतरिक दुर्बलता से ही उत्पन्न होती है और ये आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही ऐसी असुरी वृत्तियों का संहार किया जाता है। और इस तरह माँ चंद्र घंटा नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष पूजी जाती है और संपूर्ण रीति से असुरों का संहार करने का प्रतीक है।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए माँ चंद्र घंटा का जो रहस्य है, आध्यात्मिक रहस्य, चांद और घंटा क्यों बताया गया है उसके रहस्य को आपने समझा है और इसके साथ में दैवी स्वरूप की शक्तियों को जाना है। तो आज है चंद्र घंटा तीसरा दिन और रेड कलर है यानी लाल कलर है और कल होगा चतुर्थी और कल की देवी है कुष्मंडा और इनका कलर है रॉयल ब्लू, है ना। तो याद रखिए आज और कल की बातें मैंने बता दी। अब सीधे मैं आपको ले चलता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा चंद्र घंटा जाप मंत्र का। ये सुंदर मंत्र अभी आपके लिए, कुछ पल आप बैठकर इस मंत्र का जाप करें। सुनते रहो मुस्कुराते।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, बड़ा सुंदर मंत्र आप चंद्रघंटा देवी का सुन रहे थे। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। ये सुंदर सा मंत्र आप बार बार अपने मन में दोहराइए, आपको

बड़ा आनंद आएगा और खुशी भी प्राप्त होगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको सीधे जोड़ता हूँ आज के दिन जन्म में उन लोगों की कुछ खास बातें आपसे शेयर करता हूँ। श्री के नायडू के बारे में अगर बात करें तो ये एक विशेष व्यक्ति रहे, भारत की क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान रहे। सी के नायडू उस उम्र तक क्रिकेट खेलते रहे जिस बारे में सोचना भी आज के खिलाड़ियों के लिए एक सपना है। नायडू की उम्र उस समय की फिटनेस आज के उनके खिलाड़ियों के लिए एक सबक है। और जो दूसरे तीसरे मैच के बाद ही चोटिल हो जाते हैं। 37 साल की उम्र में जब आज खिलाड़ी रिटायर होने लगते हैं तब सी के नायडू ने टेस्ट मैच खेलना शुरू किया था। वो 68 साल तक फिट रहकर खेलते रहे, है ना कमाल की बात। तो ये कुछ ख़ास बात थी सी के नायडू की जो सबसे एक अलग खिलाड़ी को दर्शाता है और एक अलग पहचान सी के नायडू की बनती है। आप सुना है रेडियो मधुबन पर नई किरण इस कार्यक्रम को। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ। मैं सबसे बड़ी माँ सबसे बड़ी है तू, आपके लिए अभी रीजा खान बाली ठाकुर का गाया हुआ ये सुंदर गीत आपके नाम।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ 8:42 हो रहे हैं और आपको मेरे साथ ये बात कर रहे थे हम लोग नवरात्रि की। तो नवरात्रि का ये तीसरा दिन, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और हम बात कर रहे थे अभी अशोक सी के नायडू के बारे में और

ने जमकर उनका मुकाबला किया था। सी के नायडू का कद 6 फुट से भी ऊंचा था। वो दाहिने हाथ के खिलाड़ी थे। उनकी शारीरिक बनावट किसी एथलेटिक की भांति दुष्ट पुष्ट थी। अपने जोरदार स्ट्रोक और तेज हिट के कारण विरोधियों के खेल के दबाव को कम कर देते थे। होल्कर महाराज ने उनकी शारीरिक मजबूती को देखते हुए उन्हें अपनी सेना में कप्तान बनाया और यहीं से वो कर्नल सी के नायडू बन गए। तो कहानी यहाँ से शुरू हो जाता है और फिर आगे बढ़ के आर्मी के बाद वो आते हैं 1926 और 27 में खासी लोकप्रियता प्राप्त की जब उन्होंने मुंबई में 100 मिनट में 137 गेंदों पर 153 रन बना दिए, जिनमें 11 छक्के 13 चौके शामिल थे। ये मैच हिंदू टीम तरफ से AIR गिलिगन की MCC के विरुद्ध खेला जा रहा था। मुंबई के जिमखाना मैदान पर हिंदू टीम के लिए उनकी आखिरी पारी पर उन्हें चांदी का बल्ला भी भेंट किया गया। क्रिकेट जब अभिजात्य और राजा महाराजाओं का खेल हुआ करता था, तब उन्हें इंग्लैंड जा रही भारतीय टीम का कप्तान बनाया जाना एक प्रासंगिक ही था। 1932 में उस टीम के कप्तान पोरबंदर महाराज थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं जा पाए और फिर कर्नल सी के नायडू को भारतीय टीम का पहला कप्तान बनने का गौरव प्राप्त हो गया था और फिर वो अपनी कप्तानी का पूरा जौहर भी दिखाया था। सी के नायडू ने आंध्र प्रदेश केंद्रीय प्रोसेसिंग एंड बारर हिंदू होल्कर यूनाइटेड प्रोसीमा तथा भारतीय टीमों के लिए क्रिकेट खेला और 1932 में इंग्लैंड दौरे के दौरान सी के नायडू ने प्रथम श्रेणी के सभी 26 मैचों में हिस्सा लिया था और 40.45 के औसत से 1618 रन बनाए और 65 विकेट भी लिए। 1933 में सी के नायडू को विजडम द्वारा क्रिकेट ऑफ द ईयर चुन लिया गया था। सी के नायडू के नाम किसी एक सीजन में इंग्लैंड में सर्वाधिक छक्के किसी विदेशी खिलाड़ी द्वारा लगाने का रिकॉर्ड भी है। 1932 में सी के नायडू ने कमाल का खेल दिखाते हुए 32 छक्के लगाए थे। यद्यपि सी के नायडू का अंतर्राष्ट्रीय करियर बहुत छोटा रहा, मात्र 7 टेस्ट मैच खेले, लेकिन भारतीय क्रिकेट जगत में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उनके इस उपाधि के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था, जो भारत का तीसरा बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो उपलब्धियों की बात करें सी के नायडू की, सी के नायडू भारत के पहले टेस्ट कप्तान बने। नायडू को 1933 में विजडम द्वारा क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। सी के नायडू के पहले क्रिकेटर थे, ऐसे पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने सरकार द्वारा पद्म भूषण 1956 में उनको मिला। प्रथम श्रेणी के 26 मैचों में भाग लेकर 40.25 के औसत से 1618 रन बनाए। हिंदू की टीम की ओर से खेलते हुए मुंबई में 1926 और 27 100 मिनट में 11 छक्के व 13 चौके लगाकर 153 रन बनाए थे। तो है ना कमाल की बात सी के नायडू की। तो ये थी कुछ खास बातें सी के नायडू की और भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दिलाने वाले सी के नायडू का देहांत 14 नवंबर 1967 को इंदौर में हुआ। तो ये थी कुछ खास बातें सी के नायडू के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर सा गीत, लेकिन उसके पहले अशोक कुमार जी के बारे में भी बातें करेंगे।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ। आज विशेष अशोक कुमार जी का जन्मदिन है तो उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और अशोक कुमार भारत के एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें आप सभी जानते ही हैं, हिंदी फिल्मों के अभिनेता, निर्माता, निर्देशक। और अशोक कुमार 1999 में भारत सरकार ने उन्हें कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया और हिंदी सिनेमा जगत के युग पुरुष कुमुद कुमार गांगुली उर्फ अशोक कुमार को ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने उस समय प्रचलित थिएटर शैली को समाप्त कर अभिनय को स्वाभाविकता प्रदान की और 6 दशकों तक अपने बेहतरीन काम से सिने प्रेमियों को रोमांचित किया। अशोक कुमार का असली नाम कुमुद गांगुली है, इन्हें दादा मुनीम के नाम से भी जाना जाता है। अशोक कुमार ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति की जीवन परिचय से आपको रूबरू कराते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: जन्म 13 अक्टूबर 1911। कुमुदलाल गांगुली वो नाम जो माँ बाप ने रखा। फिल्म इंडस्ट्री ने जिन्हें अशोक कुमार के नाम से बुलाया और उनके दोस्त उन्हें प्यार से दादा मुनि कहते थे। अशोक कुमार के करियर की शुरुआत बॉम्बे टॉकीज से हुई जहां पर वो लेबोरेटरी असिस्टेंट का काम किया करते थे। एक किस्सा यूं कहा जाता है कि देविका रानी के एक हीरो नजमुल हुसैन एक बार सेट से भाग गए थे जिस वजह से बॉम्बे टॉकीज के को ओनर हिमांशु राय ने अशोक कुमार को हीरो का रोल देने की सोची।
2: शायद वो आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों बिछा गया है।
1: देविका रानी और अशोक कुमार की जोड़ी भी खूब बनी। फिल्म अछूत कन्या में इन दोनों का काम बहुत पसंद किया गया। उसके बाद इन्होंने फिल्म इज्जत, सावित्री और निर्मला में भी जोरदार परफॉर्मेंसेस दी। अशोक कुमार की किस्मत का सितारा दरअसल चमका फिल्म किस्मत से ही, जिसमें उन्होंने एक एंटी हीरो का रोल किया था। दादा मुनि हमेशा से ही रिस्क लिया करते थे और इस फिल्म के साथ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो एक अलग छाप बना गए।

0: बॉम्बे टॉकीज के लिए अशोक कुमार ने ढेर सारी फिल्म्स भी प्रोड्यूस की जिनमें महल का नाम अलग से लिया जाता है। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के साथ भी अशोक कुमार की जोड़ी को खूब सराहा गया। ढेर सारी फिल्मों में ये दोनों एक साथ नजर आए, चाहे वो परिणीता हो, बहू बेगम, पाकीजा, एक ही रास्ता, बंदिश या फिर आरती। इन सभी फिल्मों में इन दोनों के अभिनय को खूब सराहा गया।
1: माफ कर दे, हमारा कौन सा गुनाह किया?
0: अशोक कुमार उन एक्टर्स में से रहे जिन्होंने बड़े पर्दे के साथ छोटे पर्दे पर भी खूब काम किया। 80 के दशक का सीरियल हम लोग, जिसमें वो एक सूत्रधार की भूमिका निभा रहे थे, आज भी लोगों की याददाश्त में ताजा है। धीरे धीरे अशोक कुमार अपने दो छोटे भाइयों को भी फिल्म इंडस्ट्री में ले आए, जिनमें अनूप कुमार एक्टर हुए और किशोर कुमार एक्टर और सिंगर दोनों।
2: कब से ये दिल दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानोगे न जानो।
0: एक वक्त ऐसा आया जब दादा मुनि ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बंद कर दिया। ये तारीख थी 13 अक्टूबर 1987, जब अशोक कुमार के छोटे भाई किशोर कुमार ने एक सरप्राइज पार्टी रखी थी कि दादा मुनि का जन्मदिन हम सब खुशी से मनाएंगे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री किशोर कुमार के बंगले में आ रही थी, दादा मुनि भी आए, लेकिन किशोर कुमार उसी दिन ये दुनिया छोड़कर चले गए। दादा मुनि यानी अशोक कुमार उन गिने चुने एक्टर्स में से हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का हर रूप देखा है।
3: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये थी अशोक कुमार की कहानी आपके लिए। अच्छा करूँगा, उनकी कुछ खूबसूरत यादें आपको ताज़ा हो गई होगी। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ अशोक कुमार जी के बारे में बताना चाहूँगा। जी हाँ, अशोक कुमार का जन्म बिहार के भागलपुर शहर के अदमपुर मोहल्ले के एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ। अशोक कुमार सभी भाई बहनों के बड़े भाई बहनों में से उनके परिवार में सबसे बड़े थे। उनके पिता कुंजलाल गंगुली मध्य प्रदेश के खांडवा में वकील थे। गायन एवं अभिनेता किशोर कुमार एवं अभिनेता अनूप कुमार उनके छोटे भाई थे। दरअसल इन दोनों को फिल्मों में आने की प्रेरणा भी अशोक कुमार से ही मिली। अशोक कुमार ने अपनी शुरुआती शिक्षा मध्य प्रदेश के खांडवा शहर में पूरी की और बाद में अशोक कुमार ने अपनी बाकी की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर पूरा किया। अशोक कुमार ने अभिनय की जो प्रचलित शैलियों को दरकिनारा कर दिया और अपनी स्वाभाविक शैली विकसित की। वो कभी भी जोखिम लेने में नहीं घबराए और पहली बार हिंदी सिनेमा में एंटी हीरो की भूमिका में एंट्री किया। अशोक कुमार ने सन 1934 में न्यू थिएटर में बतौर लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में काम किया। उसके बाद धीरे धीरे अनूप और किशोर कुमार ने चलती का नाम गाड़ी में अशोक कुमार, अनूप और किशोर कुमार तीनों ने मिलकर फिल्म बनाई चलती का नाम गाड़ी। इस कॉमेडी फिल्म में अशोक कुमार ने बड़े भाई की भूमिका निभाई। फिल्म में मधुबाला ने भी काम किया था। किशोर कुमार ने अपने कई साक्षात्कारों में ये बात स्वीकार की थी कि उन्होंने केवल अभिनय बल्कि गाने की प्रेरणा भी अशोक कुमार से मिली थी, क्योंकि अशोक कुमार ने बचपन में उनके भीतर बाल गीतों के जरिए गायन के संस्कार ढाले थे। तो ये उनकी कहानी थी अभिनय की शुरुआत कैसे हुई दादा मुनिम की। अशोक कुमार ने अभिनय सफ़र जो है शुरुआती किसी फिल्म कहानी से नहीं की, लेकिन 1936 में बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की फिल्म जीवन नैया के अभिनेता अचानक बीमार हो गए और कंपनी को नए कलाकार की तलाश थी। ऐसे स्थिति में स्टूडियो के मालिक हिमांशु राय की नज़र आकर्षक व्यक्तित्व के धनी लेबोरेटरी असिस्टेंट अशोक कुमार पर पड़ी और उन्हें अभिनय करने का प्रस्ताव दिया गया और यहीं से उनके अभिनय का सफ़रनामा शुरू हुआ। उनकी अगली फिल्म अछूत कन्या थी। 1937 में प्रदर्शित फिल्म अछूत कन्या में देविका रानी उनकी नायिका थी। ये फिल्म कामयाब रही और उससे दादा मुनि को बड़े सितारों की श्रेणी में स्थापित होने का मौका मिला। उस जमाने के लिहाज से यह महत्वपूर्ण फिल्म थी और इसी के साथ सामाजिक समस्याओं पर आधारित फिल्मों की शुरुआत हुई। देविका रानी के साथ उन्हें आगे भी कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इज्जत, सावित्री, निर्मला आदि शामिल हैं। इसके बाद उनकी जोड़ी लीला चिटनिस के साथ भी अच्छी बनी। फिर एक सफल स्टार बन गए अशोक कुमार 1943 में किस्मत फिल्म से। और धीरे धीरे सिगरेट का धुआं इनका स्टाइल बना और ये स्टाइल बाद में अनेक हीरो हीरोइन ने काफ़ी की। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं, धीरे धीरे उनकी जो है जैसे मीना कुमारी के साथ इनकी जो है अच्छी बनी और फिर इस फिल्म में उनका एक जैसे कि अशोक कुमार की अभिनय की चर्चा उनके फिल्म आशीर्वाद में काफ़ी हुआ। आशीर्वाद में इनको जो रोल मिला था और इसके साथ में उनका एक गाना भी था रेलगाड़ी रेलगाड़ी, ये गाना उनका बड़ा फेमस हो गया और लोगों ने अशोक कुमार जी को रेलगाड़ी के नाम से भी जानने लगे। तो चलिए आशीर्वाद का ये खूबसूरत गाना अशोक कुमार को अशोक कुमार बनाए, वो गाना आपके नाम।
4: रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक, बीच वाले स्टेशन बोले

हमें मेला भीड़ झमेला टूट दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खंडवा खंडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल मछलीपट्टनम जमलीपट्टनम जमलीपट्टनम मछलीपट्टनम ओंगोल निर्दिगोल निर्दिगोल ओंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर चुक चुक चुक चुक चुक चुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। रेलगाड़ी के बाद चलिए, अशोक कुमार जी को रेलगाड़ी के लिए खास याद किया जाता है और चरित्र अभिनेता के रूप में भी उन्हें खूब याद किया जाता है और फिल्म निर्माण में भी उन्होंने काफ़ी काम किया और बॉम्बे टॉकीज से अलग अलग होने के बाद खुद की कंपनी शुरू की, जुपिटर थिएटर जो खरीद लिया गया। अशोक कुमार प्रोडक्शन के बैनर तले सबसे पहली फिल्म समाज का निर्माण किया और फिर उसके बाद बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह असफल रही। इसके बाद उन्होंने अपने बैनर तले फिल्म परिणीति भी बनाई। लगभग 3 वर्षों बाद फिल्म निर्माण क्षेत्र में घाटा होने के कारण अपनी प्रोडक्शन कंपनी बंद कर दी और 1953 में फिल्म परिणीता के निर्माण के दौरान फिल्म के निर्देशक बिमल रॉय के साथ उनकी अनबन हो गई, जिसके कारण बिमल रॉय के साथ काम करना बंद किया। लेकिन अभिनेत्री नूतन के कहने पर अशोक कुमार ने एक बार फिर से बिमल रॉय के साथ 1963 में आई फिल्म बंदिनी में काम किया। ये फिल्म हिंदी फिल्म के इतिहास में आज भी क्लासिकल फिल्म में शुमार की जाती है। और फिर ज्वेल थीप में भी अशोक कुमार ने अभिनय का नया रूप दर्शकों को देखने को मिला और फिर उसके बाद सिने करियर में पहली बार खलनायक भी बने और इसके जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन उन्होंने लूटा। और आशीर्वाद खास तौर पर उल्लेखनीय है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें इसके लिए मिला। तो ये थी कुछ खास बातें अशोक कुमार जी के बारे में। और करीब 6 दशक तक बेमिसाल अभिनय से दर्शकों को रोमांचित करने वाले दादा मुनीम अशोक कुमार 10 सितंबर 2001 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो करीब 275 फिल्मों की ऐसी विरासत छोड़ गए जो हमेशा के लिए दर्शकों को सोचने, गुदगुदाने और रोमांचित करने के लिए पर्याप्त है। तो चलिए मित्रों, अब वक्त हो गया है समाचारों का। दिल्ली से समाचार सुनते हैं, अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्कर ए तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉ सुधा यादव कर्नाटक के राज्यपाल होंगे। डॉ ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
3: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 trillion की हो जाएगी।
1: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय

0: ने प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
1: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
2: नालंदा के दोंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
1: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
1: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेशश्री की रिपोर्ट।
0: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4,77,00,000 से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106,64,00,000 वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैव्य शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भश्रू और न्यायाधीश के एस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर एक दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं, तीन नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल, नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ तीसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है सऊदी से उड़ानें बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका, 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे एआई की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग। नवभारत टाइम्स की खबर है पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर, जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत, 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
7: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब। You know, तो then I cannot say कि I'm internally stable, but now I'm being assertive. तो internal stability means, you know, no trace of anger. उसको जब पूरा खत्म होगा, internally बिल्कुल calm and in control है, लेकिन फिर भी आपको discipline करना, you know. And assertive जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, you know, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप full in control हैं. Anger में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: क्वालिटी ऑफ हेल्थ। जब हम हेल्थ के बारे में कहते हैं तो देयर आर टू एस्पेक्ट्स जिस पर हमको ध्यान देना होगा। नंबर वन इज एक्सरसाइज, और ये बहुत बहुत जरूरी है कि हर दिन हम सुबह उठकर थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। आप कहेंगे सर वेयर इज द टाइम टू डू एक्सरसाइज। इसे एक बार भगवान से इंटरव्यू लिया गया और भगवान से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया, आपको मनुष्यों को देखकर सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात क्या लगता है? और मालूम है भगवान का जवाब क्या था? God's beautiful answer was, the thing that surprises me the most about these human beings, they invest their complete health to gain wealth, and after many many years, they have to reinvest their complete wealth to regain health. कहा जाता है जान है तो जहान है, और बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा समय अप

0: लिए निकालें टू डू सम एक्सरसाइज। अच्छा, अब एक्सरसाइज तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हमारा रिसर्च कहता है कि एक्सरसाइज करते समय आप किस मानसिक अवस्था से आप एक्सरसाइज कर रहे हो। अब लोग सुबह उठकर जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन अगर कोई गुस्से से वॉकिंग कर रहा है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हो अगर आप बहुत खुशी से करते हो तो उसका जो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत रिमार्केबल होता है। इसे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कुछ एक एक्सरसाइज को डिवाइस किए गए विच आर कॉल्ड एज साइको फिजिकल डायनेमिक एक्सरसाइजेस। साइकी मीन्स माइंड और फिजिकल मीन्स शरीर, और इन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुछ एक एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगा विच इज बीन डिवाइस्ड बाय डॉक्टर गिरीश पटेल, अ वेरी फेमस साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम बोरीवली बॉम्बे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत बहुत पसंद आएंगे। तो सभी स्ट्रेट होकर, अलर्ट होकर बैठे, रेडी ऑल ऑफ यू। अच्छा अच्छा, सबसे पहले आपको ये बहुत खुशी से, बहुत आनंद के साथ करना है। अच्छा, कैसे करना है? जब मैं कहूंगा वन, तो आप जोरदार ताली बजाना और महसूस करना कि आप उस सुप्रीम सर्जन जो ईश्वर है उनको टच कर रहे हो। और जब मैं कहूंगा टू, तो महसूस करना कि उनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस उतर उतर कर आप तक पहुंच रहे हैं। करेंगे सभी? हाँ, चलिए। ओके, हियर वी गो। वन टू, खुशी से करना, आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, ठीक है? ओके, एक और बार करेंगे। वन टू कर। अच्छा, जैसे आप उस सुप्रीम सर्जन को टच करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जो शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं डिजीजेस होने का कारण क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, राइट? और जैसे ये टॉक्सिन्स शरीर से फ्लश आउट हो जाती है, वी बिकम डिजीज फ्री। लेकिन आजकल देखा गया है शरीर से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे मन में होते हैं, स्ट्रेस, फियर, टेंशन, डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। ऐसे एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज मुझे अच्छा लगता है, और वो है जब मैं कहूंगा वन, तो आप महसूस करना कि अगर आपके शरीर में और मन में अगर टॉक्सिन्स है तो जब मैं कहूंगा वन, तो आप इस तरीके से उसको झटक दो, और जब मैं कहूंगा टू, तो उसको थोड़ा धक्का मार के बाहर फेंक, ठीक है? बहुत खुशी से, बहुत आनंद से करना। चलो वन टू, थोड़ा धक्का मार दो। वेरी गुड, वेरी गुड। एक और बार वन, हाँ टू, करो करो करो। या फ्रेंड्स, ये जो रोड में जो गाड़ियां चलती है उसमें हम पेट्रोल यूज करते हैं, और जो एरोप्लेन जो हवा में चलती है उसमें भी हम फ्यूल यूज करते हैं। अच्छा बताइए फ्रेंड्स, ये दोनों क्वालिटी ऑफ फ्यूल कौन सा अच्छा होगा इफ यू कंपेयर बोथ? राइट आंसर, वेरी इंटेलिजेंट ऑडियंस, यस, द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। उसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स डाउन टू हेल्थ इज हम अपने शरीर में किस प्रकार का फ्यूल डाल रहे हैं, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर डाइट। अब प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार का भोजन स्वीकार करें। इसलिए हमारा रिसर्च कहता है दिस ह्यूमन सिस्टम इज मेंट फॉर प्योर वेजिटेरियन फूड, दिस ह्यूमन सिस्टम इज नॉट मेंट फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड। अब नॉन वेजिटेरियन फूड से क्या प्रॉब्लम्स है उसके तो हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो हमारा क्वालिटी ऑफ डाइट क्या होना चाहिए? प्योर वेजिटेरियन फूड के साथ साथ जरूर भोजन के पहले जरूर सलाड को लीजिए। ओके, ईट लॉट ऑफ स्प्राउट्स, फ्रूट्स, जूसेस। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है बहुत शक्तिशाली बन जाती है। साथ साथ में एक और बात पे ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ, कहा जाता है जैसा अन्न होगा वैसा मन बन जाता है। इसे मैं आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप भोजन बना रहे हैं तो बहुत खुशी और आनंद से भोजन बनाइए। अगर आपने बहुत गुस्से से जिंदगी भर हम भोजन बनाते रहे, अगर इस एटीट्यूड से भोजन बनाया, तो जो भी आपका हाथ का बनाया भोजन खाएंगे तो उनके भी विचार जो होंगे वो डामाडोल हो जाएंगे, राइट? भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि बहनें ही भोजन बना सकते हैं, आप भी तो थोड़ा हेल्प कर सकते हो ना, तो एक बार ट्राई करके देखना, है ना? जब बहन भोजन बना रहे हैं तो बहुत किचन में जाना, बहुत प्रेम से एक दो टमाटो कट करके देखना, और बहन के चेहरे को देखना, उनका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इमोशंस, ओके? यू नीड टू हेल्प एवरीवन। इसे मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया है कि जब भी मेरे फैमिली मेंबर्स इफ दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कुक फूड एज योर हॉबी। इसे आज भी आप देखो मंदिर में जाते हो, आपको प्रसाद मिलता है ना, भले थोड़ा सा प्रसाद क्यों ना हो, लेकिन उसका महत्व बहुत होता है क्योंकि वो ईश्वर की याद में वो भोजन बनाया गया है। इसे जब आप भोजन बनाते हो तो ईश्वर के अच्छे अच्छे गीत लगाइए, और उनके याद में अगर आप भोजन बनाते हो तो बहुत शक्तिशाली, बहुत
1: बीता हुआ कल हो या फिर आज, हर बात नए अंदाज के साथ, जो मन को दे एक दर्पण, ये है नई किरण।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। बहुत ही प्यारे गीत आप सुन रहे थे नवरात्रि के। आशा करूंगा कि आप सभी को अंबे माँ का ये खूबसूरत गाने सुनकर आनंद आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हुए व्यंजन में उन लोगों के बारे में जिनका जन्म, चलिए फोन शायद फोन नहीं लग रहा होगा आपका, तो फिर से एक बार फ़ोन करके देख सकते हैं आप। सुरेश जी ने फ़ोन किया था और

जी ने भी याद किया था शायद, तो बाकी लोगों का फ़ोन तो आया नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि फ़ोन आपको ठीक से सुनाई दे। आइए आगे बढ़ते हैं और 13 अक्टूबर को दिन विशेष रूप से जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। तो आइए 13 अक्टूबर को जन्मे भारतीय एथलेटिक है जो लंबी बाग दौड़ के लिए जाने जाते हैं अविनाश साबले। 1994 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। मणिपुर गोवा शिवेंद्र सिंह सिंधु। 1929 भारत अशोक कुमार जी का भी जन्मदिन आज है। 1911 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। सूफी भक्ति संगीत और कव्वाली के प्रसिद्ध गायक नुसरत फतेह अली खां, इनका भी जन्मदिन आज ही के दिन 1948 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनेता जो आसाम के मुख्यमंत्री भी रहे, भूमिधर बर्मन, इनका भी जन्म 1931 में आज ही के दिन हुआ। भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान सीके नायडू, 1895 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। और प्रख्यात विविधता महात्मा गांधी के विश्वस्त सहयोग, 1877 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। तो चलिए जिनका भी जन्मदिन आज है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू।

चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे शाम 4 बजे सफ़र कार्यक्रम में। एक बार फिर से आप सभी को खास आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं, और आज के दिन को यादगार बनाएं और माँ चंद्रघंटा को याद करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं आप सभी के साथ। जाते जाते आपके लिए माँ चंद्रघंटा की बातें आपसे शेयर करेंगे और माँ अम्बे का एक खूबसूरत भजन आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन. आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी आदरणीय उषा दीदी से.
1: ओम शांति. भारत त्योहारों का देश है और हर रोज कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं. कहा जाता है कि उसमें से सबसे रंग बिरंगी उमंग उत्साह से भरा हुआ त्योहार नवरात्रि का त्योहार है. आज तीसरे दिन माँ चंद्र

0: घंटा का दिन माना गया है और माँ चंद्र घंटा एक।
1: अभी बजे हैं सुबह के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

माँ चंद्रघंटा के दरबार में हर दुख मिट जाता है। माँ चंद्रघंटा के दरबार में हर दुख मिट जाता है। सच्चे मन से जो शीश झुकाए साहस वह पाता है। मस्तक पर चंद्रमा हाथों में शक्ति अपार। मस्तक पर चंद्रमा हाथों में शक्ति अपार। भक्तों के जीवन में खुशियां भरती माँ करती बेड़ा पार। मन में हो विश्वास हो कर्मों में सच्चाई। मन में हो विश्वास हो कर्मों में सच्चाई। माँ चंद्रघंटा की कृपा से जीवन में सुख शांति छाई। माँ चंद्रघंटा की कृपा से जीवन में सुख शांति छाई। तो नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का दिन है, तो इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। कहते हैं ना कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो लेकिन अपना धैर्य नहीं खोना है और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, सर्दी खांसी की समस्या है तो सर्दी खांसी होने से पहले ही बहुत ही सुंदर आज मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ ताकि सर्दी खांसी हो ही नहीं, ठीक है। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। और व्यंजन तो आज माता रानी को कौन सा व्यंजन पसंद है वो ही आपको सिखाने वाली हूँ। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर रहेगा। तो इस प्रकार आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चलने वाला है। आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, आप जुड़िएगा और अपनी बात को भी रखिएगा, प्रश्न का जवाब भी जरूर दीजिएगा। तो आइए सुन लेते हैं गीत, उसके बाद पुनः आपसे रूबरू होते हैं। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

चंद्रघंटाय नमो नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। तो पुनः माँ चंद्रघंटा देवी का आज का दिन है, इस दिन के ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशियाना कार्यक्रम में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है कि किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोइएगा और अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखिएगा। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहेंगे। पहले तो समझाना चाहूंगी कि देखिए, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आंध्र चंद्र

अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा को साहस, शक्ति और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। भक्त मानते आत्मविश्वास और नकारात्मकता से लड़ने की शक्ति जागृत होती है। तो यहाँ पर एक कहानी याद आ रही है कि एक समय देवता और मनुष्यों को दुष्ट शक्ति परेशान करने लगी। दुष्ट और भय और अशांति का वातावरण था और भय और दुर्गा ने चंद्रघंटा का तेजस्वी और शक्तिशाली स्वरूप धारण किया। मां सिंह पर सवार होकर अनेक अस्त्र धारण किए, अस्त्र धारण किए, दुष्ट शक्तियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ी। उनका सामना करने के घंटे की दिव्य ध्वनि से उनके दुष्ट शक्ति से उठी। दुष्ट माता ने अपने अद्भुत पराक्रम से देवताओं की रक्षा की और संसार में रहने की स्थापना का मार्ग स्थापना का मार्ग। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है मेरे प्यारे, यही शिक्षा मिलती है जब जीवन में भय, संकट या कठिनाइयां आए, साहस, विवेक और ईश्वर पर विश्वास रखकर उनका सामना करना चाहिए। वो कहते हैं ना, घंटे की ध्वनि से मिट जाए अंधकार, आशीर्वाद हो सबसे प्यारा आस जगे, माँ की कृपा से जीवन में मधुमास की वजह से जीवन में सच्चे मन से मास का दिलाने लगाते हैं, सच्चे मन से वे हर मुश्किल में हिम्मत से आगे बढ़ जाते हैं, हिम्मत से आगे बढ़ जाते हैं। सभी को तो पुनः आप सभी नवरात्रि की और विशेष नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के दिन की ढेर सारी शुभकामना और सुंदर विचार सुनने के बाद और फिर से एक गीत सुनने के लौटते हैं। तो बने रहिएगा कार्यक्रम पर, लौटते आशियाना में लगन सुनते रहो, आशियाना में मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन मुस्कुराते रहो, 7.0 मधुबन FM 107।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन. आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से.
1: ओम शांति. भारत त्योहारों का देश है और हर रोज कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं. कहा जाता है कि उसमें से सबसे रंग बिरंगी उमंग उत्साह से भरा हुआ त्योहार नवरात्रि का त्योहार है. आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का दिन माना गया है और माँ चंद्रघंटा एक प्रतीकात्मक माँ चंद्रघंटा का मतलब है चंद्र और घंटा. चंद्र अर्थात के चंद्रमा, इसीलिए उनके चेहरे के ऊपर आधा चंद्रमा भी दिखाया है और साथ में घंटा दिखाया गया है. चंद्रमा प्रतीक है शांति शीतलता का कि जिसकी पूजा करने से मनुष्य के जीवन के अंदर शांति और शीतलता का वरदान मिले. और साथ ही साथ घंटा अर्थात के जो मंदिरों में हम घंट बजाते हैं वो भी उनके चेहरे के ऊपर दिखाया हुआ है. और कहा जाता है कि जब भी घंट बजता है तो जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक प्रकंपन है, वो दूर हो जाते हैं वातावरण के अंदर से और एक सकारात्मक ऊर्जा विकसित होते हैं. उसका चेहरा बहुत सुंदर दिखाया है, साथ में ही उसको शेर की सवारी पर दिखाया है, जिनका शरीर एकदम सुनहरा दिखाया गया है. शेर

0: मतलब है इतनी निर्भयता का प्रतीक। उसे 10 भुजाधारी दिखाया और साथ में 3 नेत्र दिखाए हैं। उसके 8 भुजाओं में 8 शस्त्र दिखाए हैं और बाकी 2 भुजाएं जो है विशेष मुद्रा को लिए हुए हैं, आशीर्वाद की मुद्रा के जो हर एक को आशीर्वाद देती है। और ज्ञान का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो ये विभिन्न हाथों में जो शस्त्र दिखाए हैं वो शस्त्र से बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करना। एक हाथ में चक्र है, ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ज्ञान का गोतक है, जिसे स्वदर्शन चक्र या सुदर्शन चक्र भी कहा गया है। त्रिशूल यानी दृढ़ निश्चय का प्रतीक और मन वचन कर्म के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। शंख यानी जो शंख ध्वनि कर अज्ञान अंधकार को समाप्त कर मनुष्य आत्माओं को अज्ञानता की नींद से जगाने का प्रतीक है। हाथ में तलवार यानी मन पर प्रहार करने वाले ईर्ष्या द्वेष विकार वासना रूपी भूतों को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा मार गिराने का प्रतीक। धनुष बाण जिसका भावार्थ है कि ज्ञान के आधार पर लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना व पुरुषार्थ रूपी बाण चलाकर द्रुपद अथवा एक रस एवं अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना है। गदा परमात्मा शिव की याद में रहकर माया अर्थात 5 विकारों से युद्ध कर उन पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। और कमल पुष्प यानी संसार में रहते हुए तामसिक विकारी वायुमंडल से अलिप्त यानी पवित्र रहने का प्रतीक है। ये दिव्य शक्तियां आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियां हैं, बाकी कोई देवियां हिंसक नहीं है, क्योंकि विकार या असुरी वृत्ति आंतरिक दुर्बलता से ही उत्पन्न होती है और ये आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही ऐसी असुरी वृत्तियों का संहार किया जाता है। और इस तरह माँ चंद्र घंटा नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष पूजी जाती है और संपूर्ण रीति से असुरों का संहार करने का प्रतीक है।
1: नमस्कार, ओम शांति। प्यारे श्रोता बंधु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आशियाना में। फिर से मौसम में बदलाव हो, सुबह शाम की ठंडक हो या वातावरण में धूल और प्रदूषण बढ़ जाए तो हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। तो आइए आज बात करते हैं सर्दी खांसी से बचने के लिए कुछ आसान तरीके आपको सिखाएंगे, ताकि वो कहते हैं ना पानी आने से पहले ही पाल बांध देना अच्छी बात है। तो मौसम तो चल ही रहा है सर्दी खांसी का, तो पहले से ही हम सावधानी बरते और अपना ध्यान रखें तो इन सभी से बचे रहेंगे। तो पहली बात तो यह है कि स्वच्छता अपनाइए, अपने हाथों को साबुन से धोइए और खांसते या छींकते समय रुमाल या फिर टिश्यू का इस्तेमाल करिएगा। दूसरी बात है पौष्टिक आहार लीजिएगा, मौसमी फल खाइएगा, हरी सब्जियां दालें और पर्याप्त पानी को अपनी दिनचर्या में शामिल करिएगा। तीसरी बात है धूल और धुएं से बचिएगा, जरूरत पड़ने पर मास्क पहनिए और घर में हवा का उचित आवागमन बनाए रखिए। चौथी बात है पर्याप्त नींद लीजिए, शरीर को आराम देना भी अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। पांचवी बात है लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना है, यदि बुखार लगातार खांसी या तबीयत बिगड़ने की शिकायत हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा, सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको और भी बहुत ही सुंदर उपाय आपको बताने जा रही हूँ कि आप क्या करेंगे जिससे आप हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहेंगे और ये खांसी की शिकायत नहीं होगी। तो बहुत ही सुंदर उपाय आपको बताने जा रही हूँ, आप क्या करेंगे, तुलसी और अदरक डाल करके गर्म पेय पी सकते हैं। इससे क्या है गले को आराम मिलेगा। ठीक है, तो आप तुलसी और अदरक की चाय बना करके आप पी सकते हैं। दूसरा उपाय है दिन भर पानी पीते रहिए, गला सूखने नहीं देना है और बहुत ठंडे पेय नहीं पीना है। ठीक है, इनसे बचना है। फिर देखिए हाथों की सफाई रखिएगा, बाहर से आने के बाद और खाने के पहले साबुन से हाथ धोइए, खांसते छींकते समय मुंह और नाक को ढके रखिए। चौथा उपाय है मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें और पर्याप्त प्रोटीन लीजिए। संतुलित भोजन शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता बनाए रखने में मदद करता है। पांचवा उपाय है रोज लगभग 7 से 9 घंटे की नींद लीजिएगा, इससे शरीर को पर्याप्त आराम मिलेगा। तो ये सारे ही उपाय बहुत ही सुंदर है, आप आजमा सकते हैं और स्वयं को ठीक रख सकते हैं बीमारी आने से पहले ही, ठीक है। और आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा होती है आज, और इनका नाम चंद्रघंटा क्यों रखा गया है? तो जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-14-14, और यहीं पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई जोटाना से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
1: दादी जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति आपको, हमारे सभी परिवार को, आपका हमारा सभी श्रोता मित्रों को भी। आज तीसरा दिन है नवरात्रि का, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को माता जी की कृपा बनी रहे, हमारे सभी मित्र मतलब परिवार खुश रहे, ऐसी हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं दीदी
0: जी। और आज का विषय है भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, क्योंकि वह हमारे सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि करता है, क्या कहेंगे आप?
1: बिल्कुल सही बताया, मेरा ही टॉपिक है दीदी। मैं बताऊं तो दीदी, मुझे ऐसा काम करने में बहुत रुचि रहती है। मैं पैसे के लिए या कोई और के लिए नहीं करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ खुशी के लिए करता हूँ। देखो मैं पक्षियों के लिए वो सभी कोई अच्छे कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं तुरंत ये काम करता हूँ, इसमें मुझे आनंद रहता है दीदी। मैं ऐसा नहीं कि चलो भाई सभी काम मैं पैसे से करता हूँ, सभी काम मैं ऐसे करता हूँ, मुझे खुशी रहती है ऐसा काम करने में। और जो खुशी से काम होता है दीदी वो निस्वार्थ भाव से होता है। कभी कभी पैसे से तो काम होता है, लेकिन पैसे का काम कोई सेवा का काम पैसे करेंगे तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसमें कोई खुशी नहीं आएगी। वो तो हम पैसे के लिए करते हैं, लेकिन पैसे के लिए काम नहीं करना है। जो भी ऐसा धर्म का काम है, कोई किसी को मदद करनी है तो खुशी से करेंगे तो एक आनंद रहता है खुशी का
0: जी।
1: तो मैं सुबह में मेरा 5 बजे का रूटीन है रोज, मैं मेरा 5 बजे का काम करता हूँ, खुशी से करता हूँ। मुझे मैं कोई ऐसे नहीं कि चलो भाई मैं छुट्टी रख दूँ, मेरे क्या मेरे बच्चे नहीं पिएंगे तो मेरे क्या जाएगा, नहीं मुझे आनंद है इसमें काम करता हूँ।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत आभार सुरेश भाई।
1: नमस्ते, नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में विषय बहुत ही सुंदर आपके समक्ष रख चुकी हूँ, भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, क्योंकि वह हमारे

0: और स्वास्थ्य की वृद्धि करता है। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है जिसको मैं दोहरा रही हूँ। चले हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो शबेन जी, सुप्रभात, नमस्कार, जय अम्बे।
0: हाँ जी, जय अम्बे, सुप्रभात, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: कंचन भाई को।
0: हाँ जी कंचन भाई, कैसे हो आप?
1: नंबर बदल गया है इसलिए पता नहीं चलेगा, लेकिन आवाज से तो।
0: अच्छा, वैसे हम लाइव में नंबर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जी बिल्कुल,
1: सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया है और बहुत अच्छा है आज का विषय की भलाई।
0: जी,
1: क्या बोला फिर से एक बार बताइए।
0: हाँ जी, भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, क्योंकि वह हमारे सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि करता है। क्या कहेंगे आप?
1: सही बात बताई आपने, भलाई करनी चाहिए, ठीक है। अगर पैसे भगवान ने हमें दिया है और ये है तो भलाई पैसों से ही कर भी करनी चाहिए, लेकिन इसका इसको मिलना चाहिए कि भाई तेरे को क्या करना है, क्या है, क्या काम है तेरे को। यदि ये कोई अपने धंधे में पैसा लगाता है और हमें निर्व्यसनी है, ऐसा है तो हमें भगवान ने हमें दिया है तो थोड़ा धंधे का कोई मशीन है, औजार है, इसमें थोड़ी हेल्प करनी चाहिए बेटा। और ये भी निस्वार्थ
0: जी
1: भाई, तो तेरे को जब धंधा चले तब थोड़ा थोड़ा करके देना, और ऐसा एक नक्की इसको कि इतने महीने में इतना ब्याज होगा, इतना ऐसा होगा, तुझे दे देना पड़ेगा वरना तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, ऐसा ऐसी भलाई नहीं करनी
0: जी।
1: मैं तो एक ही बात भलाई के लिए तो मानता हूँ कि कोई गरीब का बेटा हो, कोई हो तो इसको थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाया हो, ऐसा हो तो इसको थोड़ा हुनर, हम में जो हुनर है वो बात करनी चाहिए कि भाई ऐसा करो, मशीन की हेल्प हम करेंगे सिलाई में, और तुम एक सीख जाओगे तो अपने आप रोजी कमाना सीख जाओगे। तो ये भलाई मुझे तो इस जमाने में तो श्रेष्ठ लगती है
0: जी।
1: तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट में बताया, और सभी दोस्तों को भी जुड़ना है, आज नवरात्रि का दिन है, सभी दोस्तों को आपको माँ चंद्र घंटा का
0: जी। बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, बहुत ही आपने भी संक्षिप्त में बात की है, क्योंकि सभी को अवसर मिले, बहुत अच्छी सोच है। तो देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं। विषय भी बहुत ही सुंदर है, तो आज का प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। आज का प्रश्न है, माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा होती है आज, और इनका नाम चंद्रघंटा क्यों रखा है? और आज का विषय है, भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, क्यों? क्योंकि वह हमारे सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि करता है। अब आपको जुड़ना है और अपनी बात को रखना है। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं, और आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। क्या बात है, आप सभी कहाँ व्यस्त हो गए हैं, देखते हैं कौन जुड़ते हैं। और आशाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, जुड़ने की कोशिश ज़रूर करिएगा और अपनी बात को ज़रूर रखिएगा। तो बहुत ही सुंदर विषय है, क्या सोच रहे हैं आप भाई? माता रानी के दिन चल रहे, नवरात्रि के, हो सकता है रात को बहुत गरबा किया हो, है ना? और रात को गरबा करते हैं तो फिर सुबह उठना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप आराम कर रहे हैं तो आराम कीजिएगा, उठ गए हैं तो जुड़िएगा। तो देखिए, भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, कितना सुंदर विषय है, प्रैक्टिकल विषय है कि भलाई करना मतलब, कभी हम क्या है, किसी के लिए कुछ करते हैं तो ऐसा समझते हैं कि अरे हमारा कर्तव्य है तो हमें करना ही पड़ेगा। अरे कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य को साइड में रख करके बस यही सोचिए कि हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमें भी अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि आप कभी भी हाथ को नीचे की तरफ करके देखें, एक तो आप हाथ फैला कर देखिए कैसा लगता है, ऐसा अंदर से महसूस होता है कि अरे हाथ क्यों फैलाना पड़ रहा है। एक हाथ अगर देने की मुद्रा में हो तो कितना अच्छा लगता है, अंदर ही अंदर खुशी पहले किसको मिलती है, स्वयं को मिलती है ना, कि हम परमात्मा ने किसी काबिल हमें बनाए कि हम किसी को कुछ दे पा रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है, कितने आनंद की अनुभूति होती है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। और जो मांगते रहते हैं उनके आप देखिए हमेशा मांगते समय नजरें क्या हो जाती है, नीची, शर्म आती ना, भले अपने हैं चाहे हम किसी भी प्रकार से मांग रहे हैं ठीक है, लेकिन फिर भी शर्मिंदगी महसूस होती है। और अगर हम किसी को देते हैं चाहे एक छोटी भी चीज़ क्यों ना हो, फिर भी कितना अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और ऐसा लगता है कि चलो हम भी इस काबिल है कि किसी को कुछ दे सके, तो एक सुकून सा महसूस होता है दिल में और बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, तो ये भी है कि देखिए हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि हमने किया है तो कल वो भी हमारे लिए करे, ज़रूरी नहीं है। हर एक के विचार समय के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन हमने किया इस बात की खुशी मनानी है, इस बात के मौज में रहना है कि हमने किसी के लिए अच्छा किया, बुरा तो नहीं किया ना। बुरा करते ना तो सबसे पहले खुद की आत्मा का चोटती है, खुद का ही दिल का चोटता है कि मैंने क्या कर दिया। बाहर खुश रहने की कोशिश करेंगे लेकिन अंदर मन का चोटेगा कि अरे ये क्या कर दिया, नहीं अच्छा नहीं किया मैंने। लेकिन क्या करें, अपनी गलती को कौन स्वीकार करे। और यही अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, बहुत खुशी मिलती है। हाँ जी, ओम शांति, नमस्ते।
1: सभी को, हमारे सभी दोस्त रेडियो मधुबन परिवार को सुभाष भाई का नमस्कार और नवरात्रि की बहुत बहुत मंगल शुभकामना शुभेच्छा।
0: जी जी जी जी,
1: विचार और विषय बहुत ही अच्छा है और हमने सवाल का जवाब तो दीदी मैसेज करके दे दिया है
0: जी।
1: और विषय के बारे में बोलता हूँ थोड़े में, तो देखो ये भलाई करना ये भी एक अच्छा गुण है, भले हमें हमारी जितनी क्षमता है

0: उसमें सही अंदर का सुख और अंदर का आनंद ही आनंद है, अतंद्रिय आनंद है। और सभी को नमस्कार, ओम शांति, थैंक यू, शुक्रिया दीदी।
1: जी, बहुत बहुत आभार आपका सुभाष भाई। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया है। आइए यहाँ पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें। आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है क्यों? और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा होती है और आज इनका नाम मतलब आज के दिन कौन से स्वरूप की पूजा होती है और इनका नाम चंद्रघंटा क्यों रखा गया है, तो यह आज का प्रश्न है। आप जुड़ सकते हैं और दोनों का जवाब दे सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और ज़रूर आप जुड़िएगा। देखिए नवरात्रि मनाइएगा धूमधाम से, बहुत ही अच्छी तरह गरबा जम रहा है, कहीं राम धुनी चल रही है मंदिरों में और गरबा का भी सभी आनंद ले रहे हैं। साथ ही साथ रेडियो मधुबन से जुड़ करके आशियाना कार्यक्रम का भी आनंद लीजिएगा और आज के प्रश्न का जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा। आज के विषय में अपनी राय व्यक्त करने की जरूर कोशिश करिएगा। भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, क्योंकि वह हमारे सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि करता है। तभी तो कहते हैं कर भला तो हो भला। भले हम ये भाव नहीं रखते हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं या किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ये भाव नहीं रहता है कि तुरंत हमें मिल जाए। हाँ, हल्का सा भाव रहता है कि आज हम कर रहे, हो सकता है कल मुश्किल के समय ये भी हमारे काम आए, लेकिन ऐसा भी हमें नहीं सोचना है। ठीक है, एक हाथ से करो दूसरे हाथ के लिए कहते हैं ना कि उस हाथ को भी पता मत चलने दो, ऐसे ही करो और भूल जाओ, वो अपने आप क्रिया की प्रतिक्रिया होनी ही है। हो सकता है जिसके लिए आपने किया है वो नहीं आए समय पर काम, लेकिन कोई ना कोई दूसरा काम आ ही जाएगा। ईश्वर को सबकी चिंता है, वो किसी न किसी को निमित्त बना ही देगा। इसलिए हमारा कर्तव्य सिर्फ यही है कि हम अच्छा करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचे, अच्छा करें, हो सकते हैं उतनी मदद करें। और कभी कभी हम अपने रिश्तेदारों के लिए, जैसे माता पिता बच्चों के लिए करते हैं, या फिर बहन बेटियों के लिए हम करते हैं, या भाई भाई के लिए करते हैं, या बच्चे माता पिता के लिए करते हैं, तो क्या लगता है अरे हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे। कहाँ भाई कर्तव्य निभा रहे हो, क्या खुशी नहीं मिल रही है क्या? कर्तव्य तो निभाना ही है, कर्तव्य के पीछे नहीं हटना है, लेकिन जो हम कर रहे हैं उससे आनंद की कितनी अनुभूति हो रही वो सोचना जरूरी है। माता पिता के लिए कोई बच्चे जैसे एज वाले हैं माता पिता, उनके सेवा करते हैं तो बच्चों के मन में अगर वो दिल से करते हैं तो कितनी खुशी होती है कि चलो आज मैं अपने मतलब मैं स्वस्थ हूँ तो अपने माता पिता की सेवा कर पा रहा हूँ। तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम इस काबिल, हमको बनाया है भगवान ने, तो धन्यवाद उनका करना चाहिए। और खुशी तो मिलती है ना कि किसी के लिए हम अच्छा कर रहे हैं। बहन बेटियों को हम देते हैं तो देते हैं, इसका मतलब कितनी खुशी मिलती है कि चलो ईश्वर ने हमको दिया इसलिए हम कुछ दे पा रहे हैं अपनी घर के बहन बेटियों को भी। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि हम तो कर्तव्य कर रहे और मुँह को फुला दिया, ऐसे नहीं हो सारा आपका किया धरा सब हो जाएगा पूरा, क्योंकि खुशी नहीं मिली तो क्या मतलब रहा। थोड़ा सा किया और खुशी मिल गई तो कितना अच्छा लगता है। और वैसे देने वाले हमेशा खुश ही रहते हैं क्योंकि उनके अंदर के भाव अच्छे रहते हैं। लेने की बारी आती है तब ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना? तो बहुत जनों को आप देखिएगा कि लेने के भाव ऐसे होते हैं कि अरे वो नहीं दे तो अच्छा है, मैं कैसे ऐसे हाथ को नीचे करूँगी, वो मुझे देगा, कितना भारीपन लगेगा। और देते समय कितने हल्के महसूस करते हैं कि चलो किसी को कुछ दे रहे हैं तो हल्के महसूस करते हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम कर्तव्य कर रहे हैं। अरे भाई जो कर रहे हैं किसी के लिए भला कर रहे, पूरा आनंद लीजिए। जैसे सुरेश भाई ने बताया है कि कैसे वो 4 बजे उठ करके ही पंछी पक्षियों को दाना देना करना, भाई वो तो उनका कर्तव्य नहीं है ना कि भाई क्या करें पंछी पक्षी नाराज हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। फिर भी कर रहे हैं क्योंकि खुशी मिल रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ न कुछ करते रहते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उनको खुशी मिलती है। तो खुशी जैसी तो खुराक ही नहीं है, भगवान भी कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, हमेशा खुश रही है। और खुश ऐसे ही नहीं रह सकते, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं सोच के देखिए, कुछ भी नहीं कर रहे पूरे दिन हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं, क्या खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। हम खुश रहने की कोशिश करेंगे लेकिन जो वास्तविक खुशी है, जो ओरिजिनल खुशी, वो हमें नहीं मिल पाएगी। वो जो वास्तविक अंदर की खुशी है वो तभी मिलेगी जब हम किसी के लिए कुछ करेंगे, तभी मिलेगी। क्या बात है, मैं ही मैं बोले जा रही हूँ, आप कहाँ गायब हो गए? अरे भाई रेडियो मधुबन की घड़ी में पता है कितने बजे,
10:56 और 27 सेकंड हो गए हैं। तो मेरे को लग रहा है कि अब तो उठ ही गए होंगे आप, है ना? उठ गए होंगे। इतने लेट तक भले पूरी रात जागरण करो तो भी इतने लेट तक कोई नहीं सोते हैं। तो जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जुड़ सकते हैं। आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, आप अपनी बात को रख सकते हैं। आज का प्रश्न बहुत सुंदर है जिसका जवाब आप दे सकते हैं। माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा होती है आज और इनका नाम चंद्रघंटा क्यों रखा गया है, ये आज का प्रश्न है। तो आप विषय में भी जुड़ सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं आज के प्रश्न का। अगर आपने विचार ध्यान से सुना होगा तो जवाब उसी में था। और बाकी भलाई करते रहिए, कर्तव्य को कर लीजिए किनारे कि कर्तव्य नहीं हमें तो करना ही है। कर्तव्य तो कुछ लोगों के लिए ही हमारा होता है, भाई बच्चे हैं तो क्या करें, उनकी तो पालना करनी पड़ेगी। माता पिता है तो क्या करें, उनकी तो सेवा करनी पड़ेगी। बहन है तो ये करना ही पड़ेगा, फलाना है तो ये करना ही पड़ेगा, वो कर्तव्य हो गया। तो कर्तव्य तो एक लिमिटेड लोगों के लिए होता है, लेकिन भलाई तो किसी के भी लिए कर सकते। रास्ते चलते राहगीर का भी आप भला कर सकते हैं, किसी का भी भला कर सकते हैं। और वो जो खुशी मिलती है सचमुच बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही आनंद प्रदान करती है वो। और कहीं ना कहीं ये भी बात सही है कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ठीक है, शरीर है तो ऐसा मत सोचिए कि कभी तकलीफ आएगी नहीं। तकलीफ तो आएगी लेकिन दुख नहीं आएगा। शारीरिक व्याधि तो आएगी लेकिन दुख की लहर नहीं आएगी कि अरे मैं बीमार क्यों पड़ी। हो गए, कोई बात नहीं है, शरीर है तो होना ही है, ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन चलो किसी के लिए कुछ करके बीमार पड़े हैं तो अच्छा लगता है कि अरे जल्दी दुआएं मिलेगी, जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि दुआएं बहुत मिलती है किसी के लिए कुछ करते, भाई ऐसे नहीं कि मैं कर रही हूँ किसी के लिए तो अरे मुझे वो दुआ देगा वो दुआ देगा, नहीं। ठंडक पहुँच गई आपको कि आपके दिल को कि अरे वाह क्या आज दीदी ने सुनाया है, बहुत अच्छा लगा। अंदर से ये जो दुआ निकली ना, ये जो खुशी की लहर निकली, ये भी एक दुआ बन करके काम करती है। तो हम किसी के भी लिए, कोई ज़रूरी नहीं इंसान के लिए, जैसे पंछी पक्षियों के लिए भी, किसी के भी लिए आप करिएगा, खुशी ही मिलेगी। इसलिए भला करते रहिए। भला का आजकल देखते हैं कि खैर अभी कल की ही बात है, कोई कह रहे थे कि अरे बहन जी भला किसी का मत करिएगा, आजकल तो भला करने पर भी बुरा ही हाथ में आती है। मैंने कहा कैसे, तो बोले कि हम रास्ते में जा रहे थे, गाड़ी में 2 सीट की जगह थी, तो एक लेडी और उसका बच्चा रो रहा था सड़क पर। तो पूछा भाई क्यों रो रहे हो, तो महिला आ गई पास में और बोले कि बाबूजी हमको पास में ही जाना है, आप इधर से जा रहे हो तो हमें बिठा दो ना, हमारे पास कोई साधन मतलब नहीं है अभी, कोई ऑटो वाला बहुत महंगा ऐसे 1,000 रुपये 1,200 रुपये मांग रहे, अगर इतना सा छोड़ दोगे तो आपका भला होगा। सोचा चलो 2 की जगह है, कोई बात नहीं बैठ जाओ। 3 अंदर बैठे हुए थे, 2 को बिठा दिया और बिठा दिया। पता नहीं उस महिला ने क्या उनका ऊपर कर दिया कि सभी का मन सुन पड़ गया, कुछ रुमाल या कुछ ऐसा डाला कि उसकी स्मेल से सभी सुन पड़ गए और उनको लूट करके वो कब भाग गए पता ही नहीं चला। घंटे 2 घंटे वो सब गाड़ी में ही रहे, जबकि वो गाड़ी चला रहा था भाई, फिर भी पता नहीं क्यों नींद का असर हुआ। तो बोले कि मैं साइड में खड़ा कर देता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसे करके गाड़ी को साइड में खड़ा किया और उनको भी कब वो बेहोश हो गए पता ही नहीं चला। वो तो अच्छा रहा कि गाड़ी साइड में खड़ी कर दी, नहीं तो चालू गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता था। तो वो बता रहे थे कि ऐसा हमारे साथ हादसा हुआ, तो कैसे भला करें अब लोगों का। तो ये तो है, अब तो आजकल ये भी देखना पड़ेगा कि भला किनका करे किनका नहीं करे, है ना? क्योंकि एक महिला देख करके एक बच्चा देख करके हर कोई मदद करने के लिए दौड़ता है कि भाई चलो पुरुष लोगों की मदद करे ना करे, महिलाओं की बच्चों की मदद हर कोई करता है। और इसमें भी इतना बड़ा धोखा, तो फिर वो बात अलग है। इसलिए भला करिए लेकिन सोच समझ करके, बाकी हाँ हिचकिचाइए नहीं। ठीक है, भला तो करना ही है, चाहे अपने हो चाहे पराए हो। और वो जो खुशी मिलती है, वो जो सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो परख करके, क्योंकि अननोन लोग हैं तो ठीक है, ऐसे लोगों को मत बिठाइए, लेकिन गांव में ही रहते हैं, गांव में एक दूसरे को हम जानते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करिएगा। ठीक है, पर आजकल यही है कि किसकी करे ना किसकी ना करे, बहुत कन्फ्यूजन है। लेकिन समझदारी के साथ, सतर्कता के साथ, ठीक है,
तो बस इस विषय को यही समाप्त करते हैं और आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा होती है आज और इनका नाम चंद्रघंटा क्यों रखा गया है? ये आज का प्रश्न है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 और यहीं पर फिर से एक गीत सुनकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो माँ चंद्रघंटा को नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाता है। मान्यता के अनुसार माँ चंद्रघंटा को दूध, दूध से बनी मिठाइयाँ और खीर का भोग अर्पित किया जाता है। आज मैं आपको आशियाना कार्यक्रम में बताने के लिए एक सरल और स्वादिष्ट रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मखाने की खीर। तो सब तैयार हो सीखने के लिए? तो चलिए हम जरूर सिखाएंगे। उसके पहले आज के प्रश्न को दोहरा देती हूँ। आज का प्रश्न इस प्रकार है, माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा होती है आज, और इनका नाम चंद्रघंटा क्यों रखा गया है? यह आज का प्रश्न है, और आप जवाब दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और आइए अब मखाने की खीर के लिए आशियाना के किचन में पेन और डायरी लेकर के पधारिएगा। और सामग्री आपको लिखा रही हूँ, 1 कप मखाना ले लीजिए, 1 लीटर दूध लेना है, फिर चीनी ले लीजिए 3-4 चम्मच, छोटे चम्मच। और देखिए चीनी आपके ऊपर छोड़े, कोई फीका पसंद करते हैं, कोई मीठा पसंद करते हैं, कोई अति मीठा पसंद करते हैं, तो वो आप पर छोड़ा। फिर इलायची पाउडर लीजिएगा स्वाद के अनुसार, कटे हुए बादाम और पिस्ता ले लीजिए आवश्यकता के अनुसार, और केसर के धागे अगर है घर में मौजूद तो एक आध ले लीजिएगा। ठीक है, तो सामग्री फिर से दोहरा रही हूँ, 1 कप मखाना, 1 लीटर दूध, स्वाद के अनुसार चीनी, स्वाद के अनुसार इलायची पाउडर, कटे हुए बादाम पिस्ता अपने आवश्यकता के अनुसार, और 1-2 धागे केसर के। बनाने का तरीका भी सिखा रही हूँ साथ ही साथ, ध्यान दीजिएगा। 1 कढ़ाई में मखानों को धीमी आंच पर 3-4 मिनट भून लीजिए, ठीक है, और फिर सूख जाए इसको, मतलब ठंडा होने दीजिए भुनने के बाद, और फिर इसको कूट लीजिए, अधकचरा कर दीजिएगा। अब आप एक भारी तले का बर्तन रखिए, ये ध्यान रखिएगा पेंदा अच्छा सा मोटा वाला हो, ऐसी चीज़ों में ही खीर बनाना है, ठीक है। तो भारी पेंदे वाला कोई भी बर्तन ले लीजिए, भगोना है, भगोना ही अच्छा रहेगा। अब इसमें दूध उबालिए, फिर आँच को स्लो कर दीजिए 5 मिनट, मतलब अच्छी तरह उबलने दीजिए। फिर आप साबुत कूटे हुए मखाने दूध में डालिएगा, 10-15 मिनट धीमी आंच पर आप पकाइएगा, जब तक खीर गाढ़ी ना हो जाए, ठीक है। फिर जब आपको लगे कि हाँ अब हमारी खीर बनने को आई है, तो चीनी डाल दीजिए, केसर डाल दीजिएगा, और ड्राई फ्रूट्स भी डाल दीजिएगा। अब आप गैस बंद करके इलायची पाउडर भी बुरका दीजिए। तो ये बन गई मखाने की स्वादिष्ट खीर, जिसकी विधि मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक मोटे पेंदे वाला भगोना लीजिए और उसमें दूध गर्म करिएगा, दूध अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर एक तरफ आप ये मखाने रोस्ट कर लीजिए, रोस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा कूट लीजिए ठंडा हो जाए। फिर अब आप ये दूध गर्म हो गया है, इसमें आप मखाने डाल दीजिएगा और मखाने को पकाइएगा, हिलाते रहिए अच्छी तरह 15-20 मिनट तक आप इसको होने दीजिए। और जब खीर गाढ़ी हो जाए थोड़ी सी, फिर आप चीनी डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिएगा, और केसर भी डाल दीजिएगा। तब तक आपको केसर थोड़े से दूध में अलग से घोल के रखना है, ठीक है, ताकि दूध में मिक्स होने में टाइम नहीं लगेगा। फिर आप खीर में डाल दीजिएगा, और अच्छी तरह जब चीनी मिक्स हो जाए तो आप गैस बंद कर दीजिए, इलायची पाउडर भी बुरका दीजिए। तो ये बन गए स्वादिष्ट मखाने की खीर। अब आप आराम से माता रानी को भोग लगा सकते हैं, अपने इष्ट देव को भोग लगा सकते हैं, और फिर आप पूरे परिवार सहित इसका आनंद ले सकते हैं। तो आइए फिर से आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा होती है आज, और इनका नाम चंद्रघंटा क्यों रखा गया है? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर फिर से अल्प विराम लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बातें, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करिएगा, और नुस्खे भी बहुत ही सुंदर दिए हैं जिनको आप आजमा सकते हैं। भाई कहते हैं ना, पानी आने के पहले ही पाल बांध दो, तो तबीयत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अभी सर्दी जुकाम बुखार के बहुत शिकायतें हो रही है, तो थोड़े से सावधानी कैसे बरतेंगे वो आपने जाना है। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी हुई है, तो रेसिपी में जो मखाने की खीर बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा होती है आज, और इनका नाम चंद्रघंटा क्यों रखा गया है। तो सही जवाब दिया है आज हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने, अलका जी कपासन से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, सुरेश भाई जोटाना से, कंचन भाई मंडाली से। पहले तो हम आप सभी के लिए तालियां बजाना चाहेंगे कि आप सभी जुड़े हैं और आप सभी ने सही जवाब दिया। तो आज का जवाब मैं आपको सुना देती हूँ। आज का जवाब है, देखिए तीसरा दिन है और माता रानी का स्वरूप है चंद्रघंटा। और कारण है, नाम क्यों पड़ा चंद्रघंटा, क्योंकि उनके मस्तक पर घंटे का आकार का अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसके कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। ठीक है, और विषय में भी आप सभी जुड़े हैं, इसके लिए भी ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती है, ये आंखें प्रभु का विशेष उपहार है, इनके द्वारा दूसरों को प्रेम शांति व खुशी का दान करो। अब मैं आपको माता रानी पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक सुंदर से प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, जय माता रानी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार। हे पुराना माँ रिश्ता हमारा जो उसे तुम याद करो, एहसान कर दो माँ बालक तुम्हारी हूँ अब सिर पर हाथ धरो, प्यार का रिश्ता।

सहारा है, भटके कहाँ कहाँ तू आके थाम ले। माँ तेरा एहसान, माँ तेरा एहसान, उषा भूलने न पाएगी, ये बालक भी तर जाएगी। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, ये बालक भी तर जाएगा। दे दे

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी के साथ कितनी सारी बातें जुड़ी है ना दोस्तों, इतनी सारी परिस्थितियां आती हैं और कुछ ऐसी हैं जो याद रहती हैं और कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी बार बार याद करते हैं। अब आज की परिस्थिति में हम प्रेजेंट रह पाए और पुरानी को टाटा बाय बाय कह पाए, जिंदगी को खुशनुमा तरीके से प्यार से जी पाए, उसकी एक पहल, उसकी एक कोशिश है हमारा ये कार्यक्रम। और आज हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट ग्लोबल अस्पताल से। हमारे साथ जुड़ी हैं कल्पना जी, जो कि हमारी गाइड और दोस्त है ही, आप एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं और साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने रेडियो के श्रोताओं से मिलने का, बातें करने का मौका मिलता है, जिससे कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैं हमेशा से ही इस बात के लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ।
0: कल्पना जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक बहुत इंसाइटफुल, होते हुए भी बहुत सरल कॉन्वर्सेशन होता है आपके साथ, जो हम समझ भी पाते हैं, जीवन में अपनाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगी क्योंकि हर चीज कई बार नहीं कर पाते, लेकिन ये कोशिश जारी रहेगी आपके साथ। आज परिस्थितियों के बारे में, जैसे मैंने कहा, जब भी हम किसी की जीवनी पढ़ते हैं या बायोग्राफी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसमें लिखा होता है ये परिस्थिति आई, ऐसे क्रॉस किया, ये किया। एक परिस्थिति के बारे में क्रॉस करके वो व्यक्ति बहुत बड़े बने होते हैं। हमारे जीवन में भी परिस्थितियां आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, और हम बात कर रहे थे सिचुएशंस के साथ कैसे अवेयरनेस हमारी रहे। आपने हमें लास्ट टाइम बताया था ऑब्जर्व करना पहला स्टेप है, ऑब्जर्व करना। उसके लिए आपने कहा था कुछ और हम चीजें जानेंगे, कुछ एक्टिविटीज या कुछ जो हम बेहतर कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: तो अगर वहीं से शुरुआत की जाए।
1: जी बिल्कुल, आपने अच्छा याद दिलाया। हमने एक सीक्वेंस बनाया था कि परिस्थिति को कैसे एक्शन लेने से पहले एनालाइज करना है। तो हमने कहा था ऑब्जर्वेशन, देन अंडरस्टैंडिंग, देन एंड सिचुएशन की अवेयरनेस एंड एक्शन। ये हमारा सीक्वेंस था। इसमें एक बहुत सुंदर जो टेक्निक है जिस उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं SOS टेक्निक। आपने SOS शब्द तो सुना होगा। डॉक्टर्स जब कभी बीमार को मेडिसिन देते हैं तो कहते हैं भाई आपको जरूरत हो तब इस मेडिसिन को लेना, उसको वो SOS कहते हैं। और भी कई भाषाओं में कई तरीके से SOS का इस्तेमाल किया जाता है
0: जी।
1: यहाँ सिचुएशन अवेयरनेस में SOS बहुत सुंदर रीति से उपयोग में लाया जा सकता है। S stands for step back। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो एक कदम पीछे होकर उस परिस्थिति का थोड़ा सा डिटैच होकर जायजा लेना। तो पहला है step back and then observe। अब आपका जो एंगल है परिस्थिति को देखने का वो वाइड एंगल हो जाता है। जब आप परिस्थिति के बिल्कुल क्लोज होते हैं मेंटली, तो वो एंगल एक शॉर्ट एंगल हो जाता है जिसमें कई सारी चीजें ऑब्जर्व होना रह जाती है। When you step back mentally, उसके बाद आपको थोड़ा वाइड एंगल मिलता है। तो स्टेप बैक, ऑब्जर्व एंड देन स्टीयर। स्टीयरिंग अर्थात स्टीयरिंग को चलाना शुरू करें या एक्शन ले,
0: मतलब जो गाड़ी जैसे चलाते हैं हाथ रख के स्टीयरिंग पे कुछ
1: गाड़ी चलाते समय भी हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठने के बाद मिरर चेक करते हैं, तीनों मिरर चेक करते हैं, अपनी सीट को एडजस्ट करते हैं, एंड देन ब्रेक्स, अपने पैर जो सही जगह पर है कि नहीं उसको देखते हैं, एंड देन हम आराम से चाबी घुमा के गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अपना गियर चेंज करते हैं, एंड देन हैंड ब्रेक छोड़ देते हैं और फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है। उसी तरह से SOS टेक्निक बहुत पावरफुल टेक्निक है। एक्शन करने से पहले, रिएक्ट करने से पहले, अगर स्टेप बैक, ऑब्जर्व एंड देन स्टीयर, ये छोटा सा प्रोसेस अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत सारी बातों से हम बच जाते हैं। बहुत सारी बातों से बच जाते हैं।
0: मुझे लग रहा है कि जैसे किताब बहुत आंख के पास हो तो वो सच में पढ़ने में नहीं आती थोड़ा सा तो दूर रखना पड़ता है पढ़ने के लिए। वैसी शायद परिस्थिति को पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है। लेकिन इसमें मेरा एक सवाल है, जैसे जब हम उस परिस्थिति में होते हैं, कई बार ये भी कहा जाता है अगर कुछ चल रहा है मेरे सामने और मैं उसे महसूस नहीं कर रही हूँ, मान लीजिए बहुत सारे चेंजेस आए हैं कोई भी लेवल पे, तो जब ये फील हुआ है कि गलत हो रहा है और मुझे फील हुआ है गलत हो रहा है, तभी वो चेंज करने की जो एक अंदर से मोटिवेशन आता है, हिम्मत आती है, तभी आया है वो। तो अगर मुझे वो अप क्लोज इतने मेरे पास नहीं है, मैं थोड़ा स्टेप बैक कर ले रही हूँ, तो उस परिस्थिति को मैं दूर से देख रही हूँ, महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मेरे अंदर वो चेंज की भावना कैसे आएगी, वो बदलाव का जज्बा कैसे आएगा?
1: बिल्कुल आएगा। जो ये छोटा सा पॉज हम लेते हैं ना, उस पॉज के दौरान कई सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर आती हैं। उस पॉज में हम वो लेने के लिए कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन। हाँ, तो वो जो SOS वाला पॉज है ना, वो 10 सेकंड का भी हो सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं हर रोज, तो वो 10 सेकंड का भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पति घर पे आया नौकरी करके, वाइफ ने उसको कुछ न कुछ सारे दिन की शिकायतें करना शुरू कर दी। उसने बोला, आप 1 मिनट फुर्सत नहीं लेने देते हो, और मैं घर में आया हूँ थक के, मेरी क्या प्रॉब्लम है, उसको पूछे बिना आप में अपनी बातें सुना रहे हो, तो वो चिढ़ जाते हैं।
0: ये होता है।
1: हाँ, तो चिड़चिड़ाहट में दोनों

0: ही एक दूसरे पर बरस पड़ते हैं, सिचुएशन बिगड़ जाती है।
1: जी
0: तो जैसे हम घर में घुसते हैं उस समय पहले चप्पल हम बाहर छोड़ के आते हैं ना।
1: जी
0: हाँ, तो अगर घर में घुसने वाला व्यक्ति चप्पल के साथ अपने सारे टेंशन प्रॉब्लम्स जो बैगेज लेकर आ रहा है उसको भी बाहर छोड़ दे और मुस्कुराते हुए अंदर आए, और जो रिसीव करने वाला व्यक्ति है, वाइफ है, वो भी थोड़ी देर के लिए उनको रिलैक्स होने दे, पानी पीकर थोड़ा सा बैठने दे और आराम से उनको पास बैठकर पूछे कि कैसे रहा आपका दिन, सब कुछ ठीक था ना। तो ये कन्वर्सेशन की शुरुआत जब इतना पीसफुली और पॉजिटिवली और खुशनुमा होती है तो आगे का कन्वर्सेशन फिर वो शिकायतों भरा क्यों ना हो, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली दोनों ही लोग प्रिपेयर हो पाते हैं। तो वो SOS टेक्निक बहुत काम करती है कि भाई थोड़ा चुप शांत रहो, थोड़ा स्टेप बैक करो, मतलब टाइम दो सामने वाले व्यक्ति को और खुद भी टाइम लो एक्ट करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए।
1: कितना टाइम? लेकिन
0: मैंने कहा ना 10 सेकंड भी हो सकता है।
1: अच्छा, ओके।
0: या अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो वो पॉज जो है वो 10 सेकंड का भी हो सकता है।
1: इतना छोटा भी हो सकता है?
0: हाँ जी, हाँ।
1: हमें लगा टाइम लेना है, मतलब पहले 1 दिन 2 दिन ऐसे सोच रहे हैं फिर बाद में डिसीजन दे रहे हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। वो पॉज अंडरस्टैंडिंग के लिए है पर छोटा भी हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: ओके, इंटरेस्टिंग। तो पहले स्टेप बैक करना है, उस परिस्थिति से थोड़ा बाहर निकलना है, पीछे हटना है, फिर उसको ऑब्जर्व करना है, पॉज लेना है और फिर एक्शन देना है, स्टीयर करना है।
0: बिल्कुल।
1: ओके, इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से हम परिस्थिति को समझ सकते हैं, अवेयरनेस हमारी हो सकती है, एक्चुअल जैसी परिस्थिति हमें वो वैसी ही समझ में आएगी फिर।
0: बिल्कुल। सो आज की एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगी।
1: जी,
0: अमेरिका से एक बहन आई है मेडिटेशन सीखने के लिए। तो आते समय, उसने वहां से निकलते समय सोचा कि मैं माउंट आबू में जाऊंगी और मुझे रहने के लिए अच्छा स्थान मिलेगा, सब कुछ सही होगा, ऐसा सोचकर वो यहाँ आई। प्लान ना है मेडिटेशन तो बहुत महंगे हैं और वो महंगा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने डिसीजन तो लिया बट खाने पीने के बाद उसको वो स्थान छोड़ देना है। तो 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिन बाद उस तो वो दिन भर इसी टेंशन में बिताती है कि 5 दिन बाद मेरा क्या होगा,
1: क्या होगा।
0: सो 5 दिन बाद की टेंशन के लिए जो मेरे 5 दिन मेरे हाथ में है उनको भी मैं बिगाड़ रही हूँ, है ना, मैं एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो 5 दिन तो कम से कम मेरे हाथ
1: टेंशन
0: में
1: है बहुत।
0: और जब हम थोड़ा मेंटली थोड़ा सा प्लान करके इतनी बड़ी उड़ान भरने से पहले था सर्च किया होता या यहाँ से किसी से बात करके आप आए होते कि अगर मैं यहाँ आऊं तो मुझे कहाँ रहना है, क्या करना है, अचानक निकल पड़े और अब अगर आपको डिफिकल्टीज आ रही है रहने खाने पीने में तो तब आप सोच रहे हो तो वो कितना क्या कहेंगे इसको, है ना?
1: मतलब प्लानिंग ठीक नहीं हुई
0: नहीं है
1: कहीं ना कहीं। तो अब लेकिन अगर मेरे पास अब 5 दिन है तो अभी मुझे 5 दिन पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी अगले 5 दिन की।
0: बिल्कुल, पर टेंशन लेके नहीं,
1: पर टेंशन लेके हाँ, ये प्लानिंग हो रही थी या टेंशन हो रहा था दोनों मिक्स हो गया, एक ही लगने लगा।
0: राइट। सो हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स है ना, पॉजिटिविटी है, वो हमें बहुत जल्दी सोल्यूशन तक ले जाती है। जब हम पॉजिटिविटी के ट्रैक से नीचे उतरते हैं, नेगेटिविटी के ट्रैक में जाते हैं, तो जो होने वाला है सोल्यूशन, जो मिलने वाला है, वो भी नहीं मिल पाता है।
1: राइट, ओके। तो नकारात्मकता मतलब हमें प्लानिंग्स जो हम चाहते हैं करना उससे भी दूरी ले जाती है, हो नहीं पाती है,
0: नहीं हो पाता है।
1: ओके, तो ऐसे में क्या करना है? मान लीजिए जैसा आपने कहा कि जो भी आपने बताया था स्टेप बैक करें, तो अब मैं क्या स्टेप बैक करूं? अगर मुझे 5 दिन बाद पता है कि एक परिस्थिति आने वाली है, ये तो पहले से ही पता चल गया, आई नहीं है, आई है तो मुझे स्टेप बैक करके उसको देखना है। अब जब मुझे पता चला परिस्थिति आने ही वाली है 5 दिन, तो अभी क्या करूं?
0: पहला थॉट है जो ऑप्टिमिज्म को ले आता है। ऑप्टिमिस्टिक होना मतलब कि आशावादी रखना, है ना, कि आशावाद से, मतलब आशा से अपने मन को पहले शांत करना। पीसफुल माइंड से आपको सॉल्यूशन क्लियरली दिखाई देते हैं। जब आप पीसफुल हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं और आशावादी रहते हैं, तो कुदरत, प्रकृति, यूनिवर्स और परमात्मा आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो आपको

0: जो चाहिए जैसा चाहिए वो पाने के लिए शुरुआत पॉजिटिविटी और पीस से करनी होगी।
1: ओके, तो पहला थॉट पॉजिटिव,
0: राइट।
1: इसमें पॉजिटिव थॉट क्या होगा, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है तो
0: मैंने कहा ना आशावादी रहना कि हो जाएगा,
1: मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो पहले पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है कि हो जाएगा, जो भी परिस्थिति आने वाली है सोल्यूशन हो जाएगा, और उसके बाद फिर प्लानिंग करना।
0: हाँ बिल्कुल, जैसे कि अभी वो मेडिटेशन सीखने के लिए आई है हमारे पास, तो 2 घंटा जब वो मेरे पास मेडिटेशन सीखने के लिए आई है तो उसमें से आधा है कि क्या होगा, कैसे होगा। ये सोचना बंद बाद आपको सोचना है उसके बारे में, है ना। सो ये जो स्टॉप बटन है ना हमारे माइंड में,
1: ये है एक्चुअली,
0: है
1: दिखता नहीं है, मिलता नहीं है, इतनी आसानी से ये बटन कहाँ चला गया है पता नहीं। ओके, मतलब है स्टॉप बटन,
0: पॉज बटन, स्टॉप बटन, जस्ट पीस, शांति दे हो और मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस समय वही करो। फिर अपने माइंड को हमें समझाना है कि भाई ये 2 घंटे के बाद मुझे ना आगे का फ्यूचर प्लानिंग के लिए टाइम, यू मिस आउट फ्रॉम द मोमेंट, आप उस ना आप इधर के रहते ना उधर के।
1: मतलब ना सोल्यूशन निकल रहा है और ना अभी का टाइम यूज हो रहा है, ना आगे के लिए बेनिफिट ना अभी के लिए बेनिफिट।
0: बिल्कुल।
1: ओके, तो मतलब हम इसको भी प्लान कर सकते हैं, थॉट्स को भी प्लान कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। तो जैसे हम क्योंकि परिस्थिति की अवेयरनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और आपने बताया हा? किस तरह से पहले ऑप्टिमिस्टिक रहना है, सकारात्मक रहना है, हो जाएगा निश्चय रखना है, फिर उसके बाद प्लानिंग करनी है, वो भी हर वक्त दिन भर प्लानिंग नहीं करते रहना है, अभी को भी यूज करना है और प्लानिंग के लिए भी टाइम डिसाइड करना है।
0: बिल्कुल।
1: ओके, तो यहाँ पे एक और सवाल आता है कि जब परिस्थिति ऐसी है जिसमें से हम थोड़ा स्टेप बैक कर सकते हैं तब तो ठीक है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है जिसमें और लोग इन्वॉल्व हैं बहुत सारे, सिर्फ मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है, मेरे परिवार पे असर हो रहा है, मेरे दोस्तों पे असर हो रहा है, तो उस समय वो लोग सब पेन में है, मैं देख रही हूँ वो परेशान है, तो मुझे तो उस वक्त लगता है कि मुझे उसी वक्त कुछ करना है, वो स्टेप बैक कैसे ऑब्जर्व कैसे करूं व्हेन हर कोई उस दर्द में है।
0: बिल्कुल, देखिए ये बहुत जरूरी है कि हर बार सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा रुक कर ये सोचना कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है, रिएक्ट मैं नहीं कहूंगी बट मुझे एक्ट कैसे करना है।
1: ओके,
0: सो जब हम ये सोचते हैं तो हमें वो तरीका मिल जाता है कि कैसे पॉजिटिवली पीसफुली हम सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो इसलिए हमें थोड़ा सा रुकना बहुत जरूरी है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल,
1: लेकिन उस टाइम ऑब्जर्वेशन बहुत मुश्किल लगती है, मतलब हर कोई पेन में है, मैं देख रही हूँ रो रहे हैं मेरे सामने, मेरी माँ रो रही है या फिर बच्चे रो रहे हैं या मेरे दोस्त रो रहे हैं, तो मैं उस समय स्टेप बैक नहीं कर पा रही हूँ, ऑब्जर्व नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उनको रोता हुआ छोड़ के मैं पीछे होके ऑब्जर्व।
0: नहीं, वो रॉन्ग, फिजिकल स्टेप बैक आप फिजिकल समझ रहे हैं, फिजिकल नहीं, फिजिकली आई एम देयर ओनली इन द सिचुएशन, मैं मेंटली स्टेप बैक की बात कर रही हूँ।
1: कैसे उस वक्त, कैसे कोई रो रहा है मेरे सामने तो उस समय मेंटली मैं क्या करूं?
0: बिल्कुल, आपको अपने आप में आ जाना है, खुद के साथ जुड़ जाना है और मन से थोड़ा सा उस सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लेना है और दूर से देखना है, मन में दूर से मन में डिटैचमेंट से देखना है कि आप सब लोग रो रहे हैं, अगर मैं भी उनके रोने में रोकर शामिल हो जाऊं तो वो कोई फायदा नहीं होगा उसका। अगर सब लोग रो रहे हैं तो मुझे रोना है कि नहीं रोना है, ये मुझे तय करना है कि नहीं मुझे रोना नहीं है, मुझे सबको शांत करना है, ये मेरा काम है। लेकिन अगर मैं इमीडिएट एक्शन लेती हूँ, अरे सब लोग रो रहे हैं और मुझे भी रोना आ गया, मैं भी उनके साथ रोने बैठ गई, तो फिर सिचुएशन

0: फिर दूसरा मैं सोचती हूँ, बहुत अपने आप को बहुत बड़ी समझती है आजकल, इसको बहुत अहंकार आ गया है, ईगो आ गया है, ये है, मैं भी ईगो में आ जाती हूँ। सो या तो मैं अपने आप को दोषी मानती हूँ, गिल्ट में चली जाती हूँ,
1: या तो ईगो,
0: ईगो आ जाता है, या मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये क्या बात है, ये क्या इसकी पर्सनालिटी, दूरी बना लेती हूँ, है ना। अच्छा अब मुझे क्या करना है, ये है स्टॉप। चलो फ्रेंड ने मुझे मैसेज भेजा, मुझे तुमसे बात नहीं कर रही है, तो जरूर उसका कुछ कारण होगा, लेकिन इस समय बात करके कोई फायदा नहीं है। तो कहानी बनाने की बजाय सिचुएशन को समझ लेना है। ओके, वो मुझसे नाराज है, क्या मैं क्या वो किसी प्रॉब्लम में है, मुझे क्या करना होगा कि मेरे की हुआ क्या,
1: मिशन नहीं है, एक मैसेज आया है बस।
0: हाँ, क्या कर सकती हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा, मैं भी बोल सकती हूँ, मैं भी लिख सकती हूँ, हाँ मुझे भी नहीं करनी बात, जा तुम अपने आप को समझती क्या हो, ये रिएक्शन हो गया, एक्शन का रिएक्शन। बट अगर मैं सिचुएशन अवेयरनेस के साथ उससे बात करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ठीक है, अब तुम्हारा मूड इस समय ठीक नहीं है, इसलिए तुम जब शांत हो ना, तब मुझे बताना कि क्या हुआ है, हम बाद में बात कर
1: बात करेंगे।
0: जब तुम ठीक महसूस करो, जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे बता सकती हो, तो मैं जरूर सुनूंगी कि क्या बात है, है ना। तो आपने पॉज दे दिया, आपने कुछ कहानी नहीं बनाई मन में, आपने उस सिचुएशन को पॉज दे दिया, होल्ड पर रखा, और उनको मौका दिया कि वो जो लिखा है उन्होंने, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, उसका एक्सप्लेनेशन शांत होने के बाद आराम से दे
1: करने का खुद तो लिया है, सामने वाले इनका दोनों
0: एक साथ दबा दिए,
1: दोनों एक साथ। ये अच्छा है, मतलब हमें लिए भी हेल्पफुल भी, ताकि वो भी परिस्थिति को एक डील कर पाए।
0: जी
1: वेरी इंटरेस्टिंग एक्ट में, और ये भी समझ में हो सकता है दोनों एक्शंस का, चल सकता है सिर्फ ये कदम उठाने से। एक बड़ा अंतर कोशिश कर करें, और क्या हम कुछ कोई ऐसी मेडिटेशन है दीदी जिनका हम अभ्यास कर सकते हैं, ताकि वो परिस्थिति आने पे हमें याद रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर अभ्यास है। देखिए जब भी परिस्थिति आती है, तब हमारी एंजाइटी बढ़ती है, और एंजाइटी को कंट्रोल करने का सबसे सुंदर साधन प्रकृति ने हमें दिया है, वो है हमारी ब्रीदिंग। सो हम अपने ब्रीदिंग पर फोकस अगर करते हैं, दिन में कई बार अपने श्वासों को आते जाते हुए देखते हैं, तो हमारा मन अपने आप शांति का महसूस करता है। तो इसीलिए जब भी हम श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि 1-2 मिनट के लिए हमें मेडिटेशन करना है, तो उसकी शुरुआत हमेशा लंबी और गहरी सांसों से होती है। तो आइए चले हम शुरुआत करें अपने आप को शांति की ओर ले जाते हुए गहरी और लंबी सांसें लें। महसूस करें अपने सांस को भीतर जाते हुए, बाहर आते हुए, हर सांस के साथ अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। अपने मस्तक के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं, वहां जो आत्मशक्ति है, उसी आत्मशक्ति में मेरा मन है, और अब मैं अपने मन को ट्रेन कर रही हूं, जब भी कोई परिस्थिति आएगी, मैं थोड़ी देर के लिए रुकती हूं, गहरी

0: समझने की कोशिश करती हूँ और फिर सजगता के साथ उस परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया याद करें, हर परिस्थिति में शांत रहकर शांत मन रूप से परिस्थिति को समझने की शक्ति प्रदान करता है। और लंबी सांस ले, क्रिया को रिपीट, ऑब्जर्व एंड रिस्पॉन्ड, रुके दे, समझे क्रिया दे।
1: थैंक यू सो मच कल्पना जी। आई थिंक ये जो आपने अभी अभ्यास कराया, ये भी हम करते रहें। जो बात समझ में आई है कि परिस्थिति चाहे कितनी बड़ी हो छोटी हो, लेकिन एक स्टेप बैक करके जब समझते हैं और पॉज करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। तो उस अंतर को लाने के लिए हम कोशिश करेंगे अभ्यास करने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस एपिसोड में।
0: धन्यवाद आरुषि जी, श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी काफी पेशेंटली हम ये सुनते हो, समझते हो,
1: तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जिंदगी के कई राज खुलने वाले हैं। और को जिंदगी रेडियो मधुमेह।

0: फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
1: अभी बजे हैं दोपहर के 12। एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

0: आइए नवरात्रि में शक्ति के नौ रूपों का आवाहन करें। माँ चंद्रघंटा श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। आइए हम भी सभी को सुख बांटें और माँ का आशीर्वाद सहज प्राप्त करें। आज नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को मंगल कामनाएं।
1: कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम ऐसी नारी शक्ति पर आधारित है जिनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव या कुछ अलग उनके जीवन की कोई कहानी होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि नारी शक्ति के साथ जो घर में रह रही है या बाहर जो भी करती है तो उनके साथ इस तरह की परिस्थितियां भी आ सकती है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आप नारी शक्ति की शक्ति को भी पहचान सकते हैं, उसके स्ट्रगल को भी आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी ही नारी शक्ति से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है मधु राठौड़। आप गुजरात जूनागढ़ जिला बांटवा गांव के रहने वाले हैं। आपकी उम्र 52 वर्ष है। आपने 12th तक पढ़ाई की हुई है। सिलाई कढ़ाई बुनाई का आपको बहुत ही शौक है, कुकिंग का और विशेष करके सफाई का बहुत ही शौक है और अध्यात्म में गहरी रुचि रखती है। तो ऐसी नारी शक्ति से आपसे मिलवाने जा रहे हैं। मधु जी नमस्कार।
2: धन्यवाद जी,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मधुबन में।
2: धन्यवाद
1: मधु जी। चलिए, आपकी उम्र 52 है, मतलब पिचपन के आसपास पहुंच चुकी है। और कहते हैं ना, पिचपन में जब बचपन की बातें करते तो बड़ा अच्छा लगता है, क्या कहेंगे?
2: बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी
1: जी,
2: तब से मुझे कुछ ऐसे लगा, बचपन से तो वैसे माँ बाप, हम 5, 3 बहनें हैं, 2 भाई है, छोटा सा परिवार है और माता पिता है, दादी थी। फिर दादी तो अचानक से हार्ट अटैक आया और चली गई। उसके बाद सत्संग चला था घर में, जैसे कि तो सत्यनारायण की कथा हर 11 को होती थी। तो मम्मी सब कहती थी कि जाओ आप ना सबको, जो सगे संबंधी है उसको कहना कि हमारे यहाँ सत्संग है तो आ जाना। फिर सबको वो फूल लाना, प्रसाद लाना, वो सब मम्मी मुझे देती थी कि आप वो करो। फिर तो सब लाते थे, फिर ना बरसात आई, ये सब इकट्ठा करते हैं पैसा और उसका कुछ बड़ा करना था। तो मैं तो छोटी थी, तो एकदम बरसात आई तो सारा पैसा ऐसे पास रहता है, 25 पैसे का, 30 पैसे का
1: जी,
2: हाँ, तो वो सब इकट्ठा किया हुआ था और घर की जो कांधी कहते मतलब माड़िया कहते उसमें लगा था। तो बरसात आने की वजह से जोरदार वो बिक गया। फिर सब को सुखाया बहनों ने, मेरी 2 बहनें और भाभी है, सब सुखाया। फिर तो मम्मी ने और सत्संग की जो मंडली थी ना, बड़ी पहली बार मेरी मम्मी ने ही वो सत्संग चालू किया। तो कहते हैं कि अब ना कुछ उसका नया करे, हमारे यहाँ जो राजपूत के मंडली होती है ना बहनों की, तो उसमें सत्संग में से जो इतने पैसे इकट्ठे हुए थे तो उसका कुछ अच्छा सा करे जो सबको काम भी आए उसमें।
1: चलिए मधु जी, सत्संग की बातें हम जरूर जानेंगे, पहले हम बचपन की बात जानना चाहेंगे। आप जैसे बता रहे थे कि 5 भाई बहनों, ठीक है, अच्छा, आप 3 बहनें और 2 भाई हो, आपका नंबर कौन सा आता है?
2: मेरा लास्ट का नंबर 5वां।
1: तो आप तो सबके चहेते रहे होंगे।
2: बहुत बहुत बहुत चहेते रहे।
1: आपके पिताजी क्या काम करते थे उस समय?
2: वो किसान थे, किसान। पहले तो मैं जब से आई ना तब से तो हमने बहुत खेती देखी। इससे पहले कहते थे कि हमारे 7 थे ना घर में, जैसे 5 बच्चे और 2 माँ बाप और दादी, उसमें बहुत एकदम करकसर से जीवन था
1: जी जी, मुश्किल से हाँ, चल पाते थे गृहस्थी की।
2: हाँ, नहीं, पापा का यही एक सपना था कि मैं बड़ी खेती लूँ। इसके लिए उसने करकसर से हम सबको ऐसे सिखाया कि करकसर से रहोगे, लोभ से नहीं, करकसर से।
1: जी जी।
2: तो उसने 100 बीघा, मतलब अभी उसका पैसा होता है वो 15 करोड़ होता है, तभी कभी कुछ नहीं था। फिर भी पापा ने, हम काका कहते थे, हम साथ में रहते थे,
1: जॉइंट परिवार था।
2: हाँ, जॉइंट परिवार था, मतलब मेरे जो बड़े पापा के बड़े भाई वो साथ में रहते थे, उसका 6 बेटा
1: जी,
2: हाँ, और साथ में रहते थे। तो साथ में रहने की वजह से जो बड़े बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं
1: जी, काका बोलते हैं, और बड़े पापा के बेटे,
2: हाँ पापा के बड़े भाई, उसको हम अदा बोलते हैं गुजराती में
1: जी।
2: तो वो अदा का सब बच्चे इकट्ठे रहते, तो वो मेरे पापा को काका कहते थे, तो हम भी काका ही कहते हैं, लास्ट तक काका किया। तो काका का यही सपना था और मुझे बहुत पढ़ाया उसने, सब हमारे भाई बहन है ना उसमें से मुझे ज्यादा पढ़ाया।
1: अच्छा, बाकी आपसे सब कम पढ़े लिखे हैं?
2: सब कम पढ़े लिखे,
1: भाई भी?
2: भाई भी।
1: तो सब क्या करते, खेती का काम?
2: हाँ सब खेती का ही काम करते हैं।
1: तो आपके सामने 100 बीघा जमीन का जो आपके पिताजी का
2: वो बनाया उसने अपने,
1: संकल्प था तो लिया?
2: हाँ वो पूरा किया, पहले ऐसा नहीं था, फिर पूरा किया, फिर उसको तो इतना उमंग आया। उसके बाद सब, पहले भाई की शादी हुई, बड़े भाई की, उसके बाद तीन तीन की साथ में हुई और मेरी अकेली हुई।
1: अच्छा, आपकी शादी की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन बात कर रहे थे आपके बचपन की, कि इस तरह आपके पिताजी खेती का काम करते थे, किसान थे, आपके माताजी भी कुछ करते थे?
2: हाँ घर का काम करती थी और खेत में पिताजी को बहुत साथ देती थी, सारा पूरा काम करके अपना बाता बना करके, और मुझे कहती थी कि आप ये घर संभालो और पढ़ाई करने के बाद हम आएंगे तो आपको ये खिचड़ी बना के रखनी है, ये चूल्हा, यह सब कुछ अच्छे से रखना है, ताकि आए तो सिर्फ हमें सब्जी और पूरा घर का ख्याल रखना है, बाहर सब आपको करना है, और फिर आप ये सब पढ़ाई करने के बाद फिर पेड़ाई कर लेना और सफाई कर लेना। तो मम्मी भाता बनाकर, मतलब रसोई बनाकर जाती थी
1: जी
2: हाँ, और साथ में पिताजी को बहुत बहुत साथ देती थी।
1: तो आपके भाई बहन भी जाते थे खेत में?
2: सब जाते थे, सब के सब।
1: आप अकेले घर पर रहते?
2: हाँ मैं अकेली घर पर रहती, मैं डरती नहीं थी। मेरे से जो तीसरे नंबर की बहन है ना, जैसे हम तीन बहन हैं, तो तीसरे नंबर की बहन के

0: वो अकेली नहीं रहती थी, वो डरती थी, वो कहती थी मैं अकेली नहीं रहूंगी। मम्मी बहुत कहती थी कि आप रहो इसके साथ। फिर मैं कह देती हूँ कोई बात नहीं मम्मी, आप जाओ उसको भी ले जाओ, मैं अकेली रहूंगी। और मैं बहुत बड़ा था तो मैं उसमें अकेली रहती थी और सब काम कर लिया करती, और मम्मी मुझे ऐसी शाबाशी देती, देखो तो आपसे छोटी है तो भी वो अकेली रहती है और सारा डरती भी नहीं है। कोई आते हैं तो ऊपर से देख लेती हूँ कि कौन आया है, अगर कोई हमारा संबंधी आते हैं तो मैं खिड़की खोलती हूँ, अगर कोई और है तो खिड़की भी नहीं खोलती। ऐसे में बहुत तैयार थी तो मम्मी और पापा दोनों की चाहती थी।
1: जी
0: पापा पापा तो हमें साथ में ही सुलाते थे, वो तो मेरी सगड़ी है जैसे बोलते। मैं इतनी गर्म रहती हूँ ना तो वो खेत में से आते और पापा को मैं पानी देती हूँ, कुछ खाने को देती हूँ, तो पापा की बहुत चाहती थी। छोटी थी इसलिए बहुत बचपन प्यार से ही गुजरा, और सबका भाई बहनों का अभी तक प्यार मिल रहा है।
1: जी जी
0: हाँ बहुत प्यार मिल रहा है। और
1: जी
0: अभी वो पे दुलार देते तो कहते हैं कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो, ऐसे कहते हैं अभी भी।
1: जी जी वो कहते हैं ना कि नमे सौने गमे, गुजराती कहावत है। तो
0: हाँ
1: आपके अंदर नम्रता थी तो आप सभी के दिलों पर राज करते थे।
0: अभी भी कर रही हूँ। और
1: बचपन से जो स्वभाव संस्कार जो हमारे अंदर पड़ जाते हैं वो लाइफ टाइम चलता है।
0: हाँ वो आगे ज्यादा हो जाता है बढ़कर। तो बचपन ऐसे ही गुजर गया, पता ही नहीं चला कि देखो सबने इतना साथ दिया। और मैं मेरा उत्साह और उमंग बहुत बढ़ाते थे भाई बहन है,
1: जी
0: जो मेरे से चारों भाई बहन है ना, बहुत उत्साह उमंग बढ़ाते थे। जैसे कि खेतों में बुनाई होती है, कटाई होती है, वो हम एक दो मजदूर रख करके हम स्वयं करते थे।
1: अच्छा
0: मजदूर चार आते थे, वो चार बहनें आती थी, दो बहनें अपनी और दो भाई उसके, वो चार ही आते थे और हम सब मिल करके ये सारा खेत संभालते थे।
1: सौ
0: तो
1: सौ बीघा जमीन में।
0: हाँ, सब
1: अच्छा
0: मजदूर नहीं, ना कोई किराए का रखा रात में, कोई नहीं, सब अकेले ऐसे ही करते थे। तो हमने बचपन से यही सीखा कि मेहनत करो और मेहनत से आगे बढ़े। और पापा का तो बहुत था कि ये ले वो ले, बहुत था को ना, मेहनत में बहुत विश्वास था।
1: जी चलिए मधु जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन समय हो चला है यहाँ पर एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। मधु जी के अनुभव बहुत ही अच्छे हैं जो हम फिर से सुनेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8।

0: हेलो बहू, जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टर नी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टर नी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: ना। अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, हर रिश्ते में अपनापन जगाए, नन्हे कदमों से सपने बुनती, घर को स्वर्ग सा बना जाए, घर को स्वर्ग सा बना जाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ऐसी ही बेटी जुड़ी हुई है, ऐसी ही मातृशक्ति जुड़ी हुई है, मधु राठौड़, जिनके अनुभव हमने सुने हैं। इसी कड़ी में और भी आगे बढ़ेंगे। मधु जी पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
5: जी थैंक यू जी।
4: तो मधु जी आपके बचपन की बातें चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा स्कूल की बातें बताएंगे कि आपके टीचर्स के साथ, सखियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
5: हाँ मेरी सखियाँ भी बहुत बढ़िया थी। एक सखी तो बहुत अच्छी थी, मैंने उसे अपना माना था, उसका वो अलग था। फिर मैंने पहले आठवीं पढ़ी तो मम्मी होली का त्यौहार था, जैसे अभी होली आ रही है, तो होली का त्यौहार था तो मम्मी ने कहा कि अब मैं ना सारा रसोई या बाता बोलते हैं ना, वो बाता कर रही हूँ, तो आप ना आज जाओ शिव के मंदिर पर। और वहाँ से गुजरात में ये होता है कि बड़ा शिवरात्रि का महत्व होता है, शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं और भांग का प्रसाद मिलता है, और बड़ी उत्साह उमंग से शिवरात्रि पूरा दिन रहते हैं। और शिवरात्रि के दिन खाना कुछ नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा फ्रूट लेना है, दूध लेना है और वो प्रसाद लेना जरूरी है। तो प्रसाद नहीं, माताजी लाई थी तो उसने कहा आप जाओ तो मुझे मंदिर भेजा। तभी एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी मिली और मैं आठवीं कक्षा में वो प्रदर्शनी देखी। तो वो प्रदर्शनी पहले तो कुछ समझ में नहीं आई, बाद में इतनी मन को भा गई कि बार बार वही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगे। इसमें इतनी लगती थी कि मैं ही वही देवी हूँ, और मुझे इतना अच्छा अनुभव होने लगा कि मैं बस इसी मार्ग पर चलूँ। घर पर आई, प्रदर्शनी देखी, तो उस प्रदर्शनी में सुना कि मैं कौन हूँ, वही बहुत अच्छा लगा। फिर पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, और माताजी तो चली गई खेत में और मैं घर पे, तब स्कूल पे रजा होती है तो घर पे हूँ, घर पे थी। उसके बाद आध्यात्मिक में मेरा जुड़ाव बहुत रहा, मैं बहुत अच्छा लगता था कि मैं आध्यात्मिक में कैसे आगे चलूँ। फिर हर 11 के दिन और पूनम के दिन मेरी माताजी कथा करती है, सत्संग सब बहनें आती है, सत्संग की 50 बहनें होती है, तो माताजी सत्संग में होने के कारण मैं इतनी आध्यात्मिक रही पहले से। भक्ति भाव उसमें प्रसाद होता है, महाप्रसाद की बहुत महिमा होती है सत्संग में, सत्यनारायण की कथा वो सत्संग, फिर पाठ पूरा हो जाता है, 5 अध्याय होता है, पूरा होने के बाद प्रसाद सबको बांटते।
4: अच्छा तो आप अध्यात्म में चलने लगे, तो फिर घर में किसी ने विरोध तो नहीं किया?
5: जी छोटी थी तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, पर ऐसे कहा कि अच्छा है, मम्मी अध्यात्म से जुड़ी थी तो अध्यात्म में बहुत रुचि थी मेरी पहले से ही।
4: तो भक्ति के संस्कार आपको बचपन से?
5: बचपन से
4: जी। और आठवीं से आपको थोड़ा अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया?
5: स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया।
4: अच्छा, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ कि आपकी सखियों के साथ कैसा था?
5: सखियों के साथ तो इतना मैं सखी नहीं करती थी, मुझे ऐसे आध्यात्म में अच्छा लगता है बस।
4: अच्छा, ये बताइए आप स्कूल में कोई पार्टिसिपेट करते थे जैसे गाने? हाँ, में
5: हाँ, जो कोई स्पर्धा होती है, कोई भी स्पर्धा होती है, तो पहले तो मैं लींबू चमची में वो स्पर्धा किया ना, तो मेरा वो इसमें फर्स्ट नंबर आया, पहला नंबर आया, जो अच्छा लगा कि आगे बहुत बढ़ना चाहिए, उत्सव उमंग बढ़ा, जैसे पहले नंबर आया ना तो अंदर से लगा कि बहुत आगे मेहनत करनी चाहिए, फिर तो आगे आगे नंबर आता ही गया।
4: अच्छा, तो हर साल आप भाग लेते थे?
5: हाँ, हर साल भाग लेते।
4: अच्छा, और डांस गरबा ये भी करते थे?
5: हाँ, गरबा करते, डांस तो अकेले अकेले करते।
4: तो करते थे अकेले स्टेज पर?
5: हाँ, अकेले अकेले स्टेज पर करते थे, पर थोड़ा हिचकिचाते पर कर लेते थे, फिर बाद में एक भी किया फिर तो अच्छा लगा तो करते रहते थे डांस भी।
4: कभी टूर्नामेंट में भी गए? गेम्स में कोई गेम्स खेलते थे?
5: गेम्स तो नहीं खेली।
4: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
5: पढ़ाई में बहुत बढ़िया था, और एक फोकस था कि आगे बढ़ना है, मतलब इतना तो लाना ही है, तो पढ़ाई में भी रुचि बहुत रही, दसवीं में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बारहवीं तक, पर बारहवीं तक में तो मेरी शादी हो गई थी, मैं बारहवीं तो वहाँ ससुराल में किया।
4: अच्छा, बारहवीं पढ़ रहे थे और शादी करवा दी?
5: हाँ, बारहवीं में तो मेरा जो रिजल्ट आया ना वो ससुराल में आया, पढ़ाई तो वहाँ, शादी तुरंत कर दी।
4: तो आपका ससुराल कहाँ है?
5: ससुराल भी वही बांटवा में ही है।
4: बांटवा में ही? कितना बड़ा शहर है बांटवा? शहर है या गांव है?
5: वैसे शहर भी कहो तो शहर भी है और गांव भी है,
4: तो वहीं पर आपका पियर भी और ससुराल भी?
5: ससुर एक गांव में, सब कई बार गई नहीं, रेल तो मैंने कहीं देखा नहीं, आध्यात्मिक में रहे और गांव में ही शादी हो गई।
4: तो आप बता रहे थे कि छोटे थे तब तो कोई विरोध नहीं करते थे, तो शादी के समय किसी ने विरोध किया क्या?
5: नहीं, फिर तो युगल को मैं आध्यात्मिक में ले गई तो उसको भी अच्छा लगा, फिर विरोध होगा आध्यात्मिक में,
4: फिर क्या हुआ, विरोध हुआ?
5: हाँ, ससुराल में कहते कि नहीं हम कोई पकड़ बकड़ नहीं है, हम आध्यात्मिक में नहीं चल सकते, अब तो हमें बेटा चाहिए बेटी चाहिए, ऐसे आप शादी किए तो ये करना है वो करना है।
4: कौन बोलता है?
5: सास ससुर बोलता है, पर हमारे में लाज प्रथा थी, घूंघट निकालने की प्रथा थी
4: जी,
5: तो मेरे पापा ने ही शादी के वक्त किया था कि आप घर जाके घूंघट उठाओ वो अलग बात है, हमारे यहाँ तो शादी होगी तो घूंघट में ही होगी
4: जी।
5: पापा जी ने यही बोला था, और माता जी और बड़ी दो बहनें हैं वो भी अच्छे से शिक्षा देती रही कि हमें अपने मर्यादा में ही रहना है, कभी इधर उधर पाँव न जाए फिसल न जाए, वो बड़ा ध्यान रखना है किसी के साथ, बहुत सारी हमें मदद की बातें मिली उसी से
4: जी,
5: बड़ी दो बहनें थी उसे से सब मिला।
4: तो फिर ससुराल में सब कैसे रहते थे? शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
5: सासी तो घूंघट निकालते थे और बहुत स्ट्रगल हुआ।
4: मतलब आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करते थे?
5: तभी तो करते थे, पर जब आध्यात्मिक में जुड़ी, आध्यात्मिक में मेरा मन रुचि लगी, तभी विरोध हुआ।
4: तो आपने कहा कि आपके हस्बैंड तो आपके साथ जाते थे?
5: पहले उसने थोड़े टाइम किया, थोड़े टाइम वो मेरे साथ चले, मैंने कहा प्यार से उसे बोला ना कि चलो हम जाते हैं इसमें आध्यात्मिक में, क्या बहुत अच्छा है लगता है, वो सत्संग में जाने लगे, अब मेरे साथ आए, उसमें साप्ताहिक होता है कोर्स, उस वो किया उसने, और उसके बाद विरोध किया, और घर में तो जाते हैं तो सबको पता चलता है ना ससुराल में, तो मैं कह कर के जाती थी कि मैं सत्संग में जा रही हूँ, तो फिर आने के बाद सबको अच्छा नहीं लगता है, मैं अपना काम टाइम पर करती थी, सबको बहुत प्यार से रखती थी, फिर भी उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि हम पकड़ लोग नहीं है, सत्संग में हमारा आध्यात्मिक में नहीं जाना है, सत्संग में नहीं जाना है, तो फिर मन नहीं लगता था सत्संग के बिना, तो
4: फिर आपने विरोध किया?
5: मैंने विरोध नहीं किया, मैंने चलती रही सत्संग में, जाती रही
4: जी।
5: फिर छुप छुप के जाने लगी, इसे थोड़े सामने, फिर तो उसको पता चल गया कि ये वहां से वहां से जाती है, तो सामने से आकर दो चमाट लगा देती।
4: अच्छा, तो इस तरह आपके साथ विरोध होने लगा
5: बहुत।
4: अच्छा, ससुराल में कितना बड़ा परिवार था, मतलब संयुक्त परिवार था या आप अकेले रहते थे सास ससुर के साथ?
5: संयुक्त परिवार था, 10 जने रहते थे, 4 भाई है, 2 बहने हैं, 2 ननद है और सास ससुर है, जेठ जेठानी, उसके 3 बच्चे
4: जी जी
5: बच्चे थे। हाँ,
4: तो इतना बड़ा परिवार था, आप कह रहे 10 जने थे, इतना बड़ा परिवार रहते थे साथ में।
5: हाँ, सबका काम भी हमें ही करता है, ऐसे कोई काम का भाग नहीं हुआ था, सब इकट्ठे काम करते थे। और मैं तब पानी की तंगी थी तो खेत में जाकर के कपड़े धोने होते हैं
4: जी जी।
5: हाँ,
4: जी
5: और वहाँ नहाने का सब मना होता है, नहाते नहीं थे, कहते कि नहीं हम थोड़ा ब्राह्मण लोग है, हम ब्राह्मण लोग नहीं है, वो क्या बोलते है, ब्राह्मण लोग नहाते हैं, हम नहीं नहाते। तो 2-3 दिन में नहाने देते थे और जैसे कि चलता था।
4: अच्छा, नहाने रोज नहीं देते थे और आपको स्वच्छता पसंद है, तो फिर क्या करते है?
5: फिर मैं तो नहाती हूँ तो उसको विरोध होता है कि ये कैसी है ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो कहते बोलते थे ना कि नहीं नाना नहीं है, हम थोड़ा ब्राह्मण है, ब्राह्मण होते हैं वो नहाते थे।
4: जी चलिए मधु जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा होगी
1: और इस दिन की आपको ढेरों शुभकामनाएं।
2: बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए, इनके अनुभव हमने काफी कुछ सुने हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो मधु जी, जैसे आपकी शादी हो गई, आपको अध्यात्म में गहरी रुचि थी, सत्संग में आप जाते थे, ससुराल में फिर आप जाने लगे तो विरोध होने लगा, फिर आप रोज नाते तो नाने का भी विरोध होने लगा, तो पानी कहाँ से भर के लाते थे? घर पर नल था?
3: हाँ जी, नल तो था, पर ऐसे भी सबका मन भी देखना है ना, उसका मन नहीं है और हम ना रहे फिर भी नाना ही है, जरूरी है, फिर नहाते थे, नाना तो जरूरी लगा, तब भी लगा और अब भी लग रहा है।
2: नाते और रोज डांट खाते?
3: रोज डांट भी खाते, और उसको हम अच्छे नहीं लगते थे, क्यों नहाने के लिए मना करते और हम नहाते, तो संबंध ऐसे प्यार से नहीं रहता है।
2: आपके हस्बैंड के साथ?
3: हाँ, वो तो बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे है।
2: तो कौन मना करते है?
3: सासू, जेठानी, वो कहते कि नहीं नहाना है, ये क्यों नहाना है ऐसे।
2: तो फिर साथ में ही रहे या अलग?

0: हो गए।
1: नहीं फिर तो साथ में रही, जब तक पहली बेटी आई दूसरा बेटा आया तब तक साथ थे।
0: अच्छा, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे उस समय?
1: वो होमगार्ड में थे, अभी तो रिटायर हो गए हैं।
0: अच्छा, तो आपके गांव में थे?
1: हाँ गांव में सेवा होती है ना सरकारी होमगार्ड की, जैसे पुलिस के नीचे
0: जी जी
1: कॉन्स्टेबल के नीचे होती है।
0: अच्छा, तो जैसे आपका मायका भी वहीं था, और
1: ससुराल भी गांव में ही था।
0: जी जैसे आप बता रहे थे कि कपड़े धोने आप खेत में जाते थे, तो पानी की कमी थी, तो आपके मायके में भी कपड़े धोने आप खेत पर जाते थे?
1: जी नहीं, वहां तो घर पे ही था सब कुछ, घर पे ही कपड़े धोते थे। पर ससुराल में ना दुष्काल हुआ तो वहां थोड़ी तंगी हुई पानी की, तो कहते कि आप खेत में जाओ। तो मैंने तो जैसे शादी की आई और तुरंत कपड़े या जो चद्दर वो रजाई होती है ना, एक साथ 18 रजाई धोई, एक दिन भी मैंने बैठी नहीं हूं,
0: इतना काम करते थे?
1: एक दिन भी बैठी नहीं हूं। जैसे आज इधर पांव रखा, शाम को शादी करके आए, सुबह सब बोलने लगे इतना काम है, इतना काम है, वो है, इतना धोना है। तो मैंने सीधा कहा चलो मैं आती हूं, मैं और मेरी जेठानी साथ में गए। फिर एक दिन आई, दूसरे दिन तो सास बोलने लगी कि इतना काम मैं अकेली क्या करूंगी, तो वो तो घर पर रही रसोई के लिए और मैं अकेली गई।
0: कपड़े धोने
1: हाँ
0: तो शादी होते ही आपके काम में लगा देते हैं, नई नई बहू आई तो थोड़ा लाड़कुड़ भी तो करते हैं ना?
1: करते हैं ना, अभी हम भी कर रहे हैं, हमारी भी बहू है, हम भी बहुत करते हैं।
0: जी
1: क्योंकि ऐसे आध्यात्म में जाते हैं ना, तो जैसे हम पर बीती है ना उस पर ना ही बीते, उसको तो इतना लाड प्यार करते, उसको तो आप करके, आप अभी भी मैं, मेरी बहू है, उसको आप कहकर ही बुलाती हूँ।
0: जी
1: उसको ऐसे तुकार के नहीं बुलाते, प्यार से ही उसे बुलाते, अगर बुलाना है तो प्यार से ही बुलाते
0: जी
1: हैं।
0: जी अच्छा, तो जैसे आपको काम में लगा दिया तो आपके मायके वालों ने कुछ नहीं कहा?
1: नहीं, माँ पापा का तो यही था कि मेहनत करो, मेहनत आपको जगह देगी,
0: जी,
1: मेहनत से ही आगे बढ़ना है ना।
0: तो इतना आप काम करते थे तो सास ससुर प्यार करते थे आपको?
1: नहीं, हो अपना अपना तरीका होता है ना, अपना अपना नजरिया होता है।
0: अच्छा, किसी का प्रेम नहीं मिला?
1: नहीं, आध्यात्मिक में बहुत रुचि इसलिए तो जगी ना।
0: अच्छा, तो इसलिए आपको थोड़ा सत्संग से प्रेम बढ़ा।
1: हाँ प्रेम और बड़ा।
0: फिर कितने समय में आप पियर जाते थे?
1: पीहर तो गांव में ही था, क्योंकि वहां खाना, मुझे वहां तेल बहुत लगता था सब्जी में, और मायके में तेल नहीं था तो साग भाजी में मायके ही खाती थी। अब माता जी मेरी और मेरी भाभी थी, सब कहते थे अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता यहाँ खा लो, और खा करके वहां जाती हूँ ससुराल में।
0: तो रोज जाते थे खाना खाने?
1: हाँ वहाँ रिवाज है, गांव में जो शादी होती है ना वो 4 बजे या 5 बजे मायके में रोज जाती है,
0: अच्छा,
1: अभी भी
0: टाइम मिल जाता है
1: नहीं टाइम निकालते, वो रिवाज हो गया है।
0: तो 5 बजे जा करके खाना खा के वापिस आ जाते हैं।
1: हाँ
0: फिर ससुराल में खाना नहीं खाते थे?
1: नहीं, सब्जी में बहुत तेल होता है, कोई स्वाद नहीं तो क्या।
0: तो आप नहीं बोलते कि सब्जी में थोड़ा तेल कम डालो, या आप खुद नहीं बनाते?
1: नहीं सबको यही पसंद है, मेरी पसंद नहीं है तो इसमें क्या बड़ी बात है, हम माँ मई के खा लेते हैं।
0: नहीं तो जैसे नहीं कहते कि आपके चाहिए उत्ती अलग से बना दो?
1: अलग कोई नहीं बनता किसी का।
0: अच्छा, तो इस तरह आपके जीवन यात्रा रही। तो वो कहते हैं ना, गांव में पियर और गांव में ससुराल है, तो थोड़ी मुश्किल तो रहती है बैलेंस बनाने में। तो मुश्किल रहती थी आपके जीवन में भी?
1: हाँ पर आध्यात्म में बहुत रुचि थी ना तो मुश्किल नहीं लगा।
0: जी अच्छा, और आप बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड का आपको सपोर्ट मिलता था।
1: तभी मिलता था, फिर वो आध्यात्मिक में जुड़े तो थोड़ा कम हुआ। फिर ससुराल में सास ने और बोला कि अब तो 3 साल हो गए हैं, तो 3 साल में तो बच्चा होना चाहिए। मैके में भी यही कुछ रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर तो बेटी हुई, बेटी हुई तो जेठानी थी वो खेत में चली जाती थी, पूरा काम मेरे पर आ जाता था, जैसे गायों को धोना, भैंस रखते थे इसको धोना, सब काम करना, और बच्चे को रखना, थोड़ा
0: जी
1: थोड़ा थोड़ा ज्यादा सासू का साथ था, वो सासू थोड़ी बेटी को रखती थी, साथ में थे ना ज्वाइंट फैमिली में
0: जी
1: तो रखती थी।
0: दूसरे और कोई सदस्य नहीं थे परिवार में?
1: हाँ थे ना, वो है, एक चूल्हे पर ही रसोई बनती थी, पर यहाँ से कटोरी में लेकर वो अपने घर में खाती थी। वो मेरी सास की सास थी ना वो।
0: अच्छा, तो मधु जी, जैसे आप कह रहे थे कि आपको सत्संग का शौक था, इस वजह से परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करते थे और काम की जिम्मेवारी काफी रहती थी आपके ऊपर, और फिर आप कह रहे थे कि बच्चे होने के बाद आप अलग हो गए, तो सभी अलग हो गए, जेठानी, आप या फिर सास ससुर के साथ रहते थे आप?
1: सभी अलग हो गए, देवरानी भी अलग हो गई, मैं भी। फिर तो देवर की शादी हुई, उसके बाद एक साल में सब अलग हो गए।
0: जी, फिर तो आपको सत्संग में जाने से कोई नहीं रोकता था?
1: नहीं, कोई नहीं रोकता था, मैं चुपके से ही जाती थी सत्संग में। वो जो मेरे पति है ना, उसको जाना अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं अपना ढूंढती थी अंदर से कि भाई क्या मेरी कमी है, मेरा कोई काम छूट ना जाए, उसको बराबर से टाइम देती हूँ, उसका खाना पीना सब काम करना।
0: अच्छा, आप सारा काम करते थे और भजन कीर्तन भी करते थे? अच्छा,
1: साथ में बहुत भजन कीर्तन साथ में ही रहता था।
0: और आप क्या करते थे
1: और
0: कभी
1: सिलाई
0: बच्चों को?
1: करते थे, हाँ बच्चों को पढ़ाई
0: हाँ,
1: में।
0: आपको सिलाई का भी शौक रहा, तो सिलने में आप क्या क्या सिलते थे? अच्छा,
1: ब्लाउज सिलते थे, ड्रेस सिलते थे, सिलाई का काफी शौक था। मैं ब्लाउज भी बना लेती थी, और अपना पूरा जो भी है वो सब मैं सिलाई कर लेती हूँ।
0: जी, तो आप जैसे सास जेठानी देरानी सबके साथ रहते थे, वहां पर भी सिलाई करते थे या अलग होने के बाद शुरू
1: अलग
0: किया?
1: होने के बाद साथ में तो टाइम ही नहीं मिलता था,
0: जी,
1: क्योंकि 10 जने का काम था।
0: इसलिए आप अलग होने के बाद सिलाई का काम शुरू किया, तो आप अपना ही सिलते थे या मोल का भी सिलते थे?
1: मैं अपना ही सिलती थी। फिर दो थे, भैंस थी और खेत थी। अलग होने के बाद तो खेत को संभालना होता है, सुबह 8 बजे बाता बना करके 8 बजे निकल जाना, 1 घंटे का चलने का खेत दूर थी।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो वहां पहुंच के आध्यात्मिक में रुचि थी ना, तो वहां भी मैं पढ़ लेती थी, कुछ भजन भजन कर लेती थी
0: वहां भजन किसके साथ करते थे?
1: ऐसे अपने ऐसे मन से। तो जब मजदूर आते ना, उससे पहले मैं पहुंच जाती थी।
0: अच्छा, तो
1: हाँ,
0: आपके हस्बैंड भी जाते थे? अच्छा,
1: वो दोपहर को रोटी लेकर आते थे, उसको क्या भाता बोलते हैं। हाँ, तो वो भात लेकर के आते, मैं अपने भाता लेकर के जाती थी सुबह, और बच्चों को मेरी माँ रखती थी
0: अच्छा
1: अलग होने के बाद।
0: जी,
1: हाँ, और शाम को आती थी चल करके, साइकिल भी नहीं कुछ नहीं था, चल के आना चल के जाना, तो 1 घंटा तो हो जाता है आने जाने में, 2 घंटा।
0: खेत में क्या करते थे आप, कुछ बोते थे?
1: बोते तो
0: बुआई आप ही करते या मजदूर करते हैं? आप देख रेख करते हैं?
1: बुआई तो उसी से होती है, ट्रैक्टर से होती है।
0: जी,
1: पहले तो बैल था ना, बैल से होती बुआई, तो फिर उसमें सफाई होती है ना, वो हम करते थे।
0: अच्छा,
1: उसके बाद बड़े होकर के कटाई होती है ना, जैसे मूंगफली को पाड़ते हैं, भेगी करते हैं जैसे
0: जी,
1: गुजरात।
0: खट्टी करते हैं और फिर
1: हाँ
0: उसकी मिट्टी हटाते हैं,
1: हाँ और
0: मतलब
1: फिर
0: खेत के काम में आप व्यस्त रहते हैं?
1: सारे काम करते थे,
0: जी,
1: जो मजदूर वाला होता है ना, वो सारा काम करते थे।
0: और पढ़ाई में आपको शौक था और उसी गांव में आपकी शादी हुई, तो आपके टीचर लोग नहीं कहते कि क्या तू इन कामों में लग गई, पढ़ाई कर लेती तो अच्छा रहता?
1: टीचर बहुत अच्छी थी, पढ़ने जाते थे तो भी वो ऐसे वार्ता बोलते हैं, ऐसे ही पढ़ाई की भार नहीं दिया, पढ़तर में तो बहुत अच्छा।
0: जी, आप इस तरह खेत में जाते, खेत में आते, आपका टाइम पूरा हो जाता, फिर सिलाई कब करते हैं?
1: सिलाई तो मैं जिस दिन नहीं जाना होता है ना, तब करती हूँ, और कभी कभी तो खाने पीने के बाद टाइम निकाल करके जो बनाना है ना, वो मन से बना लेती हूँ, करना है कि यही करना है, यही चाहिए घर में और अपने पहनने में, तो रात को भी मैं सिल लेती थी।
0: अच्छा, जब जरूरत पड़ी कि हाँ मेरे को इस तरह के कपड़े चाहिए तो आप खुद का सिल लेते थे?
1: खुद का सिल लेते।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है मधु जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुणे लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मधु जी के अनुभव और भी बाकी है, तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ कौटिल्य पंडित। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नारी की हंसी में ईश्वर बसता है। नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, उसकी बातों में सच्चाई रहती है। जो नारी का मान रखे उसकी हर राह उजली रहती है, उसकी हर राह उजली रहती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। मधु जी के काफी अनुभव सुने हैं, और भी हम कहना चाहेंगे, मधु जी आप पूरे जीवन, अभी तक 52 साल की उम्र है तब तक आप पाटवा गांव में ही रहे, उससे बाहर आपका जाना नहीं हुआ
2: कभी नहीं।
1: तो जैसे आपकी दो बहनें बड़ी है, कभी उनके यहाँ जाना हुआ होगा?
2: एक तो गांव में ही है, एक बाजू में मजेठी है, वहाँ है।
1: अच्छा, पास पास में ही है।
2: हाँ, कभी कभी जैसे कि प्रसंग होते हैं, उसकी बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तभी जाना हुआ
1: जी। और आप कभी ट्रेन में बैठे ही नहीं?
2: नहीं, पहली बार एक आध्यात्मिक ही बैठे।
1: हाँ, पहले जब आप रहे अपने ससुराल में तब तक ट्रेन में नहीं बैठे।

0: देखा ही नहीं था, दूर बाटवे में तो ट्रेन नहीं है, जूनागढ़ से है।
1: जूनागढ़ से मिलते हैं। अच्छा, और जैसे अब आपकी उम्र 52 साल की है, आपके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, बहू भी आ गई है, बेटी की भी शादी हो गई होगी।
0: हाँ, बेटी की भी शादी हो गई है, वो उसका भी दो बेटी है, बेटा है छोटा।
1: अच्छा, तो आप नहीं पढ़ पाए तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया?
0: बहुत खूब पढ़ाया, यहाँ तक कि उसको तो नौकरी भी दिलाई, यहाँ तक
1: बेटी को?
0: बेटे को भी। अभी बेटा भी है, वो लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर वहाँ पाजोद में है।
1: अच्छा, दोनों बच्चे जॉब करते हैं आपके?
0: हाँ, बेटी नहीं करती, बेटी को तो अच्छा ससुराल मिला है तो उसको नहीं करने देते, पर अब वो विदेश जाने वाली है।
1: जी, शादी हो गई और बेटा जॉब करता है।
0: हाँ
1: अभी आपको कोई दिक्कत नहीं?
0: जी, नहीं
1: अभी कोई सत्संग से रोकता नहीं?
0: जी, नहीं।
1: आपके हस्बैंड सहयोग करते हैं अब?
0: हाँ, वो सहयोग करते, थोड़ा मैं बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ तो सत्संग में, तो मुस्कुरा देते हैं, कुछ बोलते नहीं है।
1: जी,
0: मैं उसको भी बोलती हूँ आप भी हमारे साथ चलो।
1: अभी भी आपके सास ससुर सभी है?
0: सास है अभी
1: जी, अब अच्छे रहते हैं आपके साथ?
0: हाँ, बढ़िया रहते हैं, सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहते हैं।
1: जी,
0: हाँ
1: एक समय था जब कोई आपके साथ अच्छे नहीं रहते थे तो आपका
0: नहीं,
1: दिल दुखता था।
0: एक समय तो यही था कि जब मैं अलग हुई ना, तब तो मेरे से सब विरोधी थे, फिर मेरी ये सत्संग की वजह से मैं सबसे साथ मिलजुल रही हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं उसको स्वीकार लेती हूँ, जैसे भी है मैं मिल जाती हूँ उसके, हर प्रसंग में उसके आगे होती हूँ।
1: जी, बिल्कुल। तो आपने सबके साथ तालमेल बनाए रखा?
0: अभी भी बना ही रखा है।
1: जी, और बहू के साथ आपका कैसा व्यवहार है?
0: बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, उसका नाम भी ऐसा ही है जैसा उसका काम है, उसका नाम है शीतल। तो बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है।
1: जी, तो आपने बहू और बेटी को समान समझा?
0: हाँ, बेटी से बढ़कर भी बहू को मैंने अपने दिल में रखा है।
1: जी
0: कहते हैं ना, बेटी तो आती है तो जाती है,
1: जी
0: बेटी से हमारा क्या। हाँ आती है, वो फोन भी करती है, सब हालचाल पूछती है, पर बेटी से बढ़कर है बहू,
1: जी बहुत
0: और बहू
1: बढ़िया
0: बहुत अच्छी है,
1: जी
0: बहुत प्यारी है, और उस जैसा इसका नाम है ना वैसा उसका गुण है।
1: जी और सिलाई काम आज भी आप करते हैं या
0: हाँ
1: छोड़ दिया?
0: नहीं, करती हूँ अभी भी, अभी तो बहुत अच्छा सिलाई काम हाथ में बैठ गया है।
1: तो आप अपना ही करते हैं या अभी भी मोल का करते हैं?
0: उनका बेटे ना बोलते हैं कि अभी कोई जरूरत नहीं मम्मी, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, खेती है,
1: जी,
0: अभी बहुत अच्छा है।
1: तो पहले आप मोल का भी करते थे?
0: पहले पोल का नहीं, घर का पूरा करती थी, खेत करती थी, और पशुपालन,
1: अच्छा
0: पशुपालन मेरे ऊपर था।
1: अच्छा कितनी गाय भेजते हैं?
0: 3 गाय भैंसे थी और उसके थे,
1: तो आप अकेले
0: और
1: संभालते थे?
0: हाँ हस्बैंड का तभी थोड़ा कम था साथ सहयोग,
1: जी, तो
0: कहती
1: वो
0: है
1: क्यों सहयोग नहीं करते थे फिर? आपने इतना क्यों पाला, खेती को
0: पैसे
1: संभाला?
0: के लिए, पैसा तो चाहिए ना घर चलाने के लिए, तो खेत में से जो उत्पादन होता है वो तो इतना नहीं होता था तब।
1: लेकिन आपके हस्बैंड तो होमगार्ड थे ना, तो सैलरी तो आती होगी ना?
0: हाँ, वो उसके खाते में जमा होती है, वो घर पर नहीं देते थे ना,
1: अच्छा, घर में पैसे नहीं देते थे
0: नहीं देते थे
1: तो घर
0: इसलिए।
1: कैसे चलेगा?
0: हाँ बस दूध घर का है, सब्जी खेत की आती है, गेहूं भी खेत के आते हैं, तो और क्या चाहिए। जैसे कि बाहर से कुछ लेना है ना, तो वो गाय भैंस का जो दूध बेचने के बाद जो पैसा आता है ना, उसमें से मेरा घर चल जाता है।
1: इसलिए आपने गाय भैंस रखी कि
0: हाँ
1: आपके हस्बैंड पैसे नहीं देते थे?
0: हाँ तभी भी नहीं देते, अभी भी नहीं देते,
1: अभी भी नहीं देते?
0: नहीं देते,
1: तो फिर पैसों का क्या करेंगे वो?
0: वो तो क्या करेगी, ले जाएंगे साथ में, कोई नहीं ले जाता है ना,
1: अच्छा,
0: यहाँ ही पड़ा रहेगा।
1: तो आप जैसे आबू आए, अभी आप रेडियो मधुबन में हमारे साथ हैं, तो किराया भी लगता है, पैसा भी चाहिए बाहर जाने पर, तो कौन देता है फिर आपको? अच्छा,
0: बेटा देता है ना,
1: बेटा देता है।
0: बेटा से मांगती हूँ, मेरा स्वभाव यही है कि मैं मांगती नहीं, वो सामने से बोलता है कि अभी तो आपका खलास हो गया होगा, इतना दिया था अब खलास हो गया होगा तो लो मम्मी। मैं तो पहले तो ना ही बोलती थी।

0: मुझे नहीं चाहिए। फिर यहाँ ये तो
1: बाहर जाते हैं तो फिर पैसे दे देता है बेटा, लेकिन हस्बैंड आज भी नहीं देता है,
0: नहीं
1: और आज भी जॉब उनकी जारी है।
0: नहीं वो रिटायर्ड हो गए,
1: रिटायर्ड हो गए, पेंशन आती होगी।
0: नहीं पेंशन नहीं आती उसमें, नहीं आती है होम गार्ड
1: अच्छा
0: में, नहीं आती है।
1: अच्छा फिर भी थोड़ा बहुत पैसा उनके हाथ में होगा, लेकिन देते नहीं है
0: हाँ वो सारा जमीन का पैसा तो आता ही है ना,
1: जी खेती बाड़ी का।
0: खेती बाड़ी का
1: तो फिर खेती बाड़ी में से भी आपको नहीं मिलता, जबकि आप तो काम करते हैं।
0: से नहीं मिलता।
1: अच्छा
0: ये महिलाओं की जिंदगी ऐसी टगल वाली है।
1: हाँ। फिर भी आप खुशी खुशी उसको बर्दाश्त करके चल रहे हैं।
0: स्वीकार लिया ना जैसे भी है।
1: जी। तो चलिए कार्यक्रम के अंत में आप हमारी बहनें सुन रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे?
0: मेहनत करना है, मेहनत से डरना नहीं है, और हर परिस्थिति का डट के सामना करना है। जब सामना करेंगे आगे बढ़ेंगे तभी हमें अंदर से खुशी भी आएगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।
1: जी चलिए, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है मधु जी, सभी नारी शक्ति को, कि मेहनत करना है और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है। जैसे आप पशुपालन करके थोड़ा बहुत पैसे बचा करके कहीं जाते हो तो लेके जाते हो,
0: नहीं
1: बाकी घर से नहीं मिलता है।
0: और सहन शक्ति एक बड़ी शक्ति है, वो सहन शक्ति से हमारा सबके साथ संबंध अच्छा रहता है।
1: जी,
0: सहन करेंगे ना तो सबके प्यारे रहेंगे।
1: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है मधु जी ने, बहुत बहुत आभार। आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव सभी के साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू जी, थैंक यू उषा दीदी जी, आपका बहुत बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, और बहुत बहुत दुआएं देती हूँ आपको।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मधु जी राठौड़ हमारे साथ बने हुए थे। आप जूनागढ़ बांटवा से पधारे हैं और आपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए हैं। देखिए, आपने जाना है कि नारी शक्ति कितनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका एक रुपए पर भी अधिकार नहीं होता है, फिर भी आप खुश है, परिवार को साथ में लेके चलते हैं, और सत्संग में जाना कोई गलत बात नहीं है। अच्छी बात है कि आप ईश्वर भजन करते हैं, तो परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया और आपके साथ अव्यवहार किया, फिर भी आप सहनशीलता के दम पर और मिलनसार संस्कार होने के दम पर सभी को साथ में लेके चले और हमेशा खुश रहे, और आज भी खुश है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: तुमने धरती को शक्ति दी, तुमने अंबर को शक्ति दी, तुमने हम मनुष्यों को शक्ति दी, साहस दो साहस लो। ईश्वर की याद और आराधना से हम शक्ति प्राप्त करते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं और सभी को यही कहते हैं, साहस दो साहस लो। हम निरंतर अपने आप को जागृत रखने के लिए, हम अपने अंतर मन को जागृत रखने के लिए अपनी अंतरात्मा से यही बात करते हैं, निरंतर बातें करते रहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में हिम्मत और शक्ति को खोने ना दो, इसे पास ऑन करो। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आज हम अपने आप को जागृत करेंगे, फिर से समय के बदलते इशारे को समझते हुए हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुलदस्ता। निरंतर जागृत रहने और जागृत करने अपने से यही बात करते हैं। प्रकृति में हो रहे हलचल, इंसान के द्वारा किए गए बुरे कर्म वक्त को परिवर्तन करता है। घड़ी तो महज स्थूल समय को दर्शाती है, पर प्रकृति और मनुष्य के कर्तव्य सूक्ष्म समय को भी चेंज करता है। तो बुरे वक्त को अच्छे में बदलने के लिए हम फिर से आ गए हैं आपका फेवरेट शो लेकर, जिसका नाम है गुलदस्ता। साथियों, प्रकृति ने फिर से करवट बदली है। पितृ पक्ष संपन्न होता है, देवी पक्ष का प्रारंभ होता है। निर्भय साहस और हिम्मत को अर्जित करने का समय है यह।

0: दोस्तों ये गीत तो आप लोगों ने सुना होगा।
1: क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है?
0: इसीलिए अपनी बच्ची की कम उम्र में शादी ना कराएं।
1: उनके स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य के लिए उन्हें खूब पढ़ाएं। बेटी कुदरत का है उपहार, नहीं करो उसका तिरस्कार। जो बेटी को दे पहचान माता पिता।
2: माँ के आने की आहट है, खुल गए भक्ति के द्वार। माँ आ रही है, माँ आ रही है। बुराइयों का संहार कर, दुर्गति का विनाश कर, अराजकता को समाप्त कर, दुर्गम पथ में सुख शांति का संचार करती हैं देवियां। आज महालया है, महालया के साथ ही पितृ पक्ष का समापन होता है। इस दिन के बाद से देवी पक्ष की शुरुआत मानी जाती है और माँ दुर्गा के आगमन का एहसास होता है। माँ दुर्गा, माँ शेरावाली, माँ जगधात्री, इनकी स्तुति व जयगान हमें निर्भीक बनाती हैं और समय की यही पुकार है, यही अभी याचना कर रहा है समय कि अब निर्भीक बन जाओ, अब साहसी बन जाओ। सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को स्वर्णलता आगाज कर रही है, स्वागत कर रही है कार्यक्रम गुलदस्ता में।

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: तू ही नैया, तू ही खिवैया, तू ही है पतवार। महालया पितृ पक्ष से देवी पक्ष में संक्रमण का प्रतीक है। महालया का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हम सब अपने पूर्वजों को धन्यवाद करते हैं और उनसे क्षमा याचना भी मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपके कारण हम इस जीवन को देख रहे हैं, इस जीवन को जी रहे हैं भरपूर, और अगर हमसे कोई भूल हो गई हो हमें क्षमा करें। साथ ही आज एक ट्रांसफॉर्मेशन का दिन है कि हम देवियों के आगमन के लिए भी उत्साहित रहते हैं। तो देखा साथियों कि हमारे भारतवर्ष में एक अध्याय खत्म होता है तो दूसरा अध्याय तुरंत ही वहीं से उसकी शुरुआत हो जाती है। तो खत्म के साथ शुरुआत का भी एक बहुत महत्वपूर्ण यह समय है। तो समय बहुत परिवर्तनशील है और समय हमें क्या करना है यह भी इंडिकेट करता है। और अभी समय यही है कि हम महालया के प्रति अपने दिल में जो भाव है उसे हम व्यक्त करें और आने वाले समय के लिए भी तैयार हो जाएं।

0: बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का, हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।
1: महालया को परंपरागत रूप से अध्यात्मपूर्ण माना जाता है। भक्त जो हैं, वो अपने पारिवारिक रीति रिवाजों का सम्मान करते हुए उस दिन प्रार्थना, चिंतन और सकारात्मक गतिविधियों में अपना समय व्यतीत करते हैं। भाव बहुत गहरा है, गंभीरता भी है तो दूसरी ओर उत्कंठा भी है कि कब नवरात्रि पर्व शुरू होने वाला है, कब देवियों का हम स्वागत करेंगे, दिल से उनकी आराधना और स्तुति करेंगे। भक्त देवी दुर्गा की प्रार्थना भी करते हैं और शांति, समृद्धि, सुख के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोहरा भाव है आज के इस दिन में, तो इन दोनों भावों को हम अपने हृदय में सम्मिलित करते हैं और साथ ही हमने जो अपने आप से वादा किया है कि साहसी और निर्भीक जीवन का हम आगाज करते हैं समय को देखते हुए।
2: अगर हौसले हो बुलंद तो कोई भी बाजी जीत लेंगे हम, अगर हो खुद पर यकीन, खुद पर यकीन।

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM होबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: देवियां जो है वो विभिन्न शक्तियों का स्वरूप है, इनके बारे में तो हम आने वाले समय में आपको बताएंगे, लेकिन आज हमने इस विषय को क्यों चुना कि हमें निर्भीक बनना है, हिम्मत और साहस के साथ जिंदगी को बिताना है, अटेंटिव रहना है, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहां पर व्यक्ति को जो है अपने जान को जोखिम में डालकर भी कईयों को बचाना पड़ा और उन्होंने बचाया भी। आप उस इंसिडेंट को समझ पा रहे होंगे हमारे इशारे से। तो आज समय है कि हम अपने अंदर जो अलग अलग शक्तियां हैं, जो सुप्त हैं, उन्हें हम बाहर निकालें। इनवोकिंग शक्ति विद इन सेल्फ एंड इनवोकिंग डिफरेंट शक्तीज, यही है अभी के समय की पुकार। इसलिए हम समय के साथ चल रहे हैं, एक तो घड़ी की सुइयों के साथ भी चल रहे हैं, और वायुमंडल में कौन से शक्ति की आवश्यकता है उसके हिसाब से भी हम चल रहे हैं। तो आज महालया है, महालया के इस पावन पर्व में हम सब शामिल हैं और माँ को भी याद कर रहे हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ शेरोवाली, इन सब की आराधना और उपासना मात्र से ही हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति का समावेश होता है, जागृत होता है। नवरात्रि महोत्सव का आधार ही है महालया का ये अद्भुत देवी श्लोक, जो शक्ति, गति, दैवीय ऊर्जा का संचार करता है। तो हम सब हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में, और कार्यक्रम गुलदस्ता को लेकर आती हूँ हर सप्ताह मैं आपकी वही सखी सहेली स्वर्णलता। दोस्तों, आज के प्रोग्राम को आप ध्यान से सुन रहे होंगे हर बार की तरह। कहते हैं कि महालया मुख्य रूप से भारत के पूर्वी राज्यों में मनाया जाता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और त्रिपुरा प्रमुख हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रांतों में इसके अलग अलग नाम हैं और उस हिसाब से वो इसको फॉलो करते हैं। तो हम आज के दिन विशेष अपने अंदर शक्ति भरने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो हम अपने द्वारा उत्पन्न कर रहे हों, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा समस्याएं आ रही हों, या फिर प्राकृतिक आपदाएं हो, कोई भी समस्या हो, विपत्ति हो, या कभी कभी इंसान जो है वह बैंक्रप्ट हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं रह जाता किसी भी कारणवश, तो ऐसे सिचुएशंस में हम देवियों की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, और इन श्लोकों के उच्चारण से हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है, जिससे हम असंभव को भी संभव कर देते हैं।

मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

वर्ष भर में दो नवरात्रियां प्रमुख हैं। एक है बसंत नवरात्रि और दूसरा है शरद नवरात्रि। तो अभी महालया का जो पर्व है, यह पर्व शरद नवरात्रि को लेकर आता है। तो महालया की सुबह वो सुबह है जो शोक को स्वागत में बदल देती है। जी हाँ साथियों, साल भर जो है सभी इसी पर्व का इंतज़ार करते हैं, नवरात्रि त्योहार का। तो महालया आते ही सबके दिल में बिगुल बज उठता है, शंख की ध्वनि अंदर ही अंदर गूंज उठती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो दिन आ रहे हैं जो बहुत ही कलरफुल होंगे, रंगारंग होंगे, त्योहारों में हम सब मस्त होंगे, है ना। वो दृश्य सामने आ रहा है। अभी हमने आपको सुनवाया बंगाली सॉन्ग जिसमें महालया पर्व का वर्णन था और दुर्गा माँ के आने की जो खुशी है, प्रेम के आंसू आंखों में आ जाते हैं, ऐसे भाव को लिए हुए था यह गीत। और उम्मीद है आप इस गीत को फील कर पा रहे थे। महालया से 15 दिन पहले पितृपक्ष कहलाता है और यह दिन उस कथा को पुनः प्रकट करता है कि कैसे देवताओं ने राक्षस महिषासुर को पराजित करने में असमर्थ होकर अपनी सारी शक्ति एक तेजस्वी देवी में समाहित कर ली। प्रत्येक देवता द्वारा प्रदत्त शक्तियों से युक्त दुर्गा ने कई दिनों तक राक्षस से युद्ध किया और अंततः उसका संहार किया। यह कथा महालया की सुबह भोर से पहले गाई जाती है। तो आज हम इस गीत से एक शपथ भी ले सकते हैं कि इस गीत में कहा गया है कि सभी डर, सभी जो भी अंदर हलचल है, भय है, उसको भी दूर करती हैं देवी माँ। तो भय या डर भी एक शत्रु है जिसका विनाश जरूरी है। सूझबूझ व प्रेजेंस ऑफ माइंड से जो जीवन में सफलता अर्जित करते हैं, शक्ति के बलबूते पर वह अपनी स्वरक्षा कर सकते हैं।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: मंत्र पाठ करके, श्लोक का उच्चारण करके देवी माँ से शक्ति हम धारण करते हैं। वैसे साथियों, हम सबको पता है कि देवी देवताओं को ये सारे गुण शक्तियां किनसे प्राप्त हुई? जी हाँ, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से, भगवान से। एक भगवान ही है जिनसे हमें सारी शक्तियां मिलती हैं। नॉर्मल मनुष्य जो है उसमें ये सारी शक्तियां नहीं होती, उसमें गुण अवगुण दोनों ही होते हैं। और गुणों को जब हम परमात्मा से प्राप्त करते हैं, शक्तियों को जब हम उनसे प्राप्त करते हैं और उसमें संपूर्ण बनते हैं, तब हम देवी देवता कहलाते हैं। तो ये जो देवी देवताएं हैं, ये हम में से ही कोई हैं जिन्होंने संपूर्णता को अर्जित की इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए। जाते जाते मैं स्वर्णलता आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि समाज में जहां पर भी कुकर्तव्य हो रहे हैं, जहां पर भी अराजकता है, जहां पर भी हलचल है, वहां पर हम अचल रहकर हम डर, भय, चिंता, हर बुराइयों का विनाश करेंगे। और इन्हीं शपथ के साथ आज स्वर्णलता विदा लेती है और आपसे मुलाकात होगी नवरात्रि पर्व के दौरान। तब तक आप हमारा इंतजार कीजिए और हाँ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन और कायम रहिए इसी रेडियो चैनल पर।

ढूंढे गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयां बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद, भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है, मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है। ये समझ में आएगा, ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद, भोगवाद, ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद, भोगवाद के कारण।

0: नमस्ते दोस्तों। भाई आज मीना और उसके दोस्तों का जोश तो देखते ही बन रहा है। क्या कहा? क्यों? अरे भाई, हर साल की तरह इस साल भी उनके गांव में तिगुना मजा जो चल रहा है। दरअसल हर साल गर्मियों की छुट्टियों में गांव के लड़कों और लड़कियों के बीच मनोरंजक खेलकूद का एक मुकाबला होता है। ये मुकाबला पूरे 3 दिन चलता है, इसलिए इसका नाम है तिगुना मजा। अब जैसे पहले दिन कृष्णा और मीना के बीच पहेलियां बूझने का मुकाबला हुआ, जिसे जीता अपनी मीना ने, और आज हुआ दूर रखे छोटे से डिब्बे में कंचे फेंक के डालने का मुकाबला सुनील और मिली के बीच। वो देखो, गीता दीदी सब बच्चों को उसी का नतीजा बता रही हैं।
1: बच्चों, आज का मुकाबला जीता है सुनील ने।
2: सुनील, सुनील, ये सुनील।
1: तिगुने मजे के आखिरी दिन यानी कि कल होगा एक बहुत अनोखा मुकाबला, खजाने की खोज, जिसमें भाग ले रहे हैं लड़कों की टीम से दीपू,
2: दीपू, दीपू, दीपू, दीपू,
1: और लड़कियों की टीम से रीना,
3: रीना, रीना, रीना,
4: रीना, रीना, कहाँ है रीना?
5: मैं भी वही सोच रही हूँ मिट्टू, कि ये रीना कहाँ रह गई?
6: मीना, मीना,
5: रीना, तुम अब तक थी कहाँ?
6: मेरी छोटी बहन पारो को बुखार हो गया है। माँ पिताजी को खाना देने खेत गई थी, इसीलिए मैं घर पे रुककर पारो का ध्यान रख रही थी।
5: पारो को तो चाची ने कल टीका भी लगवाया था ना?
6: हाँ मीना, शाम को माँ पारो को टीका लगवा के आई और रात को उसे बुखार हो गया।
7: किसे बुखार हो गया मीना? कहीं आज की हार से सब लड़कियों को तो बुखार नहीं हो गया?
5: सुनील, रीना की छोटी बहन पारो को बुखार हो गया है, हम उसी की बात कर रहे थे।
7: इसका मतलब कल के मुकाबले में जीत दीपू की होगी, क्योंकि रीना तो शायद अब खेलेगी नहीं। क्यों दीपू?
1: खेले या ना खेले, जीतना तो मैंने ही है।
5: सुनील, दीपू, रीना कल जरूर खेलेगी, और कौन जीतता है और कौन हारता है ये तो कल ही पता चलेगा।
0: और अगले दिन,
1: बच्चों तुम सब जल्दी से हाथ धो लो, तब तक मैं ये अमरूद धो देती हूँ।
0: गीता दीदी अमरूद धो के ले आई। सब बच्चों ने एक एक अमरूद लिया, लेकिन रीना ने अमरूद नहीं लिया।
5: क्या हुआ रीना, तुम अमरूद क्यों नहीं खा रही?
6: मीना, अगर मैंने अमरूद खाया तो उसके बीज मेरे दांतों में फंस जाएंगे।
5: फिर क्या हुआ रीना, घर जाके दांत मांज लेना। क्यों दीपू?
1: सुमी ठीक कह रही है रीना, खा लो अमरूद, वरना मुकाबले के बाद कहोगी।
8: मैंने अमरूद नहीं खाया था ना, इसलिए मैं दीपू से हार गई।
1: बच्चों, तिगुने मजे का आखिरी मुकाबला अब से ठीक आधे घंटे बाद शुरू होगा। दीपू तैयार?
8: बिल्कुल तैयार।
1: और रीना तुम?
6: मैं भी तैयार हूँ गीता दीदी।
1: शाबाश। सब बच्चे ध्यान से सुनो, आज के मुकाबले का नाम है खजाने की खोज। ये जो तुम रेत का टीला देख रहे हो, मैंने इसके बीच में छुपाया है वो खजाना, यानी कि एक डिबिया। सीटी बजते ही रीना और दीपू इस रेत में हाथ डाल के उस डिबिया को ढूंढेंगे। जिसने डिबिया पहले ढूंढ ली वो होगा इस मुकाबले का विजेता।
5: रीना, मुझे पूरा विश्वास है कि ये मुकाबला तुम ही जीतोगी।
6: मैं इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकती।
5: ये तुम क्या कह रही हो रीना?
6: मैं ठीक कह रही हूँ मीना, मैं उस रेत में हाथ डालूंगी तो सारी रेत मेरे नाखूनों में घुस जाएगी और मेरे हाथ भी गंदे हो जाएंगे।
5: थोड़ी देर की तो बात है रीना, खेल के बाद अपने हाथ धो लेना।
6: नहीं, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगी।
5: मेरे पास एक तरकीब है रीना, अभी बताती हूँ। गीता दीदी?
1: हाँ मीना, कहो।
5: दीदी, अभी तो मुकाबला शुरू होने में समय है, क्या तब तक रानो और मैं भाग के उसके घर से दस्ताने ले आएं?
1: ले आओ, लेकिन जल्दी आना।
5: जी दीदी। चलो रीना, तुम्हारे दस्ताने लेके आते हैं।
4: दस्ताने लेके आते हैं, दीपू को हराते हैं।
0: मीना और रीना भाग के रीना के घर पहुंची।
5: नमस्ते चाची।
9: खुश रहो मीना बेटी। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? रीना, तेरा तो मुकाबला था ना?
6: उसी के लिए दस्ताने लेने आए हैं माँ। मीना तुम माँ के पास रुको, मैं अभी आई।
4: अभी आई, दस्ताने लाई।
5: चाची जी अब पारो कैसी है?
9: अब तो पहले से फर्क है बेटी, मैंने उसे बुखार उतारने की दवा जो दे दी थी।
5: चाची कल तो आप पारो को टीका लगवा के लाई, फिर उसे बुखार कैसे हो गया?
9: मीना बेटी टीका लगने के बाद अक्सर बच्चों को बुखार आ जाता है। और अरे रीना बेटी मिल गए दस्ताने?
6: हाँ माँ, लेकिन अभी आपने कहा कि टीका लगने की वजह से ही पारो को बुखार हुआ है, फिर आपने पारो को टीका लगवाया ही क्यों?
9: उसे खतरनाक बीमारियों से बचाना है इसीलिए। टीका लगने के बाद बच्चों को मामूली बुखार होना तो आम बात है, लेकिन वो बुखार उतारने वाली दवा से ठीक भी तो हो जाता है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम बच्चों को टीका ही ना लगवाएं, आखिर उन्हें खतरनाक बीमारियों से भी तो बचाना है। रीना बेटी बड़े फायदे के लिए छोटी मोटी तकलीफ को सहने में ही समझदारी है।
6: आप ठीक कह रही हैं माँ, टीका लगने से भले ही पारो को बुखार हुआ हो लेकिन वो खतरनाक बीमारियों से तो बची रहेगी। चलो मीना।
9: तुमने अपने दस्ताने वापस क्यों रख दिए रीना?
6: अब मुझे इनकी जरूरत नहीं माँ।
5: लेकिन अगर रेत तुम्हारे नाखूनों में?
6: मीना बड़े फायदे के लिए छोटी मोटी तकलीफ सहने में ही समझदारी है।
0: मीना और रीना भागी भागी वापस अपने दोस्तों के पास पहुंची। थोड़ी देर बाद दीपू और रीना का मुकाबला शुरू हुआ।
1: तीगु ने मजे का ये आखिरी मुकाबला जीता है रीना ने। रीना तुम्हारा इनाम इसी डिबिया में बंद है, खोल के देखो।
6: गीता दीदी इसमें तो एक चाबी है।
1: हाँ रीना, ये चाबी है इस ताले वाली गुल्लक की।
2: रीना, रीना, रीना।
6: ओ मीना आज मैं बहुत खुश हूँ, चलो अमरूद खाते हैं।
5: लेकिन अगर तुम्हारे दांतों में अमरूद के बीज फंस गए तो?
6: आज मैंने एक बात सीख ली है मीना।
5: वो क्या?
6: बड़े फायदे के लिए छोटी मोटी तकलीफ सहने में ही समझदारी है।
0: भाई वाह, तीगु ने मजे की कहानी सुनकर तो अपना मजा चौगुना हो गया है ना। चलो अब अपने इस चौगुने मजे को थोड़ा और बढ़ाते हैं मीना और मिठू की नई कविता सुनकर।
5: बच्चों को जब टीका लगता हो सकता उन्हें बुखार है,
4: लेकिन उससे मत घबराना, उसका भी उपचार है।
0: भाई वाह, बिल्कुल सही बात कही है मीना और मिठू ने। छोटे बच्चों को टीका लगने पर बुखार तो हो सकता है लेकिन वो उम्र भर खतरनाक बीमारियों से तो बचे रहते हैं, है ना। चलो अब अपने मजे को और बढ़ाते हैं। क्या कहा, कैसे? अरे भाई गाना सुन के भूल गए।

0: गाना सुन के मजा आया ना? मुझे भी बहुत मजा आया। अब चलते हैं थोड़े और मजे करने। सोचो सोचो कहाँ चले? सही पहचाना, अब चलते हैं मीना की क्लास में खेलने।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। मैं आप सबको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे, ठीक है?
2: जी जी।
1: तो आज का अक्षर है स। अब स से बताओ किसी मशहूर व्यक्ति का नाम।
3: सलमान खान। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग दबंग।
1: शाबाश दीपू। बच्चों पता है ना सलमान खान कौन है?
4: अभिनेता,
3: हीरो,
4: एक्टर, फिल्मों में काम करते हैं।
1: हाँ बिल्कुल ठीक। चलो अब सर से किसी जानवर का नाम बताओ।
3: सांड।
1: सही जवाब कृष्णा। और बच्चों पता है दक्षिण भारत में पोंगल के पर्व पर सांड दौड़ और सांड युद्ध की परंपरा है। चलो अब सर से किसी वस्तु का नाम कौन बताएगा?
4: सर से सुराही।
1: बिल्कुल सही मिली। सुराही में पानी भर के रखने से वो कैसा हो जाता है?
2: ठंडा।
1: बिल्कुल ठीक। चलो अब बताओ सर से किसी जगह का नाम।
4: सीतापुर।
1: बिल्कुल सही मीना। और सीतापुर भारत के किस राज्य में है?
4: उत्तर प्रदेश में।
1: शाबाश। तो मजा आया ना बच्चों?
2: जी भाई।
0: भाई मुझको भी बहुत मजा आया, आपको भी आया ना? फिर ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी मीना की नई कहानी, नए गीत और नए खेल के साथ। और हाँ, अपनी दोस्त मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना। अपने सुझाव, विचार, अनुभव सब लिखना।
5: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, कक्षा 8 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। अध्याय 1, आरंभिक जीवन।
2: पृष्ठ संख्या 1,
1: सिद्धार्थ का जन्म। प्राचीन काल में भारत में एक प्रसिद्ध राजवंश था, नाम था इक्ष्वाकु वंश। इसी वंश के शाक्य कुल में शुद्धोदन नाम के एक राजा हुए। कपिलवस्तु उनके राज्य की राजधानी थी। उनके राज्य में सारी प्रजा सब प्रकार से सुखी और सुरक्षित थी। पृथ्वी जैसी गौरवशाली उनकी पत्नी थी, नाम था माया। एक रात महारानी माया ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा जैसे चंद्रमा बादलों में चुपचाप प्रवेश करता है, वैसे ही एक सफेद हाथी उनके शरीर में प्रवेश कर गया है। इससे उन्हें न किसी प्रकार का भय हुआ न कष्ट। उन्हें सुखद अनुभूति हुई कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है। सचमुच गर्भ धारण करने के कुछ मास बाद महारानी माया को किसी सघन वन में एकांतवास करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने पति महाराज शुद्धोदन से निवेदन किया कि अब वे कुछ समय के लिए नंदन वन के समान सुंदर लुम्बिनी वन में निवास करना चाहती हैं। अपनी गर्भवती पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए महाराज शुद्धोदन ने स्वीकृति प्रदान की और अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महारानी ने लुम्बिनी वन के लिए प्रस्थान किया। कुछ समय तक सुख से लुम्बिनी वन में निवास करने के बाद एक दिन महारानी को लगा कि अब प्रसव काल आ गया है, अतः वे एक शैया पर लेट गईं। उस समय अनेक स्त्रियों ने उनका अभिनंदन किया। जैसे ही पुष्य नक्षत्र का उदय हुआ, महारानी माया ने बिना किसी पीड़ा के एक पुत्र को जन्म दिया। उन्हें लगा जैसे वह आकाश से उतर आया हो। उसका अंतःकरण पवित्र था, उसके शरीर से तेज निकल रहा था जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। सूर्य के समान तेजस्वी परंतु देखने में चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाले इस बालक के शरीर से प्रकाश निकल रहा था।
2: पृष्ठ संख्या 2।
1: पृष्ठ 2 पर एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि एक हाथी आकाश से नीचे उतर रहा है और महारानी माया शैया पर लेटी हुई है। आइए अब सुनते हैं पाठ।
2: पृष्ठ संख्या 3।
1: उसी समय आकाश से दो जल धाराएं प्रवाहित हुईं, एक शीतल और दूसरी उष्ण। इनसे इस बालक का अभिषेक हुआ। सोने और चांदी से निर्मित तथा मूंगे मणियों से जड़ित शुभ्र शैया पर जब वह बालक विराजमान हुआ तो उसके चारों ओर स्वर्ण कमल हाथों में लेकर यक्षों के राजा खड़े हो गए। आकाश में देवताओं ने उसका अभिनंदन किया और बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिए। इस बालक के जन्म के समय आकाश से सुगंधित लाल और नीले कमलों की वर्षा होने लगी। मंद मंद पवन प्रवाहित होने लगी तथा सूर्य और भी अधिक चमकने लगा। इस नवजात दिव्य शिशु के दर्शन करने के लिए आए दिव्य पुरुषों से वह वन प्रांतर पूरी तरह भर गया। उन्होंने बालक पर पुष्पों की वर्षा की। इस बालक के जन्म का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि जो पशु प्रकृति से ही हिंसक थे वे हिंसा भूल गए। सारे संसार ने अपूर्व शांति का अनुभव किया। विभिन्न पशु पक्षी मधुर स्वर में बोलने लगे। नदियां शांतिपूर्वक बहने लगीं। सारी दिशाएं निर्मल हो गईं और निरभ्र आकाश में दुंदुभी बजने लगी। केवल माया को छोड़कर सारा संसार

0: सरकार इस बालक के जन्म से अत्यंत प्रसन्न हो गया। बालक के अद्भुत दिव्य जन्म को देखकर महाराज शुद्धोदन की आंखों से भय और प्रसन्नता की अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगीं। बालक की अति मानवीय शक्ति को देखकर माता माया भी भय और प्रीति से भर गईं। इस अवसर पर वृद्ध महिलाओं ने मंगलाचरण किया और नवजात शिशु के उज्ज्वल भविष्य के लिए देवताओं से प्रार्थना की। आचरण शास्त्र के ज्ञाता और शीलवान ब्राह्मणों ने जब बालक के सभी लक्षण सुने और उन पर विचार किया तो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपका पुत्र आपके कुल का दीपक है। आप किसी बात की चिंता न कीजिए, आनंद उत्सव मनाइए, क्योंकि यह बालक न केवल आपके वंश की वृद्धि करेगा अपितु यह संसार में दुखियों का संरक्षक भी होगा। दीपक के समान प्रकाशवान तथा सोने की कांति से युक्त शरीर वाले इस बालक में जो लक्षण हैं, उनसे लगता है कि यह तो बुद्धों में श्रेष्ठ होगा या परम राज्यश्री प्राप्त करेगा। यदि यह पृथ्वी के राज्य की इच्छा करेगा तो न्याय से पृथ्वी को जीतकर सभी राजाओं में ऐसे ही शोभायमान होगा जैसे सभी ग्रहों के बीच सूर्य प्रकाशित होता है। यदि वह मोक्ष के लिए वन जाएगा तो अपने तत्व ज्ञान से सभी मतों को परास्त कर सारे संसार में सम्मानित होगा और सुमेरु पर्वत के समान प्रतिष्ठित होगा। जैसे सभी धातुओं में स्वर्ण, पर्वतों में सुमेरु, जलाशयों में समुद्र, प्रकाश पुंजों में सूर्य श्रेष्ठ है, वैसे ही आपका यह पुत्र सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ सिद्ध होगा।
1: पृष्ठ संख्या 4।
0: ब्राह्मणों की ऐसी बातें सुनकर राजा ने पूछा, आपने इस बालक में जिन लक्षणों को देखा है वे न तो पूर्ववर्ती राजाओं में देखे गए हैं और न ही ऋषि मुनियों में, इसका क्या कारण है? ब्राह्मणों ने राजा को समझाते हुए कहा, बुद्धि, सुकर्म और यश के विषय में पूर्ववर्ती या परवर्ती का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होता है। इस प्रकार के गुण किसी विशेष कारण से ही उत्पन्न होते हैं। इस संबंध में आप कुछ दृष्टांत सुनिए। विभिन्न गोत्रों के आदि पुरुष भृगु और अंगिरस जिस राजनीति शास्त्र को नहीं बता सके, उसी राजनीति शास्त्र को उनके पुत्र शुक्र और बृहस्पति ने बता दिया। पुराकाल में जब वेद लुप्त हो गए थे तो आगे चलकर व्यास ने उन्हें संपादित किया। इस कार्य को वशिष्ठ जैसे ऋषि भी न कर सके थे। इसी तरह जिस कार्य को वाल्मीकि ने कर दिखाया था वह कार्य उनके पूर्ववर्ती च्यवन ऋषि नहीं कर सके थे। अतः राजन, इस श्रेष्ठता का प्रमाण न तो अवस्था से है और न ही वंश से। श्रेष्ठता को कोई भी कहीं भी प्राप्त कर सकता है। इतिहास बताता है कि जिन कार्यों को पूर्ववर्ती ऋषि और राजा नहीं कर सके उन्हीं कार्यों को उनके परवर्ती व्यक्तियों ने कर दिखाया। ब्राह्मणों से इस प्रकार आश्वासन और अभिनंदन प्राप्त कर राजा के मन की शंकाएं मिट गईं। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दी और उन्हें सम्मानित कर विदा किया। उसी समय महर्षि असित को अनुभूति हुई कि इस समय कपिलवस्तु में जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाले शाक्य मुनि ने जन्म लिया है। अतः वे उसके दर्शन के लिए अपने आश्रम से कपिलवस्तु की ओर चल दिए। कपिलवस्तु में ब्रह्मवेत्ता राजपुरोहितों ने महर्षि असित का स्वागत किया और उन्हें सम्मानपूर्वक राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण धोए और विधिवत पूजा की। राजा ने महर्षि से निवेदन किया, हे महर्षि, मैं धन्य हूं, आपके आगमन से मेरा कुल अनुग्रहित हुआ है। हे सौम्य, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं? मैं आपका शिष्य हूं, आप आज्ञा दें।
1: पृष्ठ संख्या 5।
0: राजा के वचन सुनकर ऋषि गदगद हो गए और धीर गंभीर वाणी में बोले, हे राजन, आप अतिथि प्रिय हैं,

0: धर्माभिलाषी महात्मा हैं। आपने जो कुछ कहा है वह आपकी अवस्था और आपके वंश के अनुरूप है, किंतु मेरे आने का प्रयोजन कुछ और ही है। मैंने दिव्य आकाशवाणी सुनी थी कि आपको जो पुत्र प्राप्त हुआ है वह अवश्य ही बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। इसके बाद मैंने स्वयं ध्यान योग से इसके भविष्य को भी जान लिया है, इसीलिए मैं यहां आया हूं। शाक्य कुल की उस पताका के दर्शन करना चाहता हूं। राजा ने ऋषि असित की सारी बातें ध्यान से सुनी और प्रसन्न होकर धाय की गोद से शिशु को लेकर उन्हें दिखाया। महर्षि ने राजकुमार को बड़े विस्मय के साथ देखा। उन्होंने देखा कि उसके चरणों में चक्र के चिन्ह हैं, अंगुलियों और हाथ पैरों पर अन्य शुभ लक्षण अंकित हैं। बालक को देखकर महर्षि की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दीर्घ निःश्वास लेकर आकाश की ओर देखा। महर्षि असित की आंखों में आंसू देखकर राजा का हृदय धड़कने लगा, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, जिस बालक के शरीर पर दिव्य चिन्ह हैं, जिसका जन्म चमत्कारी है और जिसके भविष्य को आप उज्ज्वल बताते हैं, उसे देखकर हे धीर, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं? हे भगवन, कुमार चिरायु तो है, क्या वह मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलांजलि दे सकेगा? हे महर्षि, मुझे शीघ्र बताएं, मेरा हृदय व्यग्र हो रहा है। इसी पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें महर्षि ने बालक को गोद में लिया हुआ है और राजा उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। अब सुनते हैं पाठ।
1: पृष्ठ संख्या 6।
0: महर्षि असित ने राजा को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि तुम्हारा पुत्र बुद्ध होगा, वह शाक्य कुल भूषण बनेगा, यह निश्चित है। मैं तो इसलिए विकल हूं कि मेरे जाने का समय आ गया है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के सुलभ उपायों को बताने वाला यह बालक अब उत्पन्न हुआ है। यह कुमार विषयों से विरक्त होकर राज्य को त्याग कर अपने तप से तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा। यह ज्ञानमय सूर्य सांसारिक मोह के अंधकार को अवश्य नष्ट करेगा। महर्षि असित ने बताया, दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए इस संसार को यह बालक ज्ञान की विशाल नौका से उस पार ले जाएगा। यह धर्म की ऐसी नदी प्रवाहित करेगा जिसमें प्रज्ञा का जल होगा, शील का तट होगा और समाधि की शीतलता होगी। इसी धर्म नदी के जल को पीकर तृष्णा की पिपासा से व्याकुल यह संसार शांति लाभ करेगा। जैसे भटके हुए राही को कोई राह बताता है, वैसे ही संसार रूपी जंगल में भटके मनुष्यों को यह मोक्ष का सीधा मार्ग बताएगा। इसलिए हे राजन, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो इसके बताए धर्म को मोहवश या आसक्तिवश नहीं मानेंगे। मैं ही अभागा हूं कि इसके उपदेशों को सुनने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। महर्षि की इन बातों को सुनकर राजा शुद्धोदन, उनकी पत्नी तथा अन्य सभी संबंधी अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षि भी राजकुमार के भविष्य के बारे में बताकर जैसे वायु मार्ग से आए थे वैसे ही चले गए। बाद में उन्होंने अपनी बहन के पुत्र को समझाया कि वह बड़ा होकर बुद्ध के मार्ग का ही अनुसरण करे। ज्योतिषियों तथा महर्षि असित से अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सारी बातें सुनने के बाद राजा ने बड़े उत्साह से जन्मोत्सव का आयोजन किया। उसने अपने कुल के अनुरूप बालक का जात कर्म संस्कार किया। 10 दिन पूरे होने पर अपने पुत्र के कल्याण के लिए जप होम तथा अन्य मंगल कार्य किए। पुत्र की उन्नति के लिए स्वर्ण मंडित सींगों वाली बहुत सी गायों का दान दिया और शुभ मुहूर्त देखकर प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। पुत्र को लेकर अनेक सगे संबंधियों के साथ महारानी हाथी दांतों से निर्मित श्वेत पालकी पर सवार होकर नगर में आई। जब रानी ने पुत्र के साथ अपने महल में प्रवेश किया तो राजा शुद्धोदन वैसे ही प्रसन्न हुए जैसे कार्तिकेय के जन्म से शिव प्रसन्न हुए थे।
1: पृष्ठ संख्या 7।
0: अंतःपुर विहार। महाराज शुद्धोदन के पुत्र के जन्म का कुछ प्रभाव हुआ कि उनका घर धन धान्य और हाथी घोड़ों से संपन्न हो गया। उनके सभी मनोरथ सफल हो गए। उनके जो शत्रु थे वे मध्यस्थ हो गए, जो मध्यस्थ थे वे मित्र बन गए, और जो मित्र थे वे और भी अधिक प्रिय हो गए। इंद्र ने उचित समय पर वर्षा की और खेत लहलहाने लगे। महाराज शुद्धोदन के राज्य में धार्मिक जनों ने स्वर्ग जैसे सुंदर उद्यान, देव मंदिर, आश्रम, कुएं और तालाब बनवाए। राज्य में किसी ने धन के लोभ के लिए धर्माचरण नहीं किया और धर्म के लिए किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। इस तरह उनका राज्य चोर, शत्रु आदि के भय से मुक्त, स्वतंत्र और धन धान्य से संपन्न हो गया। सूर्य पुत्र मनु के समान इस राजा के राज्य में बालक के जन्म काल से ही सर्वत्र प्रसन्नता छा गई, पाप नष्ट हो गए और धर्म प्रकाशित हो गया। इस बालक के जन्म से ही राज्य और राजकुल में संपत्ति आई और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। इसीलिए राजा ने बालक को सर्वार्थ सिद्ध कहते हुए उसका नाम सिद्धार्थ रखा। महारानी माया अपने पुत्र का देवर्षियों जैसा प्रभाव देखकर अतिशय प्रसन्न थी, पर इस आनंदातिरेक को वह अधिक दिनों तक सह न सकी और कुछ ही दिनों में स्वर्गवासी हो गई। माता के स्वर्गवासी होने पर मौसी गौतमी ने उस बालक का अत्यंत स्नेहपूर्वक लालन पालन किया। बालक उदयाचल पर उदित सूर्य के समान, वायु प्रेरित अग्नि के समान तथा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सगे संबंधियों और मित्रों ने बालक को अनेक उपहार दिए। किसी ने बहुमूल्य चंदन के खिलौने दिए तो किसी ने मोतियों की माला दी, किसी ने सोने के रथ तो किसी ने सोने चांदी की रंग बिरंगी पुतलियां दी। इस प्रकार बालक सिद्धार्थ विविध प्रकार की बाल क्रीड़ाएं करते हुए बड़ा होने लगा। सिद्धार्थ की कुमारावस्था बीतने पर राजा ने अपने कुल के अनुरूप उसका विधिवत उपनयन संस्कार किया और बालक की शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था की। बालक सिद्धार्थ अत्यंत मेधावी था। जिन विद्याओं को सामान्य बालक वर्षों में सीखते हैं उनको उसने कुछ ही समय में सीख लिया। इस प्रकार विद्याभ्यास करते हुए सिद्धार्थ ने किशोरावस्था पूरी की और वह युवावस्था की ओर बढ़ने लगा।
1: पृष्ठ संख्या 8।
0: इस पृष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें सिद्धार्थ के विवाह को दर्शाया गया है। अब सुनते हैं पाठ।
1: पृष्ठ संख्या 9।
0: महाराज शुद्धोदन को महर्षि असित द्वारा की गई भविष्यवाणी याद थी कि यह बालक बड़ा होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान कर सकता है। इसीलिए उन्होंने अंतःपुर में ऐसी व्यवस्था करवाई जिससे सिद्धार्थ की आसक्ति सांसारिक विषयों में बढ़े और वह भोग विलास में इतना लिप्त हो जाए कि उसे किसी प्रकार का वैराग्य ना हो और वह राजमहलों में रहकर भोग विलास में डूबा रहे। इसी विचार से राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ का विवाह करने का निश्चय किया और इसके लिए उपयुक्त कन्या की तलाश शुरू की। अंत में उन्होंने यशोधरा नाम की सुंदर कन्या का चयन किया और फिर बड़े उत्साह से उसका विवाह कुमार के साथ कर दिया। विवाह के बाद राजकुमार सिद्धार्थ और

0: यशोधरा सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिताने लगे। महाराज शुद्धोदन ने राजमहल में ऐसी व्यवस्था की थी कि राजकुमार राजमहल में ही रहे, भोग विलास में तल्लीन रहे और ऐसा कोई दृश्य उसके सामने ना आए जिससे उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो। यहां एक चित्र है जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमारी यानी उनकी पत्नी यशोधरा सिंहासन पर बैठे हैं और उनके इर्द गिर्द दासियां हैं और वो आमोद प्रमोद कर रहे हैं।
1: पृष्ठ संख्या 10।
0: राजमहल में राजकुमार सिद्धार्थ सुंदर स्त्रियों के नृत्य गान तथा वीणा वादन आदि का आनंद लेते रहे। सुंदरियों के साथ राजकुमार ऐसे तन्मय हो गए कि राजमहल से बाहर निकलते ही न थे। राजकुमार को भोग विलास में तल्लीन देखकर राजा बहुत प्रसन्न थे, इसीलिए उन्होंने और अधिक दान दिए। परंतु राजकुमार सिद्धार्थ विषय सुखों में आसक्त नहीं था, उसने चपल घोड़ों जैसी इंद्रियों को वश में कर लिया था। उसने अपने गुणों से सारे राज परिवार और पूर्ववासियों के मन को जीत लिया था। राजा शुद्धोदन राजकुमार के क्रियाकलापों से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए ग्रहों की पूजा की तथा गायों और स्वर्ण का दान दिया। राजा स्वयं सदा सत्य का आचरण करते थे, राग द्वेष से रहित होकर शासन व्यवस्था चलाते थे तथा प्रजा से अधिक कर नहीं लेते थे। जैसे योगी की इंद्रियां उसके अनुकूल रहती हैं, वैसे ही राजा के सदाचरण के कारण सारी प्रजा उनके अनुकूल रहती थी। यशोधरा के साथ राजकुमार सिद्धार्थ के विवाह के कुछ समय बाद उन्हें चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम राहुल रखा गया। राजा ने बड़े उत्साह के साथ अपने पौत्र का जन्मोत्सव मनाया। उन्हें अब पूरा विश्वास हो गया कि उनके वंश का विस्तार होगा। जैसे वे अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, वैसे ही उनका पुत्र भी अपने पुत्र से प्रेम करे। इस अभीष्ट पूर्ति के लिए उन्होंने अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए। राजा शुद्धोदन ने अपने पुत्र के लिए राजकाज चलाया, वंश वृद्धि के लिए पुत्र का पालन किया, यश के लिए कुल की रक्षा की और स्वर्ग के लिए वेदों का अध्ययन किया। सामान्यतः राजा अपनी राज्य लक्ष्मी की रक्षा के लिए पुत्र की रक्षा करते हैं, परंतु इस राजा ने धर्म रक्षा की इच्छा से पुत्र की रक्षा की। संवेग उत्पत्ति। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ ने सुना कि राजमहल से बाहर एक सुंदर उद्यान है। वहां घने वृक्ष हैं जिन पर कोयलें कूकती हैं तथा कमलों से भरे सुंदर सरोवर हैं। राजकुमार सिद्धार्थ को वह उद्यान देखने की इच्छा हुई। उन्होंने महाराज से वन विहार करने के लिए आज्ञा मांगी। राजा ने आज्ञा दे दी। वे चाहते थे कि राजकुमार के मन में किसी प्रकार का वैराग्य उत्पन्न ना हो, इसलिए अनुचरों को ऐसी व्यवस्था करने की आज्ञा दी कि जिधर से राजकुमार निकलें उस मार्ग पर कोई रोगी या पीड़ित व्यक्ति दिखाई ना दे। राजकर्मचारियों ने राजमार्ग से उन सभी व्यक्तियों को शांतिपूर्वक हटा दिया जो विकलांग थे, वृद्ध थे या रोग पीड़ित थे। इतना ही नहीं, उन्होंने राजमहल से लेकर उद्यान तक का मार्ग अच्छी तरह सजा भी दिया।
1: पृष्ठ संख्या 11।
0: राजा की आज्ञा प्राप्त कर अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर राजकुमार सिद्धार्थ उद्यान देखने के लिए राजमहल से बाहर निकले। वे स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत और चार घोड़ों से युक्त रथ में बैठे थे जो श्वेत पुष्पों और पताकाओं से भली भांति सुसज्जित था। जब नगरवासियों ने सुना कि राजकुमार पुरकानन देखने आ रहे हैं तो राजकुमार के दर्शनों के लिए वे अपने अपने घरों से बाहर आ गए। उन्होंने मन ही मन उनका अभिवादन किया और उनके दीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की। राजपथ पर राजकुमार के दर्शनों के लिए जगह जगह प्रजाजन एकत्रित हो गए थे। स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर या झरोखों से झांक कर उनका दर्शन कर रही थीं। सुंदर वेश वाले पुरवासियों से भरे इस राजपथ को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत ही प्रसन्न थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनका यह नया जन्म हुआ है। राजकुमार और पुरवासियों को इस प्रकार प्रसन्न देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि यदि कुमार में वैराग्य भाव पैदा नहीं हुआ तो क्या होगा। इतने में सिद्धार्थ को राजपथ पर एक वृद्ध पुरुष दिखाई दिया। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी से बातचीत कर रहे हैं।
1: पृष्ठ संख्या 12।
0: अन्य सभी व्यक्तियों से विलक्षण उस जर्जर शरीर वाले वृद्ध पुरुष को जैसे ही सिद्धार्थ ने देखा वह चौंका और बड़े ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। फिर उसने अपने सारथी से पूछा, हे सूत, यह कौन है? यह कहां से आया है? सफेद बालों वाला यह पुरुष हाथ में लाठी क्यों लिए हुए है? इसकी आंखें भौहों से कैसे ढक गई हैं? इसका शरीर क्यों झुका हुआ है? क्या यह कोई विकृति है या इसकी यही स्वाभाविक स्थिति है या यह अनायास ही ऐसा हो गया है? राजकुमार के इन प्रश्नों को सुनकर सारथी सोचने लगा, अब मैं क्या कहूं? राजा की आज्ञा के अनुसार वह इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था, किंतु न चाहते हुए भी उसने सभी बातें राजकुमार को बता दी। उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, रूप और शक्ति का नाश करने वाली यह जरावस्था है, यह बुढ़ापा है जिसमें स्मृति का नाश हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। इसी वृद्धावस्था ने इस पुरुष को तोड़ दिया है। इसने भी बाल्यावस्था में दूध पिया है, सुंदर शरीर प्राप्त कर यौवन का सुख भोगा है और अब काल क्रम से यह बूढ़ा हो गया है। सारथी की बातें सुनकर राजकुमार चकित हो गया क्योंकि उसे इस प्रकार का कोई पूर्व अनुभव नहीं था। उसने फिर बूढ़े की ओर देखा और सारथी से पूछा, क्या यह दोष मुझे भी होगा? क्यों, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने उत्तर दिया, हां आयुष्मान, समय आने पर आपको भी वृद्धावस्था अवश्य प्राप्त होगी। सारथी का उत्तर सुनकर राजकुमार उद्विग्न हो उठा। उसने दीर्घ निःश्वास लिया, सर हिलाया और बड़े ध्यान से पुनः उस पुरुष को देखा। फिर चारों ओर प्रसन्नचित्त जनता की भीड़ को देखकर वह सोचने लगा, ये लोग कैसे हैं जो स्मरण शक्ति और सारे पराक्रमों को समाप्त कर देने वाली इस वृद्धावस्था को देखकर भी अनुद्विग्न बने रहते हैं। उसने फिर सारथी से पूछा, हे सूत, चलो घर चलें, अपने घोड़ों को मोड़ दो। मन में जब बुढ़ापे का भाव भर गया हो तो इस उद्यान में मेरा मन कैसे रम सकता है? राजकुमार की आज्ञा पाकर सारथी ने रथ को राजभवन की ओर मोड़ दिया। थोड़े ही समय में राजभवन आ गया। राजकुमार अब भी बुढ़ापे के बारे में सोच रहा था। वह रथ से उतरकर अपने भवन में गया और तरह तरह से इसी विषय में सोचता रहा, परंतु उसे किसी प्रकार शांति का अनुभव ना हुआ। वह अपने पिता के पास आया, उनसे पुनः उद्यान भ्रमण की आज्ञा ली और उसी राजपथ पर पुनः उसी प्रकार बाहर आ गया।
1: पृष्ठ संख्या 13।
0: राजकुमार सिद्धार्थ का रथ जैसे ही उद्यान की ओर अग्रसर हुआ, उसे एक रोगी दिखाई पड़ा। उसका पेट बढ़ा हुआ था, कंधे झुके हुए थे और वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सिद्धार्थ ने उसी समय रथ को रुकवाया और सारथी से पूछा, हे सूत, यह दुबला पतला व्यक्ति कौन है जो दूसरों का सहारा लेकर चल रहा है और कराहता हुआ हाय माँ कह रहा है? सारथी ने उत्तर दिया, हे सौम्य, यह व्यक्ति बीमार है, रोग से पीड़ित है और असमर्थ हो गया है। राजकुमार ने दया भरी

0: हंसने लगा। फिर करुण स्वर से वह बोला, अरे ये मनुष्य कैसे अज्ञानी है जो रोग भय से ग्रस्त होने के बाद भी निश्चिंत रहते हैं। उसने सारथी से कहा, हे सूत, अब तुम रथ को घर की ओर ले चलो, लौट चलो, मुझसे यह रोग भय सहा नहीं जाता। राजकुमार का आदेश पाकर सारथी ने रथ को महल की ओर मोड़ दिया। राजकुमार का हृदय पहले बुढ़ापे के भय से और अब रोग के भय से दुखी था। वह शीघ्र महल में लौट आया और कमरे में जाकर विचारों में डूब गया। राजा शुद्धोदन ने इस प्रकार जब दो बार राजकुमार को दुखी मन से लौटा हुआ देखा तो उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उन्होंने सारथी को बुलाया और उससे सारा वृत्तांत सुना। राजा को जब यह ज्ञात हुआ कि राजकुमार जरा और रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को देखकर बहुत व्याकुल हो गए हैं और घर लौट आए हैं तो उन्हें लगा जैसे राजकुमार ने उन्हें त्याग दिया है। उन्होंने जिस भय से राजमार्ग से वृद्ध रोगी तथा असुंदर लोगों को हटाने का आदेश दिया था वही भय कैसे उपस्थित हो गया। उन्हें अपने कर्मचारियों और अधिकारियों पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजकुमार की यात्रा से पूर्व सारे राजमार्ग को सुसज्जित करने तथा रोगी वृद्ध आदि लोगों को हटाने का आदेश दिया था, परंतु राजा ने अब इसे अपनी नियति मान लिया और उन अधिकारियों को दंडित नहीं किया।
1: पृष्ठ संख्या 14।
0: उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर इस विषय पर विस्तार से विचार विमर्श किया। राजकुमार के मन को बदलने के लिए उन्होंने और अधिक भोग विलास तथा आमोद प्रमोद की अच्छी व्यवस्था अंतःपुर में ही कर दी। राजा ने सोचा था, इंद्रियां स्वभावतः चंचल होती हैं, अतः राजकुमार भोग विलास और आमोद प्रमोद में सब कुछ भूल सकता है। हो सकता है वह इस प्रकार विषयों में आसक्त होकर यही रहे और हमें छोड़कर कहीं अन्यत्र न जाए। परंतु राजमहल के आमोद प्रमोद के विशेष आयोजन का भी राजकुमार के मन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इस पर राजा ने यह सोच राजकुमार का मन के लिए पुनः नगर दर्शन की विशेष व्यवस्था की। उन्होंने पूरे जित करवाया, सर्वत्र विविध कलाओं में निपुण सुंदरियों को नियुक्त किया और ऐसी व्यवस्था की जिससे राजकुमार का मन किसी भी प्रकार उद्विग्न न हो। उन्होंने राजकुमार के रथ और उसके सारथी को भी बदल दिया। सारी व्यवस्था करने के बाद महाराज शुद्धोदन ने पुनः राजकुमार सिद्धार्थ को नगर दर्शन के लिए प्रेरित किया और अनेक युवक युवतियों के साथ नगर दर्शन के लिए बाहर भेज दिया। नगर के सुसज्जित मार्गों और सुंदर युवक युवतियों को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्नतापूर्वक नगर दर्शन करते हुए जब वे आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा दिखाई दी। राजकुमार ने जब इस सुंदर वातावरण में शव यात्रा देखी और उसके साथ रोते बिलखते लोगों को देखा तो वह चौंक गया। उसने रथ रुकवाया और सारथी से पूछा, हे सूत, यह क्या है जिसे चार आदमी अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं? उसके पीछे आने वाले लोग क्यों रो रहे हैं? जिसे लोग उठाकर ले जा रहे हैं उसे तो बहुत अच्छी तरह से सजाया है, फिर भी ये लोग रो क्यों रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मुझे ठीक ठीक बताइए यह सब क्या है। यद्यपि राजा ने सारथी को समझा दिया था कि वह ऐसी कोई बात राजकुमार को न बताए जिससे उसका मन बेचैन हो, परंतु सारथी राजकुमार का आग्रह नहीं टाल सका। उसने राजकुमार को बताया कि यह ऐसा व्यक्ति है जिसकी चेतना, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय गुण आदि समाप्त हो चुके हैं। अब ये लकड़ी के टुकड़े के समान है, जिसे बड़े लाड़ प्यार से पोसा गया था उसे ही आज ये लोग रो धोकर हमेशा के लिए छोड़ने जा रहे हैं।
1: पृष्ठ संख्या 15।
0: सारथी की ये बातें सुनकर राजकुमार अत्यंत व्यग्र हो गया। उसने पहली बार मृत व्यक्ति के दर्शन किए थे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा।

0: था। उसने पुनः सारथी से पूछा, क्या यह स्थिति सभी की होती है या इसी की है? क्या यह इसी का अंत है या सभी का यही अंत होता है? सारथी ने उत्तर दिया, हां राजकुमार, सभी प्राणियों की यही अंतिम गति है, क्योंकि सभी नाशवान हैं। चाहे कोई व्यक्ति उत्तम हो, मध्यम हो या अधम हो, अंत सभी का है और अंत सबका एक सा ही है। सारथी की बातें सुनकर राजकुमार यद्यपि अधीर तो नहीं हुआ, परंतु मृत्यु की प्रथम प्रतीति के कारण वह उसके विषय में सोचने लगा। थोड़ी देर विचारों में डूबे रहने के बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, सभी प्राणियों की मृत्यु निश्चित है, फिर भी लोगों को डर नहीं लगता? मनुष्य क्यों सावधान नहीं होते? लगता है लोगों का मन बड़ा कठोर है, तभी तो मृत्यु मार्ग पर चलते हुए भी वे उसे भूले रहते हैं। हे सारथी, लौट चलो, चलो घर चलें, यह समय आमोद प्रमोद का नहीं है। मृत्यु को जानकर भी भला कोई बुद्धिमान व्यक्ति कैसे अपने आप को आमोद प्रमोद में डुबो सकता है? सारथी को घर लौटने की आज्ञा देकर राजकुमार संसार की असारता के विषय में सोचता हुआ विचारों में डूब गया। यद्यपि राजकुमार ने सारथी को रथ को राजमहल ले चलने के लिए कहा था, परंतु उसे राजा की आज्ञा याद थी, अतः वह राजकुमार के रथ को राजमहल न ले जाकर पद्मखंड नाम के उद्यान की ओर ले गया। राजा की आज्ञा के अनुसार इस उद्यान को विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था। धीरे धीरे राजकुमार का रथ वन प्रांतर की ओर अग्रसर होने लगा। राजकुमार ने विविध प्रकार के पुष्पों से युक्त छोटे छोटे वृक्षों को देखा, जिन पर मतवाली कोयलें कूक रही थीं। पास ही सुंदर पुष्प करिणी थी, जिसमें अनेक कमल खिले हुए थे। सारा उद्यान नंदन वन जैसा सुंदर लग रहा था, परंतु इस सुंदर वन प्रांतर में भी राजकुमार का मन नहीं लग रहा था। पद्मखंड उद्यान में राजा शुद्धोदन द्वारा नियुक्त नवयुवतियों ने जब सुना कि राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो उन्होंने द्वार के पास ही उनका स्वागत किया। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक राजकुमार को रथ से उतारा और प्रेम भरी आंखों से निहारा। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं कामदेव उनके सामने आ गया हो। राजकुमार के सुंदर रूप को निहार कर वे इतनी मुग्ध हो गई कि न कुछ बोल सकी, न हंस सकी, बस देखती ही रही।
1: पृष्ठ संख्या 16।
0: इस प्रकार प्रेम विह्वल स्त्रियों को कुछ न करते देखकर कुमार के मित्र तथा राजपुरोहित के पुत्र उदाई ने सुंदरियों से कहा कि आप सभी रूप और यौवन से संपन्न हैं, सभी कलाओं में निपुण हैं, अतः अपने हाव भाव से राजकुमार को आमोद प्रमोद में तल्लीन कीजिए, उनके मन के वैराग्य भाव को दूर कीजिए। उदाई की ये बातें सुनकर सभी स्त्रियां राजकुमार को आकर्षित करने के लिए प्रयत्न करने लगीं। उन्होंने राजकुमार को निकट से निहारा और अपने हाव भाव से उन्हें आकर्षित करने का प्रयास किया। सुरम्य वातावरण में सुंदर स्त्रियों के बीच राजकुमार प्रसन्न तो दिखा, परंतु वह जितेंद्रिय था, अतः अनासक्त भाव से सब कुछ देखता रहा। मन ही मन सोचता रहा कि क्या ये स्त्रियां यौवन की अस्थिरता नहीं जानती? क्या ये नहीं जानती कि जिस रूप के कारण ये उन्मत्त हैं, उसे बुढ़ापा शीघ्र ही समाप्त कर देगा? अवश्य ही इन स्त्रियों ने रोग नहीं देखा, तभी तो ये इस प्रकार प्रसन्न हैं। इन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है, तभी तो इस प्रकार हंस रही हैं। नौ युवतियों के बीच भी राजकुमार को ध्यान मग्न देखकर साथ में आए उनके मित्र उदाई ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे मित्र, यह क्या है? आप क्यों इतने उदासीन हैं? आप तो बलवान हैं, सुंदर हैं, युवक हैं, फिर भोग विलास का तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? उदाई की ये बातें सुनकर राजकुमार ने धीर गंभीर वाणी में उत्तर दिया, हे मित्र, आप जो कह रहे हैं वह ठीक ही है, परंतु मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं विषयों की उपेक्षा नहीं करता और मैं यह जानता हूं कि सारा संसार विषयों की उपेक्षा नहीं करता। मैं यह भी जानता हूं कि सारा संसार विषयों में ही डूबा हुआ है, किंतु इस जगत को अनित्य जानकर अब मेरा मन इसमें रम नहीं रहा। जरा व्याधि और मृत्यु न होती तो मेरा मन भी इनमें अनुरक्त होता, परंतु मैं जानता हूं इस यौवन और सौंदर्य को बुढ़ापा समाप्त कर देगा। हे मित्र, ऐसे क्षण भंगुर यौवन में अनुराग अज्ञान के कारण ही हो सकता है। राजकुमार सिद्धार्थ जब अपने मित्र से वैराग्य उत्पन्न करने वाली बातें कर रहा था, तभी सूर्य अस्त होने लगा। सभी नवयुवतियां नगर की ओर लौटने लगीं और सारे उद्यान और नगर की शोभा अंधकार की चादर में सिमटने लगी। इस समय राजकुमार सिद्धार्थ को बोध हुआ कि इस जगत में सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ अनित्य है। जगत की अनित्यता के विषय में सोचते हुए वह अपने राजभवन की ओर चल पड़ा। थोड़े समय में राजभवन पहुंचकर वह सीधे अपने महल में गया और संसार की नश्वरता के विषय में और विचार करता रहा।
1: पृष्ठ संख्या 17।
0: राजा शुद्धोदन ने जब सुना कि राजकुमार सभी विषयों से विमुख होकर लौट आया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। जैसे किसी हाथी के हृदय में वाण लग जाने से वह रात भर सो नहीं पाता, वैसे ही महाराज भी रात भर सो नहीं सके। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनके साथ मंत्रणा करते रहे कि क्या उपाय किए जाएं जिससे राजकुमार का मन बदले, उसका वैराग्य समाप्त हो और विषयों के प्रति आसक्ति जागे। प्रश्न 1। सिद्धार्थ के बारे में महर्षि असित की क्या भविष्यवाणी थी, संक्षेप में बताइए। 2। आप कैसे कह सकते हैं कि बालक सिद्धार्थ विशेष मेधावी था। 3। महाराज शुद्धोदन सिद्धार्थ की सुख सुविधाओं की व्यवस्था के लिए क्यों विशेष प्रयत्नशील रहते थे। 4। राजकुमार सिद्धार्थ के मन में संवेग की उत्पत्ति के क्या कारण थे। यहां पहला अध्याय समाप्त हुआ। संक्षिप्त बुद्ध चरित। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित का ध्वनि पाठ। वाचन स्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

0: नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा होगी
1: और इस दिन की आपको ढेरों शुभकामनाएं।
2: शिवानी जी, कैसे गए एग्जाम?
3: मेरे तो मस्त गए, तू बता।
2: मेरे भी बहुत मस्त गए, लेकिन एग्जाम पसंद है क्या?
3: बिल्कुल भी नहीं, पूरे साल की पढ़ाई एक ही दिन में करनी पड़ती है। तुम्हें पसंद है मिक्षा?
4: नहीं, मुझे भी नहीं पसंद, पर एग्जाम के बिना बात ही नहीं बनती है।
3: क्या कर सकते हैं अब?
2: एग्जाम नहीं होंगे तो हम अगली क्लास में भी तो नहीं जा पाएंगे ना।
5: क्या बात हो रही है भाई, एग्जाम्स नहीं होंगे, अगली क्लास में नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगली क्लास में तो आप लोग आ गए हो ना?
2: हाँ, एग्जाम देकर ही तो आए हैं।
5: अच्छा, यहाँ पे
4: नहीं
3: दीदी,
5: एक आवाज आई जिसको पसंद है। तो चलिए काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज एग्जाम्स के बारे में ही बात कर लेते हैं, है ना?
2: हाँ।
5: है ना, कभी कभी जो चीजें नहीं पसंद है उनके बारे में भी तो बात कर सकते हैं ना।
2: हाँ।
5: तो आज हमारे साथ बच्चों की दुनिया में कौन कौन बच्चे हैं, जरा अपना नाम और क्लास तो बता दीजिए।
2: मेरा नाम रूहानी है, मैं क्लास 8 में आ गई हूँ।
6: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5 में आ गई हूँ।
7: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7 में आ गई हूँ।
8: मेरा नाम राघव है, मैं क्लास 6 में आ गया हूँ।
9: मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6 में आ गई हूँ।
10: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10 में हूँ।
5: ये होता है ना कि हम नेक्स्ट क्लास में आ जाते हैं, लेकिन आदत तो पड़ी होती है पिछले क्लास की बोलने की, है ना?
2: हाँ।
5: तो बार बार रॉन्ग क्लास बोल देते हैं ना?
2: हाँ।
5: ऐसा होता है। तो हो, आप लोग को नई क्लास अच्छी लग रही है कि पुरानी क्लास की याद आ रही है?
2: पुरानी क्लास की याद आ रही है
10: दीदी। अभी पुरानी की याद आ रही है, फिर जब नेक्स्ट क्लास में चल जाएंगे फिर इस क्लास की याद आएगी।
5: अच्छा, पुरानी की लेकिन क्यों याद आ रही है?
2: क्योंकि उसमें जो बच्चे थे उन्हें हम जानते थे, अब नए बच्चे आ जाएंगे।
5: अच्छा, पुराने वाले बच्चे नहीं है साथ में आपके?
2: है ना।
7: टीचर्स भी नहीं आ जाती है।
5: हाँ, टीचर्स तो बदल जाते हैं, ये बात तो है। अच्छा, तो एग्जाम

0: के बारे में बात कर रहे थे आप लोग इससे पहले, तो एग्जाम्स अच्छे क्यों नहीं लगते, क्या वजह हो सकती है इसकी, क्या लगता है?
1: इतना सारा पढ़ के जाना पड़ता है पूरे साल का, वो भी
0: और
2: प्रेशर आ जाता है सारा दिमाग पे, भी ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, वो भी याद
3: और
2: करना
3: क्वेश्चन
2: है,
3: आंसर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर,
0: इतने बड़े बड़े लिखने पड़ते हैं आंसर। ये बात तो है, बड़े बड़े तो होते हैं।
3: एक दिन में पूरे दिन की पढ़ाई कौन करता है?
2: हाथ थक जाता है एग्जाम्स लिखते लिखते भी।
0: हाँ,
3: और उसमें भी दीदी दिमाग पकड़ के बैठ जाते हैं ऐसे, कोई इसका क्या आंसर होगा, आंसर सही होगा दीदी, एग्जाम एग्जाम सेंटर से निकलते, ये क्वेश्चन सही होगा नहीं होगा, मार्क्स कटेंगे नहीं कटेंगे, पूरा दिमाग खराब होता है उसमें।
0: और
4: क्वेश्चंस भी बहुत भारी आते हैं, भी
0: क्वेश्चंस बहुत भारी आ जाते हैं।
2: सारे सवाल ऐसे दिमाग के ऊपर घूम रहे होते हैं।
0: और राघव को क्या लगता है, क्या अच्छा लगता है एग्जाम्स में आपको?
1: उसके बाद हम नई क्लास में जाते हैं।
0: और एग्जाम्स देते टाइम क्या अच्छा लगता है, डर नहीं लगता एग्जाम में, जैसे ये लोग बता रहे थे सब चीजों में?
1: बस अच्छी तरह पढ़ के जाना चाहिए और फिर डर नहीं लगता,
0: बिल्कुल नहीं लगता। ओके, चलो ये भी अच्छी बात है। तो मोस्टली सबको यहाँ एग्जाम पसंद नहीं है सिवाय एक के, है ना? अच्छा, लेकिन एग्जाम्स पसंद नहीं है या टेस्ट जो होते हैं बीच बीच में वो भी पसंद नहीं है?
2: दीदी टेस्ट चलता है, एग्जाम ना हो,
0: टेस्ट ठीक है।
1: क्योंकि टेस्ट में कम क्वेश्चन आते हैं,
3: कम क्वेश्चन आते हैं और क्लास के उसमें ही रहते हैं।
0: ओके,
3: अगर टेस्ट में ही बात बन जाती तो हम लोग आगे क्लास में भी चले जाते, पर एग्जाम भी होती है।
1: हमारी क्लास में तो टेस्ट के क्वेश्चन भी बता देते, इसलिए टेस्ट बहुत इजी जाते हैं,
0: पहले से बता देते।
1: हाँ, और इतने बड़े क्वेश्चन देते भी नहीं है कि प्रेशर आ जाए,
0: प्रेशर वाले क्वेश्चन नहीं देते और हेल्प कर देते होंगे कि आप ये इम्पोर्टेंट है ये पढ़ लो, है ना?
1: हाँ।
0: अनुष्का क्या लगता है, टेस्ट के बारे में क्या लगता है आपको, अच्छे हैं बुरे हैं, होते हैं नहीं होते हैं?
4: टेस्ट तो अच्छा है।
0: टेस्ट अच्छा है, क्यों अच्छा है?
4: क्योंकि उसमें कम क्वेश्चन आते हैं और सिंपल भी होते हैं।
0: हाँ, सिंपल होते हैं ना उसमें क्वेश्चंस। राघव को क्या लग रहा है, टेस्ट अच्छे हैं कि बुरे हैं?
1: अच्छे हैं।
0: एग्जाम ज्यादा अच्छे कि टेस्ट ज्यादा अच्छे?
1: एग्जाम्स अच्छे हैं।
0: टेस्ट से ज्यादा एग्जाम्स अच्छे हैं, क्यों भाई?
1: एग्जाम में थोड़े कम इजी, मतलब थोड़े ज्यादा और थोड़े कम आते हैं, और टेस्ट में थोड़े बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते हैं।
0: अच्छा, टेस्ट में मुश्किल आते, एग्जाम में इजी आते हैं। ओके, ठीक है।
2: दीदी अभी छोटी क्लास में है ना, इसलिए अभी इसको लग रहा है एग्जाम पसंद है, जब ये 9th-10th में आ जाएगा फिर बोलेगा मेरे को तो बिल्कुल एग्जाम्स पसंद नहीं है।
0: अच्छा, आप लोग जब छोटी क्लास में थे तो एग्जाम्स अच्छे लगते थे?
1: हाँ, तब तो हमें भी अच्छे लगते थे।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: क्यों अच्छे लगते थे तब?
1: इसी की तरह क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते थे और इजी होते थे।
2: एक लाइन का क्वेश्चन होता था और एक ही लाइन का आंसर होता था, अब एक लाइन का क्वेश्चन होता है और 10-15 लाइन का आंसर होता है।
1: दीदी मेरे 2 पेज के आंसर होते हैं फिर भी मुझे अच्छे लगते हैं एग्जाम।
3: एग्जाम इसीलिए अच्छे लगते थे, क्वेश्चन होता था और एक लाइन का आंसर होता था।
0: ओके, तो अगर क्वेश्चंस आपके छोटे होने लगे तो एग्जाम्स अच्छे लगेंगे, आंसर छोटा लिखना पड़े तो?
1: हाँ,
2: फिर ठीक है,
0: फिर ठीक है। ओके, तो इतने लंबे लंबे चीजें आपको याद करने में मुश्किल होता है कि लिखने में मुश्किल होता है?
1: दोनों ही,
2: दोनों ही। लिखने में होता है, याद तो हो जाते हैं,
3: याद करने में भी पहले
2: हाँ, बहुत देर हो रही है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, 3 घंटे लगते हैं दीदी पूरे एग्जाम लिखने में, वो भी कम लगते हैं कि हाँ टाइम ना चला जाए।
3: 3 घंटे नहीं देते, वो आधे घंटे एक्स्ट्रा दे देते हैं, 2.5 घंटे का होता है पेपर,
1: टाइम देते हैं और ना ज्यादा क्वेश्चन आते हैं।
0: टाइम कम देते हैं, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं,
1: लर्न करने में टाइम नहीं लगता, बस लिखने में ज्यादा टाइम लगता है।
3: और दीदी कुछ कुछ स्कूलों को तो आधा घंटा और मिलता है, हम लोगों को तो आधा घंटा नहीं मिलता, जितना टाइम होता है उतना ही, बाकी मैं पेपर ले लेते हैं।
0: 3 घंटे का होता है ना एग्जाम?
3: नहीं दीदी, 2.5 घंटे का होता है।
0: 2.5 घंटे का एग्जाम होता है?
3: नहीं, हमारे
1: 3 घंटे का होता है।
0: 1.5 घंटे का? अच्छा, आप छुट्टी क्लास में, इसलिए
3: दीदी मैं 2.5 घंटा देते हैं।
4: अलग है ना,
0: कितने मार्क्स का होता है 1.5 घंटे का एग्जाम? तो अगर 3 घंटे का होता है, ढाई घंटे का जो एग्जाम होता है वो, मतलब 3 घंटे का जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है।
3: हाँ, 2.5 घंटे का जो होता है वो 20 मार्क्स का पेपर होता है।
0: 20 मार्क्स का 2.5 घंटे?
3: ढाई घंटे नहीं, उससे भी कम।
2: हमारा 3 घंटे का होता है, 80
1: मतलब
2: होता
1: जो
2: है।
3: हाँ दीदी, हमारे भी
1: 20 मार्क्स के, उसके साथ एक और 50 मार्क्स का भी दे देते हैं।
0: नहीं तो
3: हमारे दीदी 2.5 घंटे देते हैं, उसमें हमारे पूरा 80 नंबर का पेपर होता है।
0: अच्छा
1: दीदी, हमारे तो 2.5 घंटे के पेपर में 70 मार्क्स होते
0: हैं। ओके, तो सबके अलग अलग है, किसी के 70, किसी के 80, है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी होते हैं साथ में, है ना,
1: ओरल क्वेश्चंस भी होते
0: हैं, वाइवा भी होता है, ओरल क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल।

0: बात है, तो आप लोग को लगता है लंबा लिखना पड़ता है इसलिए तो टाइम लगता है।
1: हाँ
0: दीदी
1: दीदी, हमारे तो 1 ही घंटे का होता है।
0: 1 ही घंटे का होता है।
1: हाँ,
0: ओके
2: छोटी क्लास दीदी, अभी छोटी क्लास है ना इसलिए।
0: बड़े हो जाएंगे तो फिर और लंबे लंबे एग्जाम्स होने लगेंगे, है ना।
1: एक पेपर में 1 घंटा देते हैं।
0: अच्छा, तो किसी को क्या टेंशन भी होती है एग्जाम्स में कि मतलब बहुत स्ट्रेस हो रहा है ऐसा लगता है या फिर नहीं होता है कुछ भी?
1: थोड़ा सा ही स्ट्रेस होता
2: दीदी, इतना स्ट्रेस होता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब बड़ी क्लासेस होगी ना तो अब बाहर से क्वेश्चन आएंगे तो फिर अब थोड़ा वो टेंशन होती है, पहले नहीं होती थी।
0: ओके, मतलब अभी आप 10th में आए हो तो इसलिए लग रहा है आपको ऐसा।
2: हाँ जी।
0: ओके, तो और क्या लगता है?
1: और ऐसा लगता है कि हमने लर्न किया है वो ही आए क्वेश्चंस, अगर दूसरे आ जाते हैं तो फिर वो याद नहीं होते।
0: अच्छा, ओके।
3: और अगर दीदी एग्जाम्स में ऐसा हो जाए जो हम याद करी गए वो क्वेश्चन ना आए तो फिर हमारा और हो जाता है
2: दीदी,
3: दिमाग घूम जाता है।
2: याद करके जाए ना और फिर भी याद ना आए तो बहुत प्रेशर पड़ता है कि पढ़ा तो था बस एक लाइन याद नहीं आ रही।
0: हाँ, ये
2: जो मेन वर्ड होता है वही याद नहीं आता
1: और वही भूली हुई चीज फिर एग्जाम देने के बाद याद आ जाती है।
3: हाँ, इसका आंसर तो ये था।
0: फिर बड़ा बुरा लगता है ना, गुस्सा आता है।
1: हाँ।
2: 3 घंटा सोचते रहे फिर बाद में
0: याद आया अचानक से।
3: पर दीदी कोई कोई एग्जाम शीट लेके पता उसे 10-15 मिनट तो निहारता है, देखो ये एग्जाम है
1: तो
3: इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये।
0: रीडिंग टाइम होता है। ओके, ठीक है।
1: हमें नहीं देते,
3: हमें नहीं देते रीडिंग टाइम।
0: किसी स्कूल में कुछ होता है, किसी में कुछ।
1: हमारे बेल बजने तक हम लोगों को देते हैं, वो लोग फिर घंटी बजाते हैं।
0: ओके, तो आपको मतलब ये थोड़ा सा लगता है कि वो जो हमने पढ़ा है वही आ जाए और हम कुछ भूल ना जाए बस। ओके,
1: जो होते हैं उनको करवा देते हैं और हमको नहीं करवाते, फिर बाद में हमको बोलते हैं तुम्हारी गलती थी, तुम मेरे से आके पूछ लेते।
0: अच्छा, मतलब आपको पढ़ाए नहीं गए होते हैं वो सवाल,
1: वो दूसरे सेक्शन को पढ़ाए होते हैं।
0: अच्छा, दूसरे सेक्शन को पढ़ाए होते हैं।
1: और दीदी जब पढ़ने जाते हैं तो टीचर्स बोलती है क्लास में पढ़ाया था
0: तो आपको दूसरे सेक्शन के क्वेश्चंस नहीं पता होते। कई बार होता है ऐसा, कभी कभी क्वेश्चंस हमको नहीं पता चलते एग्जाम में। और बाकी सबको तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती ना?
1: नहीं, मेरे साथ भी हुई थी एक बार। हमारी क्लास तो एक ही है, सेक्शन एक ही है, लेकिन बच्चे अलग अलग क्लास में बैठे थे ना जब एग्जाम्स में, तब मैम ने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया था जो बताया नहीं था और उस वाली क्लास में बता दिया था, फिर हमको नहीं बताया।
4: हाँ, मेरे साथ भी हुआ था एक बार।
0: ओके,
4: पिछले साल है ना एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमारी बुक में भी नहीं था, नोटबुक में भी नहीं, फिर मैम दूसरी क्लास में आके उनको बता के गए, हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया था, तो उनको आंसर बता दिया और हमको नहीं वापिस नहीं बताया।
0: ओके, इसलिए भी एग्जाम अच्छे नहीं लगते। ओके, अच्छा अगर मान लो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा लिखने के दिक्कत ना हो, हमें फास्ट लिखने लगे तो एग्जाम्स अच्छे लगने लगेंगे। तो मतलब बस बहुत लिखना पड़ता है, मेन प्रॉब्लम ये है।
3: हाँ।
0: याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है?
2: नहीं
3: नहीं,
0: पढ़ाई सारी कर ले तो सारा सिलेबस एक बार में।
3: पर दीदी एक दिन में सारा वो पूरा साल का पढ़ना पड़ता है।
2: अगर पहले रिवीजन कर रखी होती है ना तो फिर जल्दी
1: तब कोई डिफिकल्टी नहीं होती, जल्दी से हो जाता है।
3: तभी
1: और अगर एक ही दिन में पूरा नहीं हो पाता क्योंकि हमने पहले पढ़ा ही नहीं होता कुछ भी।
0: तो एक दिन में तो पूरे साल की पढ़ाई संभव ही नहीं है, पॉसिबल है क्या?
2: नहीं।
0: अच्छा, लास्ट मोमेंट कौन कौन तैयारी करता है, सच्ची सच्ची बताओ। सब लोग जो एग्जाम टाइम पे आके पढ़ते हैं पहले से नहीं पढ़ते, कौन कौन करता है ऐसा?
1: मैं।
0: ऐसा करते हैं जब एग्जाम की छुट्टियां मिलती हैं तब पढ़ते हो और पहले से रिवाइज नहीं करते?
1: नहीं, मेरा ऐसा है कि जब मैम पढ़ाती है ना तब मुझे आधी चीजें तो तभी याद रह जाती है, बस एक बार रिविजन कर लेती हूँ फिर एग्जाम देने चले जाती हूँ।
0: ओके, और अनुष्का क्या करती है?
5: हम तो छुट्टी मिलती है एग्जाम की तब पढ़ते हैं।
0: तब पढ़ते हो, उससे पहले नहीं रिवाइज करते?
5: नहीं।
0: ओके, और अमीक्षा?
6: मैं पहले ही रिवाइज करती हूँ।
0: पहले मतलब जब पढ़ाया जाता है तभी घर आके रिवाइज करते? हाँ। हो दोबारा से
6: जो मतलब क्लास में पढ़ाते हैं ना रोज, मैं वो रोज आके रिवाइज करती हूँ।
0: ओके, और राघव?
7: मैं भी साथ साथ रिवाइज करता हूँ।
0: और
3: नहीं, मैं तो पहले से सिलेबस बना के रखती हूँ कि मैं इस दिन ये वाला चैप्टर पढ़ूंगी।
0: तो फिर वो मतलब वीकडेज में ही पढ़ते हो, जब आपके जब पढ़ाया जा रहा है तभी पढ़ते हो या फिर बाद के लिए बनाते हो?
3: एग्जाम्स के 1-2 महीने पहले से सिलेबस बना के रखती हूँ मैं।
0: ओके, एग्जाम्स के 1-2 महीने पहले से। और आप क्या करते हो शिवांशी?
2: दीदी चैप्टर्स पढ़ने होते हैं वो पढ़ लेते हैं बस, जिस दिन छुट्टी होती है लगे कि हाँ आज पढ़ने का मूड भी है चलो आज चैप्टर पढ़ लेते हैं।
3: नहीं तो अगर नहीं होता तो बिना पढ़ी जाती है बहन एग्जाम देने।
2: चैप्टर
1: हम लोग चैप्टर भी पढ़ लेना तो भी हम लोग क्वेश्चन आंसर आराम से लिख सकते हैं क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है।
3: सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं चैप्टर में से ही तो आते हैं।
0: अगर कभी कभी पहले से

0: पढ़े तो फिर आसान नहीं हो जाती एग्जाम टाइम में पढ़ाई?
1: दीदी आसान होती है ना,
0: है ना, थोड़ी तो आसान होती है पहले से।
1: हाँ, होती
2: दीदी
1: है।
2: होती है, पर एंड मोमेंट तक ये लगता है कि मैंने ये पढ़ लिया, कहीं अगर मेरे को याद ना रहा तो ये क्या करूंगी, वो क्या करूं? ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, बस इसी टेंशन में फिर वो हो जाता है,
0: थोड़ी टेंशन हो जाती है।
3: ऐसा करते हैं ना हम कि पहले पढ़ते हैं तो कभी कभी बहुत सारी एग्जाम साथ में आ जाती है मैथ्स को लेके, तो उसमें ज्यादा प्रेशर बन जाता है फिर।
0: अच्छा, प्रेशर बनता है तो क्या लगता है आपको, अगर बहुत मतलब ऐसा लग रहा है स्ट्रेस जो आप लोग बोल रहे थे, तो कुछ फील होता है आपको स्ट्रेस में?
3: हाँ, जल्दी जल्दी सारा सिलेबस खत्म कर दे ऐसा लगता है।
0: ऐसा लगता है ना? और कुछ परेशानी तो नहीं होती किसी को?
4: नहीं दीदी, क्योंकि दीदी हम पहले से पढ़ के रखते हैं, एक दिन में बुक खोलो तो आराम से पढ़ते
1: हैं। दीदी मेरा क्लास में सबसे पहले पेपर खत्म होता है।
2: दीदी लास्ट डे पे जब हम पढ़ते हैं तब पढ़ तो हम बुक्स के पास रहते हैं, बस हमारा दिमाग पूरी दुनिया में घूम रहा होता है, उधर क्या हो रहा होगा, इधर क्या हो रहा होगा।
4: और दीदी सोचोगे नहीं, जब हमारे सामने पेपर आता है ना तो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें याद आ जाती है, क्वेश्चन की जगह आंसर की जगह।
2: क्वेश्चन के अलावा गाने याद आते हैं, जोक याद आते हैं, बस आंसर्स नहीं आते,
0: उसी वक्त सब कुछ याद आ रहा होता है ना।
2: हाँ जी।
0: ये तो हो सकता है। तो फिर क्या करते हो जब गाने याद आ रहे होते हैं तो?
4: दीदी एक बार गलती से क्या हुआ, गाना याद आ रहा तो मैंने पेपर में गाने ही लिख दिया।
0: सच्ची में?
4: सच्ची में दीदी, फिर मैंने ध्यान से पढ़ा, मैंने उसका इरेज किया फिर।
0: अच्छा चलो, मिटा तो दिया ना टाइम पे।
4: हाँ।
0: ओके।
4: अगर मैम उस टाइम चेकिंग पे आ रही थी, अगर मैम देखती ना मेरे को डांटती।
0: ये क्या लिख रहे हो?
4: हाँ।
2: ये मैम कहते क्यों, आंसर्स कहाँ है, गाने हैं ये तो।
4: वही ना।
3: अच्छा मैम जब आंसर शीट पढ़ेगी तब पढ़ेगी नहीं गाएगी।
0: गाना लिखा तो गाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, अगर आपको अपने से एक छोटी वाली क्लास को बोला जाए कि आपको उनको ये बताना है कि आप एग्जाम टाइम को इजी कैसे बना सकते हो, तो उनको क्या बोलोगे, क्या टिप्स दोगे उनको? आपसे एक छोटी वाली क्लास है, जैसे जिस क्लास को आप लोगों ने पास कर लिया है, अभी आपने जैसे टेंथ में आ गए हो, नाइन्थ पास कर लिए है ना, सिक्स में आ गए हो, फिफ्थ क्लास पास कर लिए है, तो वो क्लास में जाके आपको बोला जाए कि इन बच्चों को बताओ, क्योंकि आप तो बड़े हो गए उससे, कि वो लोग अपने एग्जाम्स को इजी कैसे बनाएं या एग्जाम टाइम को अच्छा कैसे बनाएं, तो उनको क्या टिप्स दोगे?
3: जब मैम चैप्टर पढ़ाए तब एकदम ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ना वही याद रखेंगे तभी वो एग्जाम से याद आ पाएगा।
0: ओके। और अनुष्का क्या बोल रही है, बोलो बोलो लाइन से सब लोग बोलो, क्या टिप दोगे आप अपने क्लास जो आपने पास कर लिया वो बच्चों को एग्जाम आसान बनाने के लिए?
5: वो लर्न कर देंगे तो उनके लिए तो आसानी हो जाएगा।
0: ओके।
5: और उन लोगों को एक दिन पहले याद नहीं करना चाहिए, एक दिन पहले लर्न नहीं करना चाहिए, अगर मैम पढ़ा रही हो तो ध्यान से सुन के फिर घर पे आके उसको रिवाइज करना चाहिए, इससे हमारा इजी हो जाएगा लर्न।
0: ओके। और एग्जाम टाइम को फन और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है?
4: जब मैम पढ़ा रहे होते हैं तो हमको अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि क्या पढ़ा रहे हैं।
0: ओके ठीक है, मैम पढ़ा रहे हैं तो उसी वक्त ध्यान देना चाहिए।
4: जब मैम पढ़ा रहे उस टाइम तो ध्यान देना ही चाहिए, पर आपको उससे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हाँ मेरे को ये इस बार ये चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है।
0: ओके।
4: मतलब पहले से ही मतलब पढ़ के रखनी चाहिए चैप्टर, तो जब मैम पढ़ाएगी तो उसको ध्यान से समझ सकते हैं।
0: अच्छा, उससे और पहले से पढ़ लेना चाहिए। ओके।
2: जब भी कोई ऐसा कोई मेन पॉइंट दिखे कि हाँ इस पे कोई क्वेश्चन बन सकता है तो उसको अंडरलाइन करना चाहिए, फिर एग्जाम टाइम पे इजी होगा कि पूरे चैप्टर एकदम नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेन मेन पॉइंट्स पढ़ लेने चाहिए।
4: तो उसके बाद क्या होगा, जब एग्जाम होगी तो उससे एक दिन पहले पढ़ने में आपको ज्यादा लगेगा, तो फिर क्या होगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हो।
0: ठीक है, तो पहले से तैयारी तो कर ही सकते हैं, ये बात तो आप सबने बोली। और एग्जाम टाइम पे उस दौरान क्या कर सकते हो कि उसमें थोड़ा लाइट फील करें हम, उस टाइम पे क्या कर सकते हो? ऐसा मान लो एग्जाम शुरू हो गए आपके,
2: एक ही दिन में पूरा 3-4 घंटे लगातार ना पढ़े, बीच बीच में रेस्ट लें ताकि दिमाग भी शांति से बैठ के पढ़ाई कर सके।
0: Okay. कहीं
2: पूरी दुनिया ना घूमे।
0: ओके। पूरी दुनिया नहीं घूम के थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेना है। ओके। और क्या कर सकते हैं एग्जाम टाइम को लाइट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए? आप लोग क्या करते हो जब बहुत स्ट्रेस होता है एग्जाम टाइम में, क्या करते हो?
2: जब कोई क्वेश्चन याद ना हो रहा हो तो उसको एक मतलब गाने के टाइप में बोल के लर्न करना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी याद हो जाए।
0: हाँ ये किया जा सकता है, उसको गाने की तरह बोल के याद करो, गाने तो याद रहते हैं ना, है ना?
4: हाँ दीदी,
2: जितने क्वेश्चंस याद नहीं रहते उतने गाने याद रहते हैं,
0: तो गाने की तरह उसको याद कर सकते हैं।
4: जब गाने याद नहीं होते, हम गाने आते ही नहीं है ना, पेपर के टाइम पे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं वो दिमाग में,
0: ब्रेन भी उस समय परेशान करता है। और
4: कभी भी दीदी जोक ला देता है, बीच में चुटकुला ला देता है, कुछ भी
0: कुछ भी आ जाता।
4: सोचो कि पुरानी पुरानी बातें आ जाती
1: है। अगर अपन एग्जाम से एक दिन पहले अपन ने सब पढ़ लिया और अपन फ्री है तो हम कोई गाना सोच रहे हैं, ये वाला गाना मुझे याद क्यों नहीं आया, तो वो हमको आंसर्स की जगह एग्जाम में याद आएगा गाना.
0: ऐसा हो जाता है ना, आपको भी होता है ऐसा? नहीं होता, राघव को नहीं होता. और कैसे फन बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं, लाइट बना सकते हैं एग्जाम टाइम को, कोई आइडिया है आप लोग के पास? क्या करते हो आप लोग एग्जाम टाइम में, कैसा डे का शेड्यूल रहता है आपका?
3: मैं तो पहले पढ़ती हूँ, फिर जैसे शिवांशी ने बताया फिर रेस्ट लेती हूँ. मैं तो खेलते खेलते भी एग्जाम्स के क्वेश्चन याद करती हूँ.
0: ओके, खेलते खेलते भी याद कर सकते हैं, ठीक है. और
4: दीदी अगर मैं कभी कभी याद नहीं करती तो पता है मेरा दिमाग कैसे चलता है? सुबह उठ के याद करती हूँ, सुबह सुबह. ये टीचर भी बोलती है हमारी, सुबह सुबह उठ के याद करो तो आपको जल्दी याद होता है, तो मेरे को ऐसे ही याद होता है ज्यादा.
0: हाँ, ये कर सकते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं, जल्दी उठने से जल्दी याद हो जाता है.
2: रात के 2 घंटे और सुबह का आधा घंटा बराबर होता है.
0: ये कहा जाता है कि सुबह आपको जल्दी याद हो जाता है. किसी ने ट्राई करके देखा है सुबह उठ के पढ़ने?
4: हाँ दीदी, बहुत ट्राई. इस एग्जाम में मैंने यही किया था.
0: कितने बजे उठते हो
4: दीदी? सुबह 4.
0: ओके, आप लोग भी सुबह उठ के पढ़ते हो जल्दी?
3: हाँ जी.
0: सब लोग?
3: हाँ.
0: जबरदस्ती उठाया जाता है कि खुद उठ जाते?
4: नहीं, खुद उठते हैं.
2: दीदी एक बार तो मैं पढ़ने के लिए उठी थी, ये पढ़ने लगी ना तो ऐसा लगा लेट के पढ़ लेती हूँ, फिर लेट के पढ़ने लगी फिर सो गई. फिर स्कूल के टाइम पे उठी सीधा.
0: हाँ ये होता है, अगर सोचो कि लेट के थोड़ा पढ़ लेते हैं तो फिर नींद आ जाती है ना. ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अच्छे तरीके बताया, थोड़ा सा ब्रेक लेना. और खेलते हो आप लोग एग्जाम टाइम पे या फिर खेलना बिल्कुल बंद रहता है?
2: नहीं थी, खेलते तो है तो
4: थोड़ा
5: खेल खेल में दीदी लर्न करते है टीचर बन के.
0: टीचर बन के? हाँ ये भी अच्छा आइडिया.
3: दीदी मैं तो अपनी पेंसिल वाली कठपुतली ले जाती.
0: ओके
2: दीदी, अगर एग्जाम में टाइम पास नहीं रहता छोटे छोटे पॉपिट्स होते हैं उनको किट में रखती हूँ, ताकि अगर थोड़ा माइंड को रेस्ट देना हो तो पॉप पॉप पॉप करके माइंड फ्रेश हो जाए.
0: ओके तो आप लोग पॉपिट्स लेके जाते हैं छोटे छोटे? ओके ठीक है, बड़े क्रिएटिव आइडियाज हैं आप लोग के पास. तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा है, थोड़ा खेलना बीच में अच्छा है, और छोटे छोटे पॉपिट्स ले जा सकते हो ताकि एकदम से अगर टेंशन हो जाए, याद नहीं आ रहा, तो उसकी तरफ ध्यान जाए और फिर उसके बाद वापस आप रिफ्रेश हो जाओ. ओके वेरी नाइस.
2: बस टीचर के सामने वो नहीं निकालते, नहीं तो टीचर ले लेगी ना फिर.
0: फिर डांट पड़ेगी,
4: टीचर उल्टा सुनेगी, कल से कल अपने पापा को लेके आना, मम्मी को लेके आना, डांट पड़ती है फिर.
3: दीदी इसलिए तो मैं पेंसिल में घुसा के जाती हूँ, पेंसिल निकालती हूँ तो उनको वो तो ऊपर से देखने आते, वाह पपेट वाली पेंसिल खुद बनाई है कहाँ से लाई है.
0: हाँ पपेट वाली पेंसिल लेके जाते हो आप.
3: हाँ.
0: आजकल पेंसिल भी बड़ी अच्छी अच्छी आती है ना, क्रिएटिव और बना. हाँ. भी तो सकते हैं घर पे अगर नहीं खरीद रहे तो.
3: हाँ.
0: है ना, बना भी सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. ओके तो इतने सारे तो आइडियाज दे दिए आपने, मुझे लगता है इतने आइडियाज के साथ तो फिर एग्जाम टाइम आपको कैसे
1: दीदी मैं अच्छा तो नहीं लगेगा. विनर लेके जाता हूँ मैं कभी कभी, मैं शिवांशी की पॉकेट में डाल देता हूँ और जाते वक्त वैन में घुमाता हूँ.
0: अपनी पॉकेट में क्यों नहीं डालते हो?
1: ताकि मुझे डांटना पड़े,
0: ताकि शिवांशी को डांट पड़े.
4: नहीं सोचोगे नहीं, जब हम एग्जाम सेंटर में बैठे होते
0: हाँ, फिर
1: वो बहुत सारे टॉयज लेके जाती है, इसीलिए मतलब वो अगर रखेगी तो मैम को शक तो नहीं जाएगा कि ये किसी और का है.
2: दीदी गर्ल्स के इतने चेक भी नहीं होते ना, इसलिए इसका एडवांटेज उठा रहे.
0: बड़ी बहन होने के फायदे उठा रहे हो आप.
4: अगर मान लो मैं एग्जाम सेंटर में बैठी हूँ जहाँ पे एग्जाम दे, अगर उससे आगे मेरी कोई क्लास की लड़की बैठी है या फिर कोई दूसरी क्लास की लड़की बैठी है, मेरी फ्रेंड है, मतलब हम क्या करते हैं? अगर टीचर बाहर गई होती है या फिर टीचर का ध्यान कहीं और होता है ना, हम स्टोन पेपर सीजन खेलते हैं
0: एग्जाम में. अरे बाप रे, तो डर नहीं लगता मेरा टाइम कम हो जाएगा एग्जाम में लिखने का?
4: जब पूरा करके बैठते हैं और टाइम पास नहीं होता.
0: अच्छा पूरा करने के बाद?
4: हाँ. और अगर पूरा करने के बाद में ये इसका आंसर ये याद आता है तो फिर उसे कर देते हैं.
0: ओके
2: दीदी हम तो पेपर करके आराम से सो जाते हैं अगर टाइम बचा होता है तो.
4: नींद भी आती है
2: दीदी, नींद आ जाती है, फिर टीचर आग उठाती है, बेटा पेपर दे दो, बहुत सो लिया.
0: खत्म हो गया.
3: एक दिन तो मुझे नींद ही आ गई थी इतनी जोर की, क्योंकि घर पे पापा ने जबरदस्ती उठाया था, मन ही नहीं कर रहा था, छोड़ो ना एग्जाम क्या देना है, नींद आ रही है उसको पूरा करो पहले.
0: पर पेपर देना तो जरूरी है इसलिए पापा ने उठा दिया होगा.
5: दीदी मुझे तो कभी कभी नहीं, मुझे रोज ही नींद आती है.
0: एग्जाम में जाके सोते नहीं जाते हो?
5: नहीं मैं एग्जाम देके फिर सोती हूँ.
0: फिर सो जाते हो. अनुष्का, अनुष्का को नींद आती है एग्जाम में? आती है.
6: हाँ.
0: फिर कैसे जगाते हो खुद को?
6: जग जाते मैम आती है ऐसे ही, जब नींद लगने वाली तब तक तो मैम ही आ जाती है.
0: मैम आ जाती है तो जगना ही पड़ता है फिर.
4: नहीं मैम खुद बोलती है बेटा पेपर हो गया सो जा, सो जा
0: होने के बाद.
4: वैसे बोलते
0: मतलब ये पहले नहीं
5: था। अगर दीदी एक बार ना मैं स्कूल में था, मेरा पेपर 10 मिनट में ही खत्म हो गया था।
0: 10 मिनट में? कितने मार्क्स का पेपर था?
5: 50
2: होगा दीदी।
0: 50 मार्क्स का पेपर 10 मिनट में खत्म कर दिया? अच्छा तो वो MCQ वाला था क्या? फिर 10 मिनट में कैसे खत्म कर दिया?
5: क्वेश्चन आंसर्स वाला ही था।
0: तो आपने वन वर्ड लिखना था?
5: नहीं।
0: तो फिर भी 10 मिनट में खत्म कर दिया? बाप रे, ये स्किल तो सीखनी पड़ेगी, ये वाली तो आती नहीं है किसी को, 10 मिनट में पेपर खत्म करने वाली।
4: दीदी खत्म करते जल्दी भी खत्म किया, 1.5 घंटा। 10 मिनट में कौन पेपर खत्म करता?
5: फिर ना जो मेरे मतलब मेरे स्केच थे, जो मेरे स्टेशनरी आइटम था, उससे मैंने एक एरोप्लेन बनाया था, वो मतलब मैं फिर उससे ही खेल रहा था
0: बाकी पेपर में ना।
3: लेकिन दीदी जब जल्दी जल्दी पेपर करते है ना, उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
0: हाँ, पेपर को ध्यान से करना चाहिए ना, सारे क्वेश्चंस पढ़ के।
5: ना दीदी, हम लोग तो ध्यान से करते हैं।
4: सोचोगी नहीं, मैं एक क्वेश्चन को लिखने में 10-15 मिनट लगाती, चाहे वो छोटे उसका क्यों ना हो, अच्छे से उसकी राइटिंग निकालते, अच्छे से उसको याद करके लिखती।
5: दीदी एक बार क्या हुआ, मुझे जब मैं स्टार्टिंग में आया ना, तो मुझे पता नहीं था कि रीडिंग टाइम भी होता है, तो मैं रीडिंग टाइम में ही सब लिख दिया मैंने, फर्स्ट पेज का, सेकंड पेज आधा लिख दिया, और रीडिंग टाइम तब खत्म हुआ। मैम ने बोला ये तो सारा आपको हुआ कैसे? मैंने बोला मैम एग्जाम तो पहले ही स्टार्ट हो गया था ना।
0: आपको पता नहीं था
2: दीदी, हम 10 मिनट।
5: फिर मैम ने मुझे पूरा इरेज करवा के वापस लिखवाया।
0: ओहो, कोई बात नहीं, पहली बार था ना, होता है कभी कभी।
2: दीदी 10 मिनट में तो करने को हम भी कर सकते हैं, फिर सोचने की बात है, 3 घंटे क्यों दिए? फिर आराम आराम से ही करो, क्यों इतना दिमाग को स्ट्रेस दिया?
0: हाँ, क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्वेश्चन में आंसर नंबर आपने सही डाला है वो ठीक से लिखो।
5: और दीदी, और है ना, हम लोग अगर हेड डाउन कर लेते हैं ना, सोने जाते हैं, तो मैम बोलती है पेपर हो गया, हम बोलते हैं हो गया, तो मैम चेक करती है सारे क्वेश्चन आंसर लिखे हैं ना, तभी हमें सोने देती है, नहीं तो बोलती इसका नहीं आ रहा लिख।
0: तो छोड़ना नहीं चाहिए, जितना समझ में आए वो लिखना चाहिए, है ना?
5: अगर अपा लिखते हैं तो मैम आधा तो मार्क्स देंगे।
0: हाँ, कुछ तो मिलेंगे ना नंबर, तो एकदम छोड़ना नहीं चाहिए।
4: आप आधे नंबर से पास क्यों ना बाकी हो, तो कुछ मिल जाते हैं।
0: हाँ, थोड़ा तो देखो आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर, कुछ तो याद होता ही होगा, तो उससे संबंधित जो याद हो लिख दो। चलिए, बहुत सारी बातें आप लोगों ने की है, मुझे लगता है एग्जाम को इजी बनाने के तरीके भी आप लोगों के खुद के ही पास हैं, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए और क्रिएटिव क्रिएटिव तरीके निकालना इस साल, जिस भी आप क्लास में हो, एक और क्रिएटिव तरीका सब लोग निकालना एग्जाम टाइम को और आसान करने के लिए, पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए क्रिएटिव तरीका, ठीक है? फिर बताना कि कौन सा तरीका आप लोगों ने निकाला है थोड़े समय बाद, ठीक है? चलो फिलहाल हमारे दोस्तों को करते हैं गुड बाय, और जिनके भी एग्जाम या टेस्ट आने वाले हैं या इस साल जब भी होंगे, उसके लिए अभी से सबको ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।

0: प्रणव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।
2: इतना तो
3: कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 13वां पाठ बसेरा ऊंचाई पर पृष्ठ संख्या 120 कहानी एक यात्री की। मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूँ हरदम। हम दोनों ही मुंबई की भीड़भाड़ वाली, शोरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों में से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी, दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रियारी। मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना, वह भी मोटरसाइकिल पर लादकर। मैंने बहुत सोच समझ कर जरूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफी दिन तक खराब ना होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल, रखने के लिए डिब्बे इत्यादि भी। मैं मुंबई से निकला, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी। इतने सालों से मैं थक चुका था एक तरह के शहर देखते देखते। पृष्ठ 121। वहीं एक जैसे घर सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलवा छत वाले और बर्फ से ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में भी देखे थे। दिल्ली में सारा सामान भरवा कर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताजी हवा के बीच मैंने चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। पता करो, नक्शे में देखकर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे। गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानियों के नाम पता करो। क्या और कोई भी बड़ा शहर रास्ते में आया होगा? मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी? यह शहर कौन से राज्य में है? मेरा नया घर। मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से ही रोज आंख खुलती। पृष्ठ 122। बताओ, क्या तुम कभी टेंट में रहे हो? कहाँ? कैसा अनुभव था? मान लो तुम्हें अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है और तुम अपने साथ केवल 10 चीजें ले जा सकते हो। उन 10 चीजों की सूची बनाओ जो तुम ले जाना चाहोगे। तुमने किस किस तरह के घर देखे हैं उनके बारे में बताओ, चित्र भी बनाओ। ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं और लूनार लेह पहुंच ही गए। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वे लूनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। ताशी के घर पर ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर दो मंजिला था, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते थे। पृष्ठ 123। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी और जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल हुए थे। फिर ताशी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नजारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थीं। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। ताशी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती है जब फल सब्जी नहीं मिल पाते। सोचो यह किन महीनों में होता होगा और क्यों? वहां खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था, बिल्कुल वहां के मौसम और लोगों की जरूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। लिखो, ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे? तुम्हारे घर की छत कैसी है? तुम्हारे यहाँ छत किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है? पृष्ठ 124। दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े संकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जाता जा रहा था। कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। लोनर का चलना मुश्किलों से भरा था। अब मैं चांगयांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। ना ही कोई पेट्रोल पंप, ना मैकेनिक, सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। कई रातें और कई दिन बीत गए, मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चरती भेड़ बकरियां। थोड़ी ही देर पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे थे।
4: पता करो तुम जिस इलाके में रहते हो वह कितनी ऊंचाई पर है। गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा? इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो? कहाँ? वह कितनी ऊंचाई पर था? क्या वहां सांस लेने में तुम्हें भी परेशानी आई? तुम ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई तक गए हो? पृष्ठ संख्या 125। चांगपा, वहां मैं मिला नामग्याल से। उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग? चांगपा घुमंतू लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से उन्हें अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है, दूध, मांस।

याक पर लाद कर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेट कर निकल पड़ते हैं। जहां ठहरना हो वहां कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। आपका स्वागत है, कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को रेवो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। पृष्ठ संख्या 126। ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी। पट्टियां 9 डंडियों के सहारे जमीन से बंधी थीं। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे के आसपास ऊंची जमीन पर टेंट लगाते हैं। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता। रेवो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेवो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं। ठंड भी कैसी, सर्दियों में यहां का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत तेज चलती है। दुनिया में मशहूर पश्मीना, माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहां सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम, यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत, सोचो अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। पृष्ठ संख्या 127। 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति। सोचो अगर तुम अपने गांव में बस में बैठे और वह इसी गति से चले तो तुम 1 घंटे में कहां पहुंच जाओगे। रेवो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए एक जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं और ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है। चांगपा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है? जैसे तुम्हारा कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल किए गए जानवर इत्यादि। ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो कि जानवर तुम्हारी जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। क्या भेड़ बकरियों को अपने शरीर के बाल की जरूरत नहीं होती? चर्चा करो, पता करो। तुमने पढ़ा कि चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से काफी कम हो जाता है। टीवी या अखबार में देखकर बताओ कि और कौन से शहर हैं जिनका तापमान 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। वे शहर भारत के हो सकते हैं या किसी और देश के भी। किन महीनों में तुम्हें ऐसे तापमान की खबरें देखने को मिलेंगी? श्रीनगर की ओर मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए। ना चाहते हुए भी आगे तो बढ़ना ही था।
लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से

0: दूर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर का रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखी। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहां के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों ने मेरा दिल ही जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर, तरह तरह के घरों में लोग रहते थे। पृष्ठ संख्या 128। उन घरों में मैंने कई फोटो खींचे। ये फोटो तुम भी देखो। अपने सफर की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी ना था कि एक ही राज्य में मुझे इतनी तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे। लेह में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का, और श्रीनगर में अनुभव था पानी पर रहने का। इन इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहां के मौसम के अनुकूल थे। वापसी का समय। फिर आगे बढ़ने का समय आ गया। इस बार जम्मू शहर से होते हुए जाना था। अब फिर वैसे ही घर दिखे जिन्हें देखकर मैं बड़ा हुआ हूं। वही सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि ये मजबूत और टिकाऊ हैं, पर इनमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुशकिस्मती से लेह और श्रीनगर में देखे। फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफर करके मैं और लोनर मुंबई पहुंचने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लोनर वापिस नहीं आना चाह रही थी। मेरा मन भी भारी हो रहा था, पर अंदर से दिल में एक खुशी थी। इतना कुछ अनोखा और नया मैं अपनी यादों और अपने कैमरे में कैद कर लाया था, और यह अंत थोड़े ही है। मैं और मेरी मोटरसाइकिल फिर जब इस शहर से उब जाएंगे तो निकल पड़ेंगे एक नए सफर पर। देखो और बताओ। देखो, जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह के घर हैं जो कि वहां के लोगों की जरूरत और मौसम के अनुरूप बनाए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 129। श्रीनगर के घरों पर एक नजर। यहां 6 तस्वीरें दी गई हैं। पहली तस्वीर श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट या हाउस बोट में जो रहते हैं उनके बारे में है। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। दूसरी तस्वीर, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। तीसरी तस्वीर है हाउस बोट, और हाउस बोट के बारे में यहां पर बताया गया है। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिग्सॉ पजल जैसा दिखता है। दूसरी तस्वीर में चलते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवां होती है। अगली तस्वीर, यहां के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियां। ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नजारा बढ़िया दिखता है। और अंतिम तस्वीर, यहां के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। पृष्ठ संख्या 130। क्या तुम्हारे इलाके में अलग अलग तरह के घर हैं? अगर हां तो इसके कारण सोचो। तुम्हारे घर में क्या कोई खास बात है, जैसे ज्यादा बारिश होती है तो ढलवां छत या बड़ा बरामदा, जहां गर्मियों में सोते हो और धूप में कुछ सुखाते हो? अपने घर के बारे में सोचो। घर बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है? मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या सीमेंट? अपने घर की खास बात चित्र द्वारा दिखाओ। सोचो और लिखो। इस चित्र को देखो, क्या इसमें कुछ घर पहचान पा रहे हो? ये लकड़ी और मिट्टी के घर हैं जिनमें सर्दियों में कोई नहीं रहता। गर्मियों में बकरवाल लोग यहां रहने आते हैं, जब वे बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। अंदाजा लगाओ कि बकरवाल और चांगपा लोगों की जिंदगी में कौन सी बातें मिलती जुलती हो सकती हैं और क्या फर्क है। हम क्या समझे? तुमने जम्मू कश्मीर के तरह तरह के बसेरों के बारे में पढ़ा, कुछ ऊंचे पहाड़ पर, कुछ पानी में, कुछ जिनमें लकड़ी और पत्थर पर सुंदर डिजाइन है, कुछ जिन्हें बांधकर किसी और जगह भी ले जाया जा सकता है। बताओ, यह बसेरे वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से कैसे बने हैं? यह घर तुम्हारे घर से कैसे अलग हैं?
1: बसेरा ऊंचाई पर। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 13वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ये 13 अक्टूबर की बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज उत्तरा फाल्गुनी है और इसके साथ ही सी के नायडू, अशोक कुमार, नुसरत फतेह अली खां, भूला भाई देसाई, अविनाश साबले, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ मीरा मिनाही, किशोर कुमार, निरुपमा राय, जर्नैल सिंह, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज शेयर करेंगे और एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जिसके होने से मिलता मुझे सुकून है, ऐसा सुकून जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है, वो है मेरा दोस्त। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम लोग विशेष कुछ लोगों के जीवन कहानी से आपको जोड़ने वाला हूँ मैं। और नुसरत फतेह अली खां, यह एक ऐसा नाम जो नाम आपको सुनकर जो है बेहद खुशी होगी। और ये नाम साहित्य जगत में और ख़ास करके गज़ल संगीत इन सारी चीज़ों में इनका नाम जो है विशेष रूप से कव्वाली में आता है। और ऐसे कव्वाल जिनकी पूरी जमात जो है यानी खानदान जो है जिसमें सारे कव्वाल हुए हैं। तो हाँ, ये ऐसे विशेष व्यक्ति की जीवन कहानी से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। आप सुनाए हैं रिनवाधवन पर, जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को और सी के नायडू एक ऐसे क्रिकेटर जिनके बारे में आप सुनेंगे आज, अशोक कुमार। जी हाँ, अशोक कुमार को कौन नहीं जानता, दादा मुनीम। जी हाँ, दादा मुनीम नाम से बहुत ही पॉपुलर हिंदी फिल्मों के बहुत ही अच्छे अभिनेता, निर्माता, निर्देशक किशोर कुमार।

ये बड़े भैया है। तो चलिए मैं आप सभी को इनके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, और अभी कार्यक्रम के इस पड़ाव में आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते रहो, मस्त रहते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट्स का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार ढेर सारी खुशियों के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है। वही अक्टूबर की बातें चल रही हैं। अक्टूबर मास में विशेष रूप से हम लोग कुछ खास बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज 13 अक्टूबर की बातें हमने सुनी। आइए, कुछ खास लोगों का जन्मदिन है तो हमें भी अच्छा लगता है उनके बारे में बात करना, और उनके बारे में सुनना आपको भी अच्छा लगता है ना। तो एक मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपको सीके नायडू के बारे में बात करना चाहूँगा। अभी ये भारत के एक ऐसे क्रिकेटर रहे, नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, भारत की क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कैप्टन सीके नायडू। और उस उम्र तक क्रिकेट खेलते रहे, जिसके बारे में सोचना भी आज के खिलाड़ियों के लिए सपना है। नायडू के उस समय की फिटनेस आज के उन खिलाड़ियों के लिए एक सबक है, जो दूसरे तीसरे मैच के बाद ही चोटीले हो जाते हैं। 37 साल की उम्र में जब आज खिलाड़ी रिटायर होने लगते हैं, तब सीके नायडू ने टेस्ट मैच खेलना शुरू किया था, और वो 68 साल तक फिट रहकर क्रिकेट खेलते रहे, है ना कमाल की बात। तो इसीलिए इनका नाम इतिहास में अलग तरह से दर्ज की गई है, क्रिकेट के इतिहास में। भारत का पहला प्रथम टेस्ट टीम के कैप्टन सीके नायडू का जन्म 13 अक्टूबर यानी आज के दिन 1895 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। कर्नल कोटीरी कंकैया नायडू को प्यार से सभी लोग सीके नायडू कहकर पुकारते हैं। भारत के पहले टेस्ट मैच में वो भारतीय टीम के कप्तान थे, और ये मैच 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला गया था। यद्यपि इंग्लैंड में टीम पूरी तरह मजबूत थी, लेकिन सीके नायडू की कप्तानी में भारतीय टीम ने जमकर उनका मुकाबला किया था। सीके नायडू का कद 6 फुट से भी ऊंचा था, वो दाहिने हाथ के खिलाड़ी थे। उनकी शारीरिक बनावट बिल्कुल एथलेटिक की भांति दुष्ट पुष्ट थी। अपने जोरदार स्ट्रोक और तेज हिट के कारण विरोधियों के खेल में दबदबा को कम कर देते थे। होलकर महाराज ने उनकी शारीरिक मजबूती को देखते हुए उन्हें अपनी सेना में कप्तान बनाया, और यहीं से वो कर्नल सीके नायडू बन गए। अरे कमाल की बात, आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफ़र इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं। 1926 से 27 के बीच में खासी लोकप्रियता प्राप्त की इन्होंने। मुंबई में 100 मिनट में 137 गेंदों पर 153 रन बना दिए, जिनमें 11 छक्के तथा 13 चौके शामिल थे। वो मैच हिंदू टीम तरफ से ई और गिलगन की एमसी के विरुद्ध खेल रहे थे। मुंबई के जिमखाना मैदान में जब अभिजात और राजा महाराजाओं का खेल हुआ करता था, तब उन्हें इंग्लैंड जा रही भारतीय टीम की कप्तान बनाए जाना एक प्रासंगिक ही था। और वर्ष 1932 में उस टीम के कप्तान पोरबंदर महाराज थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के कारण वो नहीं जा पाए, और फिर कर्नल सीके नायडू को भारतीय टीम का पहला कप्तान बनने का गौरव प्राप्त हो गया। क्रिकेट का सफ़र चलता रहा, और सीके नायडू ने विशेष आंध्र प्रदेश भारत केंद्रीय प्रेसिडेंस एर बरार हिंदू होलकर यूनाइटेड प्रवासी तथा भारतीय टीमों के लिए क्रिकेट खेला। 1932 में इंग्लैंड दौरे के दौरान सीके नायडू ने प्रथम श्रेणी के सभी 26 मैचों में हिस्सा लिया था, जिनमें 40.45 के औसत से 1,618 रन बनाया और 65 विकेट लिए। 1933 में सीके नायडू को विजडम द्वारा क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया, और सीके नायडू के नाम किसी एक सीजन में इंग्लैंड में सर्वाधिक छक्के किसी विदेशी खिलाड़ी द्वारा लगाने का रिकॉर्ड भी है। 1932 में सीके नायडू ने कमाल का खेल दिखाया और 32 छक्के लगा दिए। यद्यपि सीके नायडू का अंतर्राष्ट्रीय करियर बहुत छोटा रहा, परंतु मात्र 7 टेस्ट मैच खेले, लेकिन भारतीय क्रिकेट जगत में उन्होंने अपना ऐसा महत्वपूर्ण स्थान बनाया है कि आज तक याद करते हैं। उनके इस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें, सीके नायडू भारत के पहले टेस्ट कैप्टन बने। नायडू को 1933 में विजडम द्वारा क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। सीके नायडू भारत के पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने सरकार द्वारा पद्म भूषण मिला, और प्रथम श्रेणी के 26 मैचों में भाग लेकर उन्होंने 40.25 के औसत से 1,618 रन बनाए। हिंदू की टीम की ओर से खेलते हुए बम्बई में 1926 और 27 में उन्होंने 100 मिनट में 11 छक्के और 13 चौके लगाकर 153 रन बनाए थे। कमाल के व्यक्ति है ना, डेढ़ घंटे में इन्होंने पूरा जो है मसला ही अलग कर दिया था। और भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई दिलाने वाले की सीके नायडू जी का जो देहांत जो है 14 नवंबर 1967 को इंदौर में हुआ। तो है ना कमाल के व्यक्ति के सी नायडू। आप सुनाए हैं रेडियो माधवन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं एक और गीत की तरफ। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे। सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए, केसी नायडू के बारे में बात करके आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, उनकी बातें सुनकर, उनका इतिहास सुनकर। आइए अब एक और व्यक्ति के बारे में बात करेंगे और बड़ा अच्छा लगता है उनकी कहानी सुनकर आपको भी बेहद खुशी होगी। और ये है लीजेंडरी एक्टर अशोक कुमार जी। भागलपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। हिंदी फिल्मों के बहुत ही पॉपुलर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक अशोक कुमार को सन 1999 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। और हिंदी सिनेमा के युग पुरुष कुमुद कुमार गांगुली उर्फ अशोक कुमार को ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने उस समय प्रचलित थिएटर शैली को समाप्त कर अभिनय को स्वाभाविकता प्रदान की और 6 दशकों तक अपने बेहतरीन काम में सिने प्रेमियों को रोमांचित किया। और अशोक कुमार का असली नाम कुमुद गांगुली है, जिन्हें दादा मुनीन के नाम से भी फिल्मी दुनिया में जाना जाता था। अशोक कुमार ने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय भी किया है। तो आइए बहुविकल्पी व्यक्ति अशोक कुमार की कहानी अभी आपको सुनाते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
3: जन्म 13 अक्टूबर 1911। कुमुदलाल गांगुली वो नाम जो माँ बाप ने रखा। फिल्म इंडस्ट्री ने जिन्हें अशोक कुमार के नाम से बुलाया और उनके दोस्त उन्हें प्यार से दादा मुनि कहते थे। अशोक कुमार के करियर की शुरुआत बॉम्बे टॉकीज से हुई, जहां पर वो लेबोरेटरी असिस्टेंट का काम किया करते थे। एक किस्सा यूं कहा जाता है कि देविका रानी के एक हीरो नजमुल हुसैन एक बार सेट से भाग गए थे, जिस वजह से बॉम्बे टॉकीज के को ओनर हिमांशु राय ने अशोक कुमार को हीरो का रोल देने की सोची। देविका रानी और अशोक कुमार की जोड़ी भी खूब बनी। फिल्म अछूत कन्या में इन दोनों का काम बहुत पसंद किया गया। उसके बाद इन्होंने फिल्म इज्जत, सावित्री और निर्मला में भी जोरदार परफॉर्मेंसेस दी। अशोक कुमार की किस्मत का सितारा दरअसल चमका फिल्म किस्मत से ही, जिसमें उन्होंने एक एंटी हीरो का रोल किया था। दादा मुनि हमेशा से ही रिस्क लिया करते थे और इस फिल्म के साथ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो एक अलग छाप बना गए।

0: बॉम्बे टॉकीज के लिए अशोक कुमार ने ढेर सारी फिल्म्स भी प्रोड्यूस की जिनमें महल का नाम अलग से लिया जाता है। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के साथ भी अशोक कुमार की जोड़ी को खूब सराहा गया। ढेर सारी फिल्मों में ये दोनों एक साथ नजर आए, चाहे वो परिणीता हो, बहू बेगम, पाकीजा, एक ही रास्ता, बंदिश या फिर आरती। इन सभी फिल्मों में इन दोनों के अभिनय को खूब सराहा गया।
1: हम माफ कर दें, हमारा कौन सा गुनाह किया?
0: अशोक कुमार उन एक्टर्स में से रहे जिन्होंने बड़े पर्दे के साथ छोटे पर्दे पर भी खूब काम किया। 80 के दशक का सीरियल हम लोग, जिसमें वो एक सूत्रधार की भूमिका निभा रहे थे, आज भी लोगों की याददाश्त में ताजा है। धीरे धीरे अशोक कुमार अपने दो छोटे भाइयों को भी फिल्म इंडस्ट्री में ले आए, जिनमें अनूप कुमार एक्टर हुए और किशोर कुमार एक्टर और सिंगर दोनों।
2: सबसे ये दिल दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो।
0: एक वक्त ऐसा आया जब दादा मुनि ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बंद कर दिया। ये तारीख थी 13 अक्टूबर 1987, जब अशोक कुमार के छोटे भाई किशोर कुमार ने एक सरप्राइज पार्टी रखी थी कि दादा मुनि का जन्मदिन हम सब खुशी से मनाएंगे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री किशोर कुमार के बंगले में आ रही थी, दादा मुनि भी आए, लेकिन किशोर कुमार उसी दिन ये दुनिया छोड़कर चले गए। दादा मुनि यानी अशोक कुमार उन गिने चुने एक्टर्स में से हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का हर रूप देखा है।
3: दीदी ने आपको लिखा था ना?
1: हाँ, नीलिमा।
4: ऐसे मैं तुझको ढूंढ के अब लाऊं कहां से मैं।
5: तो ये थी कहानी अशोक कुमार के बारे में। करीब 6 दशक तक बेमिसाल अभिनय से दर्शकों को रोमांचित करने वाले दादा मुनीन अशोक कुमार 10 दिसंबर 2001 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो करीब 275 फिल्मों की ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो हमेशा हमेशा के लिए दर्शकों को सोचने, गुदगुदाने और रोमांचित करने के लिए पर्याप्त है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सफर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को और बढ़ा देते हैं और एक शख्सियत के बारे में बात करते हैं जिनकी जीवन कहानी से आपको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ये पूरी जो है खानदान, इनके जितने भी लोग आए वो सारे कव्वाल थे। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कव्वाल जैसे ही नाम लेते हैं तो एक कव्वाल के बादशाह नुसरत फतेह अली खां का ही नाम आपकी जुबान पर आता होगा। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। सूफी भक्ति संगीत की विदा कव्वाली के महानतम गायक थे। उनके गायन ने कव्वाली को विशेष रूप से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई। कव्वालों के घराने में फैजाबाद में जन्मे नुसरत फतेह अली खां को उनके पिता उस्ताद फतेह अली खां साहब से स्वयं बहुत मशहूर और मारूफ कव्वाल थे। अपने बेटे को इस क्षेत्र में आने से रोका था, पर खानदान की 600 सालों से चली आ रही परंपरा को तोड़ना चाहता, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। लगता था जैसे ईश्वर ने इस खानदान को सिर्फ इन 600 सालों में मेहरबानियों का सिला दिया हो। पिता को मानना पड़ा कि नुसरत की आवाज़ भी उस परवरदिगार का दिया हुआ तोहफा ही है, और वे फिर नुसरत को एक ख्याति प्राप्त कव्वाल बनाने से रोक ही नहीं पाए। तो आइए ऐसे नुसरत फतेह अली खान की कहानी अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को। और चलिए हमारे सभी कुपराम जी, सुरेश जी एंड कंपनी, और जागीरदार जी, फिरोज जी, और हमारे जो है रमेश जी राधनपुर वाले, बड़े प्यार से फ़ोन करते हैं। कभी कभी साहेब हम रेडियो सुनते हैं फ़ोन से, पहले का वो रेडियो सुनते थे हम लोग रेडियो सेट से। मेरा रेडियो सेट ख़राब हो गया है इसलिए अब मैं फ़ोन कम करता हूँ, फ़ोन से ही रेडियो सुनता हूँ। आप लोगों को सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी राधनपुर वाले। और हमारे कंचन भाई मंदाली से भी याद करते हैं, और अभी बहुत दिन हो गए उनकी आवाज़ नहीं सुन पाई हम। और साथ ही साथ हमारे सभी दोस्त हैं, अर्जुन सिंह जी हैं, सभी लोग याद करते हैं, उमेश जी याद करते हैं, अंकित जी याद करते हैं, और लीला बहन, सुगना बहन, और हर्षिता जी, विभा जी, और खुशी जी, सभी लोग याद करते हैं बड़े प्यार से। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए चलिए सीधे चलते हैं नुसरत फतेह अली खां की कहानी की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।
1: हम आज उस दौर में जी रहे हैं जहां पर म्यूजिक के बिना हमारा जीवन अधूरा सा लगता है। आज के जो म्यूजिक कलाकार हैं, उन्होंने अपनी मखमली आवाज से सभी का दिल जीत रखा है, लेकिन कुछ म्यूजिक कलाकार ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में बहुत नाम कमाया है। चलिए बात करते हैं उनमें से ही एक, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की। तो दोस्तों, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का जन्म 13 अक्टूबर 1948 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैसलाबाद शहर में हुआ था। नुसरत फतेह अली खान का असली नाम परवेज अली खान था। उनके पिता का नाम फतेह अली खान था, जो कि भारत के मशहूर कव्वाल थे। नुसरत साहब का खानदान पिछले 600 सालों से कव्वाली गाते आ रहा है। नुसरत फतेह अली खान जब 16 साल के थे तब उनके पिता की मौत हो गई थी। नुसरत के पिता उन्हें कव्वाल नहीं बनाना चाहते थे। वे समझते थे कि कव्वाली में उनका दर्जा एक छोटे आदमी के जैसा होता है। वे नुसरत साहब को डॉक्टर बनाना चाहते थे। नुसरत को अपने पिता की मौत के लगभग 10 दिन बाद एक सपना आया, जिसमें फतेह अली खान साहब नुसरत से कहते हैं कि तुम्हें आगे चलकर कव्वाल बनना है और कव्वाली पढ़नी है। फिर उन्होंने अपने चाचा सलामत अली खान और मुबारक अली खान के साथ छोटे पैमाने पर कव्वाली गाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पिता के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहली बार लोगों के सामने आकर कव्वाली गाई। अपने चाचा मुबारक अली खान की मौत के बाद नुसरत अपने परिवार के मुख्य कव्वाल बन गए। उनकी पार्टी का नाम नुसरत फतेह अली खान मुजाहिद मुबारक अली खान कव्वाल एंड पार्टी था। नुसरत फतेह अली खान का नाम परवेज फतेह अली खान था। जब वे गुलाम गोश समदानी के पास गए, वहां नुसरत की कला के बारे में जानकर गुलाम गोश समदानी ने उन्हें नुसरत नाम दिया। उन्होंने कहा था कि नुसरत एक दिन बहुत ही बड़ा कव्वाल बनेगा और परिवार का नाम दुनिया में रोशन करेगा। नुसरत का अर्थ होता है विजय या जीत। हक अली अली मौला अली अली नामक कब्बाली ने नुसरत का नाम पाकिस्तान सहित दुनिया के सामने लाकर रख दिया। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस समय उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 125 से ज्यादा कब्बाली गाने के लिए दर्ज था। उनके साथ उनके भाई फारूक फतेह अली खान और कई चचेरे भाई भी गाते बजाते थे। नुसरत को दुनिया के सामने लाने और उन्हें मशहूर बनाने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है पीटर ग्रेबियल, जो कि एक अंग्रेजी गायक हैं। नुसरत फतेह अली खान को सन 1987 में उनके प्रदर्शन से प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी मिला। उसके बाद नुसरत ने सन 1989 में पहली बार विदेश में कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। नुसरत का नाम संगीत जगत के बड़े गीतकारों में आने लगा था। उन्हें शहनशाह कब्बाली नाम से भी जाना जाने लगा। नुसरत ने बॉलीवुड में भी कुछ गाने गाए हैं। इन गानों में नुसरत का सबसे बढ़िया और लोकप्रिय गाना दुल्हे का सेहरा है। ये गाना धड़कन फिल्म में फिल्माया गया था। नुसरत 1990 के बाद ज्यादातर विदेशों में ही जाते थे और वहीं पर अपने कॉन्सर्ट करते थे। उन्होंने राहत फतेह अली खान को 6 साल की उम्र से गायन और हारमोनियम बजाना सिखा दिया था। सन 1997 में नुसरत फतेह अली खान एक कॉन्सर्ट के लिए लंदन गए थे। उनकी तबीयत उस समय गंभीर थी, लेकिन उन्हें अपने काम से बड़ा प्यार था, इसलिए उन्होंने आखिरी कॉन्सर्ट रद्द करने के बजाय स्ट्रेचर पर किया। उस कॉन्सर्ट के कुछ ही दिनों बाद 16 अगस्त 1997 को नुसरत साहब की कार्डियक अरेस्ट के कारण लंदन में मौत हो गई।
0: तो ये थी कहानी नुसरत फतेह अली खान की। अब कहानी तो आपने पूरी सुनी ली है, लेकिन एक गीत, एक कवाली तो होना ही है ना? एक कवाल आपके लिए, एक कवाली आपके लिए। अब नुसरत फतेह अली खान का बेहतरीन नज़्म अभी आपके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। तुम्हें दिल लगी बुलानी पड़ेगी, ये खास आपके लिए।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने मन की कमजोरियों को देखना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है, यही साहस आपको मजबूत बनाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आशा करूंगा नुसरत फतेह अली खां का गजल सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा होगा। एक सूफियाना अंदाज है, इसलिए आप उन्हें सुनते सुनते काफ़ी खो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो आइए अब बात करते हैं भुलाभाई देसाई के बारे में। बहुत ही प्रख्यात विधिवेता, मुख्य संसदीय नेता और महात्मा गांधी के बहुत ही निकट के सहयोगी थे। संसदीय नेतृत्व में उनमें अनुपम गुण थे और वो नेता के रूप में नौकरशाही उनसे सदा अंतकित रहती थी, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के सेनापति शहनवाज ढिल्लों तथा सहगल पर राजद्रोह के मुकदमे में सैनिकों का पक्ष समर्थन भुलाभाई देसाई ने जिस कुशलता से किया था, जिस योग्यता से किया था, उससे उनकी कीर्ति देश में नहीं बल्कि विदेश तक फैल गई थी। तो आइए ऐसे भुलाभाई देसाई के बारे में जानकारी आपको देता हूँ मैं। अभी आज ही के दिन यानी 13 अक्टूबर सन 1877 को गुजरात के सूरत जिले में इनका जन्म हुआ और विशेषज्ञ आपको विरासत में मिली थी विधि का, और आपके पिता सरकारी वकील थे और इसीलिए आप भी वकालत में आगे बढ़े। और निर्भीक उक्तियाँ भुलाभाई देसाई की उल्लेखनीय विशेषताएं थी। बम्बई में अल्फिस्टन तथा सरकारी लॉ कॉलेज में भुलाभाई देसाई ने कानून की उच्चतम डिग्री प्राप्त की और बाद में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता बने। विशारद होने के कारण आपको अल्पकाल में ही धन तथा यश की प्राप्ति हुई। राजनीतिक सफर की बात करें तो भुलाभाई देसाई राजनीति के क्षेत्र में सबसे पहले मडरेंटो के साथ, तदंतर होम रूल लीग में और अंत में विशेष महात्मा गांधी की प्रेरणा तथा निर्देशन से प्रभावित होकर स्वाधीनता आंदोलन में मुख्य भाग करने का प्रमुख भाग लिया आपने, और प्रमुखता से जब काम करना शुरू कर दिया, गुजरात के किसानों को कानूनी सहायता देकर स्वराज आंदोलन को नवीन शक्ति प्रदान की। इस दिशा में वो कार्य के फलस्वरूप ही ब्रह्म फील्ड प्रतिवेदन में किसानों की कठिनाइयों को कम करने की संस्तुति दी गई थी। 1930 के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण भुलाभाई देसाई को एक वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपये जुर्माना का दंड मिला। इसके बाद के सभी मुख्य कांग्रेसी आंदोलन में वह भाग लेते रहे। केंद्रीय धारा सभा में कांग्रेस दल के नेता के रूप में इनका कार्य ऐतिहासिक महत्व का है। आपके तीखे तथा तथ्यपूर्ण भाषण सरकारी पक्ष के हतप्रभ बर देते थे। उसमें ऐसी अनोखी सूझबूझ थी जिसके फलस्वरूप व महत्वपूर्ण बिलों पर मुस्लिम पार्टी को साथ लेकर सरकारी पक्ष को पराजित कर देते थे। केंद्रीय धारा सभा में उनकी संसदीय प्रतिभा तथा असाधारण क्षमता अप्रतिम मानी जाती रही है। तो आइए ऐसे विशेष गुण वाले व्यक्ति की अगर बात करें तो आज़ाद हिंद फौज के सेनापति श्री शाहनवाज ढिल्लों तथा सहगल पर राजद्रोह के मुकदमे में सैनिकों को इतना समर्थन भुलाभाई देसाई ने दिया, जिस कुशलता से उन्होंने योग्यता से पैरवी की, उसकी कीर्ति देश विदेश में तो फैल गई और प्रतिपक्षी पर प्रबल प्रहर कर उसे निरस्त कर देने का असाधारण और अद्भुत क्षमता थी। यही कारण है कि उनके पास प्राय अत्यंत गंभीर कानूनी उलझनों के मुकदमे आया करते थे और देश के ख्याति लब्ध विशेषज्ञों में उनका मुख्य स्थान रहा। संसदीय नेतृत्व में उनमें अनुपम गुण थे और फिर रूप नौकरशाही उनसे बच के रहते थे। अंग्रेजी भाषा पर उनका इतना अधिकार था कि भुलाभाई देसाई अगर अंग्रेजी बोलते तो लगता है कि इनका वही भाषा है और भाषणों में, तर्कों में तथा व्यंग विनोद उक्तियों के साथ वो ऐसी संयोजना बना देते थे कि सामने वाला पार्टी बस भुलाभाई देसाई को सुन ही लेता था। इस संबंध में देसाई लियाकत समझौते का विशेष महत्व है और आपके व्याख्यान तथा विचार संग्रह विशेष रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। और शुरुआती जीवन में भुलाभाई देसाई ने अहमदाबाद स्थित गुजरात कॉलेज में अर्थशास्त्र तथा इतिहास विषयक प्राध्यापक का भी कार्य करते रहे थे। तो ये थी कुछ खास बातें भुलाभाई देसाई के बारे में आपके लिए। 13 अगस्त 1877 को जन्मे सूरत गुजरात में और 6 मई 1946 को इन्होंने अपना जीवन पूरा किया। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम खबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो माधवन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक और शख्सियत के बारे में बात करूंगा, अविनाश सावले के बारे में। चलिए, आपको आज बड़े ही अच्छे लोगों की जीवन कहानी से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और अविनाश सावले जो है एक भारत के बहुत ही सुंदर खिलाड़ी है, एथलेटिक है, रनर है, जो लंबी बाधा दौड़ के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने विशेष इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए रजत पदक जीता है। और स्टार एथलेटिक अविनाश सावले ने एक नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में 3000 मीटर स्टीपल चेन स्पर्धा का रजत जीता है, जो उन्होंने 8:11.220 का समय लेते हुए 8:11.20 का समय लेते हुए पदक अपने नाम किया। इससे पहले अविनाश सावले के ओलंपिक 2020 में टोक्यो ओलंपिक की 3000 मीटर स्टीप चेन स्पर्धा में अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर किया था उन्होंने, लेकिन दूसरी हिट रेस के शीर्ष स्थान एथलीटों से बेहतर समय निकालने के बावजूद वो फाइनल में जगह नहीं बना पाए। भारतीय सेना में हवलदार के पद पर अविनाश सावले ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 और 3000 मीटर स्टीपल चेन स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। और ये महाराष्ट्र के मांडवा गांव के रहने वाले किसान के बेटे अविनाश सावले 1952 के बाद पुरुषों की 3000 मीटर स्पीच लिस्ट क्वालिफाई करने वाली भारत के पहले खिलाड़ी है। और 2019 और 2019 में विशेष एथलेटिक चैंपियन फाइनल में इन्होंने बहुत कम समय में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। और अविनाश सावले ने सेना में जाने के बाद एथलेटिक प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर दिया और वहीं से इनकी जो है खेल जगत में एक नया नाम उभरता आ गया। 2017 में लॉन्ग रेस करते, लेकिन उसके बाद वो दूसरे भाग में भी स्पीच चेंज करने में भी आ गया। 2015 में पहली बार इंटर आर्म कोर्स कंट्री में भाग लिया और 2016 में उनका वजन बढ़ा, जिसकी वजह से वो इंटर आर्मी क्रॉस कंट्री में 8वें स्थान पर रहे। और फिर धीरे धीरे अमरीश कुमार की नज़र पड़ी और उन्होंने अविनाश को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अविनाश ने उनकी निगरानी में अपना वजन कम किया और कुछ ही महीनों बाद 2017 में कोलकाता में टाटा स्टील 25 किलोमीटर की दौड़ में इंटरनेशनल एथलेटिक ग्रुप में 14वें स्थान पर रहे और भारतीय एथलेटिक ग्रुप के वे पहले स्थान पर रहे हैं। तो आइए इनके बारे में और बातें जानकारी देता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन अभी आपको सीधे ले चलता हूँ एक गीर की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो माधवन 107.8 एफएम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मैं ढूंढई गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आज हम लोग 13 अक्टूबर की कुछ खास बातें आपसे शेयर की। सीके नायडू, अशोक कुमार, नुसरत फतेह अली खां, भूला भाई देसाई और अविनाश शाबले की कहानी आपको हमने सुनाई। तो आशा करूंगा कि आप सभी को इनकी जो कहानी है वो सुनकर बड़ा अच्छा लगा होगा। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग कहानी को सुनते हैं और मोटिवेशन मिलता है तो बेहद अच्छा लगता है। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। और जाते जाते एक सुंदर विचार, मेरे दोस्तों ने मुझे जीना सिखाया है, मेरी आंखों की नमी को खुशियों में मिटाया है। मेरी आंखों की नमी को खुशियों से मिटाया है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आइए नवरात्रि में शक्ति के नौ रूपों का आवाहन करें। माँ चंद्रघंटा श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। आइए हम भी सभी को सुख बांटें और माँ का आशीर्वाद सहज प्राप्त करें। आज नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को मंगल कामनाएं।

0: सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी आदरणीय उषा दीदी से।
1: ओम शांति। भारत त्योहारों का देश है और हर रोज कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि उसमें से सबसे रंग बिरंगी उमंग उत्साह से भरा हुआ त्योहार नवरात्रि का त्योहार है। आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का दिन माना गया है और माँ चंद्रघंटा एक प्रतीकात्मक माँ चंद्रघंटा का मतलब है चंद्र और घंटा। चंद्र अर्थात के चंद्रमा, इसीलिए उनके चेहरे के ऊपर आधा चंद्रमा भी दिखाया है और साथ में घंटा दिखाया गया है। चंद्रमा प्रतीक है शांति शीतलता का कि जिसकी पूजा करने से मनुष्य के जीवन के अंदर शांति और शीतलता का वरदान मिले। और साथ ही साथ घंटा अर्थात के जो मंदिरों में हम घंट बजाते हैं वो भी उनके चेहरे के ऊपर दिखाया हुआ है। और कहा जाता है कि जब भी घंट बजता है तो जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक प्रकंपन है, वो दूर हो जाते हैं वातावरण के अंदर से और एक सकारात्मक ऊर्जा विकसित होते हैं। उसका चेहरा बहुत सुंदर दिखाया है, साथ में ही उसको शेर की सवारी पर दिखाया है, जिनका शरीर एकदम सुनहरा दिखाया गया है। शेर पर सवारी का मतलब है इतनी निर्भयता का प्रतीक। उसे 10 भुजाधारी दिखाया और साथ में 3 नेत्र दिखाए हैं। उसके 8 भुजाओं में 8 शस्त्र दिखाए हैं और बाकी 2 भुजाएं जो है विशेष मुद्रा को लिए हुए हैं, आशीर्वाद की मुद्रा के जो हर एक को आशीर्वाद देती है। और ज्ञान का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो ये विभिन्न हाथों में जो शस्त्र दिखाए हैं वो शस्त्र से बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करना। एक हाथ में चक्र है, ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ज्ञान का गोतक है, जिसे स्वदर्शन चक्र या सुदर्शन चक्र भी कहा गया है। त्रिशूल यानी दृढ़ निश्चय का प्रतीक और मन वचन कर्म के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। शंख यानी जो शंख ध्वनि कर अज्ञान अंधकार को समाप्त कर मनुष्य आत्माओं को अज्ञानता की नींद से जगाने का प्रतीक है। हाथ में तलवार यानी मन पर प्रहार करने वाले ईर्ष्या द्वेष विकार वासना रूपी भूतों को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा मार गिराने का प्रतीक। धनुष बाण जिसका भावार्थ है कि ज्ञान के आधार पर लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना व पुरुषार्थ रूपी बाण चलाकर द्रुपद अथवा एक रस एवं अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना है। गदा परमात्मा शिव की याद में रहकर माया अर्थात 5 विकारों से युद्ध कर उन पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। और कमल पुष्प यानी संसार में रहते हुए तामसिक विकारी वायुमंडल से अलिप्त यानी पवित्र रहने का प्रतीक है। ये दिव्य शक्तियां आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियां हैं, बाकी कोई देवियां हिंसक नहीं है, क्योंकि विकार या असुरी वृत्ति आंतरिक दुर्बलता से ही उत्पन्न होती है और ये आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही ऐसी असुरी वृत्तियों का संहार किया जाता है। और इस तरह माँ चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष पूजी जाती है और संपूर्ण रीति से असुरों का संहार करने का प्रतीक है।
2: हाय, दिस इज ग्रेसी सिंह एंड यू आर लिसनिंग टू ब्रह्मा कुमारीज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग।

0: ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम का नाम है युवा मंच। मैं हूँ अरुषि आपके साथ। दोस्तों, युवाओं के इस मंच पर कभी बातें होती हैं कि दोस्ती में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर कभी बातें होती हैं कि अगर करियर की समस्याएं हैं तो बात किससे की जाए। कभी मजाक मस्ती भी होती है तो कभी बहुत सीरियस टॉपिक्स भी होते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात कॉमन है कि ये बातचीत युवाओं से संबंधित होती है। और आज भी हमारे साथ एक युवा दोस्त जुड़ी हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, जो हमें गाइड करेंगी, हमारे साथ बातें करेंगी, क्योंकि वो MBBS कंप्लीट कर चुकी हैं, वो डॉक्टर बन चुकी हैं, और जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं आज सौम्या माथुर। सौम्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
2: सौम्या, सबसे पहले अपने बारे में अगर हमारे श्रोताओं को आप कुछ बताइए, आपने कब शुरू की थी ये पढ़ाई, और आपको क्या पसंद है?
3: तो मैंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद इन 2015 आई जॉइंड कोचिंग इन 11th 12th, एंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, तो आई वाज इन टू माइंड्स, एंड सबको, पेरेंट्स को भी लगा कि ठीक है इसी साल एडमिशन ले लेते हैं। आई जॉइंड, आई गॉट गुड परसेंटेज इन 12th बोर्ड, तो आई जॉइंड यू गार्गी कॉलेज, बट देन आफ्टर 2 मंथ्स आई फेल्ट कि नहीं, इसमें इतने मज़े नहीं आ रहे, तो लेट्स टेक अ ड्रॉप अगेन, एंड आई अपीयर्ड इन 2016, एंड अल्टीमेटली MBBS में मैंने एडमिशन लिया, एंड इट इटसेल्फ वाज अ वेरी नो चैलेंजिंग प्रोसेस, क्योंकि हम लोगों के टाइम पे देयर वाज नो रिपीट एग्ज़ाम एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, इट टुक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस ओनली। तो बीच में लगता था ठीक है छोड़ो, नहीं, इट्स बेटर कि DU में 3 साल में ख़त्म कर लेते,
2: बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन टफ होता है।
3: हाँ, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, तो ऐसा लगता था कि हाँ इसमें भी तो वॉट इज़ रॉन्ग इन दिस, बट देन अल्टीमेटली यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है अल्टीमेटली लाइफ में, बिकॉज दैट इज़ अ स्टेज जो कि एक आपकी फर्स्ट डायरेक्शन देती है, एंड देन आफ्टर दैट आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में दैट इज़ अनदर स्टेप विच डिफाइंस योर फर्दर करियर, बट द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप 12th के बाद क्या लेते हो।
2: बिल्कुल, मतलब आपके जीवन को आगे एक दिशा प्रदान करता है।
3: हाँ।
2: तो ये जो आपका निर्णय था डॉक्टर बनने का, MBBS करने का, क्या कभी बचपन में भी आपको इंटरेस्ट था इसमें?
3: हाँ,
2: धीरे धीरे आया।
3: मुझे एक्चुअली जब मैं 9 या 10 साल की थी तब से था, बिकॉज एक बार मेरी ही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, आई गॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, और आई थिंक आई वॉज इन 5th क्लास, तो मैंने सारे डॉक्टर्स को जिस तरीके से देखा था, दे वर ट्रीटिंग पेशेंट्स, मुझे जैसे उन्होंने ठीक किया, बिकॉज वो जो एक आपकी तबीयत खराब होती है एंड देन यू फाइनली गेट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल हेल एंड हार्टी, वो जो एक खुशी होती है उससे मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला, एंड आई थिंक वो जो उस टाइम जिन डॉक्टर्स ने मुझे ट्रीट किया, वो जूनियर डॉक्टर्स एंड एक कंसल्टेंट डॉक्टर थे, उनकी इमेज अभी तक मेरे दिमाग में है, तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट जब मुझे लगा कि ये फील्ड अच्छी है, बट दैट वाज वेरी स्मॉल एज, बट धीरे धीरे धीरे मुझे अल्टीमेटली लगा कि हाँ यही करना चाहिए, ना हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर भी नहीं था, तो आई ऑलवेज फेल्ट दैट वॉइड कि हाँ एक डॉक्टर तो एटलीस्ट होना ही चाहिए टू गिव माइनर कंसल्टेशन से ये दवाई लूँ ये नहीं लूँ, दैट वे।
2: कितनी अच्छी बात है, और बिल्कुल आपने जैसे कहा कि जब हमें कोई ट्रीट करते हो, अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, उनको हमेशा याद रखते हैं।
3: हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल
2: जी,
3: मुझे अभी तक 20 साल, आई थिंक 15 to 20 years हो गए उस बात को, फिर भी मुझे उनकी शक्लें ध्यान है अभी तक, उनकी फेस मेमोरी मेरे दिमाग में है।
2: तो जब आपने ये निर्णय अपने माता पिता को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था?
3: वो तो डेफिनेटली खुश थे, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब पेरेंट्स को ये लगता है कि या तो इंजीनियरिंग करें या डॉक्टर, बट हाँ माई पेरेंट्स वर क्वाइट सपोर्टिव। पापा, माई फादर गेव मी ओपन ऑप्शंस दैट यू कैन जॉइन DU, यू कैन इवन गो फॉर लॉ anything. But in that way, they were quite supportive. You can do a degree course, you can do BSc, BA. Even if you want to take arts, you can take it. But ultimately, I decided that I'm science. I'm a doctor.
2: अच्छा सौम्या, जब आप डॉक्टर बनने का निर्णय लेते हैं तो उसके बाद किस तरह की तैयारी करनी होती है एंट्रेंस के लिए, या फिर वो जो पढ़ाई है क्योंकि बहुत हार्ड होती है ये हमने सुना है, हमने डेफिनेटली बहुत सभी ने ये जाना होता है, तो वो पढ़ाई के लिए और उस सेटअप में एंटर करने के लिए किस तरह की तैयारी की?
3: एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि every stage, every year competition is increasing. You have to keep up that pace with the other peer groups. So, uske liye, I don't say ke bahut pehle padhai shuru karo, this is 6, 7 se shuru karo, but when you start after 10th, in 11th, 12th, jabhi bhi aap start karo, I think 2 years are sufficient to prepare for NEET UG if you are preparing seriously or any competitive exam for that matter. So, at that point, जिस दिन आपने डिसाइड किया यू हैव टू स्टे फोकस्ड, ये नहीं कि अब नहीं मुझे ये नहीं करना ये कर लेती हूँ, यू हैव टू स्टे फोकस्ड. एंड आई थिंक इवन इफ यू आर गेटिंग वन ईयर, इवन इफ यू आर गेटिंग सिक्स मंथ्स, इट इज़ इनफ इफ यू आर फोकस्ड इन दैट पीरियड. सिक्स मंथ्स भी, थ्री मंथ्स, दैट डज नॉट मैटर, बट हाँ उस पीरियड के लिए आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा.
2: मतलब आपका ध्यान, एकाग्रता अच्छी होनी चाहिए
3: बहुत,
2: और कभी मन
3: नो डिस्ट्रैक्शंस, नथिंग, कुछ भी नहीं होना चाहिए. हाँ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बट देन यू शुड नो हाउ टू कीप देम इन कंट्रोल, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड पढ़ाई के उसमें तो वी हैव इनफ सोर्सेज नाउ, तो ऑनलाइन एजुकेशन, अब तो इवन इफ यू कैन नॉट फिजिकली गो, अगर दूर है कोचिंग इंस्टीट्यूट ड्यू टू सेफ्टी रीजंस और ट्रैवलिंग इश्यूज, यू कैन टेक. हम लोगों के टाइम पे इतना ऑनलाइन डेवलप नहीं होता, आफ्टर कोविड इट हैज़ डेवलप्ड अ लॉट. तो ऑनलाइन अब तो बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, तो पहले रिसर्च करनी चाहिए कि विच प्लेटफॉर्म इज़ गुड फॉर यू. सबके लिए अलग अलग होता है, तो इसमें तो कुछ आपको खुद ही फिगर आउट करना होगा. एंड आफ्टर दैट फिर आप सोचो कि हाँ यही करना है, एंड देन just stick to that resource and just continue with it.
2: मतलब आप पहले ये ध्यान से देखिए, समझिए और फिर focus होके पढ़ाई कीजिए,
3: क्योंकि ultimately in these 6 years मैंने ये realize किया है कि information तो बहुत है, but what exactly what you want to read, that you should know. मतलब अगर बहुत सारी आपके पास 10 books हैं एक ही subject की, but which is that one book जो कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे सकती है. एंड ऑब्वियसली यू हैव टू बी एग्जाम ओरिएंटेड, तो दैट वन टॉपिक, वन बुक यू शुड आइडेंटिफाई जिससे आपको पूरी नॉलेज मिले. एंड यू हैव टू बी स्मार्ट इन स्टडी, जबकि आप पूरा ऐसे इंसाइक्लोपीडिया खोल के बैठ गए एंड देन यू जस्ट, दैट इज अनदर थिंग, वो आप बाद में कर सकते हैं, बट एग्जाम के लिए यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड.
2: ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको क्या पढ़ना है, आपको ये भी पता होना
3: चाहिए. मेरे हिसाब से आफ्टर यू डिसाइड कि आपको यही करना है, कोई भी फील्ड है, लॉ करनी है, एमबीबीएस करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, पहले आपका सोर्स पता होना चाहिए, फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टडी, एंड देन गो फॉर इट.
2: मतलब ऑनलाइन आप देखें कौन से कॉलेजेस हैं, एडमिशन कैसे होता है,
3: कैसे होता है, देन टेक एडवाइस फ्रॉम सीनियर्स जो उस फील्ड में है. तो एंड देयर आर, यू कैन मेल देम इफ यू कैन नॉट फिजिकली गो देयर, मेल देम, कॉल करके पूछ सकते हैं. तो द रिसर्च वर्क इज एज इम्पॉर्टेंट एज द एक्चुअल पढ़ाई.
2: ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, ईमेल करिए. आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स और लोग देखते हैं कि ईमेल आईडीज अवेलेबल होती हैं, तो उनको लिखिए, उनसे पूछिए, जानिए.
3: हाँ
2: बहुत अच्छी बात कही आपने. अच्छा जो 6 साल होते हैं MBBS के, पढ़ाई को मैनेज करना और अपनी लाइफ को भी मैनेज करना है, दोनों ही चीज़ें हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि जो बच्चे अगर नए हैं या वो जानना चाहते हैं कि होता क्या है आखिर इन 6 सालों में, बहुत मुश्किल सवाल है या छोटे से टाइम में मुश्किल है, लेकिन अगर आप हमें कुछ जिस दे सकें कि किस तरह से पढ़ाई होती है, लैब्स होते हैं या क्या होता है अंदर?
3: पहली बात तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी होती है, तो इन जनरल कॉलेजेस हैव इनफ को करिकुलर एक्टिविटीज, यू कैन टेक पार्ट इन देम. अगर वहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, डांस सोसाइटी, आई टोटली रिकमेंड कि सबको ये ज्वाइन करना ही चाहिए, अदरवाइज देर विल बी अ स्टेज जब बर्नआउट हो जाता है एंड देन यू गेट सो फ्रस्ट्रेटेड. सो पढ़ाई और मस्ती दोनों दे शुड बी इक्वल. एंड कमिंग बैक टू पढ़ाई, लैब्स the whole teaching hours, first year, the transition from your 12th class to first year, that is quite a lot. मतलब पहले जब मैं आई थी मैंने कहा ये सब क्या है ये मुझसे नहीं हो पाएगा but then धीरे धीरे adjust होते हैं the first you know memory of dissection hall then cutting the cadaver वो सब रहती हैं दिमाग में और ultimately उसमें भी यही है कि during classes during practical classes especially theoretical I'd say कि it depends person to person But practical classes, you have to stay focused for that period. If it is a 30 minutes class, you have to stay focused. Just read it after coming back to hostel or home. And then masti karo. That is, it is a long journey. So you have to balance. Agar aap sirf padhte rahoge, to definitely kuch nahi ho paye.
2: मतलब फोकस के लिए भी आपको अपने माइंड को काम डाउन रखना
3: काम डाउन रखना
2: तो उसके लिए एक्टिविटीज हैं बहुत
3: सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें भी इंटरेस्ट है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग गो फॉर ट्रिप्स अगर कोई दोस्त नहीं माने गो फॉर सोलो ट्रिप्स देन डांस है म्यूजिक है देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज यू कैन टेक पार्ट इन एमबीबीएस इतनी लॉन्ग जर्नी है तो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों है आपको इतना टाइम मिलता है लिटरली आप टीनेज से एडल्टहुड में आ जाते हो बाय द टाइम यू complete your MBBS. So you have enough time to figure out ke aapko kya pasand hai for your self-satisfaction. So wo to internship tak aate aate, I was able to figure out ke haan mujhe ye pasand hai. Agar main burn out ho jaati, I can do this. So aisa hai.
2: बिल्कुल अगर एम बी बी एस 6 साल और उतने में शायद अगर दूसरे कोर्सेज में ग्रेजुएशन होगा खत्म हो जाता है ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है
3: इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग आई डोंट से कि ऐसे मज़े ही आते हैं इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स एंड हम लोग के टाइम पे कोविड भी आ गया था तो वी हैड दैट ब्रेक तो हमारा और एक्सटेंड हो गया था इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स बट देन अगेन यू हैव टू मैनेज बोथ थिंग्स
2: ओके अब एक स्टूडेंट्स के मन का सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई बार बोलते हैं कि हमें मतलब काम क्या आता है एग्जाम ओरिएंटेड आपने बोला जैसे तो एग्जाम्स में क्या काम आता है कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी या फिर अगर हम रटने में बहुत अच्छे हैं सब कुछ
3: दैट डिपेंड्स ऑन जैसे फॉर यूजी व्हेन आई गिव यूजी मुझे And that depends upon the subject also. For example, in physics and chemistry, मुझे ऐसा लगता है concept clearing is very important. और जहाँ पर cramp करने के subject है, don't need to actually learn concepts. वहाँ पर you just have to revise, re-revise. तो ऐसे ही for other fields also, अगर आप CLAT का paper दे रहे हैं, तो mental ability के लिए your concept should be strong. The general knowledge, you have to just revise the daily general knowledge points. तो वो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कहाँ आपको कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है कहाँ आपको रटने की जरूरत है
2: तो अच्छा अगर समय आपके पास कोई स्टूडेंट आते हैं और वो पूछते हैं कि हमें कोई आप सजेशन दीजिए एंड वी वांट टू डू दिस आपका 6 साल में आपने जो सीखा है अभी आप जो पढ़ाई आगे कर रहे हैं आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे
3: सबसे पहले तो जब भी अपना करियर आप चूज करें इट शुड नॉट बी यू हैव टू पिक the career option do not rule out ke mujhe na ye cheez nahi pasand isko jo ab ye bach gaya then I'll choose this it should not be like you are ruling out one option you have to pick one option ke mujhe yahi karna hai and then I'll do this
2: matlab aisa na kare ye nahi karna ye nahi karna ye nahi
3: to ye bach gaya ab main ye
2: karu ab main ye karu
3: it should not be like this okay andar se your inner self should speak that I have to continue in this field कोई भी फील्ड हो फॉर दैट मैटर आर्किटेक्ट है बनना चाहते हैं दैट इफ यू आर गुड इन ड्राइंग फैशन डिजाइन इतनी सारी फील्ड्स आई डोंट से एमबीबीएस ही कर रही है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है बट बिफोर चूजिंग एनी फील्ड प्रॉपर रिसर्च वर्क इज इम्पॉर्टेंट व्हाट आर द स्कोप ऑफ दैट फील्ड और आगे करियर ऑप्शंस क्या है दैट इज द ब्लाइंड फॉलो नहीं करना कि मेरे सारे दोस्त ये कर रहे हैं मुझे तो यही कर नहीं Even before taking MBBS, you have to be very sure that are you really into it? Because agar zabardasti peer pressure mein, family pressure, societal pressure mein aake le li, then at one point you'll be really frustrated. And that stands true for any field.
2: And aapne dekha bhi hoga, kabhi-kabhi saath mein bache jo aate hain aur wo course agar wo zabardasti lete hain, to in process mein bahut
3: tak bahut haan. So And the journey does not end here. ऐसा नहीं है कि आपने 4 साल इंजीनियरिंग कर ली 4 साल आर्किटेक्ट का कोर्स कर लिया उसके बाद भी आपको आगे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इन एवरी फील्ड तो ऐसा नहीं है कि ठीक है अब ये गलती कर दी 4 साल इधर निकाल लेती हूँ फिर आगे देख लूँगी it is a continuous process, so you have to be very careful while taking the career choice. So,
2: जैसे आपने करियर चॉइस के बारे में कहा, 11, 12 के जो बच्चे हैं, मन में आने ही लगता है कि अब मुझे डिसाइड करना है, अब टाइम आ चुका है. तो जो वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा एग्जाम और एक्स्ट्रा पढ़ाई का भी कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, तो जो 11, 12 में पढ़ा, क्या वो काम आता है आगे, और वो क्लियर होना चाहिए क्या?
3: इसके लिए हाँ, कहीं ना कहीं पूरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं वो तो शायद नहीं काम आती, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम आता है. ऐसे तो वी माइट हैव दिस क्वेश्चन कि हमने जो फर्स्ट से लेके टेंथ तक पढ़ा, हमने मैथ्स पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, ये सब पढ़ी, क्या काम आया? बट कहीं ना कहीं मे बी इन सम एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ वो कहीं ना कहीं काम आता है. एंड मे बी अगर पूरी 100% इन्फॉर्मेशन काम नहीं आया, इवन इफ 10% इज यूजफुल, तो इट इज़ वर्थ इट. एंड अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग एग्जाम, तो एट दैट पॉइंट यू हैव टू स्टडी दैट एंड जस्ट कीप इन माइंड कि कहीं ना कहीं तो ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी, एंड अगर नहीं भी आती, इट विल गेट यू इन टू अ गुड कॉलेज.
2: आपकी अंडरस्टैंडिंग
3: तो डेवलप होती है,
2: नहीं तो अचानक से एक शब्द आपके सामने आएगा, हाँ क्या पढ़ाता वो, या
3: वरना ऐसे तो फिर अगर हम सोचने लगे तो वील हैव दिस क्वेश्चन कि हम स्कूल ही क्यों जाते हैं, ये सब तो काम ही नहीं आता इन एक्चुअल.

0: लाइफ जब हम जॉब करना स्टार्ट करते हैं, वी ऑफन लिसन दिस कि हमने पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली लेकिन क्या काम आ रही है, वी आर जस्ट मेकिंग पीपीटीज। बट फिर ऐसे तो हर चीज ही क्वेश्चनेबल है, तो
1: जिंदगी की और चीजें
0: तो हाँ काम आती है कुछ चीजें, काफी नहीं भी आती, बट दैट इज फाइन, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस एंड यू कैन नॉट हेल्प मच।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, पार्ट ऑफ प्रोसेस है, और कहते हैं सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता, और आगे बहुत जीवन है। अभी डेफिनेटली हम देखते हैं कि अगर आप, जैसे आपने 11th 12th में पढ़ाई की या पहले पढ़ाई की, तो आप और लोगों को भी गाइड कर सकते हैं,
0: हाँ
1: उसमें भी मददगार
0: हाँ
1: होता है। अच्छा एक और सवाल, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था जब आप MBBS की स्टडी कर रहे थे? कुछ था आपको जो बहुत
0: ड्यूरिंग
1: पसंद था
0: MBBS,
1: ड्यूरिंग
0: ड्यूरिंग
1: MBBS?
0: MBBS मेरा फेवरेट सब्जेक्ट वाज मेडिसिन, इट वाज मेडिसिन। एंड इसके अलावा देर वर मेनी सब्जेक्ट्स, देर वर मोर सब्जेक्ट्स विच आई डिडंट लाइक रादर देन जो मैं एक्चुअली में लाइक करती थी, बट ठीक है मजा आता था। इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड, लाइक फर्स्ट ईयर में यू स्टडी द बेसिक एनाटॉमी एंड देन इन फाइनल ईयर अब उसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन, तो इट ऑल नैरोज डाउन टू वन क्लिनिकल सब्जेक्ट विच यू स्टडी, एंड वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर को आपस में जोड़ता है। तो एट द एंड ऑफ योर MBBS यू विल रियलाइज कि अच्छा इसलिए हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो दैट इज द होल प्रोसेस। तो मुझे मेडिसिन पर्सनली पसंद थी।
1: अच्छा, जो नहीं पसंद था या जो थोड़ा सा कम पसंद था, जो डिफिकल्ट लगता था, उसके लिए आपने जो पढ़ाई का अपना शेड्यूल था वो कैसे बनाया?
0: उसके लिए मैं उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम डिवोट करती थी, बट नॉट दैट मच कि वो मेरा पूरा ही दिन का पूरा टाइम ले ले, अदरवाइज जो मुझे सब्जेक्ट्स पसंद थे वो भी मैं नहीं करता। तो बेसिकली आई वांट टू से कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, यू हैव टू डिवाइड इट, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग फॉर 8 आवर्स, तो आप 4 आवर्स उसको दो, बट बाकी 4 आवर्स यू शुड स्टडी सब्जेक्ट्स विच यू एक्चुअली लाइक, एंड इट डिपेंड्स, यू शुड कीप ऑन इंटरचेंजिंग। सुबह अगर इफ यू फील फ्रेश, तो ऑन वन डे यू कैन स्टडी सब्जेक्ट विच यू डोंट लाइक बिकॉज योर माइंड विल बी फ्रेश, बट ऐसा जरूरी नहीं है, यू कैन कीप ऑन चेंजिंग द पैटर्न, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमें पसंद होता है हम उसे और डेप्थ में पढ़ते हैं, तो उसमें और इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो यू कैन कीप ऑन चेंजिंग द पैटर्न, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो दैट इज टोटली सब्जेक्टिव, आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बट मैं उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम देती थी क्योंकि वो समझ नहीं आता था, बट इतना भी नहीं कि वो पूरा दिन ही मेरा कंज्यूम कर ले, आई यूज टू कीप अ बैलेंस।
1: बैलेंस बहुत जरूरी है।
0: तो उस तरीके से ही मैंने पढ़ा है पूरी MBBS, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारे पसंद नहीं आते, तो ऐसे ही करना पड़ता है।
1: करना पड़ता है, अपना शेड्यूल फिक्स करना पड़ता
0: हाँ
1: है। ओके, और आप, जैसे हमने बात की, आपने बताया था बहुत सारी सोसाइटीज होते हैं, प्रोग्राम, जिसमें आपको क्या अच्छा लगता है? और
0: मैंने अपने कॉलेज लाइफ में बहुत सारे डांस ग्रुप्स में मैं थी, उसमें मैंने फर्स्ट ईयर से ही पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था, एंड देन ड्यूरिंग माय फाइनल ईयर मैंने अपने डुएट डांसेस परफॉर्मेंस दिए थे, सोलो परफॉर्मेंस दिए थे, तो दैट वाज, एंड फॉर्चुनेटली ये सब कोविड से पहले हो गया था, वी फिनिश्ड विद दीज कल्चरल इवेंट्स बिफोर कोविड, जस्ट बिफोर कोविड, तो आई डिडंट मिस अपॉन एनीथिंग, तो मुझे तो अच्छा लगा था बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस ओनली, यू लर्न टू कोऑर्डिनेट थिंग्स इन कॉलेज, ऐसा नहीं है कि स्कूल फीडिंग होती है आपको कॉस्ट्यूम मिल जाए, यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद पीपल, इट इज अ पार्ट ऑफ,
1: मैनेजमेंट स्किल्स भी
0: पूरी
1: आते हैं।
0: मैनेजमेंट स्किल्स आते हैं, यू लर्न टू, इट इज एज बेसिक एज यू लर्न टू कट एन ऑडियो, एडिट एन ऑडियो, ये सब इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो आपको कुछ भी पसंद आता है वो आप डेफिनेटली, को करिकुलर एक्टिविटीज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट।
1: इम्पॉर्टेंट है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बात कई बार लोगों को मुश्किल लगती है, उनको लगता है कि अगर एग्जाम है सब बंद कर दो, बिल्कुल छोड़ दो सब
0: लेकिन
1: कुछ, तो
0: एग्जाम के टाइम तो इट डिपेंड्स, अगर आप खेलना चाहते हैं यू कैन गो एंड प्ले और डू समथिंग, लेकिन मैं तो एग्जाम के टाइम आई यूज टू स्टडी ओनली इन दैट एग्जाम वाला पीरियड, बट बिफोर दैट यू कैन इवन एक्सरसाइज, यू डू एनीथिंग व्हिच यू लाइक।
1: आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं,
0: हाँ
1: जिम्बा, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं अवेलेबल
0: बहुत
1: ऑनलाइन। ओके, अच्छा मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पेरेंट्स का या जो भी सपोर्ट सिस्टम होता है, फ्रेंड्स होते हैं, उनका सपोर्ट कितना मायने रखता है इस जर्नी में?
0: बहुत ज़्यादा, क्योंकि फर्स्टली पेरेंट्स अगर इस एज में, इन 11th 12th, व्हेन अ चाइल्ड इज जस्ट 15 16 ईयर्स ओल्ड, दैट एज इज ऑलरेडी एन एज व्हेन अ चाइल्ड इज वेरी मच कंफ्यूज, तो उस एज में अगर पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं होगा तो द प्रॉब्लम विल जस्ट एड अप. एंड इसमें तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि उसको चाइल्ड हैज़ एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स इंजीनियरिंग और मेडिकल द मेन स्ट्रीम फील्ड्स. अगर उसे और भी फील्ड्स एक्सप्लोर करनी है यू शुड लेट देम एक्सप्लोर थिंग्स. क्योंकि इतना बड़ा अगर यू शुड लेट देम एक्सप्लोर फील्ड्स क्योंकि दैट इज द स्टेज वेन यू कैन एक्चुअली मतलब इट इज़ अ ब्रॉड बहुत कुछ है. तो अगर उस टाइम वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यू शुड लेट देम गो. ऐसा नहीं कि नहीं तुम्हें यही करना पड़ेगा क्योंकि हमारी फैमिली में सब यही कर रहे हैं. ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एंड फ्रेंड्स ऑल्सो आपके पीयर ग्रुप तो इट डिफाइंस योर सेल्फ. तो पीयर ग्रुप तो बहुत इंपॉर्टेंट है.
1: बिल्कुल आपने सही कहा. और अब यही समय है जब बच्चे अपने करियर का निर्णय लेते हैं और करियर जीवन पे अच्छा खासा असर पड़ता है.
0: हाँ.
1: तो इसलिए उनको आज़ादी होनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए पेरेंट्स को, ना कि सिर्फ अपना आपको यही करना है उन्हें बता दें जैसा आपने कहा. बस मैं लास्ट में वापस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरफ आती हूँ. एक बार मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज जानना चाहती हूँ कि अगर एग्ज़ाम है जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि हमें डॉक्टर बनना है कल को, इलेवेंथ में है, ट्वेल्थ में है, किसके सब्जेक्ट की कितनी तैयारी करें, या कोई आपको लगता है चीज़ें जो ऑनलाइन पढ़ें?
0: फॉर यू जी देर आर 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. जनरली मतलब मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि जिसने PCB ली है उनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट होगा. तो फॉर दैट हमारे टाइम पे जब मैंने दिया था तब NCERT वॉज द बाइबल. डोंट यूज टू मच इंफॉर्मेशन, स्टे फोकस्ड. NCERT ही बार बार पढ़नी होती है. बायोलॉजी इज़ वेरी मच ईजी और समझ आ जाती है और इट इज़ वेरी मच कन्फाइंड. जहाँ प्रॉब्लम आती है वो है फिजिक्स. अगर फिजिक्स किसी को बहुत पसंद है देन वो सॉर्टेड हैं, बट अगर नहीं है तो अगेन यू हैव टू डिवाइड योर टाइम. अगर इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 8 आवर्स, गिव 6 आवर्स टू फिजिक्स इनिशियली. फिर भी नहीं हो रही, एंड तक नहीं हो रही, ठीक है उसको एक बार को साइड में रखो, बट देन गिव अटेंशन टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टू बैलेंस आउट. तो आई फील जनरली जो PCB लेते हैं उनको सबसे ज़्यादा फिजिक्स फॉलोड बाई केमिस्ट्री फॉलोड बाई बायो, यही वो रहता है. हायरार्की ऐसी रहती है. तो इनिशियली जब आप स्टार्ट करें गिव मोर अटेंशन टू द सब्जेक्ट विच यू डोंट लाइक, क्योंकि वो सबसे पहले छूट गया फिर वो अल्टीमेटली छूटा ही रहता है.
1: और इसमें कोई एक सब्जेक्ट हम छोड़ नहीं सकते.
0: यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनीथिंग क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट हैं. इट हैज़ इक्वल वेटेज. बायोलॉजी का 360 मार्क्स का होता है, देन केमिस्ट्री हैज़ 180, फिजिक्स हैज़ 180, बट सबकी इक्वल इम्पॉर्टेंस है. इफ़ यू लीव वन सब्जेक्ट यू लूज अपॉन योर रैंक. तो इनिशियली आप जो नहीं आता सब्जेक्ट उसको ध्यान दें. एंड तक आते आते इफ़ यू फील कि नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, एटलीस्ट बेसिक जो बेसिक नॉलेज है वो आप उस पर करिए, 2 घंटा पढ़िए. बाकी सारे जो अच्छे सब्जेक्ट जो आपको पसंद है वो फिर आप उनको ज़्यादा टाइम दीजिए.
1: जी, टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है. जैसा आपने कहा जो कोर्स बुक है NCERT है उसको
0: NCERT
1: बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए उसकी.
0: यही इसमें स्ट्रैटेजी रखनी होती है. और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बस फोकस्ड रहना ज़रूरी है. अच्छी आप जो भी ऐप यूज़ करना चाहते हैं उसकी अच्छी तरीके से रिसर्च कर लीजिए एंड देन
1: पढ़ाई. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर सौम्या. आप हमारे साथ जुड़े एंड आपने MBBS की पढ़ाई की है एंड आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं. एंड ऑल द वेरी बेस्ट.
0: थैंक यू.
1: एंड आप जितना अच्छे से आप बता रहे हैं आई एम श्योर आप उतने ही अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं. एंड आप लोगों को, क्योंकि आपने जैसे अपना बचपन का इंसिडेंट सुनाया कि आपको याद है वो डॉक्टर्स, तो कल आपको भी याद रखेंगे लोग. एंड बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए.
0: थैंक
1: यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए.
0: थैंक यू.
1: एंड दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है, कोई बात है, तो आप रेडियो मधुबन से जुड़ सकते हैं. हमारा नंबर है 94-14-14-15. रेडियो मधुबन 107.8 FM. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके भीतर संतोष का बीज बोता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म, अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है। और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस। इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: गुड इवनिंग, माँ दुर्गा के इस स्पेशल दिन में आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं मोना आज की उड़ान कार्यक्रम को लेकर पहुंच गई हूँ। गुड इवनिंग नमस्ते, रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप सुन रहे उड़ान, मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। जादुई बीच की कहानी वहीं पर आज होगी अहिगिरी नंदिनी। जी हाँ, ये एक बेहतर गीत है जिसे हम आप तक बीच बीच में पहुंचाते रहेंगे और इसी बैकग्राउंड के साथ साथ आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहेंगे। और माता रानी का विशेष दिन है, आज तृतीय दिन है, तीसरा दिन है और इस विषय पर भी कुछ जानकारियां आगे बढ़ाते हुए अमेजिंग जानकारी, मज़ेदार चुटकुला, सवा पहेली आज आपके लिए विशेष, कविता कहानी इन सब से सजा होगा आज ये माँ दुर्गा का तीसरा दिन भी। तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आओ तुमको सितारों से लेकर चलो, आगे बढ़ते हैं और आज के अमेजिंग जानकारी के साथ आप दोस्तों को जोड़ लेते हैं। आज की अमेजिंग जानकारी है खुशबू से जुड़ी हुई। जब हमारी गहरी नींद होती है, मतलब हम बहुत गहरी नींद में रहते हैं, तब अक्सर हमें किसी भी चीज़ की जो गंध होती है, स्मेल होती है, उसका पता नहीं चलता, चाहे वो खुशबूदार हो या बदबूदार भी हो। जी हाँ, जब बहुत गहरी नींद, डीप स्लीप, खुशबू के लिए कई बार हम अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सुगंध भी कहते हैं, महक भी कहते हैं, सुरभि भी कहते हैं, तो सौरभ भी इसका सिनोनिम है। गंधक, सुवास, परिमल, परमल, आमोद और इत्र, ये खुशबू के दूसरे पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों, इस पर्यायवाची के साथ साथ आज की पहेली विशेष आप दोस्तों के लिए। पहेली है, चार है रानियां और एक है राजा, चार है रानियां और एक है राजा, हर एक का काम है, हर एक काम में उनका साझा। चार है रानियां, एक है राजा, हर एक काम में उनका साझा। शरीर का ये विशेष अंग है जिसमें चार रानियां हैं और एक राजा है। झटपट इस पहेली का जवाब देना भूलना मत। नंबर है हमारा 9414151415। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच एक श्रोतागण भी आ चुके हैं, आज के पहले श्रोतागण, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कौन बोल रहे हैं?
1: ओम शांति, गुड इवनिंग जी।
0: जी जी जी जी
1: बहुत ही अच्छा

0: शुभकामना
1: जी जी जी जी।
0: और दीदी आज का सवाल का जवाब है अंगूठा और उंगलियां।
1: अच्छा अंगूठा और उंगली। ओके थैंक यू।
0: चारों
1: ओके ओके ओके ओके थैंक यू। नमस्कार नमस्कार
0: सभी को। नमस्कार सभी।

हो गए बेखबर। आगे बढ़ते हुए दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप जुड़े हैं उड़ान कार्यक्रम के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आपके लिए आज की प्यारी सी कविता जो विशेष लेकर आए हैं। और ये कविता है उस एक चीज से जुड़ी हुई जो आज की पहेली में छुपी है। हाथों की पांच उंगलियां पांच तत्वों में है ये पुतलियां, आओ बच्चों गीत सुनाए, पांच तत्वों के नाम भी बताए। अंगूठा कहता अग्नि हूं मैं, ऊर्जा का भंडार हूं, तेज प्रकाश और गर्मी लाता, जीवन में उत्साह जगाता हूं। तर्जनी कहती वायु हूं मैं, सांसों का आधार हूं, चलती हवा का संदेश सुनाती, जीवन में गति हम सिखाती। मध्यमा कहती आकाश हूं मैं, सबको जगा देती हूं मैं, देता हूं मैं बेसिकली। मध्यमा कहती आकाश हूं मैं, सबको जगह देता हूं मैं, ऊंची और सबसे लंबी शान, दे अंबर सा ऊंचा ज्ञान। अनामिका कहती जल हूं मैं, शीतलता का बल हूं मैं, जिसमें पहने अंगूठी सुनहानी, प्रेम और स्नेह की है ये निशानी। कनिष्का कहती पृथ्वी हूं मैं, सबसे छोटी प्यारी हूं मैं, गिनती की शुरुआत है मुझसे, जुड़ी एकता की शक्ति तुझसे। सब मिलजुल कर काम करे तो जीवन में खुशहाली आए, पांच उंगली साथ रहे तो मुट्ठी की ताकत बन जाए। तो चलिए दोस्तों पहेली एक बार और। चार है रानियां और एक है राजा, हर एक काम में उनका साझा, शरीर का ये विशेष अंग कुछ ना कुछ काम बेहतर रूप से करता है, यही अंग जी हाँ करने में मदद करता है। तो चलिए कर जो इसका एक पर एक और जो शब्द है कर, वो इसी अंग से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों झटपट जवाब दीजिए, नंबर है हमारा 9414151415 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: माँ जयती चंद्र घंटा। तो चलिए पुनः एक बार आज की पहेली और दोहराते हैं। चार है रानियां और एक है राजा, हर एक काम में उनका साझा। जी हाँ, ये चारों जब मिलते हैं तो अपना साझा काम जरूर कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आपके लिए आज की जो कहानी है वो जरूर लेकर आते हैं। जादुई बीज की कहानी आपके लिए उड़ान में।
1: वाह अब्दुल, तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी पर हमें बेहद गर्व है। तुमने शाही खजाने की एक एक पाई का जिस तरह से हिसाब रखा है, ऐसी वफादारी और मेहनत कम ही देखने को मिलती है।
2: जहाँ पना, ये तो मेरा फर्ज था। आपके दिए हुए नमक का कर्ज अदा कर रहा हूँ।
3: जहाँ पना, हमारी वफादारी भी तो देखिए। हम तो आपके पसीने की जगह अपना खून बहा सकते हैं, और अगर आप मिट्टी को सोना कह दें तो हम उस मिट्टी को भी अपनी तिजोरी में हीरे जवाहरात की तरह संभाल कर रखेंगे।
4: बिल्कुल सही वरमाया वजीर साहब ने। जहाँ पना, हमारी वफादारी तो आसमान से भी ऊंची और समंदर से भी गहरी है। हमसे ज्यादा वफादार और कोई नहीं हो सकता।
1: बीरबल, अब आप ही बताइए, इन तीनों में से हमारा सबसे अच्छा और वफादार रत्न आखिर कौन है?
5: वैसे तो मैं परमात्मा नहीं कि किसी की वफादारी का हिसाब लगा सकूं, पर आलमगीर मेरे पास एक तरकीब है जिससे हमें कुछ अनुमान मिल जाएगा। इस तरकीब के लिए मुझे एक दिन की तैयारी की जरूरत है बादशाह सलामत। इजाजत है बीरबल।
1: आइए बीरबल, हम आपका इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है आज आपने अपनी तरकीब को अंजाम देने का बंदोबस्त कर लिया होगा।
5: जी हुजूर।
1: वजीर साहब, मौलाना जी और अब्दुल, तीनों आगे आइए। आलमगीर, ये एक बहुत ही खास और जादुई बीज है। आप तीनों को इन बीजों को एक महीने तक अपने अपने घर के गमले में उगाना है।
3: बीज उगाने से वफादारी का क्या ताल्लुक बीरबल जी?
1: बहुत गहरा ताल्लुक है वजीर साहब। इन जादुई बीजों की यही खासियत है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी और वफादारी की मिट्टी में ही उगते हैं। जिसके दिल में सच्चाई होगी उसका पौधा उतना ही खूबसूरत उगेगा। एक महीने बाद जिसका पौधा सबसे खूबसूरत होगा वही सबसे बड़ा वफादार माना जाएगा। बीरबल, हमें तो ये युक्ति बहुत खूब लगी। आप तीनों इन बीजों को अपने अपने गमले में बो दीजिए। देखते हैं किसकी वफादारी कितनी फलती फूलती है। दरबार बर्खास्त किया जाता है।

अरे मेरे प्यारे बीज, अब जल्दी से उग भी जा। देख, मैं तेरे लिए तांबे के गुनों वाला पानी लाया हूँ, ठंडी हवा कर रहा हूँ। जल्दी से दुनिया का सबसे सुंदर पौधा बन जा, ताकि दरबार में मेरी इज्जत बढ़ जाए और मैं उस अब्दुल को हरा सकूँ। उग जा मेरे प्यारे बीज।

या खुदा, इसे पौधा बनने में आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? मैं तो इसे रोज इतना मीठा संगीत भी सुना रहा हूँ। उग जा मेरे प्यारे बीज, जल्दी उग जा वजीर और अब्दुल के पौधे से पहले उग जा, ताकि मैं आलमगीर की नजरों में वफादार बन सकूं। अजीब बात है, अंदर से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। लगता है और जोर से बांसुरी बजानी पड़ेगी।

0: सलाम मौलाना साहब, कहिए आपकी वफादारी का जादुई बीज उगा कि नहीं? माशाअल्लाह वजीर साहब, मेरे बीज तो बहुत सुंदर तरीके से उगने लगे हैं। उसमें हरी हरी और चमकदार पत्तियां भी आ गई हैं। और आपके पौधे का क्या हाल है?
1: अरे मौलाना साहब, मेरा पौधा तो बहुत ही बड़ा और मजबूत हो गया है। उसमें तो नई नई कलियां भी खिलने वाली हैं।
0: क्यों अब्दुल, तुम्हारा गमला कैसा है? हम दोनों का पौधा तो बहुत हरा भरा और बहुत बड़ा हो गया है। तुम्हारा पौधा उग भी रहा है या नहीं?
2: मैं आपको क्या बताऊं वजीर साहब, इत्मीनान रखिए वजीर साहब, किसकी वफादारी कितनी है ये तो महीने के आखिर में दरबार में जहां पनाह के सामने ही पता चलेगा।
0: या खुदा, मेरा तो गमला पूरा खाली है, मिट्टी तक नहीं हिली, और इन दोनों का पौधा उग गया। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना दरबार में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी।

0: अरे ओ माली, मुझे जल्दी से कोई ऐसा पौधा दो जो दिखने में सबसे खूबसूरत हो और देखते ही दिल खुश हो जाए।
1: लीजिए हुजूर, एकदम ताजा और लाल फूलों वाला गुलाब का पौधा। इसे देखते ही किसी का भी दिल खुश हो जाएगा।
0: अब दरबार में इस गुलाब के आगे उस अब्दुल की वफादारी बिल्कुल फीकी पड़ जाएगी।
2: सुनो, कोई ऐसा पौधा दिखाओ जो सबसे ऊंचा और चमकदार हो।
1: ये बड़ा सा सूरजमुखी का पौधा ले जाइए जनाब। इसे देखिए, इसका फूल तो दूर से ही चमकता है।
2: माशाल्लाह, ये तो बिल्कुल मेरी वफादारी की तरह बड़ा और चमकदार है। अब किसी का भी छोटा मोटा पौधा तो इसके सामने कुछ नहीं होगा।
0: देखिए शहंशाह, ये है मेरी वफादारी। मेरे ईमान ने कितना सुंदर गुलाब का पौधा उगाया है।
2: और मेरा सूरजमुखी तो मेरी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल दे रहा है। जहाँ पना हमारी वफादारी साबित हो गई।
3: बादशाह सलामत। गुस्ताखी माफ हो, मैंने रोज इस बीज को पानी दिया, इसकी हिफाजत की, पर मेरा बीज नहीं होगा। शायद मुझमें और मेरे काम में कहीं कोई कमी रह गई होगी।
0: जहाँ पना, जैसा मैंने कहा था, इस खजांची की वफादारी तो मिट्टी में दब कर ही रह गई।
4: रुकिए वजीर साहब, मंजर असल में कुछ अलग है। अब्दुल, आपके काम में कहीं कोई कमी नहीं है। आपने शहंशाह के प्रति पूरी ईमानदारी दिखाई है। शहंशाह हिंद, आज साबित हो गया है कि अब्दुल ही इस दरबार का सबसे अच्छा और वफादार रत्न है। बीरबल, ये क्या कह रहे हैं आप? वजीर और मौलाना का पौधा तो सबसे खूबसूरत उगा है, जबकि अब्दुल का पौधा तो उगा ही नहीं। फिर भी आप इस खाली गमले वाले को ईमानदार कह रहे हैं? जी आलमगीर, क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैंने एक महीने पहले जो बीज इन तीनों को दिए थे, वो ना तो किसी गुलाब के पौधों के बीज थे और ना ही सूरजमुखी के फूलों के, जो कि मौलाना और वजीर साहब बड़ी शान से लेकर आए हैं। अगर ये बीज गुलाब और सूरजमुखी के नहीं थे तो आखिर ये बीज थे किस चीज के? बीरबल, पर्दे हटाइए। बीरबल,
5: जहाँ पना, वो बीज असल में खरबूजे के थे, और सबसे बड़ी बात, वो सारे बीज अंदर से पूरी तरह खराब हो चुके थे।
4: इन खराब और बेजान बीजों से पौधे उगाना नामुमकिन था। अब्दुल ने बड़ी ईमानदारी से उस खराब बीज को बोया, और जब वो नहीं उगा तो बिना डर के खाली गमला लेकर दरबार में सच्चाई के साथ हाजिर हो गया। जबकि हमारे मौलाना साहब और वजीर आलम ने जब देखा उनका बीज नहीं उग रहा, तो आपके सामने अपनी झूठी शान बघारने के लिए बाजार से खरीद कर पौधा इस गमले में लगा दिया। अब आप ही तय कीजिए आलमगीर, कि आखिर कौन ज्यादा ईमानदार है, जिसने बीज के ना उगने पर सच बोला, या जिन्होंने अपनी नकली वफादारी साबित करने के लिए पौधे ही चोरी के लगा लिए। बीरबल, आपने बिल्कुल सही कहा, ईमानदार और पक्का वफादार तो अब्दुल ही है, जिसने ना कोई छल किया और ना ही दिखावा किया। बीज जैसा खराब था, वैसा ही खाली गमला सच्चाई के रूप में दिखाया। क्यों मौलाना साहब और वजीर जी, अब आप लोग इस झूठी वफादारी के बारे में क्या सोचते हैं? एक छोटे से बीज ने आपके बड़े बड़े झूठ उगल कर बाहर रख दिए। सिपाहियों, इन झूठे फूलों को बाहर बगीचे में रखवा दो। और अब्दुल, हम तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हैं। अब्दुल को शाही खजाने से 100 सोने के अशरफियां इनाम में दी जाएं।
5: और बीरबल, एक खराब खरबूजे के बीच से ऐसी चतुराई भरी परीक्षा लेना सिर्फ आप ही जानते हैं। हम एक बार फिर आपकी इस तीव्र बुद्धि के कायल हो गए। शुक्रिया।

0: आज नहीं तो कल होगा, जैसा बीज कर्म का बोएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। चार है रानियां और एक है राजा, हर एक काम में उनका साझा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं नो टू टोबैको।
1: ये तंबाकू क्या होता है?
2: अरे तिकुनी पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
3: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
1: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
2: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
4: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।
5: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
6: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: चार रानियां हैं और एक है राजा, हर एक काम में उनका साझा। चलिए ये चारों रानियां बहुत इम्पोर्टेंट है और जब मिलजुल कर ये एक लड्डू बनाती हैं तो कोई किसी से कम नहीं होती, और इसीलिए इन सब का इम्पोर्टेंस बहुत है। आप सुन रहे हैं उड़ान रेडियो मधुबन पर। एक और बेहतरीन गीत आप तक ज़रूर लेकर आएंगे क्योंकि आपकी उड़ान कार्यक्रम में जुड़े हैं आप। एक्चुअली छोटी सी कहानी होगी, वही मैं लेकर आ रही हूँ। उस कहानी के साथ साथ हम गुड बाय भी थोड़ी देर में ज़रूर करेंगे, लेकिन ये छोटी सी कहानी आपके लिए उड़ान में।

0: समय पहले किसी स्कूल की तीसरी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। उसी क्लास में अंश और वंशिका नाम के दो दोस्त भी पढ़ते थे। उन दोनों को ही टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था। वो जैसा टीवी में देखते थे वैसे ही क्लास में किया करते थे।
1: मैं आयरन मैन की तरह इतना ऊपर से कूद सकती हूँ।
2: बस मैं तो कैप्टन अमेरिका की तरह इससे भी ऊपर से कूद सकता हूँ।
1: मैंने कल एक फिल्म देखी, उस फिल्म में स्पाइडरमैन एक पतले से धागे की मदद से दीवार पर चढ़ गया।
2: हाँ, मैंने भी वो फिल्म देखी थी। वो पहले दीवार पर चढ़ गया, फिर दीवार पर से कूद भी गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ।
1: फिर तो हम भी वैसे ही कूद सकते हैं।
2: हाँ, मैं कल कूदने के लिए रस्सी लेकर आऊँगा। हम उसकी मदद से पहले दीवार पर चढ़ेंगे और फिर दूसरी तरफ कूदेंगे।
1: बहुत मजा आएगा।
0: अगली सुबह वंश ने घर से निकलने से पहले अपने स्कूल बैग में एक पतली सी रस्सी रखी और वो स्कूल के लिए निकल गया। सुबह सुबह जब सारे बच्चे प्रेइंग ग्राउंड में प्रेयर कर रहे थे, अंश और वंशिका स्कूल में ही बनी एक बहुत ऊंची दीवार के पास गए।
2: पहले हमें इस रस्सी को ऊपर से बांधना होगा,
0: ये कहकर दोनों छत पर गए। उन्होंने रस्सी को छत पर किसी मजबूत चीज से बांध दिया और नीचे आ गए।
2: चलो अब हम भी स्पाइडरमैन की तरह इस रस्सी की मदद से छत पर चढ़ते हैं।
1: पहले मैं चढ़ूंगी।
0: वंशिका ने रस्सी पकड़ी और उस पर चढ़ने लगी, लेकिन वो रस्सी पर नहीं चढ़ पा रही थी। ये देखकर अंश ने कहा,
2: तुमसे नहीं होगा, दिखाओ मैं चढ़ता हूँ।
0: अंश ने वंशिका से रस्सी ली और वो रस्सी पर चढ़ने लगा, लेकिन रस्सी बहुत पतली थी इसलिए अंश के थोड़ा जोर से खींचने पर ही टूट गई।
1: ये तुमने क्या किया, तुमने रस्सी तोड़ दी।
2: कोई बात नहीं, हम स्पाइडरमैन की तरह ऊपर नहीं चढ़ सकते तो क्या हुआ, उसकी तरह ऊपर से कूद तो सकते हैं।
1: हाँ,
0: अब वो दोनों स्पाइडरमैन की तरह कूदने के लिए ऊपर छत पर गए।
2: चलो अब एक साथ कूदते हैं।
0: ये कहकर वो कूदने के लिए आगे बढ़े, तभी दूर से उनकी टीचर ने उन्हें देख लिया। टीचर उन्हें रोकते हुए चिल्ला कर बोली,
2: अंश, वंशिका, दीवार से पीछे हटो।
0: टीचर के ऐसा कहने पर वो दोनों पीछे हट गए। टीचर उनके पास आई और बोली,
3: ये तुम क्या कर रहे थे?
1: हम स्पाइडरमैन की तरह छत से कूद रहे थे।
2: हाँ, हमने टीवी में देखा था, स्पाइडरमैन ऊपर से कूद गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ।
0: इस पर टीचर ने उन्हें समझाते हुए कहा,
3: हाँ पर बच्चों वो टीवी में था और टीवी में हर चीज असली नहीं होती, वो सब बनावटी और नकली होता है जिसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। इसलिए हमें कभी भी टीवी में दिखाई जाने वाली चीजों की नकल नहीं करनी चाहिए।
0: टीचर के ऐसा समझाने पर बच्चे समझ गए।
1: सॉरी टीचर, हम आपकी बात समझ गए, अब हम कभी टीवी की नकल नहीं करेंगे।
0: इस तरह अंश और वंशिका टीवी की सच्चाई समझ गए और फिर उन्होंने कभी टीवी की नकल नहीं की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि टीवी में जो भी दिखाया जाता है वो सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होता है।
4: बिल्कुल सही कहा, जो भी चीजें हमें देखने को मिलती है टीवी इत्यादि में, ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की चीज है। प्लीज इन्हें देखकर ऐसी चीजें करने की कोशिश न करें, बल्कि एंटरटेन हो, आपके मूड को फ्रेश करें, पर इन्हें अपनाने की कोशिश न करें। हाँ, पर हम सबका फर्ज ये भी बनता है कि हम दुनिया के सामने उन्हीं बातों को लेकर जाएं जिससे समाज का, किसी व्यक्तित्व का भला हो, और आप जो आस पड़ोस में रह रहे, पर्यावरण का भला हो, ये सब ध्यान जरूर रखें। बल्कि ऐसी कोई भी चीज प्रदर्शन न करें जिससे किसी और का नुकसान हो सके। आप वो स्टंट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा आपको देखकर यदि कॉपी करता है तो उसके लिए कुछ और हानिकारक चीज हो सकती है। इसीलिए हम और आपको हमेशा समाज की भलाई के लिए कोई भी कार्य कर दिखाना होगा। और हाल चाल ठीक ठाक है ये भी जरा बता दीजिए आज के इस गीत के माध्यम से।

आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है, आपका उत्सव बेहतर जाए, इसी आशा के साथ कहना चाहूंगी गुड बाय। लेकिन जाते जाते पहेली का जवाब तो देती जाऊं। चार है रानियां और एक है राजा, हर एक काम में उनका साझा। जब ये सब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो मुट्ठी ताकत भी बनती है और कोई चीज करने में सहज भी होती है। यदि कोई भी इसमें से पांचों उंगलियों में से कोई एक कम हो जाए तो काम करने में बहुत दिक्कत आए। तो एक अंगूठा, चार उंगलियां, ये कुल मिलाकर साझा काम करती हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका उत्सव बेहतर बीते, इसी आशा के साथ कहना चाहूंगी गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। कल मिलने का वादा है, ठीक शाम 6 बजे जरूर आना हमारे बीच। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस एक मिनट में मन को रखिए प्रभु के साथ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। सही में अपना गांव अपना अंचल हम नाम सुनते हैं, कितना खुशबू प्रदान होता है। हमें बहुत खुशी होता है इस तरह कार्यक्रम में जब हमारा आसपास जो गतिविधि हो रही उसको सब तक पहुँचाने के लिए रेडियो मधुबन एक सेतु का काम कर रहे हैं। और आज खासकर नवरात्रि स्पेशल में शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन में हम सभी ग्रामवासियों को अंचलवासियों को और खासकर हमारा सभी जो भक्ति आस्था और आराधना में विश्वास रखते हैं तो उन सभियों को भी इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आज इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए हमारा साथ जुड़े हुए हैं त्रिवेणी दीदी जी, तो उनको भी स्वागत करते हैं ग्रामवासियों की तरफ से और सभी जो आस्था विश्वास और भक्ति में प्रेम रखते हैं उन सभियों की तरफ से भी दीदी जी को स्वागत करते हैं। खासकर आज का जो कार्यक्रम है नवरात्रि स्पेशल में तीसरा दिन कौंचा देवी का बारे में आज सुनाएंगे तो वो खुद बताएंगे। और हमें बहुत खुशी लगता है इस तरह कार्यक्रम में जब हमारे आसपास के सभी श्रोता ग्रामवासी जोड़ते हैं तो एक हेल्दी एंटरटेनमेंट हो जाता है। और आजकल तो नवरात्रि जो चल रहा है उसमें हमारा जो भावना विश्वास और आध्यात्मिकता बढ़ता है तो आज भक्ति भावना आस्था का साथ साथ आध्यात्मिक रहस्य से उत्प्रेरित कराएंगे क्योंकि हम तो त्यौहार मनाते हैं लेकिन त्यौहार से हम क्या सीख लेना चाहिए और इस तरह त्यौहार जब मनाते हैं पालन करते हैं तो इससे हमारा गांव और अंचल को कितना प्रभाव करता है और हमारा ग्रामवासी अंचलवासी जब बढ़ चढ़ कर इससे जोड़ते हैं तो हमें बहुत खुशी लगता है। तो स्वागत करते हैं दीदी जी को। दीदी जी आपका वेलकम।
1: ओम शांति
0: जी। जी
1: आज हम नवरात्रि का तृतीय दिवस मना रहे हैं और इस तृतीय दिवस में हम माँ चंद्रघंटा देवी का आध्यात्मिक रहस्य सुनेंगे।
0: जी
1: माँ चंद्रघंटा का दूसरा स्वरूप जो विश्व प्रख्यात है लक्ष्मी और सरस्वती देवी के रूप में प्रख्यात है, लेकिन माँ चंद्रघंटा जो शक्ति का प्रतीक है, हमने नाम तो सुना है लेकिन नाम के साथ साथ उनके कर्तव्य का परिचय आज के इस तृतीय दिवस पर हम सुनेंगे। चंद्रघंटा देवी का परिचय तथा उनके कर्तव्य को समझते हुए हम अपने प्रति क्या कर्तव्य कर सकते हैं, अपने मन में क्या जागृति ला सकते हैं, इसके ऊपर हम विशेष प्रकाश डालेंगे। हर साल नवरात्रि पर हम विशेष रूप से अपने दिनचर्या में कथा भी सुनते हैं, सोचते हैं भक्तगण ये आशा रखता है कि पूरे दिन भर में से क्यों न हम माँ की आरती या कथा को सुन करके अपने दिनचर्या की शुरुआत करें या अपने समय को सफल करें। तो ये एक प्रथा बन गई है कि सवेरे सवेरे हर देवी की पूजा प्रार्थना आरती गा करके हम नवरात्रि के दिन को प्रारंभ करते हैं और शाम के समय दिया बत्ती करते हुए सुगंधित वातावरण को बनाते हुए माँ की कथा सुनते हैं। तो आज भी हम कथा सुनेंगे लेकिन अलग ढंग से, अलग प्रेरणाओं के साथ हम चंद्रघंटा माँ की कथा को सुनते हुए उसका आध्यात्मिक बोध लेंगे। तो चलिए आज हम माँ चंद्रघंटा देवी का परिचय लेते हैं। अनेक रूपों की यथार्थ पहचान है चंद्रघंटा माँ। चंद्रघंटा का आज का जो दुर्गा के रूप में तीसरा स्वरूप माना जाता है वह है चंद्रघंटा। तो नाम में ही उसके शब्द और स्वरूप का अर्थ छिपा हुआ है। उनके माथे पर चंद्रमा दिखाया जाता है, आधा चंद्रमा। ये शीतलता का प्रतीक है, इसलिए माँ शांति शालीनता और समृद्धि की देवी मानी जाती है। माँ की शक्ति और ऊर्जा एक विशेष स्रोत बना हुआ है, तो उन्होंने अपने आत्मबल द्वारा दानव शक्तियों का नाश किया। ये हमने कथाओं में सुना है, देखा है और स्वरूप में भी दिखाई देता है कि माँ जो शक्तिशाली स्वरूप में किस प्रकार से दानों को अपने पैर में रोंदती थी, एक विकराल रूप में उन असुरी शक्ति के ऊपर खड़ी है। माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वे परम शांतिदायक कल्याणकारी है, और ऐसे देखा जाए तो हर एक देवता के शरीर पवित्र और तेजपूर्ण होते हैं, लेकिन चंद्रघंटा माँ का अपने आप में एक अनोखा ओजस्वी स्वरूप है। उनका संपूर्ण शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है, तो स्वर्ण समान चमकीला अर्थात पवित्रता की शक्ति से परिपूर्ण एक संपूर्ण अवस्था का यादगार है। इसलिए वो तेजस्वी ओतप्रोत अलौकिक दिव्य प्रतिमा चंद्रघंटा को दिखाई जाती है। साथ साथ उनके 10 हाथ हैं, जिसमें अलग अलग शस्त्र से उन्हें सुशोभित किया गया है। तो 10 हाथ अर्थात 10 दिशाओं में प्रचलित, इसलिए 10 भुजाएं दिखाई जाती हैं। भुजाएं शक्ति का प्रतीक होती है, इसलिए भुजाओं में अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित का अर्थ ही है ज्ञान के आधार पर उन्होंने जिस शक्ति को प्राप्त किया है, योग बल से उसकी साधना के आधार पर उस शक्ति को ग्रहण करते हुए असुरी शक्ति के ऊपर संघारणीय बनी, इसलिए अस्त्र शस्त्र से सुशोभित दिखाई जाती है। और माँ का जो वाहन है वे है सिंह। सिंह एक शक्ति का प्रतीक होता है, जैसे जब भी शिकार के लिए सिंह बाहर निकलता है या शेर बाहर निकलता है तो वो सोचता नहीं है कि मैं इसका शिकार करूं या नहीं करूं, लेकिन सामने शिकार आते ही उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो एक शक्ति और हिम्मत की निशानी दिखाई जाती है। इस प्रकार से चंद्रघंटा माँ एक शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। तो ये साहस और शस्त्र की जो प्रयोग दिखाया गया है वे किसी मनुष्य के ऊपर नहीं है, लेकिन अपने तपोबल के द्वारा माँ देवी ने असुरी प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त की है, उसकी निशानी दिखाई जाती है। मनुष्यों के असुरी संस्कार स्वभाव जो उन्हें दानव बना देता है, ऐसे प्रवृत्ति से लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। तो इस चार भुजाओं से, इस अस्त्र शस्त्र से हम ये बोध लें कि हम अपने, दूसरों के नहीं लेकिन स्वयं के जो भी बुरे संस्कार हैं, जो हमें अपने आप में दुखी करते हैं, उस संस्कार के कारण या किसी मेरे स्वभाव के कारण अगर मेरे परिवार में दुखी अशांत वातावरण है, तो उस असुरी प्रवृत्ति के ऊपर मुझे विजय प्राप्त करनी है, उस विकारी प्रवृत्ति के साथ मुझे लड़ना होगा, उसके ऊपर मुझे विजय प्राप्त करनी होगी। ये संदेश हमें देवी के इस भुजाओं के द्वारा, इस शस्त्र के द्वारा प्राप्त होता है। कहते हैं माँ का जो पोज है, जो शरीर की जो बैठक है, वे इस प्रकार से दिखाई जाती है कि वह लड़ने के लिए हमेशा तैयार है, इसलिए अस्त्र शस्त्र से सुशोभित वह खड़ी दिखाते हैं। तो लड़ने के लिए तैयार है का अर्थ है अपने आप से, अपनी बुराइयों से वह लड़ने के लिए तैयार है। ये बोध हम माँ चंद्रघंटा से अवश्य ले। चंद्रघंटा माँ हमेशा आध्यात्मिक लोगों की सहायता करते हैं, ये उनकी निशानी भी दिखाई जाती है। एक तेजस्वी या उत्साहवर्धक होते हुए भी वह शीतलता का भी बैलेंस बनाकर रखती हैं, इसलिए सिर पर आधा चंद्र है। भले ही शरीर में कितनी ही शक्तिवर्धक हो, लेकिन सिर अर्थात दिमाग हमेशा ठंडा होता है, तो वो व्यक्ति बुराइयों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखता है, ये उसकी निशानी है। और ऐसे चंद्रमा और सूर्य के तेज का बैलेंस रखती हुई वे हमेशा उन व्यक्तियों की सहायता करती है जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, अर्थात जो हमेशा सकारात्मक सोच की तरफ चलते हैं। नकारात्मक शक्तियों को पराजित करते हुए सकारात्मकता की ऊर्जा का संचार का प्रतीक माँ चंद्रघंटा देवी दिखाई जाती हैं। माँ की सवारी जब शेर पर दिखाते हैं, तो हम उससे निर्भयता और शक्ति का प्रतीक स्वीकार करते हुए अपने अंदर भी बुराई से लड़ने के लिए निर्भयता के गुण को हम धारण कर सकते हैं। कहा जाता है, माता के घंटे की ध्वनि, जब घंटा दिखाया जाता है तो उस घंटे की ध्वनि का भी एक विशेष महत्व है। तो वह घंटे की ध्वनि से भक्तों की रक्षा करती है, अर्थात हर नकारात्मक वातावरण या बुराइयों से लड़ते हुए उस एनर्जी को क्रिएट करना, नेगेटिव एनर्जी के वाइब्रेशंस को खत्म करना, इसकी क्षमता घंटे के ध्वनि में दिखाई जाती है। इसलिए शरणागत की रक्षा के लिए घंटे की ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा का जो स्वरूप है वे दिव्य गुणों से संपन्न भी दिखाते हैं। उनके हर अंग की तुलना गुण रूपी पुष्पों से की जाती है। कमल नयन है, कमल चरण है, कमल मुख है। इस प्रकार से देवी के हर अंग की तुलना पुष्पों से की जाती है। पुष्प जितना ही कोमल उतना ही सुगंधित और दूसरे को सुख प्रदान करने वाला होता है। और ये सभी देवताओं की विशेषता मानी जाती है। एक दिव्य गुण में ये बात आती है कि देवता वो है जो हर किसी को सुख दे, अपने हर कर्म से, अपने हर इंद्रियों से हर भक्त को सुख शांति प्रसन्नता की शक्ति प्रदान करे, उसे कहा जाता है देवता। तो माँ चंद्रघंटा के हर इंद्रियों से हमें शक्ति की अनुभूति होती है। इसी यादगार में उनके हर अंग का गायन पुष्प के साथ तुलना करके की जाती है। माँ का स्वरूप उतना ही सौम्य है, शांति से परिपूर्ण है एवं विनम्रता के साथ उनका मुख नेत्र तथा संपूर्ण काया दिव्य गुणों से सुगंधित होती है। तो ये बहुत विशेष गुण माना जाता है विनम्रता का। शक्तिशाली होने के बाद भी, सर्व गुणों से संपन्न होने के बावजूद भी ये संपन्नता की निशानी मानी जाती है विनम्रता। और यही विनम्रता उनके मूर्ति के दर्शन से हमें शांति सुख की अनुभूति कराती है। तो इस प्रकार से माँ के स्वरूप से हम दिव्य गुण या मूल्यों की शिक्षा को धारण करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी दीदी, आपने आज का जो कार्यक्रम में इतना सुंदर रूप में सजाया है, बखूबी से इस त्यौहार का आध्यात्मिक रहस्य, उसका भावार्थ और इससे हमें क्या सीख लेना चाहिए वो बात बताए। जैसे माँ देवी का हर अंग का, हर स्थिति का आप विस्तार से बताए, इससे हमें ज़रूर सीख लेना चाहिए। जिस तरह आज का कार्यक्रम का माध्यम से हमें बहुत कुछ प्राप्त हो रही है, त्यौहार का साथ साथ हमारा मन में जो उमंग उत्साह देखने को मिलता है, इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से हमारा ग्रामवासी अंचलवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, सुनते हैं और झूमते रहते हैं और इससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रस्तुति आपने दी। जब त्यौहार मनाते हैं उसका साथ साथ उसका आध्यात्मिक रहस्य और उससे हर अंग प्रत्यंग से, हर वस्त्र से, रूप रेखा से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलता है। गुण का दात्री, सर्वशक्तियों का धात्री माँ चंद्रघंटा के बारे में जितना भी कहे कम ही होगा, लेकिन समय को देखते हुए एक विराम लेते हैं। विराम का बाद और कुछ जानकारियाँ लेंगे, खासकर माँ चंद्रघंटा का बारे में। तो कहीं मत जाइए, अपना रेडियो का वॉल्यूम को तेज रखते हुए एक भजन सुनिए माँ देवी का ऊपर में। फिर मिलेंगे अल्प विराम का बाद। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन।

नमस्कार, ब्रेक का बाद हम मिल रहे हैं और अच्छा लग रहा है इस तरह कार्यक्रम में जब हम बढ़ चढ़कर सुनते हैं, भाग लेते हैं और हमारा गांव और अंचल में जब त्यौहार होता है हमें बहुत कुछ मिलता है, हमारा जीवन में सुख शांति आनंद खुशी प्राप्त होता है और एक संगठन का जो बल होता है वो देखने को मिलता है। त्यौहार हमें बहुत कुछ सीख देता है और हमारा जीवन में आध्यात्मिकता को उजागर करता है। जिस तरह आज त्रिवेणी दीदी ने आध्यात्मिक रहस्य का साथ, इससे हमें क्या भावार्थ लेना चाहिए

0: त्यौहार मनाते हैं बहुत अच्छा बात है, और इसका साथ साथ देवियों का जो स्वरूप है, जो रूप है, जो अलंकार आभूषण है, तो वो भी कुछ हमको शिक्षा देता है, और उस सीख लेकर हमें भी माँ देवी से अनेक गुण शक्तियों को धारण करके अपना जीवन को सुंदर सुखद बना सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ दीदी जी तो है ही है, तो उनको पुनः स्वागत करते हैं। दीदी जी, आप जितना भी बता रहे हैं हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि सही समय पर सही सीख लेना जरूरी है, जिससे हमें बहुत खुशी मिलता है और साथ साथ हम दूसरों को भी खुशी प्रदान करते हैं। तो आज का जो त्यौहार का, खासकर जो नवरात्रि स्पेशल चल रहा है, उसमें माँ चंद्रघंटा का जो कथा, इसका जो कहानी, इसका पीछे का रहस्य क्या है, वो चीज़ थोड़ा हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासियों को जरूर बताइए, जिससे हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासी बहुत कथा सुनते हैं, कथा सुने हुए हैं, लेकिन आप आध्यात्मिकता को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिससे हमारा सभी श्रद्धालुओं को, भक्तजन को प्राप्त होगा ही। अच्छी अच्छी बातें जब सीखते हैं, सुनते हैं, हमारा जीवन में काम में आता है, जिसका चलते हमें हमारा भविष्य को लेकर आगे बढ़ पाते हैं। तो चलिए आपको पुनः स्वागत करते हैं। इसका ऊपर में क्या कथा है, क्या राज है, उसका ऊपर में थोड़ा आलोकपात कराएंगे, जिसका चलते हम त्यौहार को और सुखद चार चांद लगा पाते हैं। तो पुनः आपको स्वागत।
1: तो आज इस तृतीय दिवस पर हम माँ से, अगर हम सच्चे दिल से माँ को मानते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, तो आज माँ के इन गुणों में से एक गुण को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लें, तो हम कहेंगे कि हाँ, सचमुच मैं चंद्रघंटा माँ को श्रद्धा से मानती हूँ। तो उसकी श्रद्धा के लिए ये श्रद्धा सुमन अपने संकल्पों को उनके चरणों में दें। तो अभी हम उस ओर मुड़ते हैं जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं, माँ की कथा, माँ की निर्मिति कैसे हुई, किस प्रकार से माँ में ये दिव्य शक्तियां आई। तो कथाएं बताते हैं कि नवरात्र में जब कथा सुनने की परंपरा का जो महत्व दिया जाता है, हर घर में जहाँ देवियों की स्थापना की जाती है, उन घरों में नित्य नियम से दिया धूप जलाकर सुगंधित वातावरण को तैयार किया जाता है, उस वातावरण में ही कथा का वाचन करते हैं। इन 9 दिन में घर में मंदिर समान वातावरण को बनाए रखने का हर कोई व्यक्ति प्रयास करता है। आज चंद्रमा देवी की कथा सुनेंगे, सिर्फ कथा नहीं, लेकिन मैं फिर से आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान खींचवाती हूँ। इस कथा से हमें उसके भावार्थ को लेना है। कथा में हमें क्या संदेश दिया है माँ ने, इसके ऊपर हम ध्यान खींचवाएंगे। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है, इसके ऊपर हम ध्यान देते हुए माँ की इस कथा को सुनेंगे, और इस कथा से अपने जीवन में विशेष एक धारणा को अपनाएंगे, ताकि हमारा जीवन भी दिव्य गुणों से सुगंधित बन जाए। ये पौराणिक कथाओं में बताया जाता है, देवताएं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला था। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज्य करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण बड़े परेशान हो गए और इस समस्या से कैसे निकले, कौन हमें उपाय बताएगा, इस सोच में सब देवता इकट्ठे होकर के विचार विमर्श करने लगे। तभी इंद्रदेव ने इशारा किया त्रिदेव के पास जाने का, चलिए हम सभी मिलकर के इंद्रदेव के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं। ऐसी सूचना इंद्र ने सभी देवताओं को दी, तो सभी देवता इंद्र के साथ उनके पीछे पीछे त्रिदेव के पास चले गए और तीनों देवताओं को सामने आह्वान करते हुए अपनी व्यथा सुनाई। जब त्रिमूर्ति त्रिदेव को ये बताई गई बातें कि किस प्रकार से महिषासुर ने इंद्र चंद्र सूर्य वायु और अन्य देवताओं का भी अधिकार छीन लिया है और उन्होंने बंधक बनाकर स्वयं स्वर्ग लोक का राजा बना है, इस प्रकार से समाचार त्रिदेव को सुनाया गया। महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, स्वर्ग में उनके लिए अब कोई स्थान नहीं बचा है। ये समाचार सुनते ही सभी देवताओं को दुखी देखते हुए तीनों देवताओं ने ये योजना बनाई कि क्यों न हम ऐसी शक्ति को प्रकट करें, ऐसी शक्ति को तैयार करें ताकि इस महिषासुर का नाश हो सके। तो तीनों त्रिमूर्ति देवता ने अपने मुख मंडल की ऊर्जा को उत्पन्न किया और उस ऊर्जा को देख सभी देवताओं ने भी इसकी प्रेरणा ली और अपनी अपनी ऊर्जा को त्रिदेव की ऊर्जा में शामिल किया और यह ऊर्जा देखते देखते इतनी प्रखर असीम तेजोमय हो गई कि इसकी ऊर्जा इसका प्रभाव दसों दिशा में व्याप्त होने लगा। तभी इस ऊर्जा से एक देवी का अवतरण हुआ। अवतरित तेजोमय शक्ति को देख शंकर ने वरदान के रूप में उस देवी को त्रिशूल प्रदान किया। इसे देख विष्णु जी ने भी अपना चक्र उसे प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अपने अस्त्र शस्त्र से उन्हें सुशोभित करते हुए वे प्रदान करते गए और देवी की शक्तियां बढ़ती गई। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनकी यह विशाल काया रूपी शरीर को देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब मेरा काल आ गया है। कई दिनों तक यह भीष्म युद्ध चलता रहा। महिषासुर देवी के सामने आते ही देवी ने एक झटके में दानों का संहार कर दिया और आखिर इस युद्ध में महिषासुर मारा गया। इस तरह मां ने सभी देवताओं को असुरों से अभय दान दिया। ये अभय दान देवताओं के लिए एक पुण्य से कोई बड़ा कार्य नहीं था। स्वर्ग का सुख उन्हें प्राप्त हुआ इस दानों के युद्ध से, और दानों के साथ युद्ध करने की क्षमता देवताओं की तब हीन हुई जब उन्हें अभिमान आया और उस अभिमान में देवताओं ने अपनी सारी शक्ति नष्ट कर दी। देवताएं भोग विलास में विलिप्त होने के कारण भी देवताओं की शक्ति नष्ट हुई, इस प्रकार से हम हर कहानी में सुनते हैं। लेकिन इसे लेने का जो उद्देश्य होता है या इस कहानी के पीछे की जो भावनाएं हैं या सारांश, यही कहेंगे हम कि हम हर एक मनुष्य में पंच तत्व की असीम ऊर्जा है जो हमें जन्म से ही बहुत सात्विक रूप से प्रकृति ने दी है। दूसरी प्रखर ऊर्जा का जो स्रोत है हर एक मनुष्य में जन्म से लेकर के मृत्यु तक असीम ऊर्जा एक नेचुरल रूप में प्रकृति ने और परमात्मा ने हमें प्रदान की है वे शक्ति है, संकल्प शक्ति है, जिसे हम साधारण शब्द में विचार शक्ति कहते हैं। जैसे देवताओं में ये देवी शक्तियां हैं, वैसे हम मनुष्यों में भी संकल्प शक्ति बहुत ही पावरफुल है। इस शक्ति को हम सही विधि से सकारात्मक सोच को बनाते हुए ये ऊर्जा को असीम ऊर्जा बना सकते हैं। सकारात्मक शुद्ध विचारों से हमारे जीवन में दुख, अशांति और रोज के संघर्षों से हम दूर हो सकते हैं। हम एक देवतुल्य जीवन जी सकते हैं और इस जीवन में महिषासुर जैसी असुरी प्रवृत्तियां अपने आप में हमें नष्ट करनी होगी। मैं यही कहूंगी कि जब देवियों ने असुरों का नाश किया तो वह असुर शक्ति और कोई नहीं थी, लेकिन हम मनुष्य के अंदर की असुरी प्रवृत्तियां ही थी, जिसका हमें अंत करने की प्रेरणा इन कथाओं के द्वारा प्राप्त होती है। अपने इस देवी के परिचय में ये भी सुना है कि देवी किस गुणों से संपन्न थी, किस शक्ति से संपन्न थी। इस गुणों को हम जीवन में अगर धारण करें तो उससे जो अवगुण थे, जो गलत प्रवृत्तियां थी, वे जरूर हमारे जीवन से नष्ट होंगी। इसी प्रेरणा के साथ ओम शांति।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने अपना अनुभव का आधार से आज का त्यौहार को चार चांद लगा दी और हमारा सभी भक्तजन और श्रद्धालुओं को कुछ प्रेरणा दी। आस्था और विश्वास में जो बढ़ोतरी होने लायक शब्द का साथ इस त्यौहार का बारे में यथार्थ रूप में समझाए, जिससे हमें बहुत कुछ सीख मिलता है और हमारा जो श्रोता मित्र ग्रामवासी जो सुन रहे हैं इस समय, तो उनको भी बहुत कुछ लाभ होगा। जैसे इस देवी का परिचय में आपने पूरा उनका जो साज सज्जा और उनका जो अंग में जो अलंकार धारण किए, उसका ऊपर में भी आप पुंखानुपुंख मैंने यथार्थ रूप में जानकारियाँ दिए। हम तो त्यौहार मनाते हैं, लेकिन त्यौहार का साथ साथ उसको सही विधि से और यथार्थ रूप में जब मनाते हैं उससे हमें कुछ सीख मिलता है। जैसे आज आपने पूरा आरंभ से अंत तक, शेष तक आपने पूरा विस्तार रूप में सटीक रूप में जानकारियाँ दिए और इस त्यौहार में हमारा जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इन शब्दों के साथ आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को, खासकर नवरात्रि स्पेशल में चौथा दिन में हम आपको और एक देवी का स्वरूप में बताएंगे, दुर्गा जी का, जो नवरात्रि चल रहा है उसी में और कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अच्छा, सभी को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएँ, शुभ भावनाएं। अच्छा, धन्यवाद, आभार।
2: बोलो अध्याशक्ति मात की जय। बोलो अध्याशक्ति मात की जय।

0: की जय।
1: बोलो अम्बे मात की जय।
2: मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन. आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी आदरणीय उषा दीदी से.
1: ओम शांति. भारत त्योहारों का देश है और हर रोज कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं. कहा जाता है कि उसमें से सबसे रंग बिरंगी उमंग उत्साह से भरा हुआ त्योहार नवरात्रि का त्योहार है. आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का दिन माना गया है और माँ चंद्रघंटा एक प्रतीकात्मक माँ चंद्रघंटा का मतलब है चंद्र और घंटा. चंद्र अर्थात के चंद्रमा, इसीलिए उनके चेहरे के ऊपर आधा चंद्रमा भी दिखाया है और साथ में घंटा दिखाया गया है. चंद्रमा प्रतीक है शांति शीतलता का कि जिसकी पूजा करने से मनुष्य के जीवन के अंदर शांति और शीतलता का वरदान मिले. और साथ ही साथ घंटा अर्थात के जो मंदिरों में हम घंट बजाते हैं वो भी उनके चेहरे के ऊपर दिखाया हुआ है. और कहा जाता है कि जब भी घंट बजता है तो जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक प्रकंपन है, वो दूर हो जाते हैं वातावरण के अंदर से और एक सकारात्मक ऊर्जा विकसित होते हैं. उसका चेहरा बहुत सुंदर दिखाया है, साथ में ही

मध्य अंत के ज्ञान का गोतक है, जिसे स्वदर्शन चक्र या सुदर्शन चक्र भी कहा गया है। त्रिशूल यानी दृढ़ निश्चय का प्रतीक और मन वचन कर्म के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। शंख यानी जो शंख ध्वनि कर अज्ञान अंधकार को समाप्त कर मनुष्य आत्माओं को अज्ञानता की नींद से जगाने का प्रतीक है। हाथ में तलवार यानी मन पर प्रहार करने वाले ईर्ष्या द्वेष विकार वासना रूपी भूतों को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा मार गिराने का प्रतीक। धनुष बाण जिसका भावार्थ है कि ज्ञान के आधार पर लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना व पुरुषार्थ रूपी बाण चलाकर द्रुपद अथवा एक रस एवं अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना है। गदा परमात्मा शिव की याद में रहकर माया अर्थात पांच विकारों से युद्ध कर उन पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। और कमल पुष्प यानी संसार में रहते हुए तामसिक विकारी वायुमंडल से अलिप्त यानी पवित्र रहने का प्रतीक है। ये दिव्य शक्तियां आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियां हैं, बाकी कोई देवियां हिंसक नहीं है, क्योंकि विकार या असुरी वृत्ति आंतरिक दुर्बलता से ही उत्पन्न होती है और ये आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही ऐसी असुरी वृत्तियों का संहार किया जाता है। और इस तरह माँ चंद्र घंटा नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष पूजी जाती है और संपूर्ण रीति से असुरों का संहार करने का।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, की केन हो। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त केवल और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर खुशी के नगमे दिल की बातें। जी हाँ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आज भक्ति और उसी नवरात्रि के गर्भों का आज है तीसरा दिन, यानी तीसरे दिन में हम ज़्यादातर माँ चंद्रघंटा जी की साधना आरती पूजा करते हैं। और इन्हीं 9 दिनों में हम अलग अलग देवी अम्बे माँ की ही पूजा, दुर्गे ही की पूजा करते हैं, लेकिन अलग अलग स्वरूप में उनकी पूजाएं होती है। तो आज जैसे मैंने कहा चंद्रघंटा जी की, माँ चंद्रघंटा जी की आरती और उनकी पूजा होती है। तो दोस्तों बताइए, आज के दिन आपका क्या खास है? आज के दिन आप नवरात्रि में कहाँ जा रहे हैं, गरबा खेलने हैं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अपने गांव के चौपाल पे जो नवरात्रि के गरबे लगे हुए हैं वहाँ आज आप जा रहे हैं, या फिर किसी पार्टी प्लॉट पे, या फिर कहीं और जा रहे हैं, या फिर घर पर ही है, आप हमसे बिल्कुल से शेयर करें। लेकिन आज भी बात वही है, आज भी हमारी नवरात्रि के इन गरबों की रास की बात हो रही है, तो उन्हीं गानों को आज भी हम सुनेंगे। और ये भी बताइए कि कल कैसा रहा? कल आप लोगों को बड़ा मज़ा आया, मैं सोच रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा कल, क्योंकि मुझे तो बड़े मज़ा आया कल के जो गाने हमने सुन रहे थे। और ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे पाँव थिरक रहे हो, मेरे भी पाँव थिरक रहे थे। और आज हमारा पहला ही कॉल हमसे जुड़ रहा है, चलिए सुनते हैं उनसे। हेलो,
1: ओम शांति गुड इवनिंग, आज केवल भाई जी कैसे हो?
0: बढ़िया सुभाष भाई, हम ठीक है, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ।
0: आप
1: देखो, हाँ बोलो क्या
0: सुभाष भाई, मैं कह रहा नवरात्रि के आपको खूब खूब शुभकामनाएं।
1: आपने बोल दिया, मैं बोलने वाला था। आपको रेडियो

0: નાચો, ઝૂમો, ગરબા ડાન્સ કરો, ખુશિયા બાટો, તો સભી કો સુભાષ ભાઈ કા પ્યાર ભરા નમસ્કાર. ઓર ભાઈજી, મેરી આજ કી ફરમાઇશ હૈ, પંખી ડાલે ઉડીને જાઓ પાવાગઢ રે, યે મેરી ફરમાઇશ હૈ. થેન્ક યુ, શુક્રિયા, નમસ્કાર.
1: સુભાષભાઈ થેન્ક યુ સો મચ, ઓર બહોત હી પ્યારી આપને, बहुत ही प्यारी आपने हमें फरमाइश दी है, और बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष भाई का. आज हमें सबसे पहला कॉल आया है, और उन्हें सभी को आज के इस तीसरे दिन की नवरात्रियों की शुभकामनाएं सभी को दी है. और जो भी सुन रहे हैं उनको मैं बता देता हूं सुभाष भाई की तरफ से आप सभी को, और सुभाष भाई भी अगर सुन रहे तो हम सभी की तरफ से, जो भी हमें सुन रहे हैं उन सभी की तरफ से आपको खूब खूब शुभकामनाएं नवरात्रि के. और जी हाँ, आज के दिन की हम ओम देव चंद्र घंटाए नमः के नाम से शुरू करते हैं आज का पहला नगमा, पहला गाना. और इसी तरह से आज के नौ दिन नवरात्रियों की हम खूब खूब गानों की मजे करेंगे, मस्तियाँ करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खूब मस्ती करेंगे. चलिए तो शुरू करते हैं आज का दिन का पहला नगमा. सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर.

0: नवरात्रि के तीसरे दिन को सिंदूर तृतीय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की रेडियो मधुबन पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: वेलकम बैक दोस्तों। और जी हाँ, सिंदूर तृतीय की आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। आज इस नवरात्रि के तीसरे दिन पे, जैसे कि कहा, सिंदूर तृतीय भी मनाया जाता है। माँ चंद्रघंटाए नमः। और आज के दिन पे खास भोग ऑफर जो हम करते हैं, यानी कि जो भोग लगाते हैं, उसमें दूध, खीर या फिर दूध से बनी कुछ मिठाइयाँ और ऐसी चीज़ें ज़्यादातर हम ऑफर करते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं। और जी हाँ दोस्तों, ये गाना अभी हमने जो सुना, मैं आपको बता दूँ, इसे मणिलाल जी, यस मणिलाल देसाई जी ने इसे लिखा था। इसके गायक थे हमारी फाल्गुनी पाठक जी, ऐश्वर्या मजुमदार। और जी हाँ, हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे, करते हैं उनसे बातें। हेलो
2: जी सर, नमस्ते, गुड इवनिंग। सुरेश भाई बोलता हूँ, जगन्नाथ से। कैसे हो सर?
1: बढ़िया सुरेश भाई, आप कैसे हैं?
2: बस अच्छे हैं। आज आवाज ठीक आ रही है सर?
1: बिल्कुल, आज एकदम परफेक्टली आवाज आ रही है, आज एकदम क्लीन साफ आवाज आ रही है।
2: सुबह में भी ऐसा था, सुबह में हमने कॉल किया था नई किरण में, तो भी ऐसा ही था। जब आप रात को बोलते थे, कुछ कुछ की आवाज आ रही थी, तो बाद में हमने कॉल किया और बोला, बताया कि भाई इसका ठीक कर दो, तो बाद में ठीक हो गया।
1: चलो बढ़िया, गुड, अच्छी बात है।
2: हाँ जी, तो कल तो अच्छी तरह से बात नहीं हो पाई, लेकिन आज चलो अच्छी तरह से बात हो पाएगी।
1: बिल्कुल,
2: तो
1: बिल्कुल।
2: आपके मित्रों को आपके दिन की शुभकामनाएं। आज तीसरे दिन है नवरात्रि के
1: जी,
2: तो माँ चंद्रघंटा का सबको बरसाता रहे
1: जी,
2: और सभी को माता रानी की कृपा बनती रहे, ऐसी शुभकामना देते सभी हमारे साथी मित्रों को। और हमारे सुभाष भाई तो आ गए, अच्छी बातें बता के गए
1: जी।
2: लेकिन हमारे बुरीलाल जी को सर क्या आएंगे? बुरीलाल जी का रेडियो नहीं सुनाया जा रहा है, कई शायद,
1: हाँ,
2: हो गया है।
1: मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं बीच में तीन चार दिन नहीं था, तो हो सकता है उस वजह से नाराज हो गए हमारे बुरीलाल जी, और कहा कि हमारे फोन पहला नहीं आ रहा है।
2: नहीं ऐसा नहीं है, वो उसको रेडियो नहीं सुना रहे हैं, मुझे फरियाद बता रहे थे, मुझे तीन चार बार कॉल किया, लेकिन मैं बताऊँ मैं क्या बताऊँ, मैं तो इंटरनेट पे मैं कुछ सुन रहा हूँ।
1: मुझे ऐसा लग रहा है उनका जो इंटरनेट है, यानी उनका जो रेडियो है, हो सकता है अपडेट मांग रहा हो, या फिर उन्होंने शायद कुछ है जो करना पड़ेगा उनको, अब जब तक वो देखे
2: नहीं। नहीं वो क्या बात है, हम यहाँ वो है, क्या पता चले उसको क्या प्रॉब्लम। मैंने बताया कि आप कोई अच्छे, कोई आपके पास कोई अच्छे जो दोस्त हो इसको बता दीजिए, क्योंकि वो बच्चे को ज्यादा पता चलता है
1: जी,
2: तो बच्चों को बता दीजिए, वो कोई प्रॉब्लम हो तो आपका निकाल देंगे। इसीलिए इसकी वजह से बुरीलाल जी का कॉल नहीं आ रहा है, कोई कार्यक्रम में नहीं आता है
1: जी।
2: तो हमने भी बात की थी बुरीलाल जी को, लेकिन पता रहे क्या करेगा, तुरंत मैं सुन नहीं रहा हूँ, इसीलिए क्या बताऊँ आपको। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप सुन नहीं रहे तो खाली ऐसे बात करके दीजिए फोन करके।
1: बिल्कुल,
2: तो हमने बात की है, शायद फोन आएंगे थोड़ी देर में शायद।
1: चलिए अच्छी बात, अगर आ जाता है उनका फोन तो।
2: हम नवरात्रि के गाने तो सुन रहे, लेकिन अभी हम कोई फरमाइश नहीं करेंगे, क्योंकि नौ दिन हम गाना ही सुनते जाएंगे, तब
1: चलिए
2: नवरात्रि का गरबा ही सुनते जाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, लेकिन
2: गरबा तो, हाँ, आप गरबा तो अच्छी तरह से सुना रहे हैं।

0: क्योंकि मुझे, मैं सच बताऊं ना, मेरे लिए भी ये त्योहार कुछ इतना खास है ना कि नवरात्रि की 9 दिनों में गरबे की जो ताल होती है उनकी जो
1: म्यूजिक, बताओ ये छोटे या बड़े, ये तो सबका सभी का हाँ दिन चल रहा है। अभी माता रानी को तो 9 दिन के पहले बुजुर्ग हो या छोटे बच्चे हो या यंग हो चाहे बच्ची हो, तो ये नवरात्रि का पर्व सभी को अच्छा ही लगता है
0: जी।
1: चाहे आप गरबा खेले ना खाले, खाली देखने जाओ तो भी मन खुश हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: तो चलो अच्छा है। 9 दिन तो बीच खुशियाँ मनाएंगे जो हम माता रानी के साथ में, तो चलो आपके साथ हम हैं और आपके
0: शुक्रिया जी।
1: जी नमस्ते सर।
0: नमस्कार सुरेश भाई, थैंक यू सो मच आपका हमें कॉल करने के लिए। और जी हाँ, आज हम इन्हीं 9 दिन देवी माँ की आरती के और भजन और उन्हीं के ये गानों को एंजॉय करेंगे और बस सुनते रहेंगे रेडियो मधुबन और प्यारे प्यारे गाने सुनते रहेंगे। चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। और अगला जो नगमा है वो है हमारे सुभाष भाई की तरफ से। सुभाष भाई ने हमें फरमाइश के रूप में दिया था कि पंखीड़ा रे उड़ी जजो पावागढ़ रे मारे माँ काली ने जैने कज गर्भ रमे रे। चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

आइए नवरात्रि में शक्ति के नौ रूपों का आह्वान करते हैं। माँ चंद्रघंटा श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि का वरदान देती है, तो आइए हम भी सभी को सुख बांटें और माँ का आशीर्वाद सहज प्राप्त करें। आज नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से हार्दिक

वेलकम बैक दोस्तों। और अभी हम बहुत ही प्यारे प्यारे नगमे सुन रहे हैं, प्यारी प्यारी आरतियाँ गाने सुन रहे हैं गरबे के रूप में। और आपकी भी ऐसी कोई फरमाइश आ रही है, आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि नहीं ये गाना मुझे सुनना है, ये गाना मैंने अभी तक नहीं सुना है, और आपको उस गाने को सुनने की इच्छा हो रही है, तो आप बिल्कुल से मुझे अपने नगमों को सजेस्ट कर सकते हैं। हम वो कोशिश करेंगे प्ले करने की, बिकॉज अभी 9 दिन गरबे की रमझाट चल रही है। और गरबा रमवाने तो जे मजा होए बापो, गरबा ना आरती गावानी ने जी मजा होए, ए सांभवानी मने भी मजा आवी रही छे। तो चले आजे पाछे अपन सुनते हैं। सॉरी मैंने हिंदी गुजराती मिक्स की, बिकॉज मेरी गुजराती आज बाहर आ रही। तो चलिए सुनते हैं रेडियो मधुबन पे ये अगला प्यारा सा नगमा। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

आइए नवरात्रि में शक्ति के नौ रूपों का आवाहन करें। माँ चंद्रघंटा श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। आइए हम भी सभी को सुख बांटें और माँ का आशीर्वाद सहज प्राप्त करें। आज नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को मंगल कामनाएं।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके भीतर संतोष का बीज बोता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आइए नवरात्रि में शक्ति के नौ रूपों का आवाहन करें। माँ चंद्रघंटा श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। आइए हम भी सभी को सुख बांटें और माँ का आशीर्वाद सहज प्राप्त करें। आज नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को मंगल कामनाएं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री और ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसके बारे में दुनिया में हर व्यक्ति को ये सही जानकारी होना आवश्यक है कि स्वास्थ्य को हम कैसे समझें, अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसके कारण क्या है और उसे हम ठीक कैसे करें। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, भले वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, भले वो अमीर हो गरीब हो, वो शहर में रहता हो या ग्रामीण परिवेश में रहता हो, वो किसी भी आयु का क्यों ना हो, वो किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य एक कॉमन फैक्टर है। एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान के लिए आवश्यक है और हर एक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की जानकारी मिलना एक आवश्यक चीज है। प्रायः हम इस जानकारी के अभाव में अपने आप को दुखी कर लेते हैं, अपने शरीर में रोगों को न्योता दे देते हैं और इसके कारण लोगों को अपनी की हुई कमाई को भी फिर से स्वास्थ्य को हासिल करने के लिए खर्च करना पड़ता है। कई असाध्य रोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति जीवन भर साथ में जीते रहता है, समझ कर चलता है कि अब तो इस रोग के साथ ही जीना पड़ेगा। मगर क्या ये सब हमारी धारणाएं सही हैं? क्या हम शुरुआत से ही स्वस्थ रहने के बारे में कुछ सही चीजें कर सकते हैं? आइए कुछ ऐसे ही विषयों पर आज चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ स्वास्थ्य जगत के ही एक विशेषज्ञ इस विषय पर हमें जानकारी देंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, ओम शांति।
1: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो ये बात समझने वाली लगती है कि आज अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग विषय हो सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में अप्लाई करने वाली चीजें अलग हो सकती हैं, शहरी जीवन जीने वाले लोगों के लिए अलग चीजें अप्लाई कर सकती हैं, पढ़े लिखे इंसान के लिए कुछ चीजें समझ की अलग होंगी और जो व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, तो उसके लिए समझाने वाली चीजें कोई अलग प्रकार की होंगी। मगर स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो विश्व भर में हर एक मानव के लिए सेम है। हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, सुखी रहना चाहता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति क्या हम सबको एक बेसिक एजुकेशन या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक समझ, क्या ये होनी जरूरी नहीं है?
2: स्वास्थ्य के लिए सबको जागरूक होने की जरूरत है। अमीर गरीब, पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे, पुरुष महिला बच्चे, सबको इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है। आप आज बात करते करते आपने कहा कि आदमी अपना पैसा खर्च करके अपना स्वास्थ्य पाने की कोशिश करता है, तो इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि पहले वो अपना स्वास्थ्य खर्चा करता है पैसा कमाने के लिए और फिर उसी पैसे से वापस स्वास्थ्य लेना चाहता है। जैसे उसका ठीक समय पे न सोना, ठीक समय पे न खाना, ठीक समय पे काम पे न जाना, जल्दी जल्दी खाना, ये सारी चीजें उसको जब बहुत ज्यादा चीनी, बहुत ज्यादा तेल मसाला, बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा नमकीन, ऐसी चीजें खाना, और जब वो बीमार पड़ने लगता है तो वो डॉक्टरों का गोल गोल चक्कर लगाता है और फिर जब डॉक्टर उसको समझाते हैं कि भाई ठीक से खाओ, कम खाओ, ये चीज मत खाओ, तब फिर वो आदमी अपना जो कमाया हुआ पैसा है वो अपने स्वास्थ्य को पाने के लिए खर्चा करता है। एक बात आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगी कि अगर हम देखें तो अमीर व्यक्तियों के मुकाबले गरीब व्यक्ति कम बीमार पड़ता है, और वो कम बीमार इसलिए पड़ता है क्योंकि वो अभी भी प्रकृति के पास रह रहा है। अभी भी वो जो उसका भोजन है वो सरल है और वह शारीरिक श्रम ज्यादा कर रहा है एक अमीर व्यक्ति के तुलना में। उसको मेहनत करनी पड़ रही है अपनी रोटी कमाने के लिए, तो वो शारीरिक मेहनत से वो रोटी कमा रहा है, इसलिए वो ज्यादा बीमार नहीं पड़ रहा। आपने जो प्रश्न पूछा था कि जागरूकता सबके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, आप देखिए कि ये सरकार ने, ब्रह्म कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन ने और जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं, तो वो इस चीज को सबको समझा रही हैं और सिखा रही हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है। और इसका बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है कि सुबेरे उठ के ब्रश कर, बाथरूम जाने के बाद बाहर निकल के हाथ धोना, खाना खाने से पहले हाथ धोकर खाना खाना, खाना खाने के बाद अच्छे से हाथ धोना, खाने के साथ पानी को कम पीना, अपने रोज नहाना, सप्ताह में एक बार अपना बाल धोना। तो इस तरह से हम पर्सनल हाइजीन की भी बात कर रहे हैं। और ये कहा जाता है कि अगर आप साफ हैं तो आपके बीमार होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि जहां साफ सफाई रहती है वहां कीटाणु कम रहते हैं। पर बड़ा बेसिक सा बात है, अगर आपके हाथ पे कोई बैक्टीरिया या कोई गंदा वायरस या कोई कीटाणु लगा है, नाखून काटने की बात की जाती है बड़ी छोटी की, देखो भाई नाखून छोटे होने चाहिए। और पुराने जिस समय मैं पढ़ रहा था, श्री भाई आप पढ़ रहे थे, तो हम लोग के स्कूल में बाल छोटे रहने चाहिए, नाखून कटे रहने चाहिए, और ये जो स्कूल के बच्चे जो क्लास के मॉनिटर्स थे या प्रीफेक्ट्स थे, वो लाइन में खड़ा होकर असेंबली के समय हर हफ्ते चेक किया करते थे। तो स्वस्थ रहने के लिए बेसिक हाइजीन की जरूरत है, और उसके साथ साथ हमें अपने आप को थोड़ा वातावरण या प्रकृति के पास रहने की जरूरत है। अगर हम ये दोनों चीज कर लेंगे तो हम शायद बीमार कम पड़े।
1: ये बात समझ में आती है कि आज हर व्यक्ति को इसके बारे में सजग होने की, जागरूक होने की जरूरत है। और जो आपने बात कही कि एक अमीर व्यक्ति के मुकाबले गरीब व्यक्ति कम बीमार होता है, तो ये बात समझ में आती है कि इसका कारण क्या है कि व्यक्ति ज्यादा फिजिकली एक्टिव है। भोजन के प्रति जो हमारी धारणाएं हैं कि हम जितना घनिष्ठ भोजन करते हैं उसके मुकाबले एक गरीब व्यक्ति सिंपल भोजन करता है, और ये सारी चीजों को जब हम आज समझते हैं तो पता चलता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। आज ये भी चीज देखते हैं कि एक व्यक्ति जो संपन्न है, धन धान्य से संपन्न है, तो वो संपन्नता दिखती है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये खाते पीते घर के हैं, यानी ये इंसान मोटा है, ये कहने के लिए एक सभ्य सा शब्द लगता है प्रायः। और कभी कभार हम किसी को मोटा कहते हैं तो आजकल तो लोग कहते हैं कि नहीं आप मोटा मत कहिए उनको। कभी कभार लोग ये कहते हैं कि आप बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, या ये कहा जाता है कि आप उनके शरीर के आकार का परिहास उड़ा रहे हैं, और आपको ये नहीं करना चाहिए। मतलब ये बात समझ में आ रही है कि हम शब्दों का अलग इस्तेमाल तो कर रहे हैं, मगर हम बात वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये व्यक्ति खाते पीते घर का है, ये मोटा है। मगर क्या खाते पीते घर का होना या मोटा दिखना ये वास्तविकता में एक समस्या है?
2: मेडिकली एक बड़ी बेसिक सी लाइन है कि अगर आप मोटे हैं तो आपका पाचन तंत्र अच्छा है, और अगर आप पतले हैं तो आपका पाचन तंत्र उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अब हम इसको बीच में ले जाएंगे एक उन लोगों के लिए जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे अरे ये तो 3-4-5 रोटी खा लेता उसका वजन ही नहीं बढ़ता। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पाचन तंत्र एकदम ठीक से काम नहीं कर रहा है, और ये जो भी खा रहे हैं उससे उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इतर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे अरे हम पानी भी पीते हैं तो उसमें भी वेट बढ़ जाता है। मगर इसमें एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसे लोगों की है जो अपने भोजन में कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक एग्जाम्पल भैया, आपने ही ब्रह्म कुमारीज में जब कोई प्रोग्राम होता है तो आपको उसमें एक टी ब्रेक मिलता है और उसमें बिस्किट जो है वो स्टील के बड़े बड़े बर्तनों में रखा रहता है, आप जितना चाहे उतना ले लीजिए। मैंने ये भी देखा है कि बहुत से लोग एक बिस्किट लेते हैं, बहुत से लोग दो बिस्किट लेते हैं और कुछ लोग 6-7-8 बिस्किट खा जाते हैं। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या खा रहे हैं। किसी ने आपको नहीं बताया कि आप एक लीजिए, दो लीजिए, पांच लीजिए। और बड़ी अच्छी बात है कि जितने बहन भाई वहां पे सेवा दे रहे होते हैं रुकते भी नहीं है, और आप अगर उनसे दो मांगते हैं कहते और ले लीजिए और ले लीजिए, वो मना नहीं करते हैं। ये तो हमारा और आपका बुद्धि विवेक है कि हम कहते हैं नहीं भाई, दो खा लिया बहुत है। मोटा होने में एक क्वांटिटी ऑफ फूड और दूसरा क्वालिटी ऑफ फूड और तीसरा टाइमिंग ऑफ फूड, ये भी बहुत जरूरी है। जैसे हम और आपने पिछले जब टॉपिक्स पे चाय पे बात की तो हम लोग ने क्या बोला, किसी के घर गए क्या है भाई चाय पिला दो। अब चाय के साथ कुछ नमकीन आएगा ही आएगा, कुछ नाश्ते का सामान आएगा ही आएगा। अच्छा, ना हम उनके घर ब्रेकफास्ट के समय गए हैं, ना लंच के समय, ना इवनिंग स्नैक्स के समय, ना डिनर के समय। अगर हम इन चारों समयों के बीच में उनके पास गए हैं तो हम कहते हैं यार अरे खा लो, और ये हमारे खाने का समय नहीं है। हमें कितनी दीदी लोग ब्रह्म कुमारी की आती हैं, जब उनसे आप कुछ ऑफर करो तो सीधे हाथ जोड़ के ओम शांति बोल देती हैं, ये समय नहीं है। बहुत अच्छा इंसिडेंस मेरे हॉस्पिटल में अभी 2-3 दिन पहले हुआ। एक दीदी ब्रह्म कुमारी की आई हमारे पास और उन्होंने मेरे पिताजी से बड़ी गहन चर्चा उनके स्वास्थ्य को लेके की, तो पिताजी ने उनसे कहा कि दीदी आप आई हैं तो कुछ आपको नाश्ता वो करें। दीदी ने अपने पास से एक स्टील का डब्बा निकाला और कहा डॉक्टर साहब इसमें जो आप देना चाहें थोड़ा सा दे दीजिए। तो मेरे पिताजी ने पूछा ये दीदी आप ये क्यों कर रही हैं, तो उन्होंने बोला ये मेरा समय नहीं है खाने का, मैं अपने समय के अनुसार आपका दिया हुआ ही खाऊंगी, पर ये सही समय नहीं। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी दीदी, और ये सीखने की बात है कि किसी ने अपनी इंद्रियों को इतना वश में कर रखा है कि अच्छी मिठाइयां, अच्छे नमकीन, अच्छे कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ ये सब रखा हुआ उसको भी उन्होंने नहीं देखा। हम लोग का तो ये हालत है कि अगर अपने सामने कुछ अच्छी चीज परोस दी जाए तो हम लोग एक की जगह दो खा लेते हैं और हमेशा ये सोच के साथ खा लो पता नहीं आगे मिले ना मिले। सो ये सीखने वाली बात है कि हम अपने भोजन को, भोजन की क्वांटिटी को और भोजन के समय को अगर ठीक से कंट्रोल कर लेंगे तो हम मोटे नहीं हो।
1: दो चीजें समझ में आ रही हैं, एक मोटा होना अच्छी चीज नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि हम मोटे दिखेंगे तो हम खाते पीते करके हैं, मगर ये सही बात नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मोटा होना एक अच्छी बात नहीं है। दूसरा, मोटापे के कारण को हम जब भी देखते हैं तो प्रायः ये चीज समझ में आ रही है कि भोजन की मात्रा, कितनी मात्रा में हम भोजन खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं और किस समय पर खा रहे हैं, इन चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो हम मोटापे से बच सकते हैं। अब एक और प्रश्न उठता है कि आखिर मोटापा इतनी बड़ी समस्या क्यों है, क्यों व्यक्ति को मोटापे पर ध्यान देने की जरूरत है?
2: मोटापा हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उनको परेशान कर सकता है। ये अच्छे से माना जाता है कि मैं एक बड़ी बेसिक बात बताऊं कि वजन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप किसी भी डॉक्टर के अगर क्लिनिक में जाएंगे तो वो सबसे पहले आपका नाम, आपका पता, आपकी उम्र, फिर आपका वजन, और फिर कहेगा बीपी और पल्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ले लीजिए। और अगर आप बच्चों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनके पास वजन और हाइट वेट। आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि जितने भी स्कूल हैं उनमें बच्चों को हाइट और वेट उनका रेगुलरली लिया जाता है, ये पता करने के लिए कि वो स्वस्थ हैं कि नहीं। तो वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत जरूरी मार्कर है। एक चीज और मैंने

0: ध्यान दिया कि अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम ज्यादा लगेगा जो आप स्वास्थ्य के इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि वो आपके जो भी ब्लड टेस्ट कराएंगे उसमें जो भी पैरामीटर गड़बड़ आएगा उससे वो इंश्योरेंस का पैसा बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए मोटापा बहुत नुकसानदायक है। मोटापा हमारे हृदय को डिस्टर्ब करता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, मोटापे की वजह से डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर मोटापे की वजह से बढ़ा मिल सकता है, और हमारी जो धमनियां हैं, हृदय की धमनियां, उनमें कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो सकता है जिसकी वजह से हमको स्ट्रोक आ सकता है। हमारे जिगर में या लिवर जिसे कहते हैं, उसमें अगर हम बहुत मोटे होते हैं तो उसके अंदर मोटापे जो कोशिकाएं हैं वो डिपॉजिट हो सकती हैं, जिससे उसका काम करना गड़बड़ हो सकता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा टॉक्सिन निकालने का काम लिवर करता है और पाचन तंत्र में बहुत हमें मदद करता है, तो वो गड़बड़ हो जाता है। बहुत मोटे व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है और एक उसको खर्राटे आते हैं, उसको ये एक स्लीप एपनिया करके एक समस्या है कि रात में सोते सोते आदमी को ये मालूम नहीं चलता है, उतना मोटा व्यक्ति कि उसकी सांस की नली बंद हो जाती है, उसको एकाएक उठना पड़ता है, दिन भर उसको नींद आती रहती है, तो ये समस्या होने लगती है। हमारे जोड़ों में आर्थराइटिस होने लगती है, हमारे कमर में दर्द होने लगता है, छाती में दर्द होता है। ये देखा गया जो बहुत मोटे लोग हैं उनको गॉल ब्लैडर में पत्थर होने की परेशानी होती है। बहुत सारे कैंसर को भी मोटापे के साथ जोड़ा गया है, बहुत सारे किडनी की बीमारियों को भी जोड़ा गया है। और आपने एक बात और बताई कि मोटे व्यक्ति का मजाक बनता है या उसको बॉडी शेमिंग कहते हैं, तो ये कहा जाता है कि बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स ही मोटापे की वजह से होते हैं। अरे मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं, अरे मैं चल नहीं पा रहा हूं, अरे लोग मुझे देख के हंस रहे हैं, तो इससे बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन तक होने लगता है मोटापे की वजह से। जो महिलाएं या जो पुरुष बहुत मोटे होते हैं उनको बच्चा जो है प्रेगनेंसी करने में भी परेशानी होती है और इनफर्टिलिटी का इलाज कराना पड़ता है कि वो बहुत मोटे हैं तो उनका हार्मोन्स उस तरह से नहीं बन पाते हैं जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी को मतलब सपोर्ट करने के लिए चाहिए। तो मोटापे से हमारा पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है।
1: ये बात समझ में आ रही है कि मोटापा वास्तविकता में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सिर्फ व्यक्ति के देखने के लिए नहीं, मोटे व्यक्ति के बगल में जब बैठना होता है, अगर आप बस में ट्रेन में जाते हैं तो जब ज्यादा जगह घेर लेते हैं तो आपके लिए तो समस्या होती ही है, मगर साथ में ये बात समझ में आ रही है कि ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, मगर स्वास्थ्य के रूप में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब ये एक प्रश्न उठता है, जब आप मोटापे के बारे में ये बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं, खासकर वो व्यक्ति जो जवान हैं और वो मोटे हैं, या ये कहें कि उनका शरीर का भार थोड़ा बढ़ा हुआ है, वो लोग प्राय ये कहते हैं, अरे मेरे को तो कोई बीमारी हुई नहीं है ना अभी तक, तो मैं तो मोटा ही हूं, मैं सब कुछ खा रहा हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, ठीक है, वजन बढ़ गया है तो क्या हुआ, ये बीमारियां तो मुझे हुई नहीं है अभी तक, लोग ये भी कह देते हैं।
0: मोटापा बीमारियों का घर है। इसको दूसरी तरह से समझिए कि आपने अपने दुकान में या घर में जहां आप पैसे रखते हैं उस ड्रॉर को खोल के रखा है, तो आज नहीं तो कल वहां चोरी जरूर होगी। आपने अगर खुले में अनाज रखा है तो आज नहीं तो कल गिलहरी, चिड़िया, चूहे वहां आकर उस अनाज को खाएंगे जरूर। तो आप ये तरह एक समझ लीजिए कि आप बहुत मोटे हैं तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा सामान है, तो कोई ना कोई कीटाणु, और ये तो सिंपल बात है कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। एक मोटे आदमी के बगल में बैठ के आप मोटे तो होंगे नहीं, मगर उसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो आप अगर बीमार नहीं हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो अभी और आज से सजग हो जाइए। श्री भैया और मैं दोनों आपको ब्रह्म कुमारीज में 7 दिन की सेवा के लिए इनवाइट कर रहे हैं। अगर आपने 7 दिन में आबू में या माउंट में सेवा कर दी तो पक्का आपका एक तो दिनचर्या ठीक हो जाएगी और अपने आप आपको लग जाएगा कि आप कितना फिजिकल वर्क कर सकते हैं। सो प्लीज वजन को कम करने के लिए आज से कोशिश करिए।
1: बहुत ही स्पष्टता से आपने ये बात कह दी कि अगर आप मोटे हैं तो आपने ज्यादा सामान इकट्ठा किया है और खुले में इकट्ठा करके रखा है, और आप निमंत्रण दे रहे हैं रोगों को कि आइए। और जैसे आपने अनाज को खुला छोड़ने पर क्या होता है, चूहे आएंगे, अनेक प्रकार के कीटाणु आएंगे, बहुत सारे चिड़िया आएंगे, गिलहरी आएगी, बहुत सारी ऐसी चीज है जो आके उस अनाज को खराब कर सकती है, उसे खाने के बहाने वो आएंगे तो वो और ही ज्यादा आपके लिए कष्ट हो जाएगा। ये हम अक्सर ही पेस्ट कहते हैं ऐसी चीजों को जो अनाजों को खराब करने के लिए आती हैं और खुले में छोड़ते हैं, तो ये कितना बड़ा रिस्क है। और आप अपने शरीर में इतना ज्यादा इकट्ठा करके रखें तो आपने अनेक रोगों को न्योता दे दिया, वो भी आपके शरीर में पेस्ट बनकर आएंगे और वो आपको परेशान करेंगे। तो अगर आप मोटे होते हुए भी अगर आपके शरीर में कोई समस्याएं नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंतजार करें कि वो समस्याएं आए और तब आप निदान उसका ढूंढें, मगर अभी से उस पर काम करना शुरू करें ताकि आप बीमार ना हो, इन बीमारियों को न्योता न दें। और मोटापा बीमारियों का घर है, ये बड़ी स्पष्टता से आज डॉक्टर साहब ने हमें समझाया है। आशा करता हूं कि आज आप सभी एक छोटा कदम अपने स्वास्थ्य को सहजता से वापस ठीक करने के लिए करेंगे तो अपना वजन तोलें। अगर आप थोड़ा ज्यादा हैं तो अपने वजन को कम करने की ओर कदम बढ़ाएं। कोशिशें बहुत छोटी छोटी हैं। आप अपने भोजन की मात्रा को कम करें, खाने के समय के बारे में जागरूक रहें, और क्या खा रहे हैं उस वस्तु के बारे में भी जागरूक होकर खाएं। आशा करते हैं कि आज की बातचीत से आप सब ने नई शिक्षाएं ली हैं, एक नई जागरूकता आपको मिली है। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर राहुल मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें इस विषय पर आज मार्गदर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, सहज स्वास्थ्य में आज हमने बीमारियों से बचने के लिए अपने मोटापे को कम करने के पहले कदम के बारे में समझा है। अगर आपके आसपास परिवार में, मित्रों में, आपके साथ काम करने वाले साथियों में कोई व्यक्ति मोटापे से जूझ रहा है, उसके बारे में उसकी जागरूकता नहीं है, तो कृपया उन्हें भी जागरूक बनाएं, सजग बनाएं, ताकि हम उन्हें भी स्वास्थ्य का यह तोहफा दे सकें। एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ राष्ट्र, एक स्वस्थ विश्व के परिकल्पना को साकार करने में अपनी भूमिका निभाएं। सेहत स्वास्थ्य में आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम जारी रहेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नवरात्रि के तीसरे दिन को सिंदूर तृतीय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की रेडियो मधुबन पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी और परी आ गए हैं लेकर आपका फेवरेट शो, जिसका नाम है
2: सपनों की सैर।
3: तो बच्चों, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और पिछली कड़ी में हमने माँ शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के बारे में जाना था। और बच्चों, आज हम बातें करने वाले हैं उन देवियों की जिनकी तीसरे और चौथे दिन में पूजा होती है।
1: हाँ बच्चों, जैसा कि आपको बताया था कि महिषासुर नाम का शक्तिशाली असुर जो बहुत अत्याचार कर रहा था, और तभी देवताओं की शक्तियाँ एकत्र हुई और एक दिव्य शक्ति का प्रकट्य हुआ, वो थी माँ दुर्गा। और माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया, और इन 9 दिनों में माँ के 9 दिव्य स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। तो आज तीसरे और चौथे दिन हम पूछते हैं माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा को।
3: और बच्चों, माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। वे हमें सिखाती है साहस और शांति दोनों साथ में रखे जा सकते हैं। माँ कुष्मांडा जो कि सृजन और ऊर्जा का स्वरूप मानी जाती है, और वे बच्चों को सिखाती है कि हमें अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को पहचानना चाहिए।
1: सही कहा परी। और बच्चों, देखा ना, माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा से भी हमें नई नई शिक्षाएं मिली साहस, शांति और सकारात्मक ऊर्जा को पहचानने की। तो ऐसे ही हम जानेंगे हर दिन माँ के बारे में। तो चलो अभी लेते हैं ब्रेक छोटा सा, और मिलते हैं इस प्यारे से गाने के बाद।
3: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर
2: सपनों की सैर।

0: मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: तो चलो बच्चों, सुनते हैं अब कहानी। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, अब कहानी की बारी है। बच्चों, आज एक छोटे से लड़के बंटी के बारे में सुनेंगे। बंटी नाम का एक प्यारा सा लड़का था, टॉफियां बहुत पसंद थी। बच्चों, एक दिन अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। मौसी बंटी की आदत से परिचित थी, इसलिए वो टॉफियों से भरा एक डिब्बा खरीद कर लाई थी। मौसी ने अलमारी से टॉफियों का डिब्बा निकाला और बंटी के सामने रख दिया। बंटी इतनी सारी टॉफियां देखकर तो बहुत खुश हुआ। मौसी ने कहा, बंटी जितनी सारी टॉफियां चाहिए ले लो। बंटी ने झटपट डिब्बा खोला और हाथ भीतर डाला तो जितनी टॉफियां मुट्ठी में समा सकती थी उसने उतनी टॉफियां मुट्ठी में भर ली। बच्चों, अब सोचो क्या हुआ। डिब्बे का मुंह तो बहुत छोटा था ना, टॉफियों से भरी मुट्ठी डिब्बे के मुंह से बड़ी हो गई थी, इसलिए बंटी का हाथ बाहर नहीं आ रहा था। तो उसने बहुत कोशिश की अपने दूसरे हाथ से डिब्बे को पीछे बढ़ाने के लिए। उसे तेजी से गोल गोल घुमाया, पर बच्चों उसका हाथ तो बाहर ही नहीं निकला। अब सोचो क्या करेगा बंटी। आप होते तो क्या करते बच्चों। बंटी की परेशानी देखकर माँ ने कहा, बेटे अकल से काम लो, अपनी मुट्ठी खोलकर कुछ टॉफियां गिरा दो, फिर तुम्हारा हाथ आसानी से निकल आएगा। तो बंटी ने वैसा ही किया और उसका हाथ आराम से बाहर आ गया। तो देखा बच्चों, ये कहानी क्या समझाती है, समझ गए ना। हमें ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। तो आप भी इस तरह बहुत सारी टॉफियां बंटी की तरह खाना नहीं, वरना पेट खराब होगा और दांत भी खराब हो जाएंगे। तो चलो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

आइए नवरात्रि में शक्ति के नौ रूपों का आह्वान करते हैं। माँ चंद्रघंटा श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि का वरदान देती है, तो आइए हम भी सभी को सुख बांटे और माँ का आशीर्वाद सहज प्राप्त करें। आज नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को रेडियो मधुबन की ओर से हार्दिक

तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं तेनाली रामा की अनोखी दुनिया की किताब का सप्तद्वीप नौखंड नाम का अध्याय, जिसमें कि पड़ोसी राज्य सप्तद्वीप नौखंड का महाराज विचित्र भानु विजयनगर में आक्रमण के लिए प्लानिंग कर रहा है और गुप्तचर भी भेजे हुए हैं, और उसके रिप्लाई में महाराज ने विचित्र भानु को यह संदेश दिया है कि ये सब गतिविधियां रोकी जाए, अन्यथा हम भी अपने शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करेंगे। तो इस तरीके से वह संदेश तो भेज दिया गया। अब आगे क्या हुआ वो मैं आपको बिना देर किए पढ़कर सुनाती हूँ। दूत ने लौटकर महाराज कृष्णदेव राय को सारी बातें बताई। गुप्तचरों को छोड़ने का कोई कारण नहीं था, और जब महाराज कृष्णदेव राय का पत्र उस राजा विचित्र भानु के पास पहुंचा तो वह क्रोध से कांप उठा। उसे अपने बाहुबल पर बहुत घमंड था और उसने पत्रवाहक दूत से कहा, जाओ महाराज कृष्णदेव राय को कहो कि हमारे गुप्तचरों को अविलंब कारागार से मुक्त कर दे, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हम उन्हें 3 दिनों का समय दे रहे हैं, 3 दिनों में हमारे आदमी हम तक नहीं पहुंचे तो परिणाम इसका भयंकर होगा, और ऐसा परिणाम होगा जिसे विजयनगर की पीढ़ियां स्मरण करेंगी। और दूत ने लौटकर महाराज को सारी बातें बताई। तो गुप्तचरों को छोड़ने का तो कोई कारण ही नहीं था, और विजयनगर पर युद्ध के काले बादल मंडरा रहे थे। ऐसी घड़ी में तेनाली राम ने महाराज कृष्णदेव राय से कहा, महाराज आप इस संशय में ना पड़ें कि विजयनगर के इतिहास में युद्ध कभी नहीं हुआ। जो कभी अतीत में नहीं हुआ वह भविष्य में भी नहीं होगा, ऐसा मानकर अनिर्णय में रहना उचित नहीं। संशय मुक्त होकर सीमा की रक्षा का निर्देश अपने सशस्त्र सैन्य बल को दे। 3 दिन बीते और विजयनगर की सीमा पर भीषण संग्राम मच गया। इस घनघोर युद्ध में सप्तद्वीप नौखंड के राजा विचित्र भानु को स्वयं महाराज कृष्णदेव राय ने पराजित कर बंदी बना लिया, और फिर विजय के पश्चात विजयनगर में एक विजयोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें तेनाली राम एक ब्राह्मण के वेश में उपस्थित हुआ, और विजयोल्लास में विजयनगर की प्रजा भी शामिल थी। और महाराज कृष्णदेव राय ने सप्तद्वीप नौखंड के बंदी राजा विचित्र भानु को भी उचित आसन देकर बिठाया, और ये समारोह सैन्य बलों के उत्साह वर्धन के लिए था। फिर बच्चों, अब आगे क्या होगा वो तो हम जानेंगे अगली कड़ी में। तब तक बने रहिएगा और कहीं जाना नहीं, मैं और परी अभी फिर से आने वाले हैं इस गाने के बाद। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से जल्दी और रेडियो का वॉल्यूम फिर से बढ़ा लो। भाई अब परी और मनी दीदी आ गए हैं। पिछली कड़ी में जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी तो जाना है ना। सागर में रहता बड़ा है महान, पानी उगलता बनता है गान, सबसे बड़ा जीव धरती पर कौन, बताओ जल्दी उसका नाम। तो ये थी पहेली परी ने पूछी थी, तो इसका सही जवाब क्या है परी?
2: बच्चों, चिंकी मिंकी चिंटू रिंकू सब ने सही जवाब भेजा है और वो है वेल मछली।
1: हाँ पता है। हाँ बच्चों, 30 हाथी के बराबर होती है बॉडी वाली वेल मछली। और वेल तो आपने देखा भी होगा डिस्कवरी चैनल में, कितनी सुंदर, कितनी बड़ी, बड़ा सा जहाज जैसे लगता है।
2: हाँ तो चलो बच्चों, अब नवरात्रि में डांडिया खेलने भी तो जाना है, तो जल्दी नोट कर लो आज की पहेली। सर्दी में आता गर्मी में जाता, सूरज से लड़कर सबको भाता, बर्फ का साथी ठंड का राजा, कौन है वो मौसम का राजा?
1: तो बताओ बच्चों कौन है वो? परी ने तो अपनी पहेली में अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है, और अब वो मौसम है और अब वो आने भी वाला है। तो जल्दी से हमें बताओ इसका सही जवाब 94-14-15-14-15 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो अपना जवाब।
2: हाँ बच्चों, और साथ में डांडिया खेलने के बाद भगवान जी को गुड नाइट करना मत भूलना।
1: हाँ तो चलो करते हैं गुड नाइट,
2: स्लीप टाइट,
1: गुड बाय,
2: सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो,
2: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM पर।

माँ चंद्रघंटा के दरबार में हर दुख मिट जाता है। माँ चंद्रघंटा के दरबार में हर दुख मिट जाता है। सच्चे मन से जो शीश झुकाए साहस वह पाता है। मस्तक पर चंद्रमा हाथों में शक्ति अपार। मस्तक पर चंद्रमा हाथों में शक्ति अपार। भक्तों के जीवन में खुशियां भरती माँ करती बेड़ा पार। मन में हो विश्वास हो कर्मों में सच्चाई। मन में हो विश्वास हो कर्मों में सच्चाई। माँ चंद्रघंटा की कृपा से जीवन में सुख शांति छाई। माँ चंद्रघंटा की कृपा से जीवन में सुख शांति छाई। तो नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का दिन है, तो इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा। अचानक के साथ आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। कहते हैं ना कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, लेकिन अपना धैर्य नहीं खोना है और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, सर्दी खांसी की समस्या है तो सर्दी खांसी होने से पहले ही बहुत ही सुंदर आज मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, ताकि सर्दी खांसी हो ही नहीं, ठीक है। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। और व्यंजन तो आज माता रानी को कौन सा व्यंजन पसंद है वो ही आपको सिखाने वाली हूँ। और आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर रहेगा। तो इस प्रकार आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चलने वाला है। आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, आप जुड़िएगा और अपनी बात को भी रखिएगा, प्रश्न का जवाब भी जरूर दीजिएगा। तो आइए सुन लेते हैं गीत, उसके बाद पुनः आपसे रूबरू होते हैं। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

చంద్రఘంటాయ నమో నమ నమస్తస్య నమస్తస్య నమస్తస్య నమో నమ. तो पुनः माँ चंद्रघंटा देवी का आज का दिन है. इस दिन के ढेर सारी शुभकामनाएं. गुड मॉर्निंग, नमस्कार. आशियाना कार्यक्रम में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आज का सुंदर सा विचार है कि किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोइएगा और अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखिएगा. कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहेंगे. पहले तो समझाना चाहूंगी कि देखिए, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है. माँ चंद्रघंटा को साहस, शक्ति और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है. भक्त मानते हैं कि उनकी आराधना से मन में आत्मविश्वास और नकारात्मकता से लड़ने की शक्ति जागृत होती है. तो यहाँ पर एक कहानी याद आ रही है कि एक समय देवताओं और मनुष्यों को दुष्ट शक्तियां परेशान करने लगी. चारों ओर भय और अशांति का वातावरण था. तब माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का तेजस्वी और शक्तिशाली स्वरूप धारण किया. माँ सिंह पर सवार होकर अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए दुष्ट शक्तियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ी. उनके घंटे की दिव्य ध्वनि से दुष्ट शक्तियां भयभीत हो उठी. माता ने अपने अद्भुत पराक्रम से देवताओं की रक्षा की और संसार में धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया. तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, जब जीवन में भय, संकट या कठिनाइयां आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए. साहस, विवेक और ईश्वर पर विश्वास रखकर उनका सामना करना चाहिए. वो कहते हैं ना, घंटे की ध्वनि से मिट जाए अंधियारा. माँ चंद्र घंटा का आशीर्वाद हो सबसे प्यारा. साहस मिले मन में, विश्वास जगे. माँ की कृपा से जीवन में मधुमास खिले. जो सच्चे मन से माँ का ध्यान लगाते हैं, वे हर मुश्किल में हिम्मत से आगे बढ़ जाते हैं. तो पुनः आप सभी को नवरात्रि की और विशेष नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के दिन की ढेर सारी शुभकामना. और सुंदर सा विचार सुनने के बाद अब फिर से एक गीत सुनकर के लौटते हैं. तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो. रेडियो मधुबन 107.8 FM.

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन. आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से.
1: ओम शांति. भारत त्योहारों का देश है और हर रोज कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं. कहा जाता है कि उसमें से सबसे रंग बिरंगी उमंग उत्साह से भरा हुआ त्योहार नवरात्रि का त्योहार है. आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का दिन माना गया है और माँ चंद्रघंटा एक प्रतीकात्मक माँ चंद्रघंटा का मतलब है चंद्र और घंटा. चंद्र अर्थात के चंद्रमा, इसीलिए उनके चेहरे के ऊपर आधा चंद्रमा भी दिखाया है और साथ में घंटा दिखाया गया है. चंद्रमा प्रतीक है शांति शीतलता का कि जिसकी पूजा करने से मनुष्य के जीवन के अंदर शांति और शीतलता का वरदान मिले. और साथ ही साथ घंटा अर्थात के जो मंदिरों में हम घंट बजाते हैं वो भी उनके चेहरे के ऊपर दिखाया हुआ है. और कहा जाता है कि जब भी घंट बजता है तो जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक प्रकंपन है, वो दूर हो जाते हैं वातावरण के अंदर से और एक सकारात्मक ऊर्जा विकसित होते हैं. उसका चेहरा बहुत सुंदर दिखाया है, साथ में ही उसको शेर की सवारी पर दिखाया है. जिनका शरीर एकदम सुनहरा दिखाया गया है, शेर पर सवारी का मतलब है इतनी निर्भयता का प्रतीक. उसे 10 भुजाधारी दिखाया और साथ में 3 नेत्र दिखाए हैं. उसके 8 भुजाओं में 8 शस्त्र दिखाए हैं और बाकी 2 भुजाएं जो है विशेष मुद्रा को लिए हुए हैं, आशीर्वाद की मुद्रा के जो हर एक को आशीर्वाद देती है. और ज्ञान का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो ये विभिन्न हाथों में जो शस्त्र दिखाए हैं वो शस्त्र से बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करना. एक हाथ में चक्र है, ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ज्ञान का गोतक है जिसे स्वदर्शन चक्र या सुदर्शन चक्र भी कहा गया है. त्रिशूल यानी दृढ़ निश्चय का प्रतीक और मन वचन कर्म के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करने का प्रतीक है. शंख यानी जो शंख ध्वनि कर अज्ञान अंधकार को समाप्त कर मनुष्य आत्माओं को अज्ञानता की नींद से जगाने का प्रतीक है. हाथ में तलवार यानी मन पर प्रहार करने वाले ईर्ष्या द्वेष विकार वासना रूपी भूतों को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा मार गिराने का प्रतीक. धनुष बाण जिसका भावार्थ है कि ज्ञान के आधार पर लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना व पुरुषार्थ रूपी बाण चलाकर द्रुपद अथवा एक रस एवं अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना है. गदा परमात्मा शिव की याद में रहकर माया अर्थात 5 विकारों से युद्ध कर उन पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है. और कमल पुष्प यानी संसार में रहते हुए तामसिक विकारी वायुमंडल से अलिप्त यानी पवित्र रहने का प्रतीक है. ये दिव्य शक्तियां आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियां हैं, बाकी कोई देवियां हिंसक नहीं है, क्योंकि विकार या असुरी वृत्ति आंतरिक दुर्बलता से ही उत्पन्न होती है और ये आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही ऐसी असुरी वृत्तियों का संहार किया जाता है. और इस तरह माँ चंद्र घंटा नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष पूजी जाती है और संपूर्ण रीति से असुरों का संहार करने का

नमस्कार। ओम शांति। प्यारे श्रोता बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आशियाना में। फिर से मौसम में बदलाव हो, सुबह शाम की ठंडक हो या वातावरण में धूल और प्रदूषण बढ़ जाए, तो हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। तो आइए आज बात करते हैं सर्दी खांसी से बचने के लिए कुछ आसान तरीके आपको सिखाएंगे, ताकि वो कहते हैं ना, पानी आने से पहले पाल बांध देना अच्छी बात है। तो मौसम तो चल ही रहा है सर्दी खांसी का, तो पहले से ही हम सावधानी बरते और अपना ध्यान रखे तो इन सभी से बचे रहेंगे। तो पहली बात तो यह है कि स्वच्छता अपनाइए, अपने हाथों को साबुन से धोइए और खांसते या छींकते समय रुमाल या फिर टिश्यू का इस्तेमाल करिएगा। दूसरी बात है, पौष्टिक आहार लीजिएगा, मौसमी फल खाइएगा, हरी सब्जियां, दालें और पर्याप्त पानी को अपनी दिनचर्या में शामिल करिएगा। तीसरी बात है, धूल और धुएं से बचिएगा, जरूरत पड़ने पर मास्क पहनिए और घर में हवा का उचित आवागमन बनाए रखिए। चौथी बात है, पर्याप्त नींद लीजिए, शरीर को आराम देना भी अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। पांचवी बात है, लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना है। यदि बुखार, लगातार खांसी या तबीयत बिगड़ने की शिकायत हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिएगा। सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको और भी बहुत ही सुंदर उपाय आपको बताने जा रही हूँ कि आप क्या करेंगे जिससे आप हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी रहेंगे और ये खांसी की शिकायत नहीं होगी। तो बहुत ही सुंदर उपाय आपको बताने जा रही हूँ। आप क्या करेंगे, तुलसी और अदरक डाल करके गर्म पेय पी सकते हैं। इससे क्या है, गले को आराम मिलेगा। ठीक है, तो आप तुलसी और अदरक की चाय बना करके आप पी सकते हैं। दूसरा उपाय है, दिन भर पानी पीते रहिए, गला सूखने नहीं देना है और बहुत ठंडे पेय नहीं पीना है। ठीक है, इनसे बचना है। फिर देखिए, हाथों की सफाई रखिएगा, बाहर से आने के बाद और खाने के पहले साबुन से हाथ धोइए, खांसते छींकते समय मुंह और नाक को ढके रखिए। चौथा उपाय है, मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें और पर्याप्त प्रोटीन लीजिए। संतुलित भोजन शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता बनाए रखने में मदद करता है। पांचवा उपाय है, रोज लगभग 7 से 9 घंटे की नींद लीजिएगा, इससे शरीर को पर्याप्त आराम मिलेगा। तो ये सारे ही उपाय बहुत ही सुंदर है, आप आजमा सकते हैं और स्वयं को ठीक रख सकते हैं बीमारी आने से पहले ही। ठीक है, और आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा होती है आज और इनका नाम चंद्रघंटा क्यों रखा गया है? तो जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 और यहीं पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में सुरेश भाई जोटाना से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
1: दादी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति आपको, हमारे सभी परिवार को, आपको, हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी। आज तीसरा दिन है नवरात्रि का, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को माता जी की कृपा बनी रहे, हमारे सभी मित्र मतलब परिवार को चले रहे, हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं दीदी
0: जी।
1: जी,
0: और आज का विषय है भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, क्योंकि वह हमारे सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि करता है। क्या कहेंगे आप?
1: बिल्कुल सही बताया, मेरा ही कभी कभी नहीं। मैं बताऊँ तो दीदी, मुझे ऐसा काम करने में बहुत रुचि रहती है। मैं पैसे के लिए या कोई और के लिए नहीं करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ खुशी के लिए करता हूँ। देखो, मैं पक्षियों के लिए वो सभी कोई अच्छे कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं तुरंत ही काम करता हूँ, इसमें मुझे आनंद रहता है दीदी। मैं ऐसा नहीं कि चलो भाई सभी काम में पैसे से करता हूँ, सभी काम में ऐसे करता हूँ, मुझे खुशी रहती है ऐसा काम करने में। और जो खुशी से काम होता है दीदी, वो निस्वार्थ भाव से होता है। कभी कभी पैसे से तो काम होता है, लेकिन पैसे का काम, कोई सेवा का काम पैसे करेंगे तो कम उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसमें कोई खुशी नहीं आएगी। वो तो हम पैसे के लिए करते हैं, लेकिन पैसे के लिए काम नहीं करना है। जो भी कोई ऐसा धर्म का काम है, कोई किसी को मदद करनी है, तो एक खुशी से करेंगे तो एक आनंद रहता है खुशी का
0: जी।
1: तो मैं सुबह में मेरा 5 बजे का रूटीन है रोज, मैं मेरा 5 बजे का काम करता, खुशी से करता हूँ। मुझे मैं कोई ऐसे नहीं कि चलो भाई मैं आज छुट्टी रख दूँ, मेरे क्या मेरे बच्चे नहीं पिएंगे तो मेरे क्या जाएगा, नहीं, मुझे आनंद है इसमें, इसलिए काम करता हूँ।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: बहुत अच्छी बात है, तो बहुत बहुत आभार सुरेश भाई।
1: नमस्ते।
0: हाँ जी, नमस्ते। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में विषय बहुत ही सुंदर आपके समक्ष रख चुकी हूँ, भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, क्योंकि वह हमारे सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि करता है। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, जिसको मैं दोहरा रही हूँ। चले, हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो
2: हेलो उषा बहन जी, सुप्रभात, नमस्कार, जय अम्बे।
0: हाँ जी, जय अम्बे, सुप्रभात, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: कंचन भाई को।
0: हाँ जी कंचन भाई, कैसे हो आप?
2: नंबर बदल गया है इसलिए पता नहीं चलेगा, लेकिन आवाज से तो।
0: अच्छा, वैसे हम लाइव में नंबर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं।
2: जी
0: बिल्कुल,
2: सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया है और बहुत अच्छा है आज का विषय, ये भलाई
0: जी।
2: क्या बोला फिर से एक बार बताइए।
0: हाँ जी, भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, क्योंकि वह हमारे सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि करता है। क्या कहेंगे आप?
2: बिल्कुल बिल्कुल जी, सही बात बताइए आपने, भलाई करनी चाहिए, ठीक है। अगर पैसे भगवान ने हमें दिया है और ये है तो भलाई पैसों से ही करनी चाहिए, लेकिन इसका इसको मिलना चाहिए कि भाई तेरे को क्या करना है, क्या है, क्या काम है तेरे को। यदि ये कोई अपने धंधे में पैसा लगाता है और हमें निर्व्यसनी है, ऐसा है तो हमें भगवान ने हमें दिया है तो थोड़ा धंधे का कोई मशीन है, औजार है, इसमें थोड़ी हेल्प करनी चाहिए बेटा। और ये भी निस्वार्थ
0: जी,
2: भाई तो तेरे को जब धंधा चले तब थोड़ा थोड़ा करके देना, और ऐसा लकी इसको कि इतने महीने में इतना ब्याज होगा, इतना ऐसा होगा, तुझे दे देना पड़ेगा वरना तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, ऐसा ऐसी भलाई नहीं करनी
0: जी।
2: मैं तो एक ही बात भलाई के लिए तो मानता हूँ कि कोई गरीब का बेटा हो, कोई हो तो इसको थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाया हो, ऐसा हो तो इसको थोड़ा हुनर, हमें जो हुनर है वो ये बात करनी चाहिए कि भाई ऐसा करो, मशीन की हेल्प हम करेंगे सिलाई में, और तुम एक सीख जाओगे तो अपने आप रोजी कमाना सीख जाओगे। तो ये भलाई मुझे तो इस जमाने में तो श्रेष्ठ लगती है
0: जी।
2: तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट में बताया, और सभी दोस्तों को भी जुड़ना है, आज नवरात्रि का दिन है, सभी दोस्तों को आपको माँ चंद्र घंटा का
0: जी बहुत बहुत आभार आपका कंचन भाई। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, बहुत ही आपने भी संक्षिप्त में बात की है, क्योंकि सभी को अवसर मिले, बहुत अच्छी सोच है। तो देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अपनी बात को रखते हैं, विषय भी बहुत ही सुंदर है। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। आज का प्रश्न है, माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा होती है आज, और इनका नाम चंद्र घंटा क्यों रखा है। और आज का विषय है, भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है। क्यों? क्योंकि वह हमारे सुख और स्वास्थ्य की वृद्धि करता है। अब आपको जुड़ना है और अपनी बात को रखना है। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के विषय में आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। क्या बात है, आप सभी कहाँ व्यस्त हो गए हैं, देखते हैं कौन जुड़ते हैं। और आशाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, जुड़ने की कोशिश जरूर करिएगा और अपनी बात को जरूर रखिएगा। तो बहुत ही सुंदर विषय है, क्या सोच रहे हैं आप भाई? माता रानी के दिन चल रहे, नवरात्रि के, हो सकता है रात को बहुत गरबा किया हो, है ना? और रात को गरबा करते हैं तो फिर सुबह उठना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप आराम कर रहे हैं तो आराम कीजिएगा, उठ गए हैं तो जुड़िएगा। तो देखिए, भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है, कितना सुंदर विषय है, प्रैक्टिकल विषय है कि भलाई करना मतलब। कभी हम क्या है, किसी के लिए कुछ करते हैं तो ऐसा समझते हैं कि अरे हमारा कर्तव्य है तो हमें करना ही पड़ेगा। अरे कर्तव्य क्या होता है, कर्तव्य को साइड में रख करके बस यही सोचिए कि हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमें भी अच्छा ही मिलेगा। क्योंकि आप कभी भी हाथ को नीचे की तरफ करके देखें, एक तो आप हाथ फैला कर देखिए कैसा लगता है, ऐसा अंदर से महसूस होता है कि अरे हाथ क्यों फैलाना पड़ रहा है। एक हाथ अगर देने की मुद्रा में हो तो कितना अच्छा लगता है, अंदर ही अंदर खुशी पहले किसको मिलती है, स्वयं को मिलती है ना, कि हम परमात्मा ने किसी काबिल हमें बनाए कि हम किसी को कुछ दे पा रहे हैं, कितनी खुशी मिलती है, कितने आनंद की अनुभूति होती है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। और जो मांगते रहते हैं उनके, आप देखिए हमेशा मांगते समय नजरें क्या हो जाती है, नीची, शर्म आती ना, भले अपने हैं चाहे हम किसी भी प्रकार से मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी शर्मिंदगी महसूस होती है। और अगर हम किसी को देते हैं चाहे एक छोटी भी चीज क्यों ना हो, फिर भी कितना

0: अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है और ऐसा लगता है कि चलो हम भी इस काबिल है कि किसी को कुछ दे सके, तो एक सुगम सा महसूस होता है दिल में और बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, तो ये भी है कि देखिए हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए कि हमने किया है तो कल वो भी हमारे लिए करे, ज़रूरी नहीं है। हर एक के विचार समय के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन हमने किया इस बात की खुशी मनानी है, इस बात के मौज में रहना है कि हमने किसी के लिए अच्छा किया, बुरा तो नहीं किया ना। बुरा करते ना तो सबसे पहले खुद के ही आत्मा का चोटती है, खुद का ही दिल का चोटता है कि मैंने क्या कर दिया। बाहर खुश रहने की कोशिश करेंगे लेकिन अंदर मन का चोटेगा कि अरे ये क्या कर दिया, नहीं अच्छा नहीं किया मैंने। लेकिन क्या करें, अपनी गलती को कौन स्वीकार करे। और यही अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, बहुत खुशी मिलती है। हाँ जी, ओम शांति, नमस्ते।
1: सभी को, हमारे सभी दोस्त रेडियो मधुबन परिवार को सुभाष भाई का नमस्कार और नवरात्रि की बहुत बहुत मंगल शुभकामना शुभेच्छा।
0: जी जी जी जी,
1: विचार और विषय बहुत ही अच्छा है और हमने सवाल का जवाब तो दीदी मैसेज करके दे दिया है
0: जी।
1: और विषय के बारे में बोलता हूँ थोड़े में, तो देखो ये भलाई करना ये भी एक अच्छा गुण है। भले हमें हमारी जितनी क्षमता है, जितनी कुवत है, उतने हिसाब से हम दूसरों को भलाई करना ये एक अच्छा नैतिक गुण है। आध्यात्मिक ये हमको शक्ति मिलती है, अंदर की शक्ति जिससे आनंद और सुख मिलता है। तो भलाई करो तो खुद का भी ऑटोमेटिक परमात्मा किसी का भी निमित्त बना के भलाई करता ही है, तो उसमें ही सही अंदर का सुख और अंदर का आनंद ही आनंद है, अतंद्रिय आनंद है। और सभी को नमस्कार, ओम शांति, थैंक यू, शुक्रिया दीदी।
0: जी बहुत बहुत आभार आपका सुभाष भाई। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, आपने भी विषय को अच्छा स्पष्ट किया है। आइए यहाँ पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें, आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। भलाई करना कर्तव्य नहीं आनंद है क्यों? और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा होती है और आज इनका नाम मतलब आज के दिन कौन से स्वरूप की पूजा होती है और इनका नाम चंद्रघंटा क्यों रखा गया है? तो यह आज का प्रश्न है। आप जुड़ सकते हैं और दोनों का जवाब दे सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और जरूर आप जुड़िएगा। देखिए नवरात्रि मनाइएगा धूमधाम से, बहुत ही अच्छी तरह गरबा जम रहा है, कहीं राम धुनी चल रही है मंदिरों में और गरबा का भी सभी आनंद ले रहे हैं। साथ ही साथ रेडियो मधुबन से जुड़ करके आशियाना कार्यक्रम का भी आनंद लीजिएगा।

वो अपने आप क्रिया की प्रतिक्रिया होनी ही है। हो सकता है जिसके लिए आपने किया है वो नहीं आए समय पर काम, लेकिन कोई न कोई दूसरा काम आ ही जाएगा। ईश्वर को सबकी चिंता है, वो किसी न किसी को निमित्त बना ही देगा। इसलिए हमारा कर्तव्य सिर्फ यही है कि हम अच्छा करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचे, अच्छा करें, हो सकते उतनी मदद करें। और कभी कभी हम अपने रिश्तेदारों के लिए, जैसे माता पिता बच्चों के लिए करते हैं, या फिर बहन बेटियों के लिए हम करते हैं, या भाई भाई के लिए करते हैं, या बच्चे माता पिता के लिए करते हैं, तो क्या लगता है, अरे हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे। कहाँ भाई कर्तव्य निभा रहे हो, क्या खुशी नहीं मिल रही है क्या? कर्तव्य तो निभाना ही है, कर्तव्य के पीछे नहीं हटना है, लेकिन जो हम कर रहे हैं उससे आनंद की कितनी अनुभूति हो रही, वो सोचना जरूरी है। माता पिता के लिए कोई बच्चे जैसे एज वाले हैं माता पिता, उनके सेवा करते हैं, तो बच्चों के मन में अगर वो दिल से करते तो कितनी खुशी होती है कि चलो आज मैं अपने मतलब मैं स्वस्थ हूँ तो अपने माता पिता की सेवा कर पा रहा हूँ। तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हम इस काबिल, हमको बनाया है भगवान ने, तो धन्यवाद उनका करना चाहिए। और खुशी तो मिलती है ना कि किसी के लिए हम अच्छा कर रहे हैं। बहन बेटियों को हम देते हैं तो देते हैं, इसका मतलब कितनी खुशी मिलती है कि चलो ईश्वर ने हमको दिया इसलिए हम कुछ दे पा रहे हैं अपनी घर के बहन बेटियों को भी। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि हम तो कर्तव्य कर रहे और मुंह को फुला दिया, ऐसे नहीं हो सारा आपका किया धरा सब हो जाएगा पूरा। क्योंकि खुशी नहीं मिली तो क्या मतलब रहा, थोड़ा सा किया और खुशी मिल गई तो कितना अच्छा लगता है। और वैसे देने वाले हमेशा खुश ही रहते हैं क्योंकि उनके अंदर के भाव अच्छे रहते हैं। लेने की बारी आती है तब ऐसा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना? तो बहुत जनों को आप देखिएगा कि लेने के भाव ऐसे होते हैं कि अरे वो नहीं दे तो अच्छा है, मैं कैसे ऐसे हाथ को नीचे करूँगी, वो मुझे देगा कितना भारीपन लगेगा। और देते समय कितने हल्के महसूस करते हैं कि चलो किसी को कुछ दे रहे हैं, तो हल्के महसूस करते हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम कर्तव्य कर रहे हैं। अरे भाई जो कर रहे हैं किसी के लिए भला कर रहे हैं, पूरा आनंद लीजिए। जैसे सुरेश भाई ने बताया है कि कैसे वो 4 बजे उठ करके ही पंछी पक्षियों को दाना देना करना, भाई वो तो उनका कर्तव्य नहीं है ना कि भाई क्या करें पंछी पक्षी नाराज हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। फिर भी कर रहे हैं क्योंकि खुशी मिल रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ न कुछ करते रहते हैं, वो इसलिए करते हैं कि उनको खुशी मिलती है। तो खुशी जैसी तो खुराक ही नहीं है, भगवान भी कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, हमेशा खुश रही है। और खुश ऐसे ही नहीं रह सकते, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं सोच के देखिए, कुछ भी नहीं कर रहे पूरे दिन हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं, क्या खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। हम खुश रहने की कोशिश करेंगे लेकिन जो वास्तविक खुशी है, जो ओरिजिनल खुशी, वो हमें नहीं मिल पाएगी। वो जो वास्तविक अंदर की खुशी है वो तभी मिलेगी जब हम किसी के लिए कुछ करेंगे, तभी मिलेगी। क्या बात है, मैं ही मैं बोले जा रही हूँ, आप कहाँ गायब हो गए? अरे भाई रेडियो मधुबन की घड़ी में पता है कितने बजे, 10:56:27 हो गए हैं। तो मेरे को लग रहा है कि अब तो उठ ही गए होंगे आप, है ना? उठ गए होंगे, इतने लेट तक भले पूरी रात जागरण करो तो भी इतने लेट तक कोई नहीं सोते है। तो जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जुड़ सकते हैं, आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, आप अपनी बात को रख सकते हैं। आज का प्रश्न बहुत सुंदर है जिसका जवाब आप दे सकते हैं, माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा होती है आज और इनका नाम चंद्रघंटा क्यों रखा गया है, ये आज का प्रश्न है। तो आप विषय में भी जुड़ सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं आज के प्रश्न का। अगर आपने विचार ध्यान से सुना होगा तो जवाब उसी में था। और बाकी भलाई करते रहिए, कर्तव्य को कर लीजिए किनारे कि कर्तव्य नहीं हमें तो करना ही है। कर्तव्य तो कुछ लोगों के लिए ही हमारा होता है, भाई बच्चे हैं तो क्या करें उनकी तो पालना करनी पड़ेगी, माता पिता है तो क्या करें उनकी तो सेवा करनी पड़ेगी, बहन है तो ये करना ही पड़ेगा, फलाना है तो ये करना ही पड़ेगा, वो कर्तव्य हो गया। तो कर्तव्य तो एक लिमिटेड लोगों के लिए होता है, लेकिन भलाई तो किसी के भी लिए कर सकते हैं। रस्ते चलते राहगीर का भी आप भला कर सकते हैं, किसी का भी भला कर सकते हैं। और वो जो खुशी मिलती है सचमुच बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही आनंद प्रदान करती है वो। और कहीं ना कहीं ये भी बात सही है कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ठीक है शरीर है तो ऐसा मत सोचिए कि कभी तकलीफ आएगी नहीं, तकलीफ तो आएगी लेकिन दुख नहीं आएगा।

आएगा। शारीरिक व्याधि तो आएगी लेकिन दुख की लहर नहीं आएगी। क्यों रे मैं बीमार क्यों पड़ी, हो गए कोई बात नहीं है, शरीर है तो होना ही है, ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन चलो किसी के लिए कुछ करके बीमार पड़े हैं तो अच्छा लगता है कि अरे जल्दी दुआएं मिलेगी, जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि दुआएं बहुत मिलती है किसी के लिए कुछ करते भाई। ऐसे नहीं कि मैं कर रही हूँ किसी के लिए तो अरे मुझे वो दुआ देगा वो दुआ देगा, नहीं। ठंडक पहुँच गई आपको कि आपके दिल को कि अरे वाह क्या आज दीदी ने सुनाया है, बहुत अच्छा लगा। अंदर से ये जो दुआ निकली ना, ये जो खुशी की लहर निकली, ये भी एक दुआ बन करके काम करती है। तो हम किसी के भी लिए, कोई ज़रूरी नहीं इंसान के लिए, जैसे पंछी पक्षियों के लिए भी, किसी के भी लिए आप करिएगा, खुशी ही मिलेगी। इसलिए भला करते रहिए। भला का आजकल देखते हैं कि खैर, अभी कल की ही बात है, कोई कह रहे थे कि अरे बहन जी भला किसी का मत करिएगा, आजकल तो भला करने पर भी बुरा ही हाथ में आती है। मैंने कहा कैसे, तो बोले कि हम रास्ते में जा रहे थे, गाड़ी में दो सीट की जगह थी, तो एक लेडी और उसका बच्चा रो रहा था सड़क पर। तो पूछा भाई क्यों रो रहे हो, तो महिला आ गई पास में और बोले कि बाबूजी हमको पास में ही जाना है, आप इधर से जा रहे हो तो हमें बिठा दो ना, हमारे पास कोई साधन मतलब नहीं है अभी, कोई ऑटो वाला बहुत महंगा ऐसे 1000 रुपये 1200 रुपये मांग रहे, अगर इतना सा छोड़ दोगे तो आपका भला होगा। सोचा चलो दो की जगह है कोई बात नहीं बैठ जाओ, तीन अंदर बैठे हुए थे, दो को बिठा दिया। और बिठा दिया, पता नहीं उस महिला ने क्या उनका ऊपर कर दिया कि सभी का मन सुन पड़ गया, कुछ रुमाल या कुछ ऐसा डाला कि उसकी स्मेल से सभी सुन पड़ गए और उनको लूट करके वो कब भाग गए पता ही नहीं चला। घंटे दो घंटे वो सब गाड़ी में ही रहे, जबकि वो गाड़ी चला रहा था भाई, फिर भी पता नहीं क्यों नींद का असर हुआ। तो बोले कि मैं साइड में खड़ा कर देता हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, और ऐसे करके गाड़ी को साइड में खड़ा किया और उनको भी कब वो बेहोश हो गए पता ही नहीं चला। वो तो अच्छा रहा कि गाड़ी साइड में खड़ी कर दी, नहीं तो चालू गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता था। तो वो बता रहे थे कि ऐसा हमारे साथ हादसा हुआ, तो कैसे भला करें अब लोगों का। तो ये तो है, अब तो आजकल ये भी देखना पड़ेगा कि भला किनका करे किनका नहीं करे, है ना। क्योंकि एक महिला देख करके एक बच्चा देख करके हर कोई मदद करने के लिए दौड़ता है कि भाई चलो पुरुष लोगों की मदद करे ना करे, महिलाओं की बच्चों की मदद हर कोई करता है, और इसमें भी इतना बड़ा धोखा तो फिर वो बात अलग है। इसलिए भला करिए लेकिन सोच समझ करके, बाकी हाँ हिचकिचाइए नहीं, ठीक है, भला तो करना ही है, चाहे अपने हो चाहे पराए हो। और वो जो खुशी मिलती है, वो जो सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो परख करके, क्योंकि अननोन लोग हैं तो ठीक है ऐसे लोगों को मत बिठाइए, लेकिन गांव में ही रहते हैं, गांव में एक दूसरे को हम जानते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करिएगा, ठीक है। पर आजकल यही है कि किसकी करे ना किसकी ना करे, बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन समझदारी के साथ सतर्कता के साथ, ठीक है। तो बस इस विषय को यही समाप्त करते हैं और आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा होती है आज, और इनका नाम चंद्रघंटा क्यों रखा गया है। ये आज का प्रश्न है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यही पर फिर से एक गीत सुनकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो माँ चंद्र घंटा को नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाता है। मान्यता के अनुसार माँ चंद्र घंटा को दूध से बनी मिठाइयाँ और खीर का भोग अर्पित किया जाता है। आज मैं आपको आशियाना कार्यक्रम में बताने के लिए एक सरल और स्वादिष्ट रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मखाने की खीर। तो सब तैयार हो सीखने के लिए? तो चलिए हम जरूर सिखाएंगे। उसके पहले आज के प्रश्न को दोहरा देती हूँ। आज का प्रश्न इस प्रकार है, माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा होती है आज, और इनका नाम चंद्रघंटा क्यों रखा गया है? यह आज का प्रश्न है, और आप जवाब दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और आइए अब मखाने की खीर के लिए आशियाना के किचन में पेन और डायरी लेकर के पधारिएगा। और सामग्री आपको लिखा रही हूँ, 1 कप मखाना ले लीजिए, 1 लीटर दूध लेना है, फिर चीनी ले लीजिए 3-4 चम्मच, छोटे चम्मच। और देखिए चीनी आपके ऊपर छोड़े, कोई फीका पसंद करते हैं, कोई मीठा पसंद करते हैं, कोई अति मीठा पसंद करते हैं, तो वो आप पर छोड़ा। फिर इलायची पाउडर लीजिएगा स्वाद के अनुसार, कटे हुए बादाम और पिस्ता ले लीजिए आवश्यकता के अनुसार, और केसर के धागे अगर है घर में मौजूद तो एक आध ले लीजिएगा। ठीक है, तो सामग्री फिर से दोहरा रही हूँ, 1 कप मखाना, 1 लीटर दूध, स्वाद के अनुसार चीनी, स्वाद के अनुसार इलायची पाउडर, कटे हुए बादाम पिस्ता अपने आवश्यकता के अनुसार, और 1-2 धागे केसर के। बनाने का तरीका भी सिखा रही हूँ साथ ही साथ, ध्यान दीजिएगा। 1 कढ़ाई में मखानों को धीमी आंच पर 3-4 मिनट भून लीजिए, ठीक है, और फिर सूख जाए इसको, मतलब ठंडा होने दीजिए भुनने के बाद, और फिर इसको कूट लीजिए, अधकचरा कर दीजिएगा। अब आप एक भारी तले का बर्तन रखिए, ये ध्यान रखिएगा पेंदा अच्छा सा मोटा वाला हो, ऐसी चीज़ों में ही खीर बनाना है, ठीक है। तो भारी पेंदे वाला कोई भी बर्तन ले लीजिए, भगोना है, भगोना ही अच्छा रहेगा। अब इसमें दूध उबालिए, फिर आंच को स्लो कर दीजिए 5 मिनट, मतलब अच्छी तरह उबलने दीजिए, फिर आप साबुत कूटे हुए मखाने दूध में डालिएगा, 10-15 मिनट धीमी आंच पर आप पकाइएगा, जब तक खीर गाढ़ी ना हो जाए, ठीक है। फिर जब आपको लगे कि हाँ अब हमारी खीर बनने को आई है, तो चीनी डाल दीजिए, केसर डाल दीजिएगा, और ड्राई फ्रूट्स भी डाल दीजिएगा। अब आप गैस बंद करके इलायची पाउडर भी बुरका दीजिए। तो ये बन गई मखाने की स्वादिष्ट खीर, जिसकी विधि मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक मोटे पेंदे वाला भगोना लीजिए और उसमें दूध गरम करिएगा, दूध अच्छी तरह गरम हो जाए तो फिर एक तरफ आप ये मखाने रोस्ट कर लीजिए, रोस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा कूट लीजिए ठंडा हो जाए। फिर अब आप ये दूध गरम हो गया है, इसमें आप मखाने डाल दीजिएगा और मखाने को पकाइएगा, हिलाते रहिए अच्छी तरह 15-20 मिनट तक आप इसको होने दीजिए, और जब खीर गाढ़ी हो जाए थोड़ी सी, फिर आप चीनी डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिएगा, और केसर भी डाल दीजिएगा। तब तक आपको केसर थोड़े से दूध में अलग से घोल के रखना है, ठीक है, ताकि दूध में मिक्स होने में टाइम नहीं लगेगा। फिर आप खीर में डाल दीजिएगा, और अच्छी तरह जब चीनी मिक्स हो जाए तो आप गैस बंद कर दीजिए, इलायची पाउडर भी बुरका दीजिए। तो ये बन गए स्वादिष्ट मखाने की खीर। अब आप आराम से माता रानी को भोग लगा सकते हैं, अपने इष्ट देव को भोग लगा सकते हैं, और फिर आप पूरे परिवार सहित इसका आनंद ले सकते हैं। तो आइए फिर से आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा होती है आज, और इनका नाम चंद्रघंटा क्यों रखा गया है? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यही पर फिर से अल्प विराम लेकर के लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आते, आज आप जल्दी आ गए।
1: हाँ विमला, आज डॉक्टर से तुम्हारे सोनोग्राफी के लिए अपॉइंटमेंट जो लिया है। जाओ जल्दी, तैयार हो जाओ।
0: सोनोग्राफी वो किस लिए?
1: मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। वैसे भी महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
0: पढ़े लिखे होकर भी आप कैसी बातें करते हैं। मेरी सहेली कमला को ही देख लीजिए, वो अपने माता पिता का ख्याल अपने बूते अभी तक रख रही है। स्कूल में प्रिंसिपल है, अच्छे पोस्ट पर है, क्या कमी है? वो अभी तो एक लड़की ही है ना।
1: फिर तुम शुरू हो गई।
0: सच ही तो कह रही हूँ। अब अपने दोस्त अनिल को ही देख लीजिए, अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ गया है।
1: हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ कर देना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। भगवान अब मुझे लड़की ही देना, एक प्यारी सी नन्ही मुन्नी गुड़िया रानी, बिल्कुल विमला जैसी।
2: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करिएगा, और नुस्खे भी बहुत ही सुंदर दिए हैं जिनको आप आजमा सकते हैं। भाई कहते हैं ना, पानी आने के पहले ही पाल बांध दो, तो तबीयत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। अभी सर्दी जुकाम बुखार के बहुत शिकायतें हो रही है, तो थोड़े से सावधानी कैसे बरतेंगे वो आपने जाना है। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी हुई है, तो रेसिपी में जो मखाने की खीर बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की पूजा होती है आज, और इनका नाम चंद्रघंटा क्यों रखा गया है। तो सही जवाब दिया है आज हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने, अलका जी कपासन से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, सुरेश भाई जोटाना से, कंचन भाई मंडाली से। पहले तो हम आप सभी के लिए तालियां बजाना चाहेंगे कि आप सभी जुड़े हैं और आप सभी ने सही जवाब दिया। तो आज का जवाब मैं आपको सुना देती हूँ। आज का जवाब है, देखिए तीसरा दिन है और माता रानी का स्वरूप है चंद्रघंटा। और कारण है, नाम क्यों पड़ा चंद्रघंटा, क्योंकि उनके मस्तक पर घंटे का आकार का अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसके कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। ठीक है, और विषय में भी आप सभी जुड़े हैं, इसके लिए भी ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती है, ये आंखें प्रभु का विशेष उपहार है, इनके द्वारा दूसरों को प्रेम शांति व खुशी का दान करो। अब मैं आपको माता रानी पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक सुंदर से प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, जय माता रानी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

दे दे थोड़ा प्यार मैया तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार। हे पुराना माँ रिश्ता हमारा जो उसे तुम याद करो, एहसान कर दो माँ बालक तुम्हारी हूँ अब सिर पर।

यार, कश्ती हमारी माँ तेरे हवाले है, इसे तुम पार करो, घर दे दिया इसको।

सहारा है, भटके कहाँ कहाँ तू आके थाम ले। माँ तेरा एहसान, माँ तेरा एहसान, उषा भूलने न पाएगी, ये बालक भीतर जाएगी। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, मैया तेरा क्या घट जाएगा, ये बालक भीतर जाएगा। दे दे थोड़ा

फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी के साथ कितनी सारी बातें जुड़ी है ना दोस्तों, इतनी सारी परिस्थितियां आती हैं और कुछ ऐसी हैं जो याद रहती हैं और कुछ तो ऐसी हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी बार बार याद करते हैं। अब आज की परिस्थिति में हम प्रेजेंट रह पाए और पुरानी को टाटा बाय बाय कह पाए, जिंदगी को खुशनुमा तरीके से प्यार से जी पाए, उसकी एक पहल, उसकी एक कोशिश है हमारा ये कार्यक्रम। और आज हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट ग्लोबल अस्पताल से। हमारे साथ जुड़ी हैं कल्पना जी, जो कि हमारी गाइड और दोस्त है ही, आप एक स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं और साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। कल्पना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपने रेडियो के श्रोताओं से मिलने का, बातें करने का मौका मिलता है, जिससे कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो इसलिए मैं हमेशा से ही इस बात के लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ।
0: कल्पना जी हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक बहुत इंसाइटफुल होते हुए भी बहुत सरल कॉन्वर्सेशन होता है आपके साथ, जो हम समझ भी पाते हैं, जीवन में अपनाने की भी पूरी कोशिश करते हैं। मैं कोशिश कहूंगी क्योंकि हर चीज कई बार नहीं कर पाते, लेकिन ये कोशिश जारी रहेगी आपके साथ। आज परिस्थितियों के बारे में, जैसे मैंने कहा, जब भी हम किसी की जीवनी पढ़ते हैं या बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं उसमें लिखा होता है ये परिस्थिति आई, ऐसे क्रॉस किया, ये किया। एक परिस्थिति के बारे में क्रॉस करके वो व्यक्ति बहुत बड़े बने होते हैं। हमारे जीवन में भी परिस्थितियां आती हैं, सिचुएशंस आती हैं, और हम बात कर रहे थे सिचुएशंस के साथ कैसे अवेयरनेस हमारी रहे। आपने हमें लास्ट टाइम बताया था ऑब्जर्व करना पहला स्टेप है, ऑब्जर्व करना। उसके लिए आपने कहा था कुछ और हम चीजें जानेंगे, कुछ एक्टिविटीज या कुछ जो हम बेहतर कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: तो अगर वहीं से शुरुआत की जाए।
1: जी बिल्कुल, आपने अच्छा याद दिलाया। हमने एक सीक्वेंस बनाया था कि परिस्थिति को कैसे एक्शन लेने से पहले एनालाइज करना है। तो हमने कहा था ऑब्जर्वेशन, देन अंडरस्टैंडिंग, देन एंड सिचुएशन की अवेयरनेस एंड एक्शन। ये हमारा सीक्वेंस था। इसमें एक बहुत सुंदर जो टेक्निक है, जिस उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं SOS टेक्निक। आपने SOS शब्द तो सुना होगा। डॉक्टर्स जब कभी बीमार को मेडिसिन देते हैं तो कहते भाई आपको जरूरत हो तब इस मेडिसिन को लेना, उसको वो SOS कहते हैं। और भी कई भाषाओं में कई तरीके से SOS का इस्तेमाल किया जाता है
0: जी।
1: यहाँ सिचुएशन अवेयरनेस में SOS बहुत सुंदर रीति से उपयोग में लाया जा सकता है। S stands for step back। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो एक कदम पीछे होकर उस परिस्थिति का थोड़ा सा डिटैच होकर जायजा लेना। तो पहला है step back and then observe। अब आपका जो एंगल है परिस्थिति को देखने का, वो वाइड एंगल हो जाता है। जब आप परिस्थिति के बिल्कुल क्लोज होते हैं मेंटली, तो वो एंगल एक शॉर्ट एंगल हो जाता है, जिसमें कई सारी चीजें ऑब्जर्व होना रह जाती है। When you step back mentally, उसके बाद आपको थोड़ा वाइड एंगल मिलता है। तो स्टेप बैक, ऑब्जर्व एंड देन स्टीयर। स्टीयरिंग अर्थात स्टीयरिंग को चलाना शुरू करें या एक्शन ले,
0: मतलब जो गाड़ी जैसे चलाते हैं हाथ रख के स्टीयरिंग पे कुछ।
1: गाड़ी चलाते समय भी हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठने के बाद मिरर चेक करते हैं, तीनों मिरर चेक करते हैं, अपनी सीट को एडजस्ट करते हैं, एंड देन ब्रेक्स, अपने पैर जो सही जगह पर है कि नहीं उसको देखते हैं, एंड देन हम आराम से चाबी घुमा के गाड़ी स्टार्ट करते हैं, अपना गियर चेंज करते हैं, एंड देन हैंड ब्रेक छोड़ देते हैं, और फिर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है। उसी तरह से SOS टेक्निक बहुत पावरफुल टेक्निक है। एक्शन करने से पहले, रिएक्ट करने से पहले, अगर स्टेप बैक, ऑब्जर्व एंड देन स्टीयर, ये छोटा सा प्रोसेस अगर हम फॉलो करते हैं, तो बहुत सारी बातों से हम बच जाते हैं। बहुत सारी बातों से बच जाते हैं।
0: मुझे लग रहा है कि जैसे किताब बहुत आँख के पास हो तो वो सच में पढ़ने में नहीं आती। थोड़ा सा तो दूर रखना पड़ता है पढ़ने के लिए, वैसी शायद परिस्थिति को पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है। लेकिन इसमें मेरा एक सवाल है, जैसे जब हम उस परिस्थिति में होते हैं, कई बार ये भी कहा जाता है अगर कुछ चल रहा है मेरे सामने और मैं उसे महसूस नहीं कर रही हूँ, मान लीजिए बहुत सारे चेंजेस आए हैं कोई भी लेवल पे, तो जब ये फील हुआ है कि गलत हो रहा है और मुझे फील हुआ है गलत हो रहा है, तभी वो चेंज करने की जो एक अंदर से मोटिवेशन आता है, हिम्मत आती है, तभी आया है वो। तो अगर मुझे वो अप क्लोज इतने मेरे पास नहीं है, मैं थोड़ा स्टेप बैक कर ले रही हूँ, तो उस परिस्थिति को मैं दूर से देख रही हूँ, महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मेरे अंदर वो चेंज की भावना कैसे आएगी, वो बदलाव का जज्बा कैसे आएगा?
1: बिल्कुल आएगा। जो ये छोटा सा पॉज हम लेते हैं ना, उस पॉज के दौरान कई सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर होने लगती हैं। उस पॉज में हमारा ब्रेन सही एक्शन को लेने के लिए कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन। हाँ, तो वो जो SOS वाला पॉज है ना, वो 10 सेकंड का भी हो सकता है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं हर रोज, तो वो 10 सेकंड का भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पति घर पे आया नौकरी करके, तो उसने आते ही वाइफ ने उसको कुछ न कुछ सारे दिन की शिकायतें करना शुरू कर दी, और वो परेशान होके उसने बोला, आप 1 मिनट फुर्सत नहीं लेने देते हो, और मैं घर में आया हूँ थक के, मेरी क्या प्रॉब्लम है, उसको पूछे बिना आप में अपनी बातें सुना रहे हो, तो वो चिढ़ जाते हैं।
0: ये होता है।
1: हाँ, तो चिड़चिड़ाहट में दोनों ही एक दूसरे पर बरस पड़ते हैं, सिचुएशन बिगड़ जाती है
0: जी।
1: तो जैसे हम घर में घुसते हैं, उस समय पहले चप्पल हम बाहर छोड़ के आते हैं ना
0: जी।
1: हाँ, तो अगर घर में घुसने वाला व्यक्ति चप्पल के साथ अपने सारे टेंशन, प्रॉब्लम्स, जो बैगेज लेकर आ रहा है, उसको भी बाहर छोड़ दे और मुस्कुराते हुए अंदर आए, और जो रिसीव करने वाला व्यक्ति है, वाइफ है, वो भी थोड़ी देर के लिए उनको रिलैक्स होने दे, पानी पीकर थोड़ा सा बैठने दे, और आराम से उनको पास बैठकर पूछे कि कैसे रहा आपका दिन, सब कुछ ठीक था ना, तो ये कन्वर्सेशन की शुरुआत जब इतना पीसफुली और पॉजिटिवली और खुशनुमा होती है, तो आगे का कन्वर्सेशन फिर वो शिकायतों भरा क्यों ना हो, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली दोनों ही लोग प्रिपेयर हो पाते हैं। तो वो SOS टेक्निक बहुत काम करती है कि भाई थोड़ा चुप, शांत रहो, थोड़ा स्टेप बैक करो, मतलब टाइम दो सामने वाले व्यक्ति को, और खुद भी टाइम लो एक्ट करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए।
0: कितना टाइम? लेकिन
1: मैंने कहा ना, 10 सेकंड भी हो सकता है।
0: अच्छा, ओके।
1: या अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो पॉज जो है वो 10 सेकंड का भी हो सकता है।
0: इतना छोटा भी हो सकता है।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: हमें लगा टाइम लेना है, मतलब पहले 1 दिन 2 दिन ऐसे सोच रहे हैं, फिर बाद में डिसीजन दे रहे हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है। वो पॉज अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पर छोटा भी हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: ओके, इंटरेस्टिंग। तो पहले स्टेप बैक करना है, उस परिस्थिति से थोड़ा बाहर निकलना है, पीछे हटना है, फिर उसको ऑब्जर्व करना है, पॉज लेना है, और फिर एक्शन देना है, स्टीयर करना है।
1: बिल्कुल।
0: ओके, इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से हम परिस्थिति को समझ सकते हैं, अवेयरनेस हमारी हो सकती है, एक्चुअल जैसी परिस्थिति हमें वो वैसी ही समझ में आएगी फिर।
1: बिल्कुल। सो आज की एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगी।
0: जी।
1: अमेरिका से एक बहन आई है माउंट आबू खास मेडिटेशन सीखने के लिए। तो आते समय, उसने वहां से निकलते समय सोचा कि मैं माउंट आबू में जाऊंगी और मुझे रहने के लिए अच्छा स्थान मिलेगा, सब कुछ सही होगा, ऐसा सोचकर वो यहाँ आई। प्लान कुछ था नहीं, जाकर सीखना है मेडिटेशन। यहाँ आकर देखा तो यहाँ होटल्स तो बहुत महंगे हैं, और वो महंगा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने एक कम बजट वाला अकोमोडेशन तो लिया, बट खाने पीने की प्रॉब्लम। अब 5 दिन बाद उसको वो स्थान छोड़ देना है, तो 5 दिन हो चुके हैं, और 5 दिन बाद उसको, तो वो दिन भर इसी टेंशन में बिताती है कि 5 दिन बाद मेरा क्या होगा,
0: क्या होगा।
1: सो 5 दिन बाद की टेंशन के लिए जो मेरे 5 दिन मेरे हाथ में है, उनको भी मैं बिगाड़ रही हूँ, है ना, मैं एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ, है ना। तो 5 दिन तो कम से कम मेरे हाथ
0: में टेंशन है बहुत।
1: और जब हम थोड़ा सा प्री प्लान्ड होते हैं, मेंटली थोड़ा सा प्लान करके, इतनी बड़ी उड़ान भरने से पहले आपने कुछ रिसर्च किया होता, सर्च किया होता, या यहाँ से किसी से बात करके आप आए होते कि अगर मैं यहाँ आऊँ तो मुझे कहाँ रहना है, क्या करना है, अचानक निकल पड़े, और अब अगर आपको डिफिकल्टीज आ रही है रहने खाने पीने में, तो तब आप सोच रहे हो, तो वो कितना क्या कहेंगे इसको,
0: है ना? मतलब प्लानिंग ठीक नहीं हुई कहीं ना कहीं। तो अब लेकिन अगर मेरे पास अब 5 दिन है, तो अभी मुझे 5 दिन पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी
1: अगले पांच दिन की। बिल्कुल, पर टेंशन लेके नहीं।
0: पर टेंशन लेके हाँ ये प्लानिंग हो रही थी या टेंशन हो रहा था, दोनों मिक्स हो गया, एक ही लगने लगा.
1: राइट. सो हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स है ना, पॉजिटिविटी है, वो हमें बहुत जल्दी सोल्यूशन तक ले जाती है. जब हम पॉजिटिविटी के ट्रैक से नीचे उतरते हैं, नेगेटिविटी के ट्रैक में जाते हैं, तो जो होने वाला है सोल्यूशन, जो मिलने वाला है, वो भी नहीं मिल पाता है.
0: राइट. ओके. तो नकारात्मकता मतलब हमें प्लानिंग्स जो हम चाहते हैं करना उससे भी दूरी ले जाती है, हो नहीं पाती है,
1: नहीं हो पाता है.
0: ओके. तो ऐसे में क्या करना है? मान लीजिए जैसा आपने कहा कि जो भी आपने बताया था स्टेप बैक करें, तो अब मैं क्या स्टेप बैक करूं? अगर मुझे 5 दिन बाद पता है कि एक परिस्थिति आने वाली है, ये तो पहले से ही पता चल गया, आई नहीं है, आई है तो मुझे स्टेप बैक करके उसको देखना है. अब जब मुझे पता चला परिस्थिति आने ही वाली है 5 दिन, तो अभी क्या करूं?
1: पहला थॉट है जो ऑप्टिमिज्म को ले आता है. ऑप्टिमिस्टिक होना मतलब कि आशावादी रखना है ना, कि आशावाद से, मतलब आशा से अपने मन को पहले शांत करना. पीसफुल माइंड से आपको सोल्यूशन क्लियरली दिखाई देते हैं. जब आप पीसफुल हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं और आशावादी रहते हैं, तो कुदरत, प्रकृति, यूनिवर्स और परमात्मा आपके साथ जुड़ जाते हैं. तो आपको जो चाहिए, जैसा चाहिए, वो पाने के लिए शुरुआत पॉजिटिविटी और पीस से करनी होगी.
0: ओके. तो पहला थॉट पॉजिटिव.
1: राइट.
0: इसमें पॉजिटिव थॉट क्या होगा? लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है तो
1: मैंने कहा ना, आशावादी रहना कि हो जाएगा,
0: हो जाएगा, मिल जाएगा,
1: मिल जाएगा.
0: ओके. ठीक है. तो पहले पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है कि हो जाएगा, जो भी परिस्थिति आने वाली है सोल्यूशन हो जाएगा.
1: हो जाएगा.
0: और उसके बाद फिर प्लानिंग करना.
1: हाँ बिल्कुल. जैसे कि अभी वो मेडिटेशन सीखने के लिए आई है हमारे पास, तो 2 घंटा जब वो मेरे पास मेडिटेशन सीखने के लिए आई है, तो उसमें से आधा घंटा यही डिस्कशन करने में चला जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा. सो उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है. तो मैंने कहा कि अभी 2 घंटे के लिए आप ये सोचना बंद कीजिए कि क्या होगा, 2 घंटे बाद आपको सोचना है उसके बारे में, है ना. सो ये जो स्टॉप बटन है ना हमारे माइंड में,
0: ये है एक्चुअली,
1: है,
0: दिखता नहीं है, मिलता नहीं है, इतनी आसानी से ये बटन कहाँ चला गया है पता नहीं. ओके. मतलब है स्टॉप बटन.
1: पॉज बटन, स्टॉप बटन. सो इट गिव्स अस पीस, शांति देता है. अगर आप मेडिटेशन सीख रहे हो और मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस समय वही करो. फिर अपने माइंड को हमें समझाना है कि भाई ये 2 घंटे के बाद मुझे अपना आगे का फ्यूचर प्लानिंग के लिए टाइम देना है. सो इफ यू मिस आउट फ्रॉम द मोमेंट, आप उस मोमेंट को मिस कर देते हैं, तो ना आप इधर के रहते हैं ना उधर के.
0: मतलब ना सोल्यूशन निकल रहा है और ना अभी का टाइम यूज हो रहा है, ना आगे के लिए बेनिफिट, ना अभी के लिए बेनिफिट.
1: बिल्कुल.
0: ओके. तो मतलब हम इसको भी प्लान कर सकते हैं, थॉट्स को भी प्लान कर सकते हैं.
1: बिल्कुल.
0: वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. तो जैसे हम, क्योंकि परिस्थिति की अवेयरनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और आपने बताया हा? किस तरह से पहले ऑप्टिमिस्टिक रहना है, सकारात्मक रहना है, हो जाएगा निश्चय रखना है, फिर उसके बाद प्लानिंग करनी है. वो भी हर वक्त दिन भर प्लानिंग नहीं करते रहना है, अभी को भी यूज करना है और प्लानिंग के लिए भी टाइम डिसाइड करना है.
1: बिल्कुल.
0: ओके. तो यहाँ पे एक और सवाल आता है कि जब परिस्थिति ऐसी है जिसमें से हम थोड़ा स्टेप बैक कर सकते हैं, तब तो ठीक है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है जिसमें और लोग इन्वॉल्व हैं बहुत सारे, सिर्फ मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है, मेरे परिवार पे असर हो रहा है, मेरे दोस्तों पे असर हो रहा है, तो उस समय वो लोग सब पेन में है, मैं देख रही हूँ वो परेशान है, तो मुझे तो उस वक्त लगता है कि मुझे उसी वक्त कुछ करना है. वो स्टेप बैक कैसे, ऑब्जर्व कैसे करूं व्हेन हर कोई उस दर्द में है?
1: बिल्कुल. देखिए ये बहुत जरूरी है कि हर बार सिचुएशन को देखते हुए थोड़ा सा रुक कर ये सोचना कि मुझे रिएक्ट कैसे करना है. रिएक्ट मैं नहीं कहूंगी, बट मुझे एक्ट कैसे करना है.
0: ओके.
1: सो जब हम ये सोचते हैं, तो हमें वो तरीका मिल जाता है कि कैसे पॉजिटिवली, पीसफुली हम सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. सो इसलिए हमें थोड़ा सा रुकना बहुत जरूरी है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल,
0: उस टाइम ऑब्जर्वेशन बहुत मुश्किल लगती है, मतलब हर कोई पेन में है, मैं देख रही हूँ रो रहे हैं मेरे सामने, मेरी माँ रो रही है, या फिर बच्चे रो रहे हैं या मेरे दोस्त रो रहे हैं, तो मैं उस समय स्टेप बैक नहीं कर पा रही हूँ, ऑब्जर्व नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उनको रोता हुआ छोड़ के मैं पीछे होके ऑब्जर्व
1: नहीं नहीं नहीं वो रॉन्ग फिजिकल स्टेप बैक आप फिजिकल समझ रहे, फिजिकल नहीं, फिजिकली आई एम देयर ओनली इन द सिचुएशन, मैं मेंटली स्टेप बैक की बात कर रही हूँ।
0: कैसे उस वक्त कैसे कोई रो रहा है मेरे सामने तो उस समय मेंटली मैं क्या करूँ?
1: बिल्कुल, आपको अपने आप में आ जाना है, खुद के साथ जुड़ जाना है और मन से थोड़ा सा उस सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लेना है और दूर से देखना है, मन में दूर से मन में डिटैचमेंट से देखना है कि आप सब लोग रो रहे हैं, अगर मैं भी उनके रोने में रोकर शामिल हो जाऊं तो वो कोई फायदा नहीं होगा उसका। अगर सब लोग रो रहे हैं तो मुझे रोना है कि नहीं रोना है, ये मुझे तय करना है कि नहीं मुझे रोना नहीं है, मुझे सबको शांत करना है, ये मेरा काम है। लेकिन अगर मैं इमीडिएट एक्शन लेती हूँ, अरे सब लोग रो रहे हैं और मुझे भी रोना आ

0: गया, मैं भी उनके साथ रोने बैठ गई, तो फिर सिचुएशन को संभालेगा कौन? सो आप जिस भी सिचुएशन में हो, जब आप खुद के पास लौट आते हो और ये सोचते हो कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके किसी मित्र ने आपको मैसेज भेजा, फ्रेंड ने आपको मैसेज भेजा कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, अरे आप उसके इस आंसर से, उसके इस मैसेज से तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हो और हमारे मन जो है वो अलग अलग कहानियां बनाना शुरू करता है कि अरे क्या हुआ, पता नहीं मैंने कहा गलती की, तो ये गिल्ट फीलिंग आई। फिर दूसरा मैं सोचती हूँ बहुत अपने आप को बहुत बड़ी समझती है, आजकल इसको बहुत अहंकार आ गया है, ईगो आ गया है, ये है मैं भी ईगो में आ जाती हूँ। सो या तो मैं अपने आप को दोषी मानती हूँ, गिल्ट में चली जाती हूँ,
1: या तो ईगो
0: ईगो आ जाता है, या मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये क्या बात है, ये क्या इसकी पर्सनालिटी, दूरी बना लेती हूँ, है ना। अच्छा अब मुझे क्या करना है, ये है स्टॉप बटन, पॉज बटन, कि चलो फ्रेंड ने मुझे मैसेज भेजा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। फ्रेंड है मेरी, इतने सालों से मैं उसे जानती हूँ, अगर वो ऐसा लिख रही है तो जरूर उसका कुछ कारण होगा, लेकिन इस समय बात करके कोई फायदा नहीं है। तो कहानी बनाने की बजाय सिचुएशन को समझ लेना है, ओके वो मुझसे नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत किया है, पहले वो चेक करूं मैं, क्या वो किसी प्रॉब्लम में है। अब ये समझने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मेरे पास अभी पूरी जानकारी नहीं है कि हुआ क्या है एक्चुअली,
1: पूरी
0: है ना,
1: इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक
0: कुछ
1: मैसेज
0: नहीं
1: आया
0: है।
1: बस।
0: हाँ कुछ नहीं। सो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव हूँ तो मैं भी बोल सकती हूँ, मैं भी लिख सकती हूँ
1: मुझे भी नहीं
0: जा,
1: करनी बात,
0: मुझे
1: जाओ।
0: भी नहीं, हाँ मुझे भी नहीं करनी बात, जा, तुम
1: हाँ।
0: अपने आप को समझती क्या हो, ये रिएक्शन हो गया, एक्शन का रिएक्शन। बट अगर मैं सिचुएशन अवेयरनेस के साथ उससे बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ठीक है अब तुम्हारा मूड इस समय ठीक नहीं है, इसलिए तुम जब शांत हो ना तब मुझे बताना कि क्या हुआ है, हम बाद में बात कर
1: बात
0: लेंगे,
1: करेंगे।
0: जब तुम ठीक महसूस करो, जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे बता सकती हो तो मैं जरूर सुनूंगी कि क्या बात है ना। तो आपने पॉज दे दिया, आपने कुछ कहानी नहीं बनाई मन में, आपने उस सिचुएशन को पॉज दे दिया, होल्ड पर रखा और उनको मौका दिया कि वो जो लिखा है उन्होंने मैं तुमसे बात नहीं करूंगी उसका एक्सप्लेनेशन शांत होने के बाद आराम से दे।
1: उनको भी टाइम दिया पॉज करने का, खुद तो ले
0: हाँ
1: आए, सामने वाले को भी, मतलब अपना पॉज बटन और उनका,
0: दोनों एक साथ दबा
1: दोनों एक साथ
0: दिए।
1: ये अच्छा है। मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि खुद के लिए भी हेल्पफुल हो ये पॉज बटन और सामने वाले के लिए भी, ताकि वो भी परिस्थिति को एक स्टेप बैक करके देख पाए और फिर वापस हम उसको बेहतर तरीके से डील कर पाए।
0: जी
1: वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, बहुत प्रैक्टिकल चीजें समझ में आ रही हैं, अपनी परिस्थितियां दिख रही हैं और ये भी समझ में आ रहा है कि कितना अलग अलग रिजल्ट हो सकता है दोनों एक्शंस का हमारी लाइफ पे, कितना कुछ बदल सकता है सिर्फ ये कदम उठाने से, एक बड़ा अंतर आ सकता है। तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि अपनी हर परिस्थिति में स्टेप बैक करें, पॉज करें और फिर ही एक्शन में आए। क्या हम कुछ कोई ऐसी मेडिटेशन प्रैक्टिस या कोई ऐसे अफर्मेशंस है दीदी जिनका हम अभ्यास कर सकते हैं ताकि वो परिस्थिति आने पे हमें याद रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर अभ्यास है। देखिए जब भी परिस्थिति आती है तब हमारी एंजाइटी बढ़ती है और एंजाइटी को कंट्रोल करने का सबसे सुंदर साधन प्रकृति ने हमें दिया है, वो है हमारी ब्रीदिंग। सो हम अपने ब्रीदिंग पर फोकस अगर करते हैं, दिन में कई बार अपने श्वासों को आते जाते हुए देखते हैं तो हमारा मन अपने आप शांति का महसूस करता है। तो इसीलिए जब भी हम श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि 1-2 मिनट के लिए हमें मेडिटेशन करना है तो उसकी शुरुआत हमेशा लंबी और गहरी सांसों से होती है। तो आइए चलिए हम कुछ देर के लिए शुरुआत करें अपने आप को शांति की ओर ले जाते हुए गहरी और लंबी सांसें लें। महसूस करें अपने सांस को भीतर जाते हुए, बाहर आते हुए, हर सांस के साथ अपने संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। अपने मस्तक के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाए। वहां जो आत्मशक्ति है, उसी आत्मशक्ति में मेरा मन है, और अब मैं अपने मन को ट्रेन कर रही हूं। जब भी कोई परिस्थिति आएगी, मैं थोड़ी देर के लिए रुकती हूं, गहरी और लंबी सांस लेती हूं, परिस्थिति को चारों ही एंगल से अच्छी तरह से देखकर समझने की कोशिश करती हूं, और फिर सजगता के साथ उस परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया देती हूं। गहरी और लंबी सांस ले, याद करे मेरा मन हर परिस्थिति में शांति का अभ्यास करता है। मैं हर परिस्थिति में शांत रहकर प्रतिक्रिया देती हूं। शांत मन सही रूप से परिस्थिति को समझने की शक्ति प्रदान करता है। गहरी और लंबी सांस ले और इस प्रक्रिया को रिपीट करें अपने मन में। पॉज, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड। रुके, देखे, समझे और फिर प्रतिक्रिया दे। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच कल्पना जी। आई थिंक ये जो आपने अभी अभ्यास कराया, ये भी हम करते रहें, और साथ साथ जो बात समझ में आई है कि परिस्थिति चाहे कितनी बड़ी हो छोटी हो, लेकिन एक स्टेप बैक करके जब समझते हैं और पॉज करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। तो उस अंतर को लाने के लिए हम कोशिश करेंगे ये अभ्यास करने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस एपिसोड में।
0: धन्यवाद आरुषि जी। श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी काफी पेशेंटली हम ये सुनते हो, समझते हो, धन्यवाद।
1: जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जिंदगी के कई राज खुलने वाले हैं और कई खजाने हमें मिलने वाले हैं। फिलहाल लेते हैं इजाजत और जिंदगी को खुल के कहते हैं कि लव यू जिंदगी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल। सही में अपना गांव अपना अंचल हम नाम सुनते हैं कितना खुशबू प्रदान होता है। हमें बहुत खुशी होता है इस तरह कार्यक्रम में जब हमारा आसपास जो गतिविधि हो रही उसको सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक सेतु का काम कर रहे हैं। और आज खासकर नवरात्रि स्पेशल में शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन में हम सभी ग्रामवासियों को अंचलवासियों को और खासकर हमारा सभी जो भक्ति आस्था और आराधना में विश्वास रखते हैं तो उन सभीयों को भी इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आज इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाने के लिए हमारा साथ जुड़े हुए हैं त्रिवेणी दीदी जी, तो उनको भी स्वागत करते हैं ग्रामवासियों की तरफ से और सभी जो आस्था विश्वास और भक्ति में प्रेम रखते हैं उन सभीयों की तरफ से भी दीदी जी को स्वागत करते हैं। खासकर आज का जो कार्यक्रम है नवरात्रि स्पेशल में तीसरा दिन कोंचा देवी का बारे में आज सुनाएंगे तो वो खुद बताएंगे। और हमें बहुत खुशी लगता है इस तरह कार्यक्रम में जब हमारे आसपास के सभी श्रोता ग्रामवासी जोड़ते हैं तो एक हेल्दी एंटरटेनमेंट हो जाता है। और आजकल तो नवरात्रि जो चल रहा है उसमें हमारा जो भावना विश्वास और आध्यात्मिकता बढ़ता है तो आज भक्ति भावना आस्था का साथ साथ आध्यात्मिक रहस्य से उत्प्रेरित कराएंगे क्योंकि हम तो त्यौहार मनाते हैं लेकिन त्यौहार से हम क्या सीख लेना चाहिए और इस तरह त्यौहार जब मनाते हैं पालन करते हैं तो इससे हमारा गांव और अंचल को कितना प्रभाव करता है और हमारा ग्रामवासी अंचलवासी जब बढ़ चढ़ कर इससे जोड़ते हैं तो हमें बहुत खुशी लगता है। तो स्वागत करते हैं दीदी जी को। दीदी जी आपका वेलकम।
1: ओम शांति
0: जी। जी
1: आज हम नवरात्रि का तृतीय दिवस मना रहे हैं और इस तृतीय दिवस में हम माँ चंद्रघंटा देवी का आध्यात्मिक रहस्य सुनेंगे।
0: जी
1: माँ चंद्रघंटा का दूसरा स्वरूप जो विश्व प्रख्यात है लक्ष्मी और सरस्वती देवी के रूप में प्रख्यात है, लेकिन माँ चंद्रघंटा जो शक्ति का प्रतीक है, हमने नाम तो सुना है लेकिन नाम के साथ साथ उनके कर्तव्य का परिचय आज के इस तृतीय दिवस पर हम सुनेंगे। चंद्रघंटा देवी का परिचय तथा उनके कर्तव्य को समझते हुए हम अपने प्रति क्या कर्तव्य कर सकते हैं, अपने मन में क्या जागृति ला सकते हैं, इसके ऊपर हम विशेष प्रकाश डालेंगे। हर साल नवरात्रि पर हम विशेष रूप से अपने दिनचर्या में कथा भी सुनते हैं, सोचते हैं भक्तगण ये आशा रखता है कि पूरे दिन भर में से क्यों न हम माँ की आरती या कथा को सुन करके अपने दिनचर्या की शुरुआत करें या अपने समय को सफल करें। तो ये एक प्रथा बन गई है कि सवेरे सवेरे हर देवी की पूजा प्रार्थना आरती गा करके हम नवरात्रि के दिन को प्रारंभ करते हैं और शाम के समय दिया बत्ती करते हुए सुगंधित वातावरण को बनाते हुए माँ की कथा सुनते हैं। तो आज भी हम कथा सुनेंगे लेकिन अलग ढंग से अलग प्रेरणाओं के साथ हम चंद्रघंटा माँ की कथा को सुनते हुए उसका आध्यात्मिक बोध लेंगे। तो चलिए आज हम माँ चंद्रघंटा देवी का परिचय लेते हैं। अनेक रूपों की यथार्थ पहचान है चंद्रघंटा माँ। चंद्रघंटा का आज का जो दुर्गा के रूप में तीसरा स्वरूप माना जाता है वह है चंद्रघंटा। तो नाम में ही उसके शब्द और स्वरूप का अर्थ छिपा हुआ है। उनके माथे पर चंद्रमा दिखाया जाता है, आधा चंद्रमा। ये शीतलता का प्रतीक है, इसलिए माँ शांति शालीनता और समृद्धि की देवी मानी जाती है। माँ की शक्ति और ऊर्जा एक विशेष स्रोत बना हुआ है, तो उन्होंने अपने आत्मबल द्वारा दानव शक्तियों का नाश किया। ये हमने कथाओं में सुना है, देखा है और स्वरूप में भी दिखाई देता है कि माँ जो शक्तिशाली स्वरूप में किस प्रकार से दानव को अपने पैर में रोंदती हुई एक विकराल रूप में उन असुरी शक्ति के ऊपर खड़ी है। माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वे परम शांतिदायक कल्याणकारी है, और ऐसे देखा जाए तो हर एक देवता के शरीर पवित्र और तेजपूर्ण होते हैं, लेकिन चंद्रघंटा माँ का अपने आप में एक अनोखा ओजस्वी स्वरूप है। उनका संपूर्ण शरीर स्वर्ण के समान चमकीला है, तो स्वर्ण समान चमकीला अर्थात पवित्रता की शक्ति से परिपूर्ण एक संपूर्ण अवस्था का यादगार है। इसलिए वो तेजस्वी ओतप्रोत अलौकिक दिव्य प्रतिमा चंद्रघंटा को दिखाई जाती है। साथ साथ उनके 10 हाथ हैं, जिसमें अलग अलग शस्त्र से उन्हें सुशोभित किया गया है। तो 10 हाथ अर्थात 10 दिशाओं में प्रचलित, इसलिए 10 भुजाएं दिखाई जाती हैं। भुजाएं शक्ति का प्रतीक होती है, इसलिए भुजाओं में अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं। अस्त्र शस्त्र से सुशोभित का अर्थ ही है ज्ञान के आधार पर उन्होंने जिस शक्ति को प्राप्त किया है, योग बल से उसकी साधना के आधार पर उस शक्ति को ग्रहण करते हुए असुरी शक्ति के ऊपर संघारणीय बनी, इसलिए अस्त्र शस्त्र से सुशोभित दिखाई जाती है। और माँ का जो वाहन है वह है सिंह। सिंह एक शक्ति का प्रतीक होता है, जैसे जब भी शिकार के लिए सिंह बाहर निकलता है या शेर बाहर निकलता है तो वो सोचता नहीं है कि मैं इसका शिकार करूं या नहीं करूं, लेकिन सामने शिकार आते ही उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो एक शक्ति और हिम्मत की निशानी दिखाई जाती है। इस प्रकार से चंद्रघंटा माँ एक शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। तो ये साहस और शस्त्र की जो प्रयोग दिखाया गया है वे किसी मनुष्य के ऊपर नहीं है, लेकिन अपने तपोबल के द्वारा माँ देवी ने असुरी प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त की है उसकी निशानी दिखाई जाती है। मनुष्यों के असुरी संस्कार स्वभाव जो उन्हें दानव बना देता है, ऐसे प्रवृत्ति से लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। तो इस 4 भुजाओं से, इस अस्त्र शस्त्र से हम ये बोध लें कि हम अपने, दूसरों के नहीं लेकिन स्वयं के जो भी बुरे संस्कार हैं, जो हमें अपने आप में दुखी करते हैं, उस संस्कार के कारण या किसी मेरे स्वभाव के कारण अगर मेरे परिवार में दुखी अशांत वातावरण है, तो उस असुरी प्रवृत्ति के ऊपर मुझे विजय प्राप्त करनी है, उस विकारी प्रवृत्ति के साथ मुझे लड़ना होगा, उसके ऊपर मुझे विजय प्राप्त करनी होगी। ये संदेश हमें देवी के इस भुजाओं के द्वारा, इस शस्त्र के द्वारा प्राप्त होता है। कहते हैं माँ का जो पोज है, जो शरीर की जो बैठक है, वे इस प्रकार से दिखाई जाती है कि वह लड़ने के लिए हमेशा तैयार है, इसलिए अस्त्र शस्त्र से सुशोभित वह खड़ी दिखाते हैं। तो लड़ने के लिए तैयार है का अर्थ है अपने आप से, अपनी बुराइयों से वह लड़ने के लिए तैयार है। ये बोध हम माँ चंद्रघंटा से अवश्य ले। चंद्रघंटा माँ हमेशा आध्यात्मिक लोगों की सहायता करते हैं, ये उनकी निशानी भी दिखाई जाती है। एक तेजस्वी या उत्साहवर्धक होते हुए भी वो शीतलता का भी बैलेंस बनाकर रखती हैं, इसलिए सिर पर आधा चंद्र है। भले ही शरीर में कितनी ही शक्तिवर्धक हो, लेकिन सिर अर्थात दिमाग हमेशा ठंडा होता है, तो वो व्यक्ति बुराइयों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखता है, ये उसकी निशानी है। और ऐसे चंद्रमा और सूर्य के तेज का बैलेंस रखते हुए वे हमेशा उन व्यक्तियों की सहायता करती है जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, अर्थात जो हमेशा सकारात्मक सोच की तरफ चलते हैं। नकारात्मक शक्तियों को पराजित करते हुए सकारात्मकता की ऊर्जा का संचार का प्रतीक माँ चंद्रघंटा देवी दिखाई जाती हैं। माँ की सवारी जब शेर पर दिखाते हैं तो हम उससे निर्भयता और शक्ति का प्रतीक स्वीकार करते हुए अपने अंदर भी बुराई से लड़ने के लिए निर्भयता के गुण को हम धारण कर सकते हैं। कहा जाता है माता के घंटे की ध्वनि, जब घंटा दिखाया जाता है तो उस घंटे की ध्वनि का भी एक विशेष महत्व है। तो वह घंटे की ध्वनि से भक्तों की रक्षा करती है, अर्थात हर नकारात्मक वातावरण या बुराइयों से लड़ते हुए उस एनर्जी को क्रिएट करना, नेगेटिव एनर्जी के वाइब्रेशंस को खत्म करना, इसकी क्षमता घंटे के ध्वनि में दिखाई जाती है। इसलिए शरणागत की रक्षा के लिए घंटे की ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा का जो स्वरूप है वे दिव्य गुणों से संपन्न भी दिखाते हैं। उनके हर अंग की तुलना गुण रूपी पुष्पों से की जाती है। कमल नयन है, कमल चरण है, कमल मुख है। इस प्रकार से देवी के हर अंग की तुलना पुष्पों से की जाती है। पुष्प जितना ही कोमल उतना ही सुगंधित और दूसरे को सुख प्रदान करने वाला होता है, और ये सभी देवताओं की विशेषता मानी जाती है। एक दिव्य गुण में ये बात आती है कि देवता वो है जो हर किसी को सुख दे, अपने हर कर्म से, अपने हर इंद्रियों से हर भक्त को सुख शांति प्रसन्नता की शक्ति प्रदान करे, उसे कहा जाता है देवता। तो माँ चंद्रघंटा के हर इंद्रियों से हमें शक्ति की अनुभूति होती है। इसी यादगार में उनके हर अंग का गायन पुष्प के साथ तुलना करके की जाती है। माँ का स्वरूप उतना ही सौम्य है, शांति से परिपूर्ण है एवं विनम्रता के साथ उनका मुख नेत्र तथा संपूर्ण काया दिव्य गुणों से सुगंधित होती है। तो ये बहुत विशेष गुण माना जाता है विनम्रता का। शक्तिशाली होने के बाद भी, सर्व गुणों से संपन्न होने के बावजूद भी ये संपन्नता की निशानी मानी जाती है विनम्रता। और यही विनम्रता उनके मूर्ति के दर्शन से हमें शांति सुख की अनुभूति कराती है। तो इस प्रकार से माँ के स्वरूप से हम दिव्य गुण या मूल्यों की शिक्षा को धारण करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी दीदी, आपने आज का जो कार्यक्रम में इतना सुंदर रूप में सजाया है बखूबी से, इस त्योहार का आध्यात्मिक रहस्य, उसका भावार्थ और इससे हमें क्या सीख लेना चाहिए वो बात बताए। जैसे माँ देवी का हर अंग का, हर स्थिति का आप विस्तार से बताए, इससे हमें ज़रूर सीख लेना चाहिए। जिस तरह आज का कार्यक्रम का माध्यम से हमें बहुत कुछ प्राप्त हो रही है, त्यौहार का साथ साथ हमारा मन में जो उमंग उत्साह देखने को मिलता है, इस तरह कार्यक्रम का माध्यम से हमारा ग्रामवासी अंचलवासी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सुनते हैं और झूमते रहते हैं और इससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रस्तुति आपने दी। जब त्यौहार मनाते हैं उसका साथ साथ उसका आध्यात्मिक रहस्य और उससे हर अंग प्रत्यंग से, हर वस्त्र से, रूप रेखा से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलता है। गुण का दात्री, सर्वशक्तियों का धात्री माँ चंद्रघंटा के बारे में जितना भी कहे कम ही होगा, लेकिन समय को देखते हुए एक विराम लेते हैं। विराम का बाद और कुछ जानकारियाँ लेंगे, खासकर माँ चंद्रघंटा का बारे में। तो कहीं मत जाइए, अपना रेडियो का वॉल्यूम को तेज रखते हुए एक भजन सुनिए माँ देवी का ऊपर में। फिर मिलेंगे अल्प विराम का बाद। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद हम मिल रहे हैं और अच्छा लग रहा है इस तरह कार्यक्रम में जब हम बढ़ चढ़ कर सुनते हैं, भाग लेते हैं और हमारा गांव और अंचल में जब त्यौहार होता है हमें बहुत कुछ मिलता है, हमारा जीवन में सुख शांति आनंद खुशी प्राप्त होता है और एक संगठन का जो बल होता है वो देखने को मिलता है। त्यौहार हमें बहुत कुछ सीख देता है और हमारा जीवन में आध्यात्मिकता को उजागर करता है। जिस तरह आज त्रिवेणी दीदी ने आध्यात्मिक रहस्य का साथ, इससे हमें क्या भावार्थ लेना चाहिए। त्यौहार मनाते हैं बहुत अच्छा बात है और इसका साथ साथ देवियों का जो स्वरूप है, जो रूप है, जो अलंकार आभूषण है, तो वो भी कुछ हमको शिक्षा देता है और उस सीख लेकर हमें भी माँ देवी से अनेक गुण शक्तियों को धारण करके अपना जीवन को सुंदर सुखद बना सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ दीदी जी तो है ही है, तो उनको पुनः स्वागत करते हैं। दीदी जी, आप जितना भी बता रहे हैं हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि सही समय पर सही सीख लेना जरूरी है जिससे हमें बहुत खुशी मिलता है और साथ साथ हम दूसरों को भी खुशी प्रदान करते हैं। तो आज का जो त्यौहार का, खासकर जो नवरात्रि स्पेशल चल रहा है, उसमें माँ चंद्रघंटा का जो कथा, इसका जो कहानी, इसका पीछे का रहस्य क्या है, वो चीज़ थोड़ा हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासियों को जरूर बताइए, जिससे हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासी बहुत कथा सुनते हैं, कथा सुने हुए हैं, लेकिन आप आध्यात्मिकता को लेकर क्या कहना चाहेंगे जिससे हमारा सभी श्रद्धालुओं को, भक्तजन को प्राप्त होगा ही। अच्छी अच्छी बातें जब सीखते हैं, सुनते हैं, हमारा जीवन में काम में आता है, जिसका चलते हमें हमारा भविष्य को लेकर आगे बढ़ पाते हैं। तो चलिए आपको पुनः स्वागत करते हैं। इसका ऊपर में क्या कथा है, क्या राज है, उसका ऊपर में थोड़ा आलोकपात कराएंगे, जिसका चलते हम त्यौहार को और सुखद चार चांद लगा पाते हैं। तो पुनः आपको स्वागत।
1: तो आज इस तृतीय दिवस पर हम माँ से, अगर हम सच्चे दिल से माँ को मानते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, तो आज माँ के इन गुणों में से एक गुण को अपने जीवन में धारण करने का संकल्प लें, तो हम कहेंगे कि हाँ, सचमुच मैं चंद्रघंटा माँ को श्रद्धा से मानती हूँ। तो उसकी श्रद्धा के लिए ये श्रद्धा सुमन अपने संकल्पों को उनके चरणों में दें। तो अभी हम उस ओर मुड़ते हैं जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं, माँ की कथा, माँ की निर्मिति कैसे हुई, किस प्रकार से माँ में ये दिव्य शक्तियां आई। तो कथाएं बताते हैं कि नवरात्र में जब कथा सुनने की परंपरा का जो महत्व दिया जाता है, हर घर में जहां देवियों की स्थापना की जाती है, उन घरों में नित्य नियम से दिया धूप जलाकर सुगंधित वातावरण को तैयार किया जाता है। उस वातावरण में ही कथा का वाचन करते हैं। इन 9 दिन में घर में मंदिर समान वातावरण को बनाए रखने का हर कोई व्यक्ति प्रयास करता है। आज चंद्रमा देवी की कथा सुनेंगे, सिर्फ कथा नहीं, लेकिन मैं फिर से आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान खींचवाती हूँ। इस कथा से हमें उसके भावार्थ को लेना है। कथा में हमें क्या संदेश दिया है माँ ने, इसके ऊपर हम ध्यान खींचवाएंगे। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है, इसके ऊपर हम ध्यान देते हुए माँ की इस कथा को सुनेंगे और इस कथा से अपने जीवन में विशेष एक धारणा को अपनाएंगे, ताकि हमारा जीवन भी दिव्य गुणों से सुगंधित बन जाए। ये पौराणिक कथाओं में बताया जाता है, देवताएं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला था। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्ग लोक पर राज्य करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण बड़े परेशान हो गए और इस समस्या से कैसे निकले, कौन हमें उपाय बताएगा, इस सोच में सब देवता इकट्ठे होकर के विचार विमर्श करने लगे। तभी इंद्रदेव ने इशारा किया त्रिदेव के पास जाने का, चलिए हम सभी मिलकर के इंद्रदेव के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं। ऐसी सूचना इंद्र ने सभी देवताओं को दी, तो सभी देवताएं इंद्र के साथ उनके पीछे पीछे त्रिदेव के पास चले गए और तीनों देवताओं को सामने आह्वान करते हुए अपनी व्यथा सुनाई। जब त्रिमूर्ति त्रिदेव को ये बताई गई बातें कि किस प्रकार से महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं का भी अधिकार छीन लिया है और उन्होंने बंधक बनाकर स्वयं स्वर्ग लोक का राजा बना है, इस प्रकार से समाचार त्रिदेव को सुनाया गया। महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, स्वर्ग में उनके लिए अब कोई स्थान नहीं बचा है। ये समाचार सुनते ही सभी देवताओं को दुखी देखते हुए तीनों देवताओं ने ये योजना बनाई कि क्यों न हम ऐसी शक्ति को प्रकट करें, ऐसी शक्ति को तैयार करें ताकि इस महिषासुर का नाश हो सके। तो तीनों त्रिमूर्ति देवता ने अपने मुख मंडल की ऊर्जा को उत्पन्न किया और उस ऊर्जा को देख सभी देवताओं ने भी इसकी प्रेरणा ली और अपनी अपनी ऊर्जा को त्रिदेव की ऊर्जा में शामिल किया और यह ऊर्जा देखते देखते इतनी प्रखर असीम तेजोमय हो गई कि इसकी ऊर्जा, इसका प्रभाव दसों दिशा में व्याप्त होने लगा। तभी इस ऊर्जा से एक देवी का अवतरण हुआ। अवतरित तेजोमय शक्ति को देख शंकर ने वरदान के रूप में उस देवी को त्रिशूल प्रदान किया। इसे देख विष्णु जी ने भी अपना चक्र उसे प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अपने अस्त्र शस्त्र से उन्हें सुशोभित करते हुए वे प्रदान करते गए और देवी की शक्तियां बढ़ती गई। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनकी ये विशाल काया रूपी शरीर को देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब मेरा काल आ गया है। कई दिनों तक ये भीष्म युद्ध चलता रहा। महिषासुर देवी के सामने आते ही देवी ने एक झटके में दानों का संहार कर दिया और आखिर इस युद्ध में महिषासुर मारा गया। इस तरह मां ने सभी देवताओं को असुरों से अभय दान दिया। ये अभय दान देवताओं के लिए एक पुण्य से कोई बड़ा कार्य नहीं था। स्वर्ग का सुख उन्हें प्राप्त हुआ इस दानों के युद्ध से और दानों के साथ युद्ध करने की क्षमता देवताओं की तब हीन हुई जब उन्हें अभिमान आया और उस अभिमान में देवताओं ने अपनी सारी शक्ति नष्ट कर दी। देवताएं भोग विलास में विलिप्त होने के कारण भी देवताओं की शक्ति नष्ट हुई। इस प्रकार से हम हर कहानी में सुनते हैं, लेकिन इसे लेने का जो उद्देश्य होता है या इस कहानी के पीछे की जो भावनाएं हैं या सारांश, यही कहेंगे हम कि हम हर एक मनुष्य में पंच तत्व की असीम ऊर्जा है, जो हमें जन्म से ही बहुत सात्विक रूप से प्रकृति ने दी है। दूसरी प्रखर ऊर्जा का जो स्रोत है हर एक मनुष्य में जन्म से लेकर के मृत्यु तक, असीम ऊर्जा एक नेचुरल रूप में प्रकृति ने और परमात्मा ने हमें प्रदान की है। वे शक्ति है, संकल्प शक्ति, जिसे हम साधारण शब्द में विचार शक्ति कहते हैं। जैसे देवताओं में ये देवी शक्तियां हैं, वैसे हम मनुष्यों में भी संकल्प शक्ति बहुत ही पावरफुल है। इस शक्ति को हम सही विधि से सकारात्मक सोच को बनाते हुए ये ऊर्जा को असीम ऊर्जा बना सकते हैं। सकारात्मक शुद्ध विचारों से हमारे जीवन में दुख, अशांति और रोज के संघर्षों से हम दूर हो सकते हैं। हम एक देवतुल्य जीवन जी सकते हैं और इस जीवन में महिषासुर जैसी असुरी प्रवृत्तियां अपने आप में हमें नष्ट करनी होगी। मैं यही कहूंगी कि जब देवियों ने असुरों का नाश किया तो वह असुर शक्ति और कोई नहीं थी, लेकिन हम मनुष्य के अंदर की असुरी प्रवृत्तियां ही थी, जिसका हमें अंत करने की प्रेरणा इन कथाओं के द्वारा प्राप्त होती है। अपने इस देवी के परिचय में ये भी सुना है कि देवी किस गुणों से संपन्न थी, किस शक्ति से संपन्न थी। इस गुणों को हम जीवन में अगर धारण करें तो उससे जो अवगुण थे, जो गलत प्रवृत्तियां थी, वे जरूर हमारे जीवन से नष्ट होंगी। इसी प्रेरणा के साथ ओम शांति।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने अपना अनुभव का आधार से आज का त्यौहार को चार चांद लगा दी और हमारा सभी भक्तजन और श्रद्धालुओं को कुछ प्रेरणा दी। आस्था और विश्वास में जो बढ़ोतरी होने लायक शब्द का साथ इस त्यौहार का बारे में यथार्थ रूप में समझाए, जिससे हमें बहुत कुछ सीख मिलता है और हमारा जो श्रोता मित्र ग्रामवासी जो सुन रहे हैं इस समय, तो उनको भी बहुत कुछ लाभ होगा। जैसे इस देवी का परिचय में आपने पूरा उनका जो साज सज्जा और उनका जो अंग में जो अलंकार धारण किए, उसका ऊपर में भी आप पुंखानुपुंख मैंने यथार्थ रूप में जानकारियाँ दिए। हम तो त्यौहार मनाते हैं, लेकिन त्यौहार का साथ साथ उसको सही विधि से और यथार्थ रूप में जब मनाते हैं, उससे हमें कुछ सीख मिलता है। जैसे आज आपने पूरा आरंभ से अंत तक, शेष तक आपने पूरा विस्तार रूप में, सटीक रूप में जानकारियाँ दिए और इस त्यौहार में हमारा जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इन शब्दों के साथ आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को, खासकर नवरात्रि स्पेशल में चौथा दिन में हम आपको और एक देवी का स्वरूप में बताएंगे, दुर्गा जी का, जो नवरात्रि चल रहा है उसमें और कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अच्छा, सभी को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएँ, शुभ भावनाएँ। अच्छा, धन्यवाद, आभार।
2: शक्ति मात की जय। बोलो अध्या शक्ति मात की जय।

0: अम्बे मात की जय।
1: बोलो अम्बे मात की जय।
2: मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहे।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन. आइए जानते हैं नवरात्रि पर्व का आध्यात्मिक रहस्य राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आदरणीय उषा दीदी से.
1: ओम शांति. भारत त्योहारों का देश है और हर रोज कोई ना कोई त्योहार मनाए जाते हैं. कहा जाता है कि उसमें से सबसे रंग बिरंगी उमंग उत्साह से भरा हुआ त्योहार नवरात्रि का त्योहार है. आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का दिन माना गया है और माँ चंद्रघंटा एक प्रतीकात्मक. माँ चंद्रघंटा का मतलब है चंद्र और घंटा. चंद्र अर्थात के चंद्रमा, इसीलिए उनके चेहरे के ऊपर आधा चंद्रमा भी दिखाया है और साथ में घंटा दिखाया गया है. चंद्रमा प्रतीक है शांति शीतलता का, कि जिसकी पूजा करने से मनुष्य के जीवन के अंदर शांति और शीतलता का वरदान मिले. और साथ ही साथ घंटा अर्थात के जो मंदिरों में हम घंट बजाते हैं वो भी उनके चेहरे के ऊपर दिखाया हुआ है. और कहा जाता है कि जब भी घंट बजता है तो जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक प्रकंपन है, वो दूर हो जाते हैं वातावरण के अंदर से और एक सकारात्मक ऊर्जा विकसित होते हैं. उसका चेहरा बहुत सुंदर दिखाया है, साथ में ही उसको शेर की सवारी पर दिखाया है, जिनका शरीर एकदम सुनहरा दिखाया गया है. शेर पर सवारी का मतलब है इतनी निर्भयता का प्रतीक. उसे 10 भुजाधारी दिखाया और साथ में 3 नेत्र दिखाए हैं. उसके 8 भुजाओं में 8 शस्त्र दिखाए हैं और बाकी 2 भुजाएं जो है विशेष मुद्रा को लिए हुए हैं, आशीर्वाद की मुद्रा के जो हर एक को आशीर्वाद देती है. और ज्ञान का जब तीसरा नेत्र खुलता है तो ये विभिन्न हाथों में जो शस्त्र दिखाए हैं वो शस्त्र से बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त करना. एक हाथ में चक्र है, ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ज्ञान का गोतक है, जिसे स्वदर्शन चक्र या सुदर्शन चक्र भी कहा गया है. त्रिशूल यानी दृढ़ निश्चय का प्रतीक और मन वचन कर्म के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करने का प्रतीक है. शंख यानी जो शंख ध्वनि कर अज्ञान अंधकार को समाप्त कर मनुष्य आत्माओं को अज्ञानता की नींद से जगाने का प्रतीक है. हाथ में तलवार यानी मन पर प्रहार करने वाले ईर्ष्या द्वेष विकार वासना रूपी भूतों को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा मार गिराने का प्रतीक. धनुष बाण जिसका भावार्थ है कि ज्ञान के आधार पर लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना व पुरुषार्थ रूपी बाण चलाकर द्रुपद अथवा एक रस एवं अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करना है. गदा परमात्मा शिव की याद में रहकर माया अर्थात 5 विकारों से युद्ध कर उन पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है. और कमल पुष्प यानी संसार में रहते हुए तामसिक विकारी वायुमंडल से अलिप्त यानी पवित्र रहने का प्रतीक है. ये दिव्य शक्तियां आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियां हैं, बाकी कोई देवियां हिंसक नहीं है, क्योंकि विकार या असुरी वृत्ति आंतरिक दुर्बलता से ही उत्पन्न होती है और ये आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ही ऐसी असुरी वृत्तियों का संहार किया जाता है. और इस तरह माँ चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष पूजी जाती है और संपूर्ण रीति से असुरों का संहार करने का

0: आइए नवरात्रि में शक्ति के नौ रूपों का आवाहन करें। माँ चंद्रघंटा श्रद्धालुओं को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। आइए हम भी सभी को सुख बांटें और माँ का आशीर्वाद सहज प्राप्त करें। आज नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को मंगल कामनाएं।
1: कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम ऐसी नारी शक्ति पर आधारित है जिनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव या कुछ अलग उनके जीवन की कोई कहानी होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि नारी शक्ति के साथ जो घर में रह रही है या बाहर जो भी करती है तो उनके साथ इस तरह की परिस्थितियां भी आ सकती है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आप नारी शक्ति की शक्ति को भी पहचान सकते हैं, उसके स्ट्रगल को भी आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी ही नारी शक्ति से आपको मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है मधु राठौड़। आप गुजरात जूनागढ़ जिला बांटवा गांव के रहने वाले हैं। आपकी उम्र 52 वर्ष है। आपने 12th तक पढ़ाई की हुई है। सिलाई कढ़ाई बुनाई का आपको बहुत ही शौक है, कुकिंग का और विशेष करके सफाई का बहुत ही शौक है और अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं। तो ऐसी नारी शक्ति से आपसे मिलवाने जा रहे हैं। मधु जी नमस्कार।
2: धन्यवाद जी,
1: बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: धन्यवाद
1: मधु जी। चलिए, आपकी उम्र 52 है, मतलब पिचपन के आसपास पहुंच चुकी है। और कहते हैं ना, पिचपन में जब बचपन की बातें करते तो बड़ा अच्छा लगता है, क्या कहेंगे?
2: बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे कि मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती थी
1: जी,
2: तब से मुझे कुछ ऐसे लगा, बचपन से तो वैसे माँ बाप, हम 5 3 बहने हैं, 2 भाई है, छोटा सा परिवार है और माता पिता है, दादी थी। फिर दादी तो अचानक से हार्ट अटैक आया और चली गई। उसके बाद सत्संग चला था घर में, जैसे कि तो सत्यनारायण की कथा हर 11 को होती थी। तो मम्मी सब कहती थी कि जाओ आप ना सबको, जो सगे संबंधी है उसको कहना कि हमारे यहाँ सत्संग है तो आ जाना। फिर सबको वो फूल लाना, प्रसाद लाना, वो सब मम्मी मुझे देती थी कि आप वो करो। फिर तो सब लाते थे, फिर ना बरसात आई, ये सब इकट्ठा करते हैं पैसा और उसका कुछ बड़ा करना था। तो मैं तो छोटी थी, तो एकदम बरसात आई तो सारा पैसा इसे पास रहता है 25 पैसे का 30 पैसे का
1: जी
2: हाँ, तो वो सब इकट्ठा किया हुआ था और घर की जो कांधी कहते मतलब माड़िया कहते उसमें लगा था। तो बरसात आने की वजह से जोरदार वो बिक गया। फिर सब वो सुखाया बहनों ने, मेरी 2 बहनें हैं और भाभी है, सब सुखाया। फिर तो मम्मी ने और सत्संग की जो मंडली थी ना, बड़ी पहली बार मेरी मम्मी ने ही वो सत्संग चालू किया। तो कहते हैं कि अब ना कुछ उसका नया करे, हमारे यहाँ जो राजपूत के मंडली होती है ना बहनों की, तो उसमें सत्संग में से जो इतने पैसे इकट्ठे हुए थे तो उसका कुछ अच्छा सा करे जो सबको काम भी आए उसमें।
1: चलिए मधु जी, सत्संग की बातें हम जरूर जानेंगे, पहले हम बचपन की बात जानना चाहेंगे। आप जैसे बता रहे थे कि 5 भाई बहनों, ठीक है, अच्छा आप 3 बहनों और 2 भाई हो, आपका नंबर कौन सा आता है?
2: मेरा लास्ट का नंबर 5वां।
1: तो आप तो सबके चहेते रहे होंगे।
2: बहुत बहुत बहुत चहेते रहे।
1: आपके पिताजी क्या काम करते थे उस समय?
2: वो किसान थे, किसान। पहले तो मैं जब से आई ना तब से तो हमने बहुत खेती देखी। इससे पहले कहते थे कि हमारे 7 थे ना घर में, जैसे 5 बच्चे और 2 माँ बाप और दादी, उसमें बहुत एकदम करकसर से जीवन था
1: जी जी, मुश्किल से चल पाते थे गृहस्थी की।
2: हाँ, नहीं, पापा का यही एक सपना था कि मैं बड़ी खेती लूँ। इसके लिए उसने करकसर से हम सबको ऐसे सिखाया कि करकसर से रहोगे, लोभ से नहीं, करकसर से।
1: जी जी।
2: तो उसने 100 बीघा, मतलब अभी उसका पैसा होता है वो 15 करोड़ होता है, तभी कभी कुछ नहीं था। फिर भी पापा ने, हम काका कहते थे, हम साथ में रहते थे,
1: जॉइंट परिवार था।
2: हाँ, जॉइंट परिवार था, मतलब मेरे जो बड़े पापा के बड़े भाई वो साथ में रहते थे, उसका 6 बेटा
1: जी
2: हाँ, और साथ में रहते थे। तो साथ में रहने की वजह से जो बड़े बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं
1: जी, काका बोलते हैं, बड़े पापा के बेटे,
2: हाँ पापा के बड़े भाई, उसको हम अदा बोलते हैं गुजराती में
1: जी।
2: तो वो अदा का सब बच्चे इकट्ठे रहते, तो वो मेरे पापा को काका कहते थे, तो हम भी काका ही कहते हैं, लास्ट तक काका किया। तो काका का यही सपना था और मुझे बहुत पढ़ाया उसने, सब हमारे भाई बहन है ना उसमें से मुझे ज्यादा पढ़ाया।
1: अच्छा, बाकी आपसे सब कम पढ़े लिखे है?
2: सब कम पढ़े लिखे,
1: भाई भी?
2: भाई भी।
1: तो सब क्या करते, खेती का काम?
2: हाँ सब खेती का ही काम करते हैं।
1: तो आपके सामने 100 बीघा जमीन का जो आपके पिताजी का
2: वो बनाया उसने अपने
1: संकल्प था तो लिया?
2: हाँ वो पूरा किया, पहले ऐसा नहीं था, फिर पूरा किया, फिर उसको तो इतना उमंग आया। उसके बाद सब, पहले भाई की शादी हुई, बड़े भाई की, उसके बाद तीन की साथ में हुई और मेरी अकेली हुई।
1: अच्छा, आपकी शादी की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन बात कर रहे थे आपके बचपन की, कि इस तरह आपके पिताजी खेती का काम करते थे, किसान थे, आपके माताजी भी कुछ करते थे?
2: हाँ घर का काम करती थी और खेत में पिताजी को बहुत साथ देती थी, सारा पूरा काम करके अपना बाता बना करके, और मुझे कहती थी कि आप ये घर संभालो और पढ़ाई करने के बाद हम आएंगे तो आपको ये खिचड़ी बना के रखनी है, ये सफाई करनी है और चूल्हा चूल्हा ये सब कुछ अच्छे से रखना है, ताकि आए तो सिर्फ हमें सब्जी और रोटी दोनों ही बनानी है और पूरा घर का ख्याल रखना है, बाहर सब आपको करना है, और फिर आप ये सब पढ़ाई करने के बाद फिर पेड़ाई कर लेना और सफाई कर लेना। तो मम्मी भाता बनाकर, मतलब रसोई बनाकर जाती थी
1: जी,
2: हाँ, और साथ में पिताजी को बहुत बहुत साथ देती थी।
1: तो आपके भाई बहन भी जाते थे खेत में?
2: सब जाते थे, सब के सब।
1: आप अकेले घर पर रहते?
2: हाँ मैं अकेली घर पर रहती, मैं डरती नहीं थी। मेरे से जो तीसरे नंबर की बहन है ना, जैसे हम तीन बहन है, तो तीसरे नंबर की बहन के वो अकेली नहीं रहती थी, वो डरती थी, वो कहती थी मैं अकेली नहीं रहूंगी। मम्मी बहुत कहती थी कि आप रहो इसके साथ, फिर मैं कह देती हूँ कोई बात नहीं मम्मी आप जाओ उसको भी ले जाओ, मैं अकेली रहूंगी। और मैं बहुत बड़ा था तो मैं उसमें अकेली रहती थी और सब काम कर लिया करती, और मम्मी मुझे ऐसी शाबाशी देती, देखो तो आपसे छोटी है तो भी वो अकेली रहती है और सारा डरती भी नहीं है, कोई आते हैं तो ऊपर से देख लेती हूँ कि कौन आया है, अगर कोई हमारा संबंधी आते हैं तो मैं खिड़की खोलती हूँ, अगर कोई और है तो खिड़की भी नहीं खोलती, ऐसे में बहुत तैयार थी। तो मम्मी और पापा दोनों की चाहती थी
1: जी।
2: पापा तो हमें साथ में ही सुलाते थे, वो तो मेरी सगड़ी है जैसे बोलते, मैं इतनी गर्म रहती हूँ ना तो वो खेत में से आते और पापा को मैं पानी देती हूँ, कुछ खाने को देती हूँ, तो पापा की बहुत चाहती थी, छोटी थी इसलिए बहुत बचपन प्यार से ही गुजरा, और सबका भाई बहनों का अभी तक प्यार मिल रहा है।
1: जी जी जी,
2: बहुत प्यार मिला है
1: जी।
2: और अभी वो पे दुलार देते तो कहते है कि तुम बड़ी भाग्यशाली हो, ऐसे कहते है अभी भी।
1: जी जी, वो कहते हैं ना कि नमे सौने गमे, गुजराती कहावत है।
2: हाँ।
1: तो आपके अंदर नम्रता थी तो आप सभी के दिलों पर राज करते थे।
2: अभी भी कर रही हूँ। और
1: बचपन से जो स्वभाव संस्कार जो हमारे अंदर पड़ जाते हैं वो लाइफ टाइम चलता है।
2: हाँ वो आगे ज्यादा हो जाता है बढ़कर, तो बचपन ऐसे ही गुजर गया पता ही नहीं चला कि देखो सबने इतना साथ दिया, और मैं मेरा उत्साह और उमंग बहुत बढ़ाते थे भाई बहन
1: जी।
2: जो मेरे से चारों भाई बहन है ना, बहुत उत्सव उमंग बढ़ाते थे, जैसे कि खेतों में बुनाई होती है कटाई होती है, वो हम एक दो मजदूर रख करके हम स्वयं करते थे।
1: अच्छा,
2: मजदूर चार आते थे, वो चार बहनें आती थी, दो बहनें अपनी और दो भाई उसके, वो चार ही आते थे और हम सब मिल करके ये सारा खेत संभालते थे।
1: 100 बीघा जमीन में?
2: हाँ,
1: अच्छा।
2: मजदूर नहीं, ना कोई किराए का रखा, रात में कोई नहीं, सब अकेले ऐसे ही करते थे। तो हमने बचपन से यही सीखा कि मेहनत करो और मेहनत से आगे बढ़े, और पापा का तो बहुत था कि ये ले वो ले, बहुत था कोनो, मेहनत में बहुत विश्वास था
1: जी। चलिए मधु जी, आपसे और भी बातचीत करेंगे, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन समय हो चला है यहाँ पर एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मधु जी के अनुभव बहुत ही अच्छे हैं जो हम फिर से सुनेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। 107.8।

0: जल्दी तैयार हो जा, मित्र के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, बेटी वो खुशबू है जो आंगन महकाए, हर रिश्ते में अपनापन जगाए, नन्हे कदमों से सपने बुनती, घर को स्वर्ग सा बना जाए, घर को स्वर्ग सा बना जाए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में ऐसी ही बेटी जुड़ी हुई है, ऐसी मातृ शक्ति जुड़ी हुई है, मधु राठौड़, जिनके अनुभव हमने सुने हैं। इसी कड़ी में और भी आगे बढ़ेंगे। मधु जी पुनः स्वागत है आपका वंदे मातरम कार्यक्रम में।
5: जी थैंक यू जी।
4: तो मधु जी आपके बचपन की बातें चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा स्कूल की बातें बताएंगे कि आपके टीचर्स के साथ, सखियों के साथ कैसा व्यवहार रहा?
5: हाँ मेरी सखिया भी बहुत बढ़िया थी, एक सखी तो बहुत अच्छी थी, मैंने उसे अपना माना था, उसका वो अलग था। फिर मैंने पहले आठवीं पढ़ी तो कुछ आठवीं पढ़ी तो मम्मी होली का त्यौहार था, जैसे अभी होली आ रही है तो होली का त्यौहार था, तो मम्मी ने कहा कि अब मैं ना सारा रसोई या बाता बोलते हैं ना वो बाता कर रही हूँ, तो अपना आज जाओ शिव के मंदिर पर। और वहाँ से गुजरात में ये होता है कि बड़ा शिवरात्रि का महत्व होता है, शिवरात्रि के दिन उपवास करते हैं और भांग का प्रसाद मिलता है और बड़ी उत्साह उमंग से शिवरात्रि पूरा दिन रहते हैं। और शिवरात्रि के दिन खाना कुछ नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा फ्रूट लेना है, दूध लेना है और वो प्रसाद लेना जरूरी है। तो प्रसाद नहीं, माताजी लाई थी तो उसने कहा आप जाओ तो मुझे मंदिर भेजा, तभी एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी मिली और मैं आठवीं कक्षा में वो प्रदर्शनी देखी। तो वो प्रदर्शनी पहले तो कुछ समझ में नहीं आई, बाद में इतनी मन को भा गई कि बार बार वही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगे। इसमें इतनी लगती थी कि मैं ही वही देवी हूँ और मुझे इतना अच्छा अनुभव होने लगा कि मैं बस इसी मार्ग पर चलूं। घर पर आई, प्रदर्शनी देखी तो उस प्रदर्शनी में सुना कि मैं कौन हूँ, वही बहुत अच्छा लगा। फिर पहले तो कुछ समझ में नहीं आया और माताजी तो चली गई खेत में और मैं घर पे, तब स्कूल पे रजा होती है तो घर पे हूँ, घर पे थी। उसके बाद आध्यात्मिक में मेरा जुड़ाव बहुत रहा, मैं बहुत अच्छा लगता था कि मैं आध्यात्मिक में कैसे आगे चलूँ। फिर हर ग्यारस के दिन और पूनम के दिन मेरी माताजी कथा करती है, सत्संग सब बहनें आती है, सत्संग की 50 बहनें होती है, तो माताजी सत्संग में होने के कारण मैं इतनी आध्यात्मिक रही पहले से। भक्ति भाव, उसमें प्रसाद होता है, महाप्रसाद की बहुत महिमा होती है सत्संग में, सत्यनारायण की कथा, वो सत्संग फिर पाठ पूरा हो जाता है, 5 अध्याय होता है, पूरा होने के बाद प्रसाद सबको बांटते।
4: अच्छा तो आप अध्यात्म में चलने लगे, तो फिर घर में किसी ने विरोध तो नहीं किया?
5: जी छोटी थी तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, पर ऐसे कहा कि अच्छा है, मम्मी अध्यात्म से जुड़ी थी तो अध्यात्म में बहुत रुचि थी मेरी पहले से ही।
4: तो भक्ति के संस्कार आपको बचपन से?
5: बचपन से
4: जी। और आठवीं से आपको थोड़ा अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया?
5: स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया।
4: अच्छा, मैं स्कूल की बात कर रही हूँ कि आपके सखियों के साथ कैसा था?
5: सखियों के साथ तो इतना मैं सखी नहीं करती थी, मुझे ऐसे आध्यात्म में अच्छा लगता है बस।
4: अच्छा, ये बताइए आप स्कूल में कोई पार्टिसिपेट करते थे जैसे गाने? हाँ, में
5: हाँ, जो कोई स्पर्धा होती है, कोई भी स्पर्धा होती है, तो पहले तो मैं लींबू चमची में वो स्पर्धा किया ना, तो मेरा वो इसमें फर्स्ट नंबर आया, पहला नंबर आया, जो अच्छा लगा कि आगे बहुत बढ़ना चाहिए, उत्सव उमंग बढ़ा, जैसे पहले नंबर आया ना तो अंदर से लगा कि बहुत आगे मेहनत करनी चाहिए, फिर तो आगे आगे नंबर आता ही गया।
4: अच्छा, तो हर साल आप भाग लेते थे?
5: हाँ, हर साल भाग लेते।
4: अच्छा, और डांस गरबा ये भी करते थे?
5: हाँ, गरबा करते, डांस तो अकेले अकेले करते।
4: तो करते थे अकेले स्टेज पर?
5: हाँ, अकेले अकेले स्टेज पर करते थे, पर थोड़ा हिचकिचाते पर कर लेते थे, फिर बाद में एक भी किया फिर तो अच्छा लगा तो करते रहते थे डांस जी। भी
4: कभी टूर्नामेंट में भी गए? गेम्स में कोई गेम्स खेलते थे?
5: गेम्स तो नहीं खेली।
4: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
5: पढ़ाई में बहुत बढ़िया था, और एक फोकस था कि आगे बढ़ना है, मतलब इतना तो लाना ही है, तो पढ़ाई में भी रुचि बहुत रही, दसवीं में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बारहवीं तक, पर बारहवीं तक में तो मेरी शादी हो गई थी, मैं बारहवीं तो वहाँ ससुराल में किया।
4: अच्छा, बारहवीं पढ़ रहे थे और शादी करवा दी?
5: हाँ, बारहवीं में तो मेरा जो रिजल्ट आया ना वो ससुराल में आया, पढ़ाई तो वहाँ, शादी तुरंत कर दी।
4: तो आपका ससुराल कहाँ है?
5: ससुराल भी वही बाटवा में ही है।
4: बाटवा में ही? कितना बड़ा शहर है बाटवा? शहर है या गांव है?
5: वैसे शहर भी कहो तो शहर भी है और गांव भी है,
4: तो वहीं पर आपका पियर भी और ससुराल भी? वहीं पर
5: एक गांव में सब। कई बार गई नहीं, रेल तो मैंने कहीं देखा नहीं, आध्यात्मिक में रहे और गांव में ही शादी हो गई।
4: तो आप बता रहे थे कि छोटे थे तब तो कोई विरोध नहीं करते थे, तो शादी के समय किसी ने विरोध किया क्या?
5: नहीं, फिर तो युगल को मैं आध्यात्मिक में ले गई तो उसको भी अच्छा लगा, फिर विरोध होगा आध्यात्मिक में,
4: फिर क्या हुआ, विरोध हुआ?
5: हाँ, ससुराल में कहते कि नहीं, हम कोई

0: देती रही कि हमें अपने मर्यादा में ही रहना है, कभी इधर उधर पाँव ना जाए, फिसल ना जाए, वो बड़ा ध्यान रखना है किसी के साथ। बहुत सारी हमें मदद की बातें मिली उसी से, उसकी
1: जी,
0: बड़ी दो बहनें थी उसी से सब मिला।
1: तो फिर ससुराल में सब कैसे रहते थे? शादी के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया?
0: सासी तो घूंघट निकालते थे और बहुत स्ट्रगल हुआ,
1: मतलब आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करते थे?
0: तभी तो करते थे। पर जब आध्यात्मिक में जुड़ी, आध्यात्मिक में मेरा मन रुचि लगी, तभी विरोध हुआ।
1: तो आपने कहा कि आपके हस्बैंड तो आपके साथ जाते थे।
0: पहले उसने थोड़े टाइम किया, थोड़े टाइम वो मेरे साथ चले। मैंने कहा, प्यार से उसे बोला ना कि चलो हम जाते हैं, इसमें आध्यात्मिक में क्या बहुत अच्छा है लगता है। वो सत्संग में जाने लगे, अब मेरे साथ आए। वो उसमें साप्ताहिक होता है कोर्स, उस वो किया उसने, और उसके बाद विरोध किया। और घर में तो जाते हैं तो सबको पता चलता है ना, ससुराल में तो मैं कह करके जाती थी कि मैं सत्संग में जा रही हूँ। तो फिर आने के बाद सबको अच्छा नहीं लगता है। मैं अपना काम टाइम पर करती थी, सबको बहुत प्यार से रखती थी, फिर भी उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि हम पकड़ लोग नहीं है सत्संग में, हमारा आध्यात्मिक में नहीं जाना है, सत्संग में नहीं जाना है। तो फिर मन नहीं लगता था सत्संग के बिना। तो
1: फिर आपने विरोध किया?
0: मैंने विरोध नहीं किया, मैंने चलती रही, सत्संग में जाती रही।
1: जी,
0: फिर छुप छुप के जाने लगी, ऐसे थोड़े सामने से। फिर तो उसको पता चल गया कि ये वहां से जाती है, तो सामने से आकर दो चमाट लगा देती।
1: अच्छा, तो इस तरह आपके साथ विरोध होने लगा।
0: बहुत
1: अच्छा,
0: विरोध,
1: ससुराल में कितना बड़ा परिवार था? मतलब संयुक्त परिवार था या आप अकेले रहते थे सास ससुर के साथ?
0: संयुक्त परिवार था। 10 जने रहते थे, 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, 2 ननद है, और सास ससुर है, जेठ जेठानी, उसके 3 बच्चे
1: जी,
0: बच्चे थे।
1: तो
0: हाँ
1: इतना बड़ा परिवार था, आप कह रहे 10 जने थे, इतना बड़ा परिवार रहते थे साथ में।
0: हाँ सबका काम भी हमें ही करता है, ऐसे कोई काम का भाग नहीं हुआ था, सब इकट्ठे काम करते थे। और मैं तब पानी की तंगी थी तो खेत में जाकर के कपड़े धोने होते हैं।
1: जी,
0: हाँ, और
1: कुएं
0: वहाँ
1: पर।
0: नहाने का सब सब मना होता है, नहाते नहीं थे, कहते कि नहीं हम थोड़ा ब्राह्मण लोग है, हम ब्राह्मण लोग नहीं है, वो क्या बोलते हैं, ब्राह्मण लोग नहाते हैं, हम नहीं नहाते। तो 2-3 दिन में नहाने देते थे, और जैसे कि चलता था।
1: अच्छा, नाने रोज नहीं देते थे और आपको
0: नहीं,
1: स्वच्छता पसंद है, तो फिर क्या करते है?
0: फिर मैं तो नहाती हूँ तो उसको विरोध होता है कि ये कैसी है ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। वो कहते बोलते थे ना कि नहीं नाना नहीं है, हम थोड़ा ब्राह्मण है, ब्राह्मण होते हैं वो नहाते थे।
1: जी, चलिए मधु जी, आपके और भी अनुभव सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला एक ब्रेक लेने का, तो एक ब्रेक लेकर के पुनः लौट रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है, तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होगी
1: और इस दिन की आपको ढेरों शुभकामनाएं।
2: बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। बेटी जब आगे बढ़ती है तो कुल खानदान रोशन होता है। उसकी एक मुस्कान से ही पूरा समाज प्रोत्साहित होता है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। आइए, इनके अनुभव हमने काफी कुछ सुने हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो मधु जी, जैसे आपकी शादी हो गई, आपको अध्यात्म में गहरी रुचि थी, सत्संग में आप जाते थे, ससुराल में फिर आप जाने लगे तो विरोध होने लगा, फिर आप रोज नाते तो नाने का भी विरोध होने लगा, तो पानी कहाँ से भर के लाते थे? घर पर नल था?
3: हाँ जी, नल तो था, पर ऐसे भी सबका मन भी देखना है ना, उसका मन नहीं है और हम ना रहे, फिर भी नाना ही है, जरूरी है, फिर नहाते थे, नाना तो जरूरी लगा, तब भी लगा और अब भी लग रहा है।
2: नाते और रोज डांट खाते?
3: रोज डांट भी खाते, और उसको हम अच्छे नहीं लगते थे, क्यों नहाने के लिए मना करते और हम नहाते, तो संबंध ऐसे प्यार से नहीं रहता है।
2: आपके हस्बैंड के साथ?
3: हाँ, वो तो बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे है।
2: तो कौन मना करता है?
3: सासू, जेठानी, वो कहते कि नहीं नाना है, ये क्यों नाना है इसे।
2: तो फिर साथ में ही रहे या अलग हो गए?
3: नहीं, फिर तो साथ में रही, जब तक पहली बेटी आई, दूसरा बेटा आया, तब तक साथ थे।
2: अच्छा, आपके हस्बैंड क्या काम करते थे उस समय?
3: वो होमगार्ड में थे, अभी तो रिटायर हो गए।
2: अच्छा, तो आपके गांव में थे?
3: हाँ, गांव में ही सेवा होती है ना सरकारी, होमगार्ड की, जैसे पुलिस के नीचे।
2: जी जी,
3: कॉन्स्टेबल के नीचे होती है।
2: अच्छा, तो जैसे आपका मायका भी वही था और
3: ससुराल भी गाँव में?
2: जी, जैसे आप बता रहे थे कि कपड़े धोने आप खेत में जाते थे, तो पानी की कमी थी, तो आपके मायके में भी कपड़े धोने आप खेत पर जाते थे?
3: जी नहीं, वहाँ तो घर पे ही था सब कुछ, घर पे ही कपड़े धोते थे, पर ससुराल में ना दुष्काल हुआ तो वहाँ थोड़ी तंगी हुई पानी की, तो कहते कि आप खेत में जाओ। तो मैंने तो जैसे शादी की आई और तुरंत कपड़े या जो चद्दर वो रजाई होती है ना, एक साथ 18 रजाई धोई, एक दिन भी मैंने बैठी नहीं हूँ,
2: इतना काम करते थे,
3: एक दिन भी बैठी नहीं हूँ। जैसे आज इधर पांव रखा, शाम को शादी करके आए, सुबह सब बोलने लगे इतना काम है, इतना काम है, वो है, इतना धोना है, तो मैंने सीधा कहा चलो मैं आती हूँ, मैं और मेरी जेठानी साथ में गए। फिर एक दिन आई, दूसरे दिन तो सास बोलने लगी कि इतना काम मैं अकेली क्या करूँगी, तो वो तो घर पर रही रसोई के लिए और मैं अकेली गई
2: कपड़े धोने।
3: हाँ,
2: तो शादी होते ही आपके काम में लगा देते हैं, नई नई बहू आई तो थोड़ा लाड़कोड़ भी तो करते हैं ना?
3: करते हैं ना, अभी हम भी कर रहे हैं, हमारी भी बहू है, हम भी बहुत करते हैं, क्योंकि ऐसे आध्यात्म में जाते हैं ना, तो जैसे हम पर बीती है ना, उस पर ना ही बीते, उसको तो इतना लाड प्यार करते, उसको तो आप करके, आप अभी भी, मैं, मेरी बहू है, उसको आप कहकर ही बुलाती हूँ
2: जी,
3: उसको ऐसे तुकार के नहीं बुलाते, प्यार से ही उसे बुलाते, अगर बुलाना है तो प्यार से ही बुलाते।
2: जी जी। अच्छा, तो जैसे आपका काम में लगा दिया, तो आपके मायके वालों ने कुछ नहीं कहा?
3: नहीं नहीं, माँ पापा का तो यही था कि मेहनत करो, मेहनत आपको जगह देगी, मेहनत से ही आगे बढ़ना है ना।
2: तो इतना आप काम करते थे तो सास ससुर प्यार करते थे आपको?
3: नहीं, हो अपना अपना तरीका होता है ना, अपना अपना नजरिया होता है।
2: अच्छा, किसी का प्रेम नहीं मिला?
3: नहीं, आध्यात्मिक में बहुत रुचि इसलिए तो जगी ना।
2: अच्छा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सत्संग से प्रेम बढ़ा?
3: हाँ, प्रेम और बढ़ा।
2: फिर कितने समय में आप पियर जाते थे?
3: पियर तो गांव में ही था, क्योंकि वहाँ खाना, मुझे वहाँ तेल बहुत लगता था सब्जी में, और मायके में तेल नहीं था, तो साग भाजी में मायके ही खाती थी। अब माता जी मेरी और मेरी भाभी थी, सब कहते थे अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता, यहाँ खा लो, और खा करके वहाँ जाती हूँ ससुराल में।
2: तो रोज जाते थे खाना खाने?
3: हाँ, वहाँ रिवाज है, गांव में जो शादी होती है ना, वो 4 बजे या 5 बजे मायके में रोज जाती है।
2: अच्छा,
3: अभी भी
2: टाइम मिल जाता है?
3: नहीं, टाइम निकालते, वो रिवाज हो गया है,
2: तो 5 बजे जा करके खाना खा के वापिस आ जाते हैं।
3: हाँ,
2: फिर ससुराल में खाना नहीं खाते थे?
3: नहीं, सब्जी में बहुत तेल होता है, कोई स्वाद नहीं। तो क्या,
2: तो आप नहीं बोलते कि सब्जी में थोड़ा तेल कम डालो, या आप खुद नहीं बनाते?
3: नहीं, सबको यही पसंद है, मेरी पसंद नहीं है तो इसमें क्या बड़ी बात है, हम मैं खा लेते।
2: नहीं तो जैसे नहीं कहते कि आपके चाहिए उत्ती अलग से बना दो?
3: अलग कोई नहीं बनता किसी का।
2: अच्छा, तो इस तरह आपके जीवन यात्रा रही। तो वो कहते हैं ना, गांव में पियर और गांव में ससुराल है, तो थोड़ी मुश्किल तो रहती है बैलेंस बनाने में, तो मुश्किल रहती थी आपके जीवन में भी?
3: हाँ, पर अध्यात्म में बहुत रुचि थी ना, तो मुश्किल नहीं लगा
2: जी। अच्छा, और आप बोल रहे थे कि आपके हस्बैंड का आपको सपोर्ट मिलता था?
3: तभी मिलता था, फिर वो आध्यात्मिक में जुड़े तो थोड़ा कम हुआ, फिर ससुराल में सास ने और बोला कि अब तो 3 साल हो गए, तो 3 साल में तो बच्चा होना चाहिए। मैके में भी यही कुछ रिस्पांस नहीं मिला, तो फिर तो बेटी हुई। बेटी हुई तो जेठानी थी वो खेत में चली जाती थी, पूरा काम मेरे पर आ जाता था, जैसे गायों को दोना, भैंस रखते थे इसको दोना, सब काम करना और बच्चे को रखना
2: जी।
3: थोड़ा थोड़ा ज्यादा सासू का साथ था, सासू थोड़ी बेटी को रखती थी, साथ में थे ना जॉइंट फैमिली में
2: जी,
3: तो रखती थी।
2: दूसरे और कोई सदस्य नहीं थे परिवार में?
3: हाँ थे ना, वो है, एक चूल्हे पर ही रसोई बनती थी, पर यहाँ से कटोरी में लेकर वो अपने घर में खाती थी, वो मेरी सास की सास थी ना वो।
2: अच्छा, तो मधु जी, जैसे आप कह रहे थे कि आपको सत्संग का शौक था, इस वजह से परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करते थे और काम की जिम्मेवारी काफी रहती थी आपके ऊपर, और फिर आप कह रहे थे कि बच्चे होने के बाद आप अलग हो गए, तो सभी अलग हो गए, जेठानी, आप या फिर सास ससुर के साथ रहते थे आप?
3: सभी अलग हो गए, देवरानी भी अलग हो गई, मैं भी, फिर तो देवर की शादी हुई, उसके बाद 1 साल में सब अलग हो गए
2: जी। फिर तो आपको सत्संग में जाने से कोई नहीं रोकता था?
3: नहीं, कोई नहीं रोकता था, मैं चुपके से ही जाती थी सत्संग में। वो जो मेरे पति है ना, उसको जाना अच्छा नहीं लगता है, फिर मैं अपना ढूंढती थी अंदर से कि भाई क्या मेरी कमी है, मेरा कोई काम छूट ना जाए, उसको बराबर से टाइम देती हूँ, उसका खाना पीना सब काम करना।
2: अच्छा, आप सारा काम करते थे और भजन कीर्तन भी करते थे?
3: साथ में बहुत भजन कीर्तन साथ में ही रहता था।
2: अच्छा, और आप क्या करते थे?
3: कभी सिलाई करते थे? हाँ, बच्चों को पढ़ाई में।
2: आपको सिलाई का भी शौक रहा, तो सिलने में आप क्या क्या सिलते थे?
3: ब्लाउज सिलते थे, ड्रेस सिलते थे, सिलाई का काफी शौक था, मैं ब्लाउज भी बना लेती थी और अपना पूरा जो भी है वो सब मैं सिलाई कर लेती हूँ।
2: जी जी, तो आप जैसे सास जेठानी देरानी सबके साथ रहते थे, वहां पर भी सिलाई करते थे या अलग होने के बाद शुरू?
3: अलग होने के बाद, साथ में तो टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि 10 जने का काम था,
2: इसलिए आप अलग होने के बाद सिलाई का काम शुरू किया। तो आप अपना ही सिलते थे या मोल का भी सिलते थे?
3: मैं अपना ही सिलती थी, फिर दो थे, भैंस थी और खेत थी। अलग होने के बाद तो खेत को संभालना होता है, सुबह 8 बजे भाता बना करके 8 बजे निकल जाना, 1 घंटे का चलने का खेत दूर थी।
2: अच्छा,
3: तो वहां पहुंच के, आध्यात्मिक में रुचि थी ना, तो वहां भी मैं पढ़ लेती थी, कुछ भजन भजन कर लेती थी।
2: वहां भजन किसके साथ करते थे?
3: ऐसे अपने ऐसे मन से, तो जब मजदूर आते हैं ना, उससे पहले मैं पहुंच जाती थी।
2: अच्छा,
3: हाँ।
2: तो आपके हस्बैंड भी जाते थे?
3: वो दोपहर को रोटी लेकर आते थे, उसको क्या भाता बोलते है। हाँ, तो वो भात लेकर के आते, मैं अपने भाता लेकर के जाती थी सुबह, और बच्चों को मेरी माँ रखती थी।
2: अच्छा,
3: अलग होने के बाद।
2: जी जी,
3: हाँ। और शाम को आती थी चल करके, साइकिल भी नहीं, कुछ नहीं था, चल के आना चल के जाना, तो 1 घंटा तो हो जाता है आने जाने में, 2 घंटा।
2: खेत में क्या करते थे आप, कुछ बोते थे?
3: बोते तो वो
2: बुआई आप ही करते या मजदूर करते, आप देख रेख करते?
3: बुआई तो उसी से होती है, ट्रैक्टर से होती है
2: जी।
3: पहले तो बेल था ना, बेल से होती बुआई, तो फिर उसमें सफाई होती है ना, वो हम करते थे।
2: अच्छा,
3: उसके बाद बड़े होकर के कटाई होती है ना, जैसे मूंगफली को पाड़ते हैं, भेगी करते हैं जैसे
2: जी, खटी करते हैं और हाँ, फिर उसकी मिट्टी हटाते हैं।
3: हाँ,
2: मतलब खेत के काम में आप ये
3: सारे काम है? सारे काम करते थे
2: जी जी,
3: जो मजदूर वाला होता है ना, वो सारा काम करते थे
2: जी जी। और पढ़ाई में आपको शौक था, और उसी गांव में आपकी शादी हुई, तो आपके टीचर लोग नहीं कहते कि क्या तू इन कामों में लग गई, पढ़ाई कर लेती तो अच्छा रहता?
3: टीचर बहुत अच्छी थी, पढ़ने जाते थे तो भी वो ऐसे वार्ता बोलते, ऐसे ही पढ़ाई की भार नहीं दिया, भणतर में तो बहुत अच्छा
2: जी जी। आप इस तरह खेत में जाते, खेत में आते, आपका टाइम पूरा हो जाता, फिर सिलाई कब करते हैं?
3: सिलाई तो मैं जिस दिन नहीं जाना होता है ना, तब करती हूँ, और कभी कभी तो खाने पीने के बाद टाइम निकाल करके जो बनाना है ना, वो मन से बना लेती हूँ, करना है कि यही करना है, यही चाहिए घर में और अपने पहनने में, तो रात को भी मैं सिल लेती थी।
2: अच्छा, जब जरूरत पड़ी कि हाँ मेरे को इस तरह के कपड़े चाहिए, तो आप खुद का सिल लेते थे?
3: खुद का सिल ले।
2: चलिए, बहुत अच्छी बात है मधु जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन फिर से समय हो चला एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुनकर के पुणे लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मधु जी के अनुभव और भी बाकी है, तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, नारी की हंसी में ईश्वर बसता है, उसकी बातों में सच्चाई रहती है। जो नारी का मान रखे उसकी हर राह उजली रहती है, उसकी हर राह उजली रहती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में मधु जी हमारे साथ बने हुए हैं। मधु जी के काफी अनुभव सुने हैं, और भी हम कहना चाहेंगे, मधु जी आप पूरे जीवन अभी तक 52 साल की उम्र है तब तक आप पाटवा गांव में ही रहे, उससे बाहर आपका जाना नहीं हुआ
1: कभी नहीं।
0: तो जैसे आपकी दो बहनें बड़ी है, कभी उनके यहाँ जाना हुआ होगा?
1: एक तो गांव में ही है, एक बाजू में मजेठी है, वहाँ है।
0: अच्छा, पास पास में ही है।
1: हाँ, कभी कभी जैसे कि प्रसंग होते हैं, उसकी बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तभी जाना हुआ
0: जी। और आप कभी ट्रेन में बैठे ही नहीं?
1: नहीं, पहली बार एक आध्यात्मिक ही बैठे।
0: हाँ, पहले जब आप रहे अपने ससुराल में तब तक ट्रेन में नहीं बैठे?
1: ट्रेन देखा ही नहीं था, दूर बाटवे में तो ट्रेन नहीं है, जूनागढ़ से।
0: जूनागढ़ से मिलती है। अच्छा, और जैसे अब आपकी उम्र 52 साल की है, आपके भी बच्चे बड़े हो गए हैं, बहू भी आ गई है, बेटी की भी शादी हो गई होगी?
1: हाँ, बेटी की भी शादी हो गई है, वो उसका भी दो बेटी है, बेटा है छोटा।
0: अच्छा, तो आप नहीं पढ़ पाए तो आपने अपने बच्चों को पढ़ाया?
1: बहुत खूब पढ़ाया, यहाँ तक कि उसको तो नौकरी भी दिलाई, यहाँ तक
0: बेटी को?
1: बेटे को भी। अभी बेटा भी है, वो लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर वहाँ पाजोद में है।
0: अच्छा, दोनों बच्चे जॉब करते हैं आपके?
1: हाँ, बेटी नहीं करती, बेटी को तो अच्छा ससुराल मिला है तो उसको नहीं करने देते, पर अब वो विदेश जाने वाली है।
0: जी, शादी हो गई और बेटा जॉब करता है?
1: हाँ
0: अभी आपको कोई दिक्कत नहीं?
1: जी नहीं,
0: अभी कोई सत्संग से रोकता नहीं?
1: जी नहीं।
0: आपके हस्बैंड सहयोग करते हैं अब?
1: हाँ, वो सहयोग करते हैं, थोड़ा मैं बोलती हूँ कि मैं जा रही हूँ तो सत्संग में, तो मुस्कुरा देते हैं, कुछ बोलते नहीं है
0: जी।
1: मैं उसको भी बोलती हूँ आप भी हमारे साथ चलो।
0: अभी भी आपके सास ससुर सभी है?
1: सास है अभी।
0: जी, अब अच्छे रहते हैं आपके साथ?
1: हाँ, बढ़िया रहते हैं, सबके साथ प्यार से मिलजुल कर रहते हैं।
0: जी,
1: हाँ,
0: एक समय था जब कोई आपके साथ अच्छे नहीं रहते थे तो आपका दिल दुखता था?
1: एक समय तो यही था कि जब मैं अलग हुई ना, तब तो मेरे से सब विरोधी थे, फिर मेरी यह सत्संग की वजह से मैं सबसे साथ मिलजुल रही हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं उसको स्वीकार लेती हूँ, जैसे भी है मैं मिल जाती हूँ उसके, हर प्रसंग में उसके आगे होती हूँ।
0: जी, बिल्कुल। तो आपने सबके साथ तालमेल बनाए रखा?
1: अभी भी बना ही रखा है।
0: जी, और बहू के साथ आपका कैसा व्यवहार है?
1: बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, उसका नाम भी ऐसा है जैसा उसका काम है, उसका नाम है शीतल। तो बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है।
0: जी, तो आपने बहू और बेटी को समान समझा?
1: हाँ, बेटी से बढ़कर भी बहू को मैंने अपने दिल में रखा है।
0: जी,
1: कहते हैं ना, बेटी तो आती है तो जाती है,
0: जी
1: बेटी से हमारा क्या। हाँ, आती है, वो फोन भी करती है, सब हालचाल पूछती है, पर बेटी से बढ़कर है बहू,
0: जी, बहुत
1: और
0: बढ़िया।
1: बहुत बहुत अच्छी है,
0: जी
1: बहुत प्यारी है, और उस जैसा इसका नाम है ना वैसा उसका गुण है।
0: जी और सिलाई काम आज भी आप करते हैं या
1: हाँ,
0: छोड़ दिया?
1: नहीं नहीं करती हूँ अभी भी, अभी तो बहुत अच्छा सिलाई काम हाथ में बैठ गया है।
0: तो आप अपना ही करते हैं या अभी भी मूल का करते हैं?
1: मूल का बेटे ना बोलते हैं कि अभी कोई जरूरत नहीं मम्मी, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, खेती है,
0: जी।
1: अभी बहुत अच्छा है।
0: तो पहले आप मॉल का भी करते थे?
1: पहले पोल का नहीं, घर का पूरा करती थी, खेत करती थी और पशुपालन,
0: अच्छा
1: पशुपालन मेरे ऊपर था।
0: अच्छा कितनी गाय भेजते?
1: 3 गाय भैंसे थी और उसके बछड़े बच्चे होते हैं वो थे,
0: तो आप अकेले
1: और
0: संभालते थे?
1: हाँ, हस्बैंड का तभी थोड़ा कम था साथ सहयोग।
0: जी, तो वो क्यों सहयोग नहीं करते थे फिर? आपने इतना क्यों पाला, खेती को
1: पैसे
0: संभाला?
1: के लिए, पैसा तो चाहिए ना घर चलाने के लिए, तो खेत में से जो उत्पादन होता है वो तो इतना नहीं होता था तब।
0: लेकिन आपके हस्बैंड तो होमगार्ड थे ना, तो सैलरी तो आती होगी ना?
1: हाँ, वो उसके खाते में जमा होती है, वो घर पर नहीं देते थे ना,
0: अच्छा, घर में पैसे नहीं देते थे
1: नहीं देते थे
0: तो घर
1: इसलिए।
0: कैसे चलेगा?
1: हाँ बस दूध घर का है, सब्जी खेत की आती है, गेहूं भी खेत के आते हैं, तो और क्या चाहिए? जैसे कि बाहर से कुछ लेना है ना, तो वो गाय भैंस का जो दूध बेचने के बाद जो पैसा आता है ना, उसमें से मेरा घर चल जाता है।
0: इसलिए आपने गाय भैंस रखी कि आपके हस्बैंड पैसे नहीं देते थे?
1: हाँ, तभी भी नहीं देते, अभी भी नहीं देते,
0: अभी भी नहीं देते?
1: नहीं देते।
0: तो फिर पैसों का क्या करेंगे वो?
1: वो तो क्या करेगी, ले जाएंगे साथ में, कोई नहीं ले जाता है ना, यहाँ ही पड़ा रहेगा।
0: अच्छा, तो आप जैसे आबू आए अभी, आप रेडियो मधुबन में हमारे साथ है, तो किराया भी लगता है, पैसा भी चाहिए बाहर जाने पर, तो कौन देता है फिर आपको?
1: बेटा देता है ना,
0: अच्छा, बेटा देता है।
1: बेटे से मांगती हूँ। मेरा स्वभाव यही है कि मैं भागती नहीं, वो सामने से बोलता है कि अभी तो आपका खलास हो गया होगा, इतना दिया था, अब खलास हो गया होगा तो लो मम्मी। मैं तो पहले तो ना ही बोलती थी, मुझे नहीं चाहिए, फिर यहाँ ये तो नहीं,
0: बाहर जाते हैं तो फिर पैसे दे देते हैं बेटा, लेकिन हस्बैंड आज भी नहीं देते, और आज भी जॉब उनकी जारी है,
1: नहीं वो रिटायर्ड हो गए,
0: रिटायर्ड हो गए, पेंशन आती होगी।
1: नहीं पेंशन नहीं आती उसमें, नहीं आती है, होमगार्ड में
0: अच्छा
1: नहीं आती है।
0: अच्छा फिर भी थोड़ा बहुत पैसा उनके हाथ में होगा, लेकिन देते नहीं है।
1: हाँ वो सारा जमीन का पैसा तो आता ही है ना,
0: जी, खेती बाड़ी का,
1: खेती बाड़ी का
0: तो फिर खेती बाड़ी में से भी आपको नहीं मिलता, जबकि आप तो काम करते हैं।
1: से नहीं मिलता।
0: अच्छा,
1: ये महिलाओं की जिंदगी ऐसी टगल वाली है।
0: हा। फिर भी आप खुशी खुशी उसको बर्दाश्त करके चल रहे हैं।
1: स्वीकार लिया ना, जैसे भी है।
0: जी, तो चलिए, कार्यक्रम के अंत में आप हमारी बहनें सुन रही हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे?
1: मेहनत करना है, मेहनत से डरना नहीं है, और हर परिस्थिति का डट के सामना करना है। जब सामना करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी हमें अंदर से खुशी भी आएगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा।
0: जी, चलिए, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है मधु जी, सभी नारी शक्ति को, कि मेहनत करना है और मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है। जैसे आप पशुपालन करके थोड़ा बहुत पैसे बचा करके कहीं जाते हो तो लेके जाते हो,
1: नहीं,
0: बाकी घर से नहीं मिलता है।
1: और सहन शक्ति एक बड़ी शक्ति है, वो सहन शक्ति से हमारा सबके साथ संबंध अच्छा रहता है।
0: जी,
1: सहन करेंगे ना तो सबके प्यारे रहेंगे।
0: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया है मधु जी ने, बहुत बहुत आभार। आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के अनुभव सभी के साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।
1: थैंक यू जी, थैंक यू उषा दीदी जी, आपका बहुत बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, और बहुत बहुत दुआएं देती हूँ आपको।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम। वंदे मातरम में मधु जी राठौड़ हमारे साथ बने हुए थे। आप जूनागढ़ बांटवा से पधारे हैं और आपने अपने जीवन के अनुभव सुनाए हैं। देखिए, आपने जाना है कि नारी शक्ति कितनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका एक रुपए पर भी अधिकार नहीं होता है, फिर भी आप खुश है, परिवार को साथ में लेके चलते हैं, और सत्संग में जाना कोई गलत बात नहीं है। अच्छी बात है कि आप ईश्वर भजन करते हैं, तो परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया और आपके साथ अव्यवहार किया, फिर भी आप सहनशीलता के दम पर और मिलनसार संस्कार होने के दम पर सभी को साथ में लेके चले और हमेशा खुश रहे, और आज भी खुश है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: डुंडई गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: लाइफ इज अ जर्नी। The path may be difficult. If the determination is strong, then the destination is not far off.

ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर स्थिति बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। बाबा कहते हैं, जैसे जैसे समय समाप्ति की ओर आता जा रहा है, इस भंभोर को आग लगेगी तो तुम बच्चों को बहुत श्रेष्ठ स्थिति में अचल अडोल होकर के रहना है, साक्षी होकर के हर दृश्य को देखना है, कभी कोई भी दृश्य देखते हुए विचलित नहीं होना है। बाबा कहते, जितना आत्मा पवित्र बनती जाएगी, संपूर्णता को प्राप्त करती जाएगी, उतनी आंतरिक स्थिरता सहजता से आ जाएगी। तो इसीलिए बच्चों को कभी भी कोई भी बात में घबराना नहीं है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, पुरुषार्थ कर चार्ट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए? उत्तर है, हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। भोजन के समय बाप की याद रहती है, ये एक दूसरे को बाबा का अनुभव सुनाओ। यह अनेक प्रकार के विचार आते हैं, भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ याद तो नहीं आता है, फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। दूसरी बात, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। आज की मुरली से पहले गीत बजा है लाख जमाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, अब बेहद बाप को कैसे भूलेंगे, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को कैसे भूलेंगे, जिसको आधा कल्प से याद करते थे। यह तो समझाया है कि मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जाता। तो अब जबकि बेहद का बाप मिला है, उसकी याद में ही करामत है। जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे, उतना पावन बनते जाएंगे। तुम अपने को अब पावन कह नहीं सकते हो, इस समय कोई संपूर्ण पावन कह नहीं सकते हैं, जब तक अंत हो। जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो यह शरीर छोड़ जाए, संपूर्ण पवित्र शरीर लेंगे। जब सत्युग में नया शरीर मिले तब संपूर्ण कहेंगे। फिर रावण का खात्मा हो जाता है। सतयुग में रावण की एफिजी नहीं बनाई जाती। तो तुम बच्चे जब बैठते हो, चलते फिरते हो, तो बुद्धि में ये याद रहे, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, फिर नया चक्र शुरू होता है, वह है ही नई पवित्र दुनिया। सतयुग है ही नई पवित्र दुनिया, नया भारत, नई दिल्ली। बच्चे जानते हैं, पहले जमुना का कंठा है, जहां पर परिस्थान बनना है। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है कि पहले पहले तो बाप को याद करो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है।
ये भला याद रखो, बाबा ने यह भी समझाया था कि तुम बाजोली खेलते हो, वर्णों का चित्र भी बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर चोटी ब्राह्मण। ये समझाने के लिए बाबा कहते हैं, बाबा कहते ये विराट रूप का चित्र भी बाबा समझाने के लिए कहते हैं। अच्छा, ये बुद्धि में रखो कि हम 84 जन्मों की बाजोली खेलते हैं। अब संगम है, बाप जास्ती समय नहीं रहते हैं, फिर भी कितना समय रहते हैं? बाबा कहते फिर भी 100 वर्ष तो लगते हैं। उथल पाथल पूरी हो फिर राज्य शुरू हो जाता है। महाभारत लड़ाई तो वही है जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है, तुमको पता है फकीर लोग कलाबाजी खेलते, तीर्थों पर जाते हैं। मनुष्य की श्रद्धा तो रहती है ना, जब तीर्थों पर जाते हैं तो मनुष्य के मन में कितनी श्रद्धा रहती है, तो उन्हों को कुछ न कुछ दे देते हैं, तो श्रद्धा का फल भी प्राप्त हो जाता है। परवरिश उन्हों की होती रहती है, सूक्ष्म में भगवान उन भक्तों की भी परवरिश करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने साथ क्या उठाएंगे। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है। बाबा ने अनुभवी रथ लिया है, गुरु भी किए हैं, देखा भी बहुत कुछ, तीर्थ भी किए हैं। अब बाबा कहते हैं बाजोली को याद कर सकते हो। हम अभी ब्राह्मण हैं, तो देवता क्षत्रिय बनेंगे, यह है सारी भारत की बात। बाप ने ऐसा समझाया है, और धर्म तो जैसे बाइप्लॉप्स हैं, बाप ने तुमको ही तुम्हारे 84 जन्म की कहानी बताई। सेंसिबल जो है वह हिसाब से समझ सकते हैं। इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने जन्म लेंगे, एक्यूरेट हिसाब की तो दरकार नहीं। इन बातों में तो कोई फिक्रात की बात ही नहीं है। ज्ञान को समझना है, बाबा कहे उसमें कोई फिक्रात की बात नहीं। सबसे जास्ती फिक्र यह रहती है कि हम बाबा को याद करते रहे। बाबा कहे यही अंदर में होना रहना चाहिए कि हम बाबा को याद करते रहे। बस एक ही फिक्र है, एक को याद करने का घड़ी घड़ी माया और फिक्रात में डाल देती है। इसमें माया फिकर में बहुत डालती है। बाबा को याद करने बैठो उसी समय और बातें याद आ जाती है, तो बहुत और बातों की फिकरात में डालती है। बच्चों को याद करना ही चाहिए। अब हमको घर जाना है, स्वीट होम किसको याद नहीं आएगा, पुकारते भी है शांति देवा। भगवान को कहते हैं हमको शांति दो। अब तुम बच्चे यह तो जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है, और मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। शांति सतयुग में ही होती है। क्यों वहां शांति है? क्योंकि बाबा कहे एक धर्म, एक भाषा, रसम रिवाज भी एक ही है, वहां है ही शांति का राज्य। अद्वैत की बात ही नहीं है, वहां तो एक ही राजाई होती है और सतो प्रधान है। एक ही राजाई और वह भी सतो प्रधान। रावण राज्य है नहीं जो लड़ाई हो, तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। शास्त्रों में जो गायन है, क्या गायन है? अति इंद्रिय सुख
गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियां तो तुम हो ना, तुम सन्मुख में बैठे हो, तुम्हारे पास भी नंबरवार है जिनको याद रहता है कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये तो वंडर है ना, लाइफ तक साथ देते हैं बाबा, हमें पूरी लाइफ साथ देते हैं, गोद में लिया और पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तो यह याद रहने की भी खुशी बहुत रहेगी। परंतु माया फिर भी भुला देती है। अगर याद करो तो बाबा के बहुत खुशी रहेगी, परंतु ये भी माया भुला देती है। मनुष्य को यह भी समझाना होता है। मनुष्य पूछते हैं, बाकी थोड़ा समय कहते हो, क्या प्रूफ है ये थोड़ा समय बचा है? बोलो, देखो इसमें लिखा हुआ है भगवान वाच, यज्ञ भी रचा हुआ है, यह है ज्ञान यज्ञ। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, तो वहां तो ज्ञान यज्ञ रचने की आवश्यकता नहीं, वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध है। इसीलिए बाबा कहते श्री कृष्ण तो यज्ञ रच न सके। बच्चों को यह भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण इस बेहद यज्ञ के हैं। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। जब तुम अच्छी रीति ज्ञान और योग की धारणा करते हो, आत्मा संपूर्ण बन जाती है, तब इस बंबोर को आग लगेगी। मनुष्य को ही पता होता है ना कि यह बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहां सभी आकर खेल करते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है। बाप कहते बच्चे, चिंता उनकी की जाए जो अनहोनी हो, खो गया सो ड्रामा में था, फिर उनका चिंतन काहे का करे। हम ड्रामा को देखते हैं, ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता है तो मनुष्य देख कर रोते हैं। अब ये तो हुआ ड्रामा, तुम बाबा कहते ड्रामा है। जिस तरह कोई भी दुनियावी ड्रामा को देखने जाओ तो उसमें भी कोई भी सीन आती है तो उस समय रोने की दरकार नहीं, क्योंकि हम जानते हैं इस ड्रामा में आगे स्टोरी क्या है। ठीक इसी तरह बाबा कहे, भले ये बेहद का ड्रामा है, उसको हम जानते नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि बहुत अच्छी इसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ये तो सच्चा ड्रामा है, सच सच करते हैं, परंतु तुमको कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। साक्षी होकर तुमको देखना है, अवस्था बहुत अच्छी हो, साक्षी होकर के देखना है। जानते हो ये ड्रामा है, इसमें रोने की क्या दरकार है? पास्ट इज पास्ट, कब विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। बाबा तो राय देते रहते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र तुम्हारे पास बहुत है, क्लियर लिखा हुआ है, वह शिव बाबा ये वर्षा, लक्ष्मी नारायण ये वर्षा। तुम बच्चों को ये चित्र देखने से बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हमको विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, बस ये चित्र सामने रख दो। इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है, झाड़ भी बहुत अच्छा है। रोज सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो, अपना टीचर आपे ही बनकर पढ़ो, अपना टीचर आपे ही बनकर पढ़ो। बुद्धि तो सबको है। चित्र अपने घर में रख दो, हर एक चित्र में फर्स्ट क्लास ज्ञान है। कहते हैं विनाश होगा तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीत है ना। कहते भी है सतगुरु मिला दलाल के रूप में, तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने समझाने के लिए मिली है। फिर भी माया का पंप बहुत है,
100 वर्ष पहले ये बिजली गैस आदि थोड़ी थी। आगे वायसराय आदि 4 घोड़े की 8 घोड़े की गाड़ी में आते थे। आगे शाहूकार लोग गाड़ी में चढ़ते थे। अब तो विमान आदि भी निकल पड़े हैं। आगे ये कुछ नहीं था। 100 वर्ष के अंदर ये क्या हो गया है? मनुष्य समझते हैं कि यही स्वर्ग है। इन सब एडवांसमेंट को देखते हुए समझते यही स्वर्ग है। सब आधुनिकरण को देखते हुए यही सोचते हैं कि यही स्वर्ग है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग तो स्वर्ग है। ये 7 पाए पैसे की चीजें हैं। इनको आर्टिफिशियल पंप कहा जाता है। अब तुम बच्चों को यही एक फुरना चाहिए कि हम बाप को याद करें जिसमें ही माया विघ्न डालती है। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं। भोजन खाता हूं, बहुत कोशिश करता हूं। अम्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। भोजन खाता हूं, बहुत कोशिश करता हूं, याद में रहकर खाऊं फिर भी भूल जाता हूं। तो समझता हूं बच्चों को तो मेहनत बहुत होती होगी। अच्छा बच्चे, तुम ट्राई करके देखो, बाबा की याद में रहकर दिखाओ, देखो सारा समय याद ठहर सकती है। अनुभव सुनाना चाहिए। बाबा सारा समय याद ठहर नहीं सकती है। अनुभव सुनाओ बाबा को कि बाबा सारा समय याद ठहर नहीं सकती है। बहुत किस्म किस्म की बातें याद आ जाती है। भोजन पर ही सारी किस्म किस्म की बातें याद आ जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया ये भी तो पुरुषार्थी है। इन पर तो बड़े झंझट है। बड़ा कहलाना, बड़ा दुख पाना। कितने समाचार आते हैं, विकारों के कारण कितना मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। बच्चियां कहती है मैं ईश्वर की शरण में आई। कितने विघ्न पड़ते हैं, कोई के पास शांति नहीं है। तुम बच्चों को खातरी है। किस बात की खातरी है? अभी पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल, शांति में रहते हो। इस बाबा ने यहां भी कई ऐसे घर देखे हैं जहां आपस में मेल मिलाप में बहुत रहते हैं। सभी बड़ों की आज्ञा में चलते हैं। कहते हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। अभी बाबा तुमको ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं जहां सब प्रकार के सुख है। देवताओं का 36 प्रकार का भोजन गाया हुआ है। अब तुम स्वर्ग का वर्षा बाप से लेते हो। वहां तो कितने स्वादिष्ट वैभव खाते रहेंगे और पवित्र होंगे। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो। राजा रानी प्रजा में फर्क होगा ना? आगे राजाएं लोग बहुत भपके में रहते थे, यह तो ठहरे पतित। और रावण राज्य में तो विचार करो सतयुग में क्या होगा। सामने चित्र लक्ष्मी नारायण के रखे हैं। श्री कृष्ण के लिए तो कितनी बातें लिख दी है। बाबा कहते अब तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले बिल्कुल क्या बन गए? शूद्र बुद्धि बन गए। क्या हाल हो गया है? अब फिर पुरुषार्थ कर क्या बनते हो? बाबा पूछते

भी है कि तुम क्या बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं सूर्यवंशी बनेंगे। हम तो माता पिता को पूरा फॉलो करेंगे, कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। सारी मेहनत याद और आप समान बनाने पर है। इसलिए बात कहते हैं जितना हो सके सर्विस करना सीखो, है बहुत सहज। ये शिव बाबा, ये विष्णुपुरी, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, ये तो बहुत अनुभवी है। सीढ़ी पर तुम समझा सकते हो। तुम बच्चों को ये झाड़ चक्र देखने से ही बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाना चाहिए। ये तो लक्ष्मी नारायण है, इन्हों की राजधानी कहाँ चली गई, किसने लड़ाई की, जिससे हराया, अब तो वह राज्य है नहीं। इन ईश्वरीय बातों को कुछ नहीं जानते हो। बाबा कहते तुम इन ईश्वरीय बातों को कुछ नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है, कौन सा, कैसे गुफाओं खानियों में जाकर सोने हीरे आदि ले आते हैं। ये साइंस तुम्हारे सुख के लिए होगी, यहां है दुख के लिए। वहां एरोप्लेन भी फुल प्रूफ होंगे। बच्चों ने शुरू शुरू में ये सब कुछ साक्षात्कार किया हुआ है, पिछाड़ी में भी तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। यह भी तुमने साक्षात्कार किया है, पिछाड़ी में बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार होगा। चोर लूटने आते हैं, फिर तुम्हारी शक्ति का रूप देख भाग जाते हैं। वह सब बातें पिछाड़ी की है। चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे तो वह एकदम भाग जाएंगे। अब बाप कहते बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, मुख्य बात है पवित्रता। एक जन्म पवित्र बनना है, मौत तो सामने खड़ा है, कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएंगी जिसमें सब खत्म हो जाएगा। शिव बाबा इन द्वारा समझाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है, ये बाबा सब बतलाते हैं। शिव बाबा को तो अनुभव नहीं है, बच्चों को अनुभव होता है। बाबा कहते शिव बाबा को तो अनुभव नहीं है, बच्चों को अनुभव होता है। माया के तूफान कैसे आते हैं, शिव बाबा के सामने तो माया के तूफान आते नहीं। पहले नंबर में यह है कौन, ब्रह्मा बाबा, तो इनको सब अनुभव होगा, तो इसमें डरना नहीं है, अडोल रहना है। बाप की याद में रहने से ही शक्ति मिलती है। कोई बच्चे चाक लिखते हैं फिर चलते चलते बंद कर देते हैं, बाबा समझ जाते हैं थक गया है। पारलौकिक बाप जिससे इतना बड़ा वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाप को कभी पत्र भी नहीं लिखते हैं, याद ही नहीं करते। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा आपकी याद बिगर हम भला कैसे रह सकते हैं। जिस बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ऐसे बाप को कैसे भूलेंगे। एक कार्ड लिखा वह भी तो याद किया ना, बाबा को एक पोस्ट कार्ड लिखा तो भी तो ये कहेंगे याद किया ना। लौकिक बाप भी बच्चों को चिट्ठी लिखते हैं, नूरे रत्न, लौकिक बाप भी बच्चों को चिट्ठी लिखते हैं, नूरे रत्न। स्त्री पति को कैसे चिट्ठी लिखती है, यहाँ तो दोनों संबंध है। यह भी याद करने की युक्ति है। कितना मीठा बाबा है, हमसे क्या मांगते हैं, कुछ भी नहीं। वह तो दाता है, देने वाला है ना, वो लेने वाला नहीं है। जो बाबा ब्रह्मा बाबा लेने वाला नहीं है, कहते स्वीट चिल्ड्रन मैं आया हूं भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता। बाबा आया है इसलिए भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सूर्यवंशी बनने के लिए मात पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। दूसरा नंबर, पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है, बड़ों की आज्ञा माननी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव, एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव। ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते ही है, स्टीमर को पार जाने के लिए बीच भंवर से क्रॉस करना ही पड़ता है, इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको व रुको मत, साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बन, बाप की मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल आएंगे और मंजिल समीप अनुभव होगी। आज का स्लोगन है, विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। आज का अव्यक्त इशारा है, परोपकार की भावना से संपन्न बन, अपकारी पर भी उपकार करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना हो, हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में निस्वार्थपन हो, तब कहेंगे पर उपकार की भावना। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया, स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं पर उपकारी। इसमें फॉलो फादर कर समान बनो। अच्छा ओ